मांगने वाले खाली न लौटे। कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो।

0: प्राथमिक विद्यालयों का संवरता स्वरूप, यूपी में शिक्षा का निखरता रूप।
1: ऑपरेशन कायाकल्प ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों की बदली तस्वीर।
0: पीएम पोषण से पौष्टिक भोजन, तो स्मार्ट क्लास से मिल रही है आधुनिक शिक्षा की नई रोशनी।
1: शारदा कार्यक्रम से आउट ऑफ स्कूल बच्चों विद्यालय से जुड़े, समर्थ के माध्यम से दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के द्वार खुले।
0: अब यूपी में हर बच्चा पढ़ता है, हर बच्चे का आगे बढ़ने का सपना पूरा होता है।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

के लिए जन भागीदारी और स्वच्छता से समृद्धि शामिल है। हैदराबाद रियासत ने 17 सितंबर 1948 को आज ही के दिन भारतीय संघ में विलय किया था। इसकी स्मृति में आज हैदराबाद में मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार वर्ष 2022 से आधिकारिक रूप से हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह आयोजित कर रही है। मुख्य कार्यक्रम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि होंगे। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर काबू पाने के लिए 2023 के बाद पहली बार अपनी प्रमुख ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। दर में 1/4% की बढ़ोतरी के बाद फेडरल रिजर्व की प्रमुख दर लगभग 3.5

0: मोदी के शासनकाल की सबसे स्थायी उपलब्धि भारतीय समाज की मुख्य धारा का विस्तार है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए प्रतिमाह करने के समाचार को आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने खुशखबरी शीर्षक से लिखा है, कैबिनेट में लिया गया फैसला, पेंशन का दायरा बढ़ेगा। 2013 झीरम घाटी हमला, 10 दोषियों को सजाए मौत, पंजाब केसरी के शब्द है। पत्र लिखता है, हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत 29 की मौत हुई थी। तृणमूल के 10 बागी विधायकों को अयोग्यता याचिका पर नोटिस जारी, हिंदुस्तान की खबर है। हिंदुस्तान अपने संपादकीय पन्ने पर भारत की अध्यक्षता में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफलतापूर्वक समापन पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, ब्रिक्स से भारत को मिले अनेक लाभ। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि सामरिक दृष्टि से भारत का महत्व बढ़ा है। भारत आज न केवल ब्रिक्स बल्कि G20, G7, क्वाड, SCO जैसे तमाम वैश्विक संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। जनसत्ता ने देश व्यापार पन्ने पर लिखा है, न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ व्यापार समझौते को मंजूरी दी। पत्र लिखता है, इसके अंतर्गत न्यूजीलैंड भारत के 100% निर्यात पर शुल्क मुफ्त पहुंच देगा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया। अमेरिका फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to inaugurate Semicon India 2026 at Yashobhumi in New Delhi this morning. BJP to launch month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan today to mark Prime Minister Narendra Modi's birthday. India rejects so-called Pakistan-China Boundary Joint Commission, says Islamabad has no locus standi to enter into arrangements concerning Indian territory under its illegal and forcible occupation. US Federal Reserve raises interest rates for first time in 3 years. US House of Representatives passes package of sanctions targeting Russian officials and key pillars of its economy. And in men's cricket, third and final T20 international between India and Afghanistan to be played in Delhi this evening.

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाहे चाहे चाहे
3: बिंदास मॉर्निंग।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10। आवश्यक सूचना 400 केबी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केबी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
4: कोई मिल गया
5: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
6: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुपर

0: न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
2: एग्जैक्टली बिंदास मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है। आप सभी का स्वागत अभिनंदन। हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है, अस्सलाम वालेकुम। सब कुछ बढ़िया चल रहा है जी जिंदगी में, बस बढ़िया चलना चाहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एंड आज के दिन की सबसे पहले आपको देता हूँ ढेरों मंगल शुभकामनाएं। ये जो मौसम कभी कभी अचानक गड़बड़ा जाता है ना, ये बहुत सारे संदेश और मैसेज देता है कि देखो जिंदगी में भी ना हमें हर एक समय के साथ जो है हमें आगे बढ़ना है, और हर एक समय के साथ हमें कुछ ना कुछ सीखना है और तैयार भी रहना है, क्योंकि हमें नहीं पता अगले पल कौन सी परिस्थिति क्या हमारे सामने आ जाए, है ना। तो हर एक सिचुएशन में लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। बारिश आती है तो हमारे पास छाता होता है, हम तुरंत छाता लेकर निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर, है ना। वैसे हमारी लाइफ में भी ना हमें छोटी छोटी चीज़ों को अपने बैकअप में रखना चाहिए, अगर हमारी लाइफ में कोई भी डाउनफॉल आ रहा है, कोई भी मुश्किल आ रही है, ताकि हम उससे लड़ सकें और लड़के आगे बढ़ सकें। जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने संघर्ष ना किया हो या जिसकी जिंदगी में संघर्ष ना आया हो। हर इंसान की जिंदगी में संघर्ष वाला समय आता है, हर इंसान की जिंदगी में समय डगमगाता है, तो वो कभी डरते नहीं है, वो उसका सामना करते हैं, इसीलिए वो जीत कर एक महान इंसान बन जाते हैं। और उन्हीं में से एक महान इंसान की बात आज हम करेंगे। 17 सितंबर बहुत ही स्पेशल है उनके लिए, मैं आऊंगा तो डेफिनेटली बताऊंगा उनके बारे में। अभी आप और मैं यहाँ पर एंजॉय करेंगे कि मस्त वाला गाना। मौसम इतना अच्छा है, बारिश झमाझम हो रही है, और अभी तो फिलहाल हल्की फुल्की बारिश जो है वो नहीं हो रही थी, बिल्कुल बंद हो गई थी जब मैं आ रहा था ऑफिस, लेकिन अभी पता नहीं हो रही है या नहीं हो रही है। बट जो सुबह सुबह अचानक से मौसम गड़बड़ाया है, तेज हवाएं, बादल अचानक से बदल गए, बिल्कुल आंधी टाइप आ गई थी भाई, और क्या झमाझम बारिश आई थोड़ी देर के लिए, तो एकदम से मौसम जो है आशिकाना हो गया सुबह सुबह। फिलहाल 1972 में फिल्म आई थी पाकिजा, उसी फिल्म के गाने से करते हैं आज के सफर की शुरुआत। लता मंगेशकर जी ने गाया है और मीना कुमारी पर पिक्चराइजेशन ये गाना, सच में बहुत ही खूबसूरत गीत है। इसी गाने के साथ करेंगे आज के सफर की शुरुआत। जी कहिए मैडम।

मैं गाने का मजा बिल्कुल नहीं खराब करूंगा, जरा सी देर में लौट कर आता हूँ, उसके बाद आपके मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। ढेर सारे पॉजिटिव मैसेज आ गए मेरे पास, आप भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ 9837896896 पर। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग।

0: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है,
1: लेकिन सोनिया
0: डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं,
1: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
2: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
6: बसंती इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

अभी आपने जो गीत सुना वो नया दौर फिल्म का था, उड़े जब जब जुल्फे तेरी। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक था श्रोताओं, और मैं आज सच बताऊं तो इतना बढ़िया गाना सुन के मजा आ जाता है। विजयंती माला को देखकर तो मन खुश हो जाता है। आशा ताई ने गाया, मोहम्मद रफी साहब की आवाज, बहुत ही खूबसूरत गाना। दिलीप कुमार साहब क्या लग रहे थे यार, बहुत खूबसूरत ट्रैक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आप ही के फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे। यह है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, बाहर मौसम कैसा हो रहा है दोस्तों, ये आप मुझे बता सकते हैं हमारे मैसेज के माध्यम से 9837896896 पे। आप मुझे बताइए आपके शहर में बारिश हो रही है या मौसम ठंडा है, सुहाना है, कैसी जा रही है आज की सुबह, आज की जो ये ताजगी से भरी मॉर्निंग है, जो ब्यूटीफुल शुरुआत हुई है वो कैसी हुई। देखिए मेरी तो झमाझम बारिश के साथ हुई, जैसे ही मैं उठा बहुत तकड़े आंधी तूफान चल रहे थे, और भाई उसके बाद जो झमाझम बारिश हुई है ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आपकी शुरुआत कैसे हुई आज की सुबह की, आप मुझे बताइएगा ज़रूर मैसेज करके 9837896896। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे आप हमें अपने संदेश पहुंचा सकते हैं, और ढेर सारे संदेश ऑलरेडी मेरे पास पहुंच चुके हैं आज की सुबह।

कहते हैं कर्म ही पूजा है, कौशल ही साधना है, भगवान की कृपा अगर बनी रहे तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। और आज अच्छी कृपा तो बनेगी ऊपर वाले, क्योंकि अपने गैजेट्स की पूजा करने का दिन है। जो हम लैपटॉप, मोबाइल, या जो हम कंसोल चलाते हैं, जो हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, जो भी हम चीज़ें चलाते हैं अपने आसपास, जो हमारे गैजेट्स होते हैं, आज इनकी पूजा करने का दिन है। यस, मैं बात कर रहा हूँ आज विश्वकर्मा पूजा की। आज विश्वकर्मा पूजा जो है वो सेलिब्रेट की जाती है, एंड ये अपने आप में बहुत ही पवित्र और पावन दिन माना जाता है। तो सबसे पहले आप सभी श्रोताओं को विश्वकर्मा पूजा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 17 सितंबर का दिन है, बहुत ही स्पेशल दिन है। आज के दिन जो लोग काम करते हैं, अपने औजारों की पूजा करते हैं, जो लोहा होता है उस चीज़ की पूजा अर्चना की जाती है, ताकि उसमें और ऊर्जा और ज़्यादा उसमें वो पावरफुल हो सके और वो अच्छे से आपको रिजल्ट दे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग जिनकी पूजा करते हैं, और उन्हीं में से एक दिन है आज विश्वकर्मा पूजा। ये अपने आप में बहुत स्पेशल दिन है श्रोताओं। आज के दिन बहुत सारे लोग अपनी बाइक की पूजा करते हैं, स्कूटर, गाड़ी, साइकिल एंड बहुत सारी चीज़ों की। मैं तो कहता हूँ अपने रेडियो की पूजा भी कर डालो, उसमें मेरी आवाज़ भी आती है। इसे जोक से पार्ट आगे बढ़ते हैं, और आज का दिन और भी बहुत सारी विशेष बातों के लिए खास है, मैं डेफिनेटली आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ श्रोताओं कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी में, जैसे कि मैंने कहा, वो अनएक्सपेक्टेड होती है ना। और कहते हैं ना, इंसान का असली इम्तिहान उसकी सफलता और उसकी समृद्धि के वक्त शुरू हो जाता है, जहां उसकी विनम्रता और उसके चरित्र की असली एक वो आईना बताती है। एग्जैक्टली, मतलब जब भी आप कभी, आपके पास अगर सब कुछ है, उसके बाद भी अगर आप विनम्रता से बात करते हैं, लोगों के साथ बड़ी अच्छे से बात करते हैं, तो वो चीज़ होती है जो आपको लॉन्ग टर्म की हैप्पीनेस देती है ना। ये जो आसपास की खुशी है ना, ये नहीं लिया, वो ले लिया, वो नहीं लिया, ये ले लिया, ये सब तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी छोटे से प्लेजर हैं जिसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़रूरी है लेना, लेकिन उसके साथ ही साथ एक इंसानियत को मेंटेन करना ये भी बहुत ज़रूरी है। श्रोताओं, आनंद के साथ सुन रहे हैं आप FM मुरादाबाद। कहते हैं कुछ मिलने पर अहंकार मत करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला एक ही है ना। नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उसका काम तो एक ही है। हाय, गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हो? आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। सुबह सुबह रेडियो सुन रहे हैं आपका, बहुत मज़ा आ रहा है, थैंक यू सो मच। ये हमारे पास मैसेज आ रहा है तनिष्का का, गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं। इसके अलावा एक संदेश मेरे पास पहुंच गया है, गुड मॉर्निंग, इनका नाम कनक है, लिखती हैं, आनंद जी अच्छे वक्त का इंतज़ार नहीं, अच्छी सोच की शुरुआत करो, क्योंकि जब अच्छी सोच होगी तो आपका अच्छा वक्त अपने आप आ जाएगा। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, ये सच में बहुत प्यारा बोला आपने यार, थैंक यू सो मच। जहां से भी मैसेज किया है अपना नाम डेफिनेटली लिखिएगा। एक संदेश और आ पहुंचा है हमारे पास, सुप्रभात आनंद जी, आज आपके कार्यक्रम में बहुत ही अच्छे गाने बज रहे हैं और मुझे ये गाने बहुत अच्छे लगते हैं, थैंक यू सो मच, हैप्पी गणेश चतुर्थी, अरे वाह, गणपति बप्पा मोरया। और एक संदेश और आ पहुंचा है मेरे स्क्रीन पे, हाय आनंद कैसे हो आप? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, एंड सुबह सुबह आपका प्रोग्राम सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है और काफी पॉजिटिविटी मिलती है, अरे वाह, थैंक यू सो मच यार, ये बात बोल के आपने मेरी पॉजिटिविटी बढ़ा दी, आई एम सो हैप्पी। आज विश्वकर्मा पूजा दिवस की सबसे पहले आपको मैं ढेरों शुभकामनाएं देता हूं, और इसके बाद बस इतना ही कहना चाहूंगा, सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। तो बस पसीना जो बहाने के लिए ना तैयार हो जाओ। एक्चुअल जब आप मेहनत करते हो ना, दिल से जब आप मेहनत करते हो, तो यकीन मानो उसकी जो एक वाइब होती है वो अलग ही होती है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत नगमा आपके रेडियो सेट में निकाल रहा हूँ आज की सुबह, और इसको सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगर आप भी हमारे साथ कुछ ऐसी अच्छी बातें और पॉजिटिव बातें करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ 9837896896 पर। इस नंबर के जरिए आप हमारे साथ आज की सुबह कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत ही प्यारा ट्रैक आज की सुबह निकाल दिया है मैंने आपके रेडियो सेट पर, आपको सुन के मजा आएगा, शान की आवाज।

0: सोनू निगम साहब की आवाज। बिल्कुल, मौसम जो है आजकल ऐसे ही हो रहा है बॉस। देखिए, कभी गर्मी हो रही है तो कभी अचानक से बहुत झमाझम बारिश हो जाती है बॉस। 8:49 हो रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, और अभी आपको बताते चले हम यहाँ पर, आप आनंद के साथ जुड़ चुके हैं। ये शुक्रवार की सुबह है, आज की मॉर्निंग, आज फ्राइडे है या फिर आज थर्सडे है, आपको क्या लगता है बताओ मुझे मैसेज करके जरा। क्या कह रहे हो आनंद जी, आज फ्राइडे नहीं है, आज थर्सडे है, आज थर्सडे नहीं आज फ्राइडे है? अरे भाई, कन्फ्यूज सुबह सुबह नहीं करूँगा आपको। अच्छा चलो अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ज़रा एक बात बताओ, आप लोग जो इतने सारे मैसेज सुबह सुबह कर देते हो यार, मतलब इतनी सारी पॉजिटिविटी कहाँ से लेकर आते हो, मतलब इतने बढ़िया मैसेज, ओ माय गॉड, सच में इतने ज़्यादा मैसेज आप लोगों ने पहुँचा दिए हैं, ये तो मतलब मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड हो गए हैं यार। थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे मैसेज के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया यार। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आज थर्सडे है भाई, मैं बिल्कुल जोक सपाट कर रहा था, लेकिन आज फ्राइडे नहीं है, कृपया ध्यान दें। और अभी ये जो आपने मुझे अच्छे अच्छे वॉइस नोट पहुंचाए हैं, ये जरा सुनते हैं पहले। जी
1: नमस्कार, प्रोग्राम बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ, और मैं आपका दोस्त भूपी शर्मा, नगर पंचायत पाकबड़ा से एफएम मुरादाबाद के साथ। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ एफएम, गुनगुनाते रहिए, बजाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज का विचार, प्रातः वंदन। उम्मीदों में जीने वाले लोग अक्सर भावनाओं में भटक जाते हैं, जबकि विश्वास से जीने वाले लोग हमेशा कामयाब हो जाते हैं। राधे राधे, बिंदास मॉर्निंग, सुनते रहिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ, और भेजते रहिए अच्छे अच्छे मैसेज एफएम मुरादाबाद पर 98378-96-896 नंबर के साथ। बोलिए राधे राधे।
0: क्या बात है, एक तो गुरुवार का दिन, गुरुओं का दिन, ऊपर से इतनी प्यारी प्यारी बातें आप कर देते हो, तो मतलब और क्या ही चाहिए, बड़ा मज़ा आता है मुझे। थैंक यू वेरी मच इतने प्यारे मैसेज करने के लिए। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैं एक बहुत ही खास शख्सियत की बात कर रहा था, आज उनका जन्मदिन है, और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है। 76 साल के हो गए हैं, 76 ईयर के हो गए हैं आज, उनका हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे पहले अ वेरी हैप्पी बर्थडे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, उनके जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं पूरे FM entire फैमिली की ओर से। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। और अभी मैं आपसे पूछना चाह रहा था लेडीज़ एंड जेंटलमैन एक सवाल, आज देश के हमारे PM साहब का बर्थडे है, तो ऑफ कोर्स ऐसे में उनसे जुड़ा एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली हम पूछ ही सकते हैं आज की सुबह आपसे, है ना? तो आप मुझे मैसेज करके बताइएगा आज की सुबह, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को बताया, लेकिन हाँ, आप गूगल नहीं करेंगे, ये बात फैक्ट है, ठीक है? तो बिना गूगल किए आप मुझे बताना, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनका पूरा नाम क्या है, देखता हूँ कितने लोगों को पता है। आई नो बहुत सारे लोग जानते हैं, पर हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना पता हो, आज पता चल जाए। तो देखो, गूगल करने की जरूरत नहीं है, सुबह सुबह ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप बस मुझे मैसेज कर देना 9837-896-896 पे, और बस चुपके से व्हाट्सएप करके ज़रा बताओ कि आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की, उनका पूरा नाम कितने लोगों को पता है, ये मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ आपसे। तो अगर आपको पता है तो आप मुझे बताओ मैसेज करके 9837-896-896 पे, व्हाट्सएप करो मुझे और बताओ हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका पूरा नाम क्या है, आपको पता है तो आप मुझे बताओ ज़रा एक बार, उनका पूरा नाम टाइप लिख के मेरे को भेजो व्हाट्सएप पे 9837-896-896 पे, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और अगर आप व्हाट्सएप कर दोगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का बर्थडे, तो सारे बोलो हैप्पी बर्थडे, मिलके बोलो हैप्पी बर्थडे। फिलहाल मैं यहाँ पर अभी बोलने वाला हूँ आज के दिन का इतिहास क्या है, खास मतलब स्पेशल क्या है आज इतिहास के पन्नों में, उस पर मैं बात करने वाला हूँ, और एक बढ़िया गाना भी आपके लिए रेडियो पर लगाने वाला हूँ। तो आप ऐसे ही मेरे साथ ट्यून इन रहिए और सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। अच्छा, लौट कर आता हूँ तो बताता हूँ आज का इतिहास क्यों खास है। फिलहाल ये गाना एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग।

ज़ाहिर है अभी आप इंजॉय कर रहे थे बहुत ही बेहतरीन गाना और कुछ गाने सच में दिल को टच करके जाते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी नॉस्टैल्जिया वाइब वाला ट्रैक। आज की सुबह गजनी से भी आप इंजॉय कर रहे थे गाना। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। 9 बजने को है स्टेशन क्लॉक में। आइए बात करते हैं आज के इतिहास के पन्नों के बारे में। देखिए 17 सितंबर का इतिहास भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आइए बताते हैं आपको क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए भारत ने सेना ऑपरेशन पोलो

0: के तहत हैदराबाद रियासत को जो है निजाम के शासन से मुक्त कराया था और इसे भारतीय संघ में शामिल किया था 1948 में आज ही के दिन। इसीलिए इतिहास के पन्नों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी छुपी होती हैं और छपी होती हैं जो हमें बहुत कुछ नॉलेज से रूबरू कराती हैं। आज के दिन सन 1630 में अमेरिका बोस्टन शहर की स्थापना हुई थी श्रोताओं, आज ही के दिन। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान को आधारिक रूप से अपनाया गया था आज के दिन सन 1787 में श्रोताओं। 1787 की मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं वहीं आज के दिन सन 1950 की, तो 1950 में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म गुजरात में हुआ था श्रोताओं आज के दिन। एंड इसके अलावा आज विश्वकर्मा जयंती यानी कि विश्वकर्मा पूजा दिवस भी सेलिब्रेट की जाती है श्रोताओं। और इसके अलावा इतिहास के पन्नों की तारीख में और भी बहुत सारी चीज़ें बहुत खास हैं। आपको बताते चले, मलेशिया संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था 1957 में आज ही के दिन। और एक और ख़ास चीज़ हुई आज ही के दिन, 1956 में भारतीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का गठन श्रोताओं आज ही के दिन हुआ। एंड इसके अलावा आपको बताते चले, एक और ख़ास चीज़ आज के दिन की गई, यूरोपीय सांसद ने मालदीव पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया था 2004 में आज ही के दिन। और इसके अलावा एक और चीज़ जो इतिहास के पन्नों में छपी हुई है और जो थोड़ा सा इसको अलग बनाती है श्रोताओं, वह है आज के दिन जन्मे कुछ और ख़ास महान कलाकार। लोगों की बात करना तो बनता है जिनकी वजह से ये और भी खूबसूरत हो जाता है हमारा इतिहास का पन्ना। आपको बताते चलें, भारत के प्रसिद्ध चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन का जन्म हुआ था सन 1915 में आज के दिन। और इसके अलावा आज के दिन सी जी कृष्ण नायर जी का जन्म हुआ, जो एक शिक्षक और काफ़ी मतलब धातु कर्म वैज्ञानिक रहे। इनका जन्म 1941 में हुआ आज के दिन। और जोगिंदर जसवंत सिंह का जन्म हुआ था आज के दिन, जो भारतीय थल सेना के 22वें सैन्याध्यक्ष थे श्रोताओं आज के दिन। 1945 में इनका जन्म हुआ था। और बाकी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का बर्थडे, जिनसे जुड़े मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, उनका पूरा नाम कितने लोगों को पता है आप मुझे मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं 9837896896 पे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं आप मुझे, या टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। आज की सुबह बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम क्या है? अगर आपको ये चीज पता है तो आप जरा मैसेज करें मुझे।
1: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
2: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ
1: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
2: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यूनिंग कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
3: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
4: Hey, you're tuning to FM मुरादाबाद 89.6 FM.
5: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
6: हाँ मेरी कसम,
5: मिस कर दिया तो रीलोड।
7: चाय चाय चाय
8: बिंदास मॉर्निंग,
5: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
9: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाद जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
10: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
11: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर रिचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
0: क्या बात है।
4: Hey, you're tuning to FM मुरादाबाद 89.6 FM.
0: बहुत ही बढ़िया जी, वेरी गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं आनंद को। एग्जैक्टली ये आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन है। 9:03 थर्सडे की सुबह बनी हुई आनंद के साथ ढेर सारी बातें हो रही हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। घरेलू एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की दोबारा बुकिंग नियम में थोड़ा सा बदलाव किया है। अब शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के ग्राहकों को 25 दिन के अंतराल के बाद एक नया सिलेंडर वो अपना बुक करा सकते हैं। हाँ जी, मतलब उनको जो है अब ये सिलेंडर जो है 25 दिन के अंतराल पर मिलेगा। तो अब थोड़ी सी आपको राहत मिल चुकी है, तो एक अच्छी गुड न्यूज आज की सुबह आपको मिल गई है। हाँ जी, देखो यार, देश में बहुत सारी चीजें चल रही हैं एक साथ जब बहुत सारी चीजें आ जाती है ना, तो समझ नहीं आता यार किधर क्या चीज हो रही है ना। चाहे वो मुरादाबाद की बात हो या आसपास के क्षेत्र की बात हो या अपने पूरे भारतवर्ष की बात हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा होता है। जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री जी का बर्थडे है, ऐसे इसके अलावा विश्वकर्मा पूजा दिवस आज हम मनाते हैं, गणेश चतुर्थी उत्सव चल रहा है, कितने सारे ओकेजन हो गए है ना। इसके अलावा आपको बताते चलें और भी बहुत सारी चीजें हो रही है मुरादाबाद के अंदर। यूपीआई को लेकर तमाम सारे बदलाव हुए हैं, कल भी मैंने बात करी थी, और जो एक्चुअली यूपीआई का जो मोटो है वो अभी तक लोगों को समझ नहीं आ रहा है। वो उस पर मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा, क्लैरिफिकेशन अभी दूंगा आपको थोड़ी देर में जब लौट कर आऊंगा तो। लेकिन अभी अच्छे गाने भी आपके लिए बजाऊंगा और आप भी मुझे मैसेज करके बता सकते हो। आज की सुबह मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, आपको क्या लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो है नरेंद्र मोदी जी, उनका पूरा नाम क्या है? अगर आपको पता है तो आप मुझे मैसेज करो, व्हाट इज द नेम, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री उनका पूरा नाम क्या है, जानते हैं आप? तो यार फिर देरी किस बात की, मुझे बताओ मैसेज करके 9837896896 ये स्टूडियो का नंबर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इतने बढ़िया बढ़िया मैसेज आप करते हैं ना, मेरे को बड़ा मजा आता है यार, इतने अच्छे अच्छे मैसेज आप लोग पहुंचा रहे हैं, दिल से आपका थैंक यू करना चाहता हूं यार, दिल से थैंक यू यार, इतने वंडरफुल मैसेज, सच में मजा आता है। इतने अच्छे अच्छे मैसेज जब मैं आपके सुनता हूं ना, सच में मन जो है एकदम से अंदर से खुश हो जाता है, मतलब प्रसन्न हो जाता है मन, प्रसन्न जिसे कहते हैं ना, अंदर से खुशी आती है। लाइट भागी थी इसलिए रात को नींद चोरी होगी मेरी, पता नहीं कहां कहां लाइट गई रात, मच्छरों ने चुरा लिया था। आने वाला गाना, हाय हाय भाई साहब, रात को लाइट गई थी, किस किस के एरिया में लाइट भागी थी जरा मुझे ये बताओ, और लाइट क्यों गई है, इसके पीछे का रीजन पता ही नहीं अभी आपको। चलो मैं वापस आऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक गाना बजाऊंगा।

0: चलो जी, मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं बड़ा शरीफ इंसान हूँ। आप मेरे को ऐसे एलिगेशन मत लगाओ, सुबह सुबह पाप लगेगा आपको, अच्छे बच्चों पे ऐसे इल्जाम लगाओगे। तो फिलहाल गाना आ रहा हूँ वापस इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जरा सी देर में लौट के उसके बाद कुछ खास बातें करने वाला हूँ आज के दिन के बारे में।
1: सचिन, ये क्या कर रहा है तू?
0: मैं गाने बजा रहा हूँ। वैसे मेरा नाम सचिन नहीं, आनंद है।

0: 9:14 मिनट का समय। वेलकम बैक है जी, वंस अगेन यू आर लिस्टिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6। मैंने कहा था बताओ जरा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम क्या है। ढेर सारे मैसेज मेरे पास आए हैं, थैंक यू सो मच इतने वंडरफुल मैसेज पहुंचाने के लिए। मतलब मैं आपका बड़ा दिल से थैंक यू करना चाहता हूं यार, इतने वंडरफुल मैसेज करने के लिए। सब लोगों ने इतने बढ़िया जवाब दिए यार, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बधाइयां जी, बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग, एब्सोल्युटली सेलिब्रेशन है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, इतने वंडरफुल मैसेज यार, अनक्रेडिबल यार, इतने बढ़िया मैसेज करते हो। मैंने आपसे कहा था जरा बताओ आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे, उनका पूरा नाम क्या है और क्या ताबड़तोड़ मैसेज किए हैं। थैंक यू सो मच। और मैं फटाफट नाम लेता हूँ मेरे पास। सबसे पहले इशिका ने मैसेज किया है, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? आज हमारे देश के लेजेंड प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है और उनका नाम ये है। थैंक यू। एक मैसेज और आया मेरे पास, हाय गुड मॉर्निंग, माय नेम इज कुसुम, आज हमारे देश के पीएम का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे नरेंद्र मोदी जी, और उनका पूरा नाम ये है। ऑलराइट, आगे मेरे पास एक और मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू डूइंग, आई एम वेरी गुड, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का नाम। Alright, thank you so much. रोहित वर्मा मेरे साथ जुड़े हैं। कनक जी का WhatsApp पहुंचा है। इसके अलावा मेरे पास रोहन का भी सही जवाब पहुंचा है। मनप्रीत ने भी राइट आंसर दिया है। थैंक यू सो मच एवरीबडी इतने प्यारे मैसेज करने के लिए। और एक और मेरे पास WhatsApp पहुंचा है, हाय गुड मॉर्निंग सर, कैसे हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, आई एम गुड, आई एम गुड। एक मैसेज और आया है, आनंद जी आपकी आवाज अच्छी लगती है। अरे वो तो छड्डो यार, बताओ जरा मैनू व्हाट्सएप करके यार, पाजी तुसी दसो हमारे देश के राष्ट्रीय, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, उनका पूरा नाम क्या है, ये मैं पूछ रहा हूँ। एंड दैट इज वेरी वेरी हलवा क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच, बाय द वे इतने वंडरफुल मैसेज करने के लिए मैं आपका दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ। और आगे बढ़ते हैं, देखिए ढेर सारे संदेश मेरे पास पहुंच रहे हैं। हमारे पास सहारनपुर से हमारे रेगुलर लिसनर जुड़े हैं, जोन रोजी पलविलीस लिखते हैं, हेलो आनंद जी सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग जी, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, आई होप आप भी अच्छे होंगे। एंड आगे क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं आनंद जी, खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, हाँ जी, पर कुछ लोग कमजोरी समझ लेते हैं, आप क्या कर सकते हैं सर, कुछ लोग बड़े नादान होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि वो किस चीज के बारे में समझ रहे हैं और क्या बात करें। आई डोंट नो, एनीवे आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हालचाल है? अयूब अली रामपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आई एम वेरी गुड यार। और हमारे साथ राकेश वर्मा, मुमताज आलम जुड़े हैं, ये मुझे गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, लिखते हैं रिमझिम बारिश हो गई है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और आगे एक और संदेश पहुंचा है, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हालचाल है? ये बुद्धि बिहार से अजय सिंह जुड़ रहे हैं, हेलो अजय जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। एक और व्हाट्सएप पहुंचा है, हाय आनंद गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड। देखो बहुत सारे व्हाट्सएप आ रहे हैं, आप भी मुझे बता सकते हैं आज की सुबह। बड़ा सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ, हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं, आज उनका 76 बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसी मौके पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप व्हाट्सएप करके बता सकते हो यार, अगर आपको लगता है कि हाँ आपको पता है तो डेफिनेटली बताओ। वैसे पता तो होगा तो फिर बता क्यों नहीं रहे हो, मैसेज करो ना यार 9837896896 पे, आप बता सकते हो उनका पूरा नाम क्या है, क्या आपको पता है? आने वाला गाना इट्स अ वंडरफुल ट्रैक,
1: दिल के चैन,
0: सनम गुड़ी की आवाज,
1: ओ मेरे,
0: सच में यार
1: दिल के चैन,
0: बहुत प्यारा गाना है।
1: चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए,
0: इसी को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे।
1: ओ मेरे,
0: ये थर्सडे मॉर्निंग है,
1: दिल के चैन,
0: हाँ अभी आ रहा है, अभी इंतजार करो यार,
1: मेरे दिल को दुआ कीजिए,
0: कहीं मैं जाऊँ, I'll be right back। ऐसे ही सुनते रहो FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मैं फटाक से लौट के आता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग।
2: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन,
3: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने, ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना, पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा

0: से मेकिंग चार्जेस।
1: उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियाँ अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: दिल मेरा भाई, देखो मेरी आवाज इतनी फटी हुई है तो इसे आप सीरियसली ना लें। आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम बैक है। 9:27 हो गए स्टेशन क्लॉक में। हाय, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल? मुझे बताएं, मुरादाबादी बहुत एक्साइटेड रहते हैं एंड आनंद को सुन के हर कोई एक्साइटेड हो जाता है। फुल ऑफ एनर्जी के साथ जो है वो एकदम दौड़ने लगता है। आई नो बहुत सारे लोग अपने ऑफिस के लिए निकल रहे होंगे, बहुत सारे लोग बस रेडी शेडी हो रहे होंगे, कुछ लोग तो इस मौसम का मजा उठा रहे होंगे। कोई बात नहीं यार, चलिए फिलहाल टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, यानी कि आज का वेदर क्या कहता है, वेदर चेक है ना। फटाफट से मैं आपको बताता हूँ आज का मौसम कैसा रहने वाला है। बॉस, ये भी तो जानना जरूरी है। तो भैया मौसम के हाल चाल जरा जान लेते हैं। मौसम है आशिकाना, ये मैंने गाना भी बजाया था सुबह आते ही, मेरी दिन की शुरुआत इसी गाने से हुई आज। फिलहाल 29 डिग्री सेल्सियस जो है वेदर है, बादल छाए रहेंगे, हवाएं 2 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी, ह्यूमिडिटी 88% दिखा रहे हैं। बाकी आगे हाइस्ट 31 पहुंचेगा, लोएस्ट 25 पहुंचेगा टेम्परेचर, और बाकी देखते हैं, पहुंच सकता है 25 एंड 31 भी पहुंच सकता है, लेकिन ये बारिश का जो वेदर है वो बना रहेगा। श्रोताओं, धूप धाप हल्की फुल्की निकल सकती है, लेकिन बारिश का वेदर आज आपको मिलने वाला है। चलिए भाई, अभी जरा यूपीआई के बारे में बात करते हैं फटाफट से। बहुत सारे लोगों को ये बड़ी कंफ्यूजन हो रही है, यूपीआई का जो मैटर है ये आखिर है क्या, यूपीआई का जो फंडा आखिर ये है क्या, समझ में ना आ रहा भाई साहब। चलिए मैं आपको फटाफट से सारी चीजें समझा देता हूँ। देखिए बहुत सिंपल है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है और ना ही आपने ज्यादा पैनिक करना है भाई। बड़े सिंपल रूल है यार, और बहुत ही सिंपल सी बात पहले तो समझ लो कि ये जो है ये आम लोगों को इस पे कोई शुल्क नहीं देना है, ठीक है। मतलब जैसे कि मैं अगर आपको पेमेंट भेज रहा हूँ तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ जो व्यापारी हैं या जो दुकानदार हैं, बड़े व्यापारी, उनके लिए बेसिकली ये है रूल जो है वो उनके लिए, ठीक है। 15 अक्टूबर 2026 से जो है यूपीआई के नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, आपको बता रहा हूँ। क्या अब आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम इस्तेमाल करने के लिए चार्ज देना होगा, यही आपका सवाल है ना। मतलब आम जनता इसको लेकर बड़ी परेशान हो रही है। तो भैया आपको बता दें, आम जनता से लेकर दुकानदारों तक जो है वो इस नियम के बारे में अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल। देखिए नॉर्मल यूजर्स के लिए यूपीआई, पेटीएम, फोन पे जो भी आप चलाते हैं वो बिल्कुल फ्री है सबसे पहले। और ज़रूरी बात ये, अगर आप अपने दोस्त या परिवार को पैसे भेजते हैं तो मैं आपको बता दूँ ये आपके लिए 100% फ्री रहेगा, जैसे मैंने पहले भी कहा। एंड चाहे आप 10 भेजो या आप 1 लाख भेजो, इस पर कोई चार्ज नहीं है। इसके अलावा किसी भी दुकान पर अगर आप 2000 तक का सामान खरीदते हैं और आप पेमेंट करते हैं तो इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। बॉस आप बेफिक्र रहिए मेरे भाई। अच्छा मर्चेंट की बात कर लेता हूं तो आपको बता दूं, 2000 या उससे ऊपर जो है मर्चेंट्स पेमेंट पर जो है चार्ज नए नियम के मुताबिक, आपको बता दें अगर आप किसी बड़े स्टोर पर जा रहे हैं और वहां पर 2000 से ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ये आपको 0.4% जो है वहां पर मतलब आपको डिस्काउंट मिलेगा। और पहली बात तो ये जो अमाउंट है ना, ये इसका जो भी चार्ज है वो आपको नहीं देना, मतलब आपकी जेब से कोई पैसा नहीं कटेगा, मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है यार हमारी जेब से ही पैसा कट जाएगा, हमारी जेब से ही पैसा, मेरे पास कल भी मैसेज आए ढेर सारे, आज भी बहुत सारे व्हाट्सएप आए हैं, तो यार ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको कोई पैसा नहीं देना है। आप अपने दोस्त को भेजो, अपने पड़ोसी को भेजो, आपकी जेब से कोई पैसा नहीं कट रहा है बॉस, इतना पैनिक हो रहे हो। चलो भाई, जो MDR चार्ज है वो आपको मैं बता देता हूँ फटाफट से। 2000 रुपये पर 0 चार्ज होगा, अगर आप 5000 भेजते हैं तो 20 रुपीज़ लगेंगे, 75,000 या उससे ज़्यादा भेजते हैं तो 300 लगेंगे, और 1 लाख से ज़्यादा भेज रहे हैं तो भी 300 का ही चार्ज रहेगा। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। नॉर्मल लोगों को बिल्कुल भी ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए यार, मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें, अब आपको पता लग गई। ढेर सारे मैसेज मेरे पास खड़ा खड़ा आ रहे हैं। हाय, गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ आर यू, कैसे हाल चाल हैं आप? आप जो है आज एक मुझे बात बता दो, आपने जो मोदी जी का सवाल पूछा है आपने क्यों पूछा है? मुझे तो उनका पूरा नाम नहीं पता है भाई, मुझे मारो यार, इतनी सारी टेक्नोलॉजी है फिर भी आपको नहीं पता है। अच्छा चलो ये ज़रा सुन लो, शायद आपको यहां से कुछ आइडिया मिल जाए। हाँ जी, ज़रा मैं इनकी वॉइस नोट प्ले कर रहा हूं। बताइए मैम, गुड मॉर्निंग, क्या कह रहे हैं आप?
1: राधे राधे। राधे राधे जी, आनंद जी, हमारे भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है।
1: आनंद जी, आज प्रधानमंत्री का जन्म दिवस है।
0: हाँ जी,
1: मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं
0: जी।
1: और आज विश्व के सृजनकर्ता भगवान श्री विश्वकर्मा जयंती भी है।
0: एग्जैक्टली,
1: मोदी जी स्वस्थ रहें और इसी तरह नए भारत का सृजन करते रहें, क्योंकि वह भगवान श्री विश्वकर्मा की तरह भारत के सृजनकर्ता हैं।
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली, ताली बजाओ भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलो. एग्जैक्टली जी, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. बिल्कुल जी, इन्होंने एकदम सही जवाब दिया है. भाई साहब कुछ देख लो भाई, और एक भाई साहब मुझे कह रहे हैं कि मेरे को नहीं पता यार. अरे भैया इतनी सारी टेक्नोलॉजी है और आपको अगर, यार मैं क्या ही बोलूँ. चलो कोई बात नहीं, हो जाता है यार. बड़े बड़े शहरों में अक्सर ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है. कोई नहीं, फिलहाल एक गाना, उसके बाद वापस आ रहे हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे. आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए. 9:32 हो गए. आप कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली रोड, कांट रोड, स्टेशन रोड, ये गुरट्टी पर हो, पीलीकोटी पर हो, आप जहाँ भी हो भाई, जहाँ भी आप जा रहे हो पहुँच जाओ. मौसम कैसे हो रहा है? एक छोटी सी पिक्चर क्लिक करके मुझे जरा व्हाट्सएप करो. बाहर का वेदर कैसा है जरा बता दो भाई. मेरे ऑफिस में कोई विंडो है नहीं, मेरे को दिख नहीं रहा है बाहर कैसा मौसम है. मैं एक काम करता हूँ, पानी पीकर आता हूँ, तब तक आप ये गाना सुनो. लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एड ब्रेक आ रहा है, फिर ये गाना आएगा. ठीक है जी.
2: Hey, you're tuning to FM Moradabad 89.6 FM.
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर.
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081.
5: वो आ गया, देखो

0: डांस बसंती।
1: अब बात कर लेते हैं मुरादाबाद की लोकल खबरों की। शहर के अंदर क्या चल रहा है ये मैं आपको फटाफट से बताता हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर। वक्त मिला लो यार, 9:37 हो गए स्टेशन क्लॉक में। मेरे पास यहाँ पर प्रियम जी ने एक बहुत ही अच्छी फोटो शेयर की है, दिल्ली रोड की फोटो है। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है यार, कसम से बता रहा हूँ। काश मैं आपकी गाड़ी में बैठा होता तो मैं भी एक आध रील बना ही लेता। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल फोटो, थैंक यू सो मच, इट मींस अ लॉट। आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया आपको बता देते हैं, देखिए मुरादाबाद वासियों के लिए खास खबर है। आज 17 सितंबर से आपको बता दें नगर निगम द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान का जो है एक मुख्य भव्य शुभारंभ किया जा रहा है, एक भव्य शुभारंभ बेसिकली किया जा रहा है। और सुबह 6:30 से मतलब सुबह 6:30 बजे से संपर्क सरोवर के आसपास विशेष स्वच्छता अभियान शुरू होगा। आपको बता दें मतलब अभी मॉर्निंग में फिलहाल ये शुरू हो चुका है 6:30 पे। एंड आपको एक और चीज़ बता दें, ये चीज़ जो है बहुत ही स्पेशल हो मुरादाबाद के अंदर, एक स्पेशल चीज़ हो रही है। एंड इसके बाद शहर के अलग अलग क्षेत्रों में सफाई अभियान, जन जागरूकता एंड और भी बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और एक और खास बात आपको बता दें, आज शाम को 6 बजे मुरादाबाद के विभिन्न जो स्थान हैं वहाँ पर 70 वार्डों में एक साथ जो वार्ड होते हैं ना, वार्ड नंबर आपको पता ही होगा एग्जैक्टली, मैं इसको कैसे यहाँ पे बताऊँ मुझे भी नहीं समझ आ रहा। फिलहाल मोटा मोटा जान लो, आज शाम को 6 बजे जो 70 वार्ड हैं उनमें एक साथ करीब 2 लाख से ज़्यादा दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है, तो इस खास मौके पर जो है मतलब आज पूरा महानगर जगमगाने वाला है। ये तो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि चलो भाई अब पूरा शहर रोशनी में नहाएगा आज। तो आइए हम भी इस अभियान का हिस्सा बने और अपने शहर को स्वच्छ, सुंदर और जागरूक बनाने में अपना योगदान दें, अपना कंट्रीब्यूशन दें, और बहुत ज़रूरी है अपना कंट्रीब्यूशन देना। तो देखिए भाई ये तो हो गई है अपने लोकल खबर की बात, अपने लोकल मुरादाबाद की बात। एक और खास बात आपको बताते चलें, आपको बता दें गणेश चतुर्थी चल रहा है, तो ऐसे में गणेश विसर्जन, अब बप्पा का विसर्जन भी हो रहा है। और आज आपको बता दें बप्पा का विसर्जन रहेगा रामगंगा तट पर, शाम को देर तक जो है देर शाम तक आज मूर्ति विसर्जन रहेगा रामगंगा विहार।

मैं तो रामगंगा का तट पर, सॉरी। तो आज गणेश महोत्सव का जो है, लोगों ने बहुत अच्छे से इसकी तैयारियां कर ली। आज मेरे भी कुछ जानने वाले लोग हैं जो अपने यहाँ पर बप्पा को लेकर आए थे। आज फाइनली उनके घर से बप्पा की विदाई होने वाली है। तो गणपति बप्पा मौर्या, आपके सारे विघ्नों को जो है हर लें, आपके सारे दुखों को हरें और आपको ढेर सारी पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी देकर जाएं। और आज भी बहुत सारी जगहों पर जो है विसर्जन रहने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आज आपके यहाँ पर भी विसर्जन है तो भैया थोड़ा सा दुख तो रहता ही है यार, आई नो। लेकिन जब बप्पा घर से जाते हैं तो थोड़ा सा लगता है, बट क्या करें, जो आए हैं उनको जाना, उनको भी तो अपने घर जाना है ना बप्पा को। बाकी बहुत सारी जगहों पर तो अभी भी चल रहा है, कई जगहों पर तो आज 17 को, कई जगहों पर 19 तारीख को भी रहने वाला है भव्य जो होगा, वो तो 19 को ही होगा। खैर, बाकी सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है और मैंने अभी आपको आज बताई दिया है। आज 2 लाख दीपों से जगमगाएगा अपना महानगर, यानी कि अपना मुरादाबाद। और इसी बात पे आपको एक और बात बताते चलें, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जैसे आप सभी को पता है, बर्थडे है, 76 बर्थडे सेलिब्रेट करें। इसी खास मौके पर एक दीप अभियान की शुरुआत हुई है। शाम को 6 बजे से 7 बजे तक लोग अपने अपने घरों में दीपक जलाएंगे और प्रधानमंत्री जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे। ये भी एक इनिशिएटिव लिया गया है आज उनके बर्थडे पर। देखो, मैंने बहुत सारी कड़क अपडेट आपको दे दी हैं और आपके मैसेज फटाफट से मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ बिना किसी देरी के। राजेश भाई मेरे साथ जुड़े हैं और लिखते हैं, हेलो आनंद जी, मुझे एक अपने दोस्त के लिए गाना डेडिकेट करना है। अमर शर्मा नाम है इनका, ये आईटीएम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। क्या बात है जी, प्रोफेसर साहब को डेफिनेटली गाना हम डेडिकेट करेंगे जरा सी देर में। और ये विश्वकर्मा पूजा दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बाकी लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज की सुबह। आप सभी को शुभकामनाएं, विश्वकर्मा दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। एक और संदेश मेरे पास पहुंचा है, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हालचाल हैं आपके? गुड मॉर्निंग, मेरे हालचाल एकदम फर्स्ट क्लास है, आई होप आप भी बढ़िया होंगे। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। एग्जैक्टली, तभी तो गाना निकाला मैंने आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, एक मैसेज और पहुंचा है, हेलो आनंद भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूं जी। एक मैसेज पहुंचा है हमारे पास, ये बबली अंजान गीता कश्यप लक्ष्मी जी का, ये भी लिखनी, गुड मॉर्निंग। एक मैसेज आया, हेलो सर, लॉन्ग टाइम आपकी लिसनर हूँ, सना तुर्क एंड नाजिया तुर्क, एंड आज मौसम बहुत ही खूबसूरत है। आज जो है इन्होंने मुझे आंसर भी किया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नाम ये है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, नरेंद्र मोदी दामोदर दास उनका नाम है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं, एक व्हाट्सएप और पहुंचा है, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल हैं? जय श्री राम दुर्गेश भाई, मैं बढ़िया हूँ, गुड मॉर्निंग आपको भी। चलिए, बहुत सारे व्हाट्सएप मेरे पास पहुंच रहे हैं और अभी कुछ और खास बातें हैं जो आप तक मैं फटाफट पहुंचाऊंगा, सो डोंट गो एनीवेयर, ऐसे ही आनंद के साथ जुड़े रहिए। 9:42 हो गए हैं स्टेशन क्लॉक में, वापस आता हूँ थोड़ी देर में।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है? शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की। और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा?
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच इतना वंडरफुल गाना देने के लिए. मजा आ गया इसको सुन के, सच बता रहा हूँ भाई. इसको सुन के ना मेरा 1 किलो ब्लड तो बढ़ी गया होगा यार. वेलकम बैक है, वही मच्छर चूस लेते हैं, अब क्या ही कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. आज की सुबह मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही मतलब अनबीटेबल, इनक्रेडिबल, मतलब मैं क्या बोलूँ, क्या क्या बोलूँ, क्या क्या ना बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. फिलहाल अभी आप मेरे को समझ सकते हो. सिचुएशन कभी कभी ऐसे हो जाती है ना, बहुत सारी चीज़ें आपके पास होती हैं बताने के लिए, करने के लिए, तो आप समझ नहीं पाते हो यार क्या बताना है क्या नहीं बताना है. लेकिन फिलहाल अभी मैं आपके लिए एक बहुत ही धाकड़ सा म्यूजिक प्ले करूँगा. एक गाना आपके लिए बेसिकली बजाने वाला हूँ, ये आपको आइडेंटिफाई करना है जो मैं म्यूजिक प्ले करने वाला हूँ वो कौन से गाने का है, ठीक है जी. एंड दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल, अगर आप इसको पहचान जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी, एंड ऑफकोर्स आपको तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है भाजी. तो एक अच्छा सा गाना मैं बेसिकली आपके लिए प्ले करने वाला हूँ. आप मेरे को व्हाट्सएप करके फिर ज़रूर बताना कि जो गाना है वो कौन सा है, ठीक है. अगर आप समझ पा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया,

Yes, अगर आपको समझ में आया है कौन सा गाना है तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर. उठाइए अपना फोन, टाइप कीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसको सेंड कीजिए मेरे व्हाट्सएप पर 9837896896 पर. आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि अभी जो आपने म्यूजिक सुना है वो कौन से गाने का है. दिस इज वेरी वेरी फैबुलस ट्रैक. बहुत बारी आपने हमारे रेडियो पे अक्सर इस गाने को सुना है. अगर आप समझ गए हैं कौन सा गाना है तो आपको मेरे को व्हाट्सएप करके बताना है. Yes, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है. बस अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है. आप जाइए अपने मैसेज बॉक्स में, टाइप कीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, उसको सेंड कर दीजिए मेरे व्हाट्सएप पर. बहुत प्यारा गाना है, एक बार फिर से म्यूजिक सुना देता हूँ. चलो जी, उठाइए अपना फ़ोन फटाफट से, देर मत कीजिए जनाब, मैं लौट कर आता हूँ. अगर सुबह उठते ही आप अपना फ़ोन देखते हैं तो ये क्या सच में सही है या गलत है, और ये अगर आप करते हैं तो पाजी इसके पीछे एक बड़ा मतलब जो है कह सकते हैं एक प्रॉब्लम भी हो सकती है, एक बड़ी समस्या हो सकती है. बॉस क्या समस्या हो सकती है ये आपको जानना है तो मैं बताता हूँ अभी आपको, फटाफट लौट कर आता हूँ. लेकिन उससे पहले एक बढ़िया सा गाना लगाता हूँ आपके लिए और आप मुझे ज़रा जवाब पहुँचाओ जो मैंने पूछा है उसका सही जवाब, जो भी म्यूज़िक प्ले हुआ है कौन सा गाना है. समझ आ गया आपको? मैसेज कर देना. आपका हिंट दे देता हूँ, दिस इज योर हिंट, सोना महापात्रा की आवाज़ है.

0: झुमका
1: मुझे नहीं पता कहाँ गिरा, अगर गिरा होगा मेरे आसपास तो मैं ढूंढ के ले आऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। ये सिर्फ मेरा कॉल है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नहीं भाई, मेरे बस की बात ना है। हाँ जी, वेलकम बैक वंस अगेन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको बताते चलें, सुबह उठते ही ना पता नहीं करोड़ों लोग में से लाखों लोग होंगे जो सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं। करोड़ों भी बोल दूंगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है भाई, क्या करो आने जी, मैं उसमें नहीं, सुबह उठते ही फोन चलाता हूं। मैं तो सुबह उठते ही मेडिटेशन करने जाता हूं, फिर तो वाह भाई वाह, आपके लिए तो बल्ले बल्ले यार। लेकिन फिलहाल मैं बात कर लेता हूं उन लोगों की जो सुबह उठते ही फोन देखते हैं और ये उनकी आदत बन गई, उनकी एडिक्शन बन गई है। ये आपकी बॉडी पे क्या असर डालती है कभी आपने सोचा है? तो चलिए इस पे बात करते हैं फटाफट से। देखिए, अगर आप सुबह उठते ही अपना फोन चेक करते हैं, और आजकल ज्यादातर लोगों की आदत बन गई है, लेकिन दिन की शुरुआत स्क्रीन और लगातार नोटिफिकेशन से करने पर जो है आपका दिमाग तुरंत काम जो है ना आपका दिमाग काम के मूड में आ जाता है, और जिससे तनाव और बेचैनी महसूस हो सकती है। कोशिश करें कि उठने के बाद कुछ समय फोन से दूरी रखें, अपने आप को फोन से जो है दूरी बनाकर रखें, एंड और दिन की शुरुआत आप गुनगुने पानी के साथ कर सकते हैं, हल्की स्ट्रेचिंग करें और मेडिटेशन करें, योगा करें। अगर आप इस तरीके से दिन की शुरुआत करोगे तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को और इन्हांस कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उठते ही सबसे पहले आपकी आंखें जो है फोन पे जा रही है, स्क्रीन पे जा रही है, तो बॉस एक तो आप सो के उठ रहे हो, ठीक है, आपकी आंखें भी पूरी तरह नहीं खुल रही, और आपके फोन की जो लाइट है इतनी ज्यादा आपको देखने में मजेदार लगती है ना, ये आपको आंखों के लिए आपकी कितनी हार्मफुल हो सकती है आपको पता भी नहीं है बॉस। ये इसलिए ना उठते ही सिर्फ फोन नहीं चलाना है, पहले खुद को टाइम दो यार। आपको बता दें, भारत में AI जो है एक नई चीज़ लेकर आने वाला है, जिस इसका नाम है AI। ये एक नई, एक कह सकते हैं कि नई चीज़, एक नया बदलाव कर रहा है, जिसमें जो है आपको अब एक और ख़ास चीज़ मिलने वाली है। एग्जैक्टली, ये एलेक्सा प्लस लॉन्च हिंदी इंग्लिश जो है सपोर्ट से जो इसमें एक सपोर्ट करके है, जो आपकी चीज़ों को बहुत बदलने वाला है। अब ये क्या होने वाला है सीरियसली मुझे भी नहीं पता, अभी पूरी इसकी जब डिटेल्स आएंगी तो डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा। लेकिन ये ChatGPT AI जो है ना कुछ नई नई चीज़ें करता रहता है। लेकिन अभी सुनने में आया कि ChatGPT में अपना डेटा जो है आप सुरक्षित रख सकते हैं, कुछ सेटिंग्स करके अपनी ChatGPT की जो भी आप चैट्स करते हैं, जो भी आपका डेटा है वो आप बिल्कुल पर्टिकुलर तरीके से सेफ रख सकते हैं, तो एक अच्छी चीज़ है। और एक और बात बता दूं, मीटा वन सब्सक्रिप्शन भारत में लॉन्च हो गया है। 54.9 rupees का इसका पैक है, सब्सक्रिप्शन है, हाँ जी, 549 rupees का प्लान लेकर जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप का ये जो अभी प्लस वाला एक नया इन्होंने सब्सक्रिप्शन दे दिया है, इतने बेहतरीन प्लान्स इन्होंने लॉन्च कर दिए हैं। तो अगर आपको लेना है सब्सक्रिप्शन, एडवांस फीचर्स अगर आपको चाहिए तो भैया आप ले सकते हो मीटा ने, यानी कि भैया आपको बता दें भारत में मीटा वन स्क्रीन सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया गया है, जिसमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के प्लस फीचर्स एक ही पैकेज में आपको मिलेंगे, मतलब तीनों चीज़ें एक ही अमाउंट पे आपको मिल जाएगी, एक ही सब्सक्रिप्शन पे आपको मिल जाएंगी।

0: यानी इसमें 3 कैटेगरी हैं, फेसबुक, इंस्टा एंड व्हाट्सएप। इसमें जो है एक नया प्लान इनरोल किया गया है, प्लस फीचर्स जो है वो इनरोल किया गया है, जिससे आप जो है काफ़ी बेनिफिट्स उठा सकते हैं। इसमें कुछ एडवांस फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी अगर आपके लिए बहुत फायदेमंद है, आपको लगता है इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप पे आप बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भाजी ये पैक ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने एक सवाल पूछा था आपसे, 10 बज चुके हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको बस वो आइडेंटिफाई करना था, जो मैंने गाना बजाया था वो कौन सा गाना है ये आपको मेरे को बताना था। लास्ट ऑप्शन है आपके पास, उठाइए अपना फोन, टाइप कीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब। ये कौन सा गाना है, इस गाने से जुड़ी क्लू देता हूँ। जो गोल्डन टेंपल है ना, जो गोल्डन टेंपल जहाँ पर स्थित है, उस शहर की बात हो रही है इसमें।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

0: आवश्यक सूचना 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
2: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ
1: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
2: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।

पछताना तो पड़ेगा यार, अगर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है तो मैं बता रहा हूँ फिर आप पछताओगे बॉस, और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा ना फिर आपके पास। हाय वेलकम बैक, हे गुड मॉर्निंग, दिस इज माय क्वेश्चन। सोना महापात्रा की आवाज, बहुत ही वंडरफुल ट्रैक है। ऑफ कोर्स आप बहुत बारी मेरे रेडियो पे सुनते हैं एंड इतने सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। अगर अभी भी आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप करके डेफिनेटली बताओ यार, 9837896896 दिस इज माय नंबर। इस नंबर पे आप मुझे इमीडिएटली बता सकते हो आज की सुबह जो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कौन सा गाना है। एंड सच बता रहा हूं गाना इतना प्यारा है ना, मजा आ जाएगा आपको। मौसम इतना अच्छा है, ऊपर से अभी कैटरीना कैफ की न्यूज पढ़ के ना मेरे को भी बड़ी टेंशन हो गई है। आपको बताया रिसेंटली कैटरीना कैफ जो है मदर बनी है, अब उसके बाद उनका वेट बढ़ गया है थोड़ा सा, थोड़ी सी मोटी हो गई कैटरीना कैफ, इसको लेके फैंस और तमाम सारे लोग तरह तरह की बातें बता रहे हैं। यार देखो वो भी इंसान ही है यार, कुछ तो ह्यूमिनिटी दिखाओ भाई, ऐसा थोड़ी होता है। अभी वो अंबानी फैमिली में गणेश चतुर्थी के सेलिब्रेशन में शामिल हुई, वहां पर बॉलीवुड के कई सितारों ने शिरकत की एंड उस सेलिब्रेशन में विकी कौशल के साथ कैटरीना कैफ भी पहुंची एंड एक्ट्रेस की डिलीवरी के बाद जो है पहली बार पब्लिक के सामने वो आई और पब्लिक ने जो उसके बाद उनके ऊपर तमाम सारे क्वेश्चन शुरू कर दिए, उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया, ये कैटरीना कैफ कैसी लग रही है, ये तो आंटी लग रही है, ये लग रही है, बोले भाई ठीक है इतना कौन करता है यार, मतलब ऐसे कौन बोलता है भाई। आई नो यार, मैं जानता हूँ चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, हम किसी को प्यार करते हैं और हम उसे ऐसे एकदम से देखते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं हो पाती, लेकिन ठीक है अब वो डेफिनेटली आपसे ज़्यादा तो उनको टेंशन हो रही होगी ना, वो डेफिनेटली पतली हो जाएंगी। लेकिन यार फैंस भी ना कुछ भी कर कुछ भी कभी भी बोल सकते हैं, ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ रील्स की लत छुड़ाने का एक बहुत ही मतलब नायाब तरीका ढूंढा गया है एक शहर के अंदर, मतलब आप सुनोगे तो आप भी हैरत में पड़ जाओगे। हाँ जी, रील्स की लत छुड़ाने के लिए लोगों को किताबें पढ़ने का जो है लोग पैसा दे रहे हैं, मतलब आप रील्स की लत छुड़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप किताब पढ़ें और किताब पढ़ने का आपको पैसा मिलेगा। कहाँ पर हो रहा है ये फंडा, मतलब यार काश ऐसी चीज़ें इधर भी हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, बट ये उनके लिए बेस्ट है जो बुक लवर है यार। आपको बताते हैं सोशल मीडिया और शॉर्ट फॉर्म वीडियो के दौरान किताबें पढ़ने की आदत कम होती जा रही है। अब इसी बीच सिंगापुर सरकार ने जो है लोगों की आदत जो है दोबारा से चेंज करने के लिए, किताबों की तरफ उनका रुख करने के लिए एक बार फिर से जो है एक बहुत ही खूबसूरत जो है अभियान इनिशिएटिव शुरू किया गया है एंड इस इनिशिएटिव के थ्रू जो लोग किताब पढ़ेंगे उनको वो लोग पे आउट भी करेंगे। एग्जैक्टली, मतलब जिससे जो है लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जो ध्यान है वो किताब की तरफ जाए ना कि ऑनलाइन सिस्टम की तरफ जाए, और इससे फ़ोन की आदत भी कम होगी, फ़ोन की एडिक्शन भी होगी, जो वर्चुअल लोग पढ़ाई करते हैं वो भी कहीं ना कहीं उससे भी थोड़ा सा उनको छुटकारा मिलेगा एंड अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो उससे आप पढ़ने का आपको पे आउट भी करेगी सिंगापुर गवर्नमेंट। तो यार ये तो एक बहुत ही अच्छी चीज है कि चलो भाई आप किताबें पढ़ रहे हो ऊपर से आपको पैसा भी मिल रहा है, ये अच्छी जॉब है यार, और आपके फोन की आदत भी कम हो जाएगी है। बिल्कुल मैं भी आपके साथ हूँ। फिलहाल 10:09 का समय हो गया है, खुशी आ चुकी है स्टेशन में लेके ढेर सारे गाने और बहुत सारी परफॉर्मेंस आपके लिए इस स्टेशन पर, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। देखिए यार मैं तमाम सारी जानकारियां आपको देता हूं, इतनी सारी दे देता हूं कभी कभी तो मुझे भी नहीं पता होती है यार आज मैंने कितना कुछ बताया अपने प्रोग्राम में, बट हमारी कोशिश होती है कि हम आपको सारी जानकारियों से रूबरू कराएं। आप रेडियो सुन रहे हो, रेडियो का मेन मकसद गाने नहीं साहब, जानकारियां भी होता है। आपको एक चीज़ और बताते चले, केदारनाथ धाम में फिर से शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवाएं। चलो फिलहाल ही गाना बताता हूँ कौन है आज का विनर।

0: Stas Morning. Stas Morning.
1: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
2: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
1: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।

चलिए भाई, मैं फटाफट अपना विनर बता के खिसकता हूँ। 10:13 हो रहे हैं। बत्ती गुल मीटर चालू का ट्रैक छोड़ के जा रहा हूँ आतिफ असलम साहब की आवाज। आज की सुबह, ये गुरुवार की मॉर्निंग है।

0: भाई आज की सुबह देखो बड़ा अच्छा सा मैंने आपसे गाना पूछा था, बहुत प्यारा ट्रैक। सही लिरिक्स सुनो,
1: गली में मारे फेरे,
0: ओए होए
1: पास आने को
0: क्या बात है,
1: गली में मारे फेरे पास आने को मेरे कभी परखता नैन मेरे।
0: एंड दिस इज द राइट आंसर अंबर सरिया, एग्जैक्टली सबसे पहले सही जवाब मेरे पास कहां से पहुंचा था, चलिए मैं आपको नाम बता देता हूं। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी, साथ में इनके प्यारे मित्र डॉक्टर सैयद शारिक अली जी जुड़े थे, इन्होंने राइट आंसर लिखा था अंबर सरिया गली में मारे

सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. हमारे पास मैसेज आ रहा है, लव योर प्रोग्राम एंड बेस्ट योर प्रेजेंटेशन. प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है. अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक एंड आदित्य कसाना कांट रोड लदावली से मैसेज करते हैं, मुरादाबाद से. थैंक यू. अफरोज फातिमा जुड़ी है. हेलो सर, गुड मॉर्निंग. हाई, गुड मॉर्निंग. हरे कृष्णा जी, गुड मॉर्निंग. राम गोपाल गुप्ता बुद्धि बिहार से मेरे साथ जुड़ रहे हैं राइट आंसर के साथ. राजेश भाई भी जुड़ चुके हैं आज की सुबह. आनंद भाई, गुड मॉर्निंग. ब्रजेश सैनी मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह, गुड मॉर्निंग. एक और मैसेज हमारे पास पहुंचा है. हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है? गुड मॉर्निंग, मेरे बढ़िया है, आपने नाम नहीं लिखा. ब्रजेश सिंह भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह. एंड इसके अलावा हमारे पास एक व्हाट्सएप और पहुंचा है. ये गुड मॉर्निंग का मैसेज मेरे पास बहुत सारी गुड मॉर्निंग पहुंचा, तो इतने गुड मॉर्निंग करते हो कि मेरे को समझ नहीं आता कितने गुड मॉर्निंग मैं आपके एक्सेप्ट करूं. फिलहाल टाइम मेरा ओवर हो चुका है, तो मैं आपसे कल मिलता हूं. बाय, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल. ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और रेडियो बजाते रहिए. हैव अ गुड डे.

लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। एंड मैं आपके साथ आपकी होस्ट हाजिर हूँ आपका फेवरेट शो लेकर, मॉर्निंग मसाला। और दोस्तों, आज थर्सडे मॉर्निंग है, ब्यूटीफुल दिन है। देखिए ना, सुबह का मौसम कितना खूबसूरत था ना, और अभी धूप निकल चुकी है। मतलब मैंने सोचा कि आज का मौसम पूरा दिन ऐसे ही रहने वाला है सुहाना, लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस की, मतलब ऑफिस का टाइम हुआ आने का, मेरा ऑफिस आने का, तभी इतनी कड़क वाली धूप निकली ना कि क्या बताऊँ मैं आपको। ये मौसम ही ना बड़ी नटखट है, बहुत शरारती करता है। और दोस्तों, आज थर्सडे मॉर्निंग है एंड ब्यूटीफुल थॉट आपके साथ शेयर ना करूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। दोस्तों, कहते हैं ना कि हर सुबह अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आती है, तो क्यों ना आज पुरानी टेंशन को थोड़ा साइड में रखें और अपने दिन की शुरुआत एक बड़ी सी स्माइल के साथ करें। याद रखिए, आपका मूड आपके पूरे दिन का म्यूजिक है, तो इसे पॉजिटिव रखें, खुश रहिए और अपनी एनर्जी को शानदार बनाइए। मैं आपके साथ आपकी अपनी आरजी खुशी, आप सुन रहे हैं मॉर्निंग मसाला, जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि सुबह अभी हमारा शो अभी शुरू हुआ है और मॉर्निंग भी है ना। 10:25 हो गए हैं, 10:25 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है। करेंगे बहुत सारी बातें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आप तक हमें पहुंचानी है, और आप भी पहुंचाइएगा अपने दिल की बातें। आज की सुबह हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। वैसे जब आप सुबह उठे होंगे ना, तो आपको भी नहीं पता होगा कि इतना सुहाना सा मौसम है। एक्चुअली मैं बताऊंगी आज की सुबह मेरे साथ क्या हुआ है। और आप भी अपने तब तक मैसेज पहुंचाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर मैं अगेन रिपीट करती हूँ, 9837896896। मैं आपके साथ आपकी खुशी लेकर आई हूँ, आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ। और आज का दिन तो बहुत स्पेशल है ना, क्यों स्पेशल है बताऊंगी आकर। एक अमेजिंग ट्रैक आप सभी के लिए, क्योंकि आज का जो मौसम है ना वो बहुत ज्यादा कैसा है वो बताऊंगी मैं आपको आकर अभी। एंड देखिए ना, सुबह का मौसम इतना सुहाना, फिर अचानक से इतनी धूप, सोचा नहीं था ना कि ऐसा मौसम भी हो जाएगा।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: यार, सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
5: प्राथमिक विद्यालयों का संवरता स्वरूप, यूपी में शिक्षा का निखरता रूप।
6: ऑपरेशन कायाकल्प ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों की बदली तस्वीर।
5: पीएम पोषण से पौष्टिक भोजन, तो स्मार्ट क्लास से मिल रही है आधुनिक शिक्षा की नई रोशनी।
6: शारदा कार्यक्रम से आउट ऑफ स्कूल बच्चों विद्यालय से जुड़े। समर्थ के माध्यम से दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के द्वार खुले।
5: अब यूपी में हर बच्चा पढ़ता है, हर बच्चे का आगे बढ़ने का सपना पूरा होता है।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और देखिए दिल का सुकून तो हमारा रेडियो है, क्योंकि जब हम यहाँ पर आते हैं ना तो सीरियसली बता रहे हैं एवरीवन, आपको रियलिटी बता रहे हैं, बहुत सुकून मिलता है। और आप सबके जब यहाँ पर खूबसूरत संदेश आ जाते हैं तो चेहरा ऑटोमेटिकली शाइन करने लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने खूबसूरत संदेशों के लिए।

और हमारे पास बैक टू बैक आप सभी के मैसेज आ रहे हैं, तो सभी को हम शामिल करना करेंगे। लेकिन बता देते हैं आज कौन कौन से स्पेशल डेज सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, आज क्या कुछ स्पेशल है। दोस्तों आज 17 सितंबर की तारीख है और आज मनाया जा रहा है विश्वकर्मा पूजा। जी हाँ, सेलिब्रेट किया जा रहा है। एक ऐसा दिन जो उन सभी हाथों और हुनर को सलाम करता है जो कुछ नया बनाते हैं, कुछ बेहतर करते हैं और हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। भगवान विश्वकर्मा जी को हिंदू परंपरा में वास्तुकला निर्माण और शिल्पकला का देवता माना जाता है। इस दिन खास तौर पर औजारों, मशीनों, उपकरणों और कार्यस्थल की पूजा की जाती है। और दोस्तों विश्वकर्मा पूजा हमें एक खूबसूरत बात भी सिखाती है, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मायने रखता है उसे करने वाला हुनर और मेहनत। तो आज उन सभी मेहनती हाथों को दिल से सलाम जो अपने हुनर से सपनों को हकीकत में बदलते हैं। और भगवान विश्वकर्मा जी से यही प्रार्थना, हर काम में सफलता मिले, हर हुनर को पहचान मिले और हर मेहनत रंग लेकर आए। विश्वकर्मा पूजा की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। ऐसे ही जुड़े रहिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं आपके साथ आपकी खुशी। और यहाँ पर जो संदेश आए हैं उनको भी मैं शामिल कर लेती हूँ बिना किसी देरी के। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमें मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी जी, आरजे जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, डिस्ट्रिक्ट रामपुर से सना एंड नाजिया तुर्क अपना मैसेज पहुंचाती हैं। ओ रियली, कहती हैं मैम आपकी जो आवाज है ना वो लाजवाब है। थैंक यू, ये तो आपका प्यार है, आप सभी बहुत प्यारे हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया, हाय स्वीट हार्ट, कैसे हो आप, मैं आपकी दोस्त सफरोज फातिमा गुड मॉर्निंग विश करती है ये इतने खूबसूरत अंदाज में, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। साथ में इनकी फ्रेंड भी हैं लाइबा एंड इनकी सिस्टर हैं नजमा, आशिया एंड रामपुर से शबनम जी हैं। और आपने जो ये कॉफी का मग भेजा है ना हमें, बहुत प्यारा है, थैंक यू। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है अजीत कसाना जी का, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी हैं। लदावली जिला मुरादाबाद से हमें मैसेज पहुँचाते हैं आज की सुबह। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, आदरणीय प्रसारक जी को हमारा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। ये मैसेज अपना पहुँचाते हैं हमें दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान जी, साथ में इनकी पूरी फैमिली भी है। और दोस्तों आज ना मैं आपसे बहुत प्यारा सा सवाल पूछूंगी, है ना, देखती हूँ कि आपको ये जो मेमोरी है वो कितनी स्ट्रांग है, पता चलेगा। छोटा सा टेस्ट लेते हैं आज, चलो अभी गाना सुनो उसके बाद में लौट कर आती हूँ, है ना। कुछ म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम करेंगे आपसे बहुत सारी बातें, आप बने रहिए सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। अभी आपने सुना ये अमेजिंग ट्रैक, किसी से तुम प्यार करो तो इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि दोस्तों आप भी बिना किसी देरी के ना अपने संदेश हमें पहुंचाएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और ये खूबसूरत ट्रैक अभी आपने सुना अफरोज जी की रिक्वेस्ट पर। दोस्तों आज का दिन एक खास वजह से भी चर्चा में है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 76वां जन्मदिन है और जन्मदिन के इस अवसर पर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गुजरात से एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। अहमदाबाद के विश्व उमिया धाम में आधी रात को विशेष महाआरती का आयोजन हुआ, जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर 76,000 दिए प्रज्वलित किए गए और बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी गाया। तो आज मॉर्निंग मसाला की तरफ से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें स्वास्थ्य और स्वस्थ रखे और दीर्घ आयु उनको दे और वो देश की सेवा में निरंतर अपना योगदान देते रहें। और दोस्तों मेरा ना आज का सवाल भी इन्हीं से रिलेटेड है, बहुत सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है आज की मॉर्निंग। दोस्तों बताइए वो कौन सा साल था जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से रात 9:09 तक अपने घरों में दिए मोमबत्ती या फिर मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने की अपील की थी? याद है आपको वो कौन सा साल था? बताइए बताइए, सोचिए, याद है ना आपको? वो टाइम कैसे भूल सकते हैं हम? हाँ, वो कौन सा साल था जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से रात 9:09 तक अपने घरों में दिए मोमबत्ती मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने की अपील की थी? अपना सही जवाब हमें पहुंचाएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। बहुत सारे श्रोताओं को तो याद भी आ गया है, बस मैसेज ना चाहे भी कर रहे हैं, फटाफट से लिख रहे हैं। हाँ जी बताइएगा, मैं आपको ऑप्शन भी देती हूँ। चलो है ना, आपके इस सवाल को ना हम थोड़ा सा और इजी बनाते हैं। ऑप्शन हम देते हैं आपको ताकि आपको ना सवाल के जवाब देने में कोई परेशानी ना हो, इसीलिए आप उस सवाल को हम तक पहुंचा पाए जवाब। ऑप्शन है 2020, ऑप्शन ए 2020, ऑप्शन बी 2019, ऑप्शन सी 2021। बताइए अपना राइट आंसर। जब तक आप सही जवाब पहुंचाते हैं आज की सुबह, तब तक हम और खूबसूरत मैसेज शामिल कर लेते हैं जो हमारे पास यहाँ पर आए हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, हेलो गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। इन्होंने अपना नाम तो यहाँ पर नहीं लिखा है, बस हमें गुड मॉर्निंग विश किया है। दोस्तों मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं, ये एक्साइटमेंट आपके अंदर बहुत ज्यादा होता है, अपना नाम लिखना भूल जाते हो। ऐसा मत किया करो दोस्तों, आप जब भी हमें मैसेज पहुंचाओ ना तो अपना नाम जरूर मेंशन किया करो। एंड यहाँ पर हमारे पास मैसेज आया है, खुशी जी सुप्रभात, ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका आज का दिन बहुत सुंदर और खुशियों से भरा रहे, आपका चेहरा हमेशा यूं ही मुस्कुराता रहे, आपके चेहरे पर यूं ही प्यारी सी स्माइल हमेशा बनी रहे, आपका पूरा दिन सुख आनंद और शानदार हो। सुप्रभात, आज मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, फ्रॉम द मूवी राजा हिंदुस्तानी से ये गाना सुनना चाहते हैं, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। अब्दुल रहमान जी का मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया आज की सुबह,
नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। ये प्रियांजल हमें मैसेज पहुँचा दी आज की सुबह। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास अभी यहाँ पर आया है, ये हमें मैसेज पहुंचाते हैं सरगांव छत्तीसगढ़ से, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति एंड शिवांश वर्मा। चलिए दोस्तों, आप अपने संदेश हमें पहुंचाएगा, तब तक मैं आप तक पहुंचाती हूँ कुछ खूबसूरत ट्रैक। एंड आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है, तो उन्हीं के लिए एक गाना तो डेडिकेट करना बनता है आज की सुबह। हमारी पूरी एफएम की टीम की ओर से प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये खूबसूरत सा ट्रैक हम उन्हीं को डेडिकेट करते हैं आज की सुबह।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद,

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हेलो हाय व्हाट्सएप एवरीवन, कैसे हाल चाल है आपके? बताइए। ओहो, सब बिंदास है, चलिए अच्छी बात है, अच्छा ही रहना चाहिए, हम तो यही चाहते हैं। एंड आप सब ऑलवेज हैप्पी रहें, फिट एंड फाइन रहें। और अभी हमने आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था एंड उसके इतने सारे जवाब हमारे पास आए हैं, मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारे इतने सारे श्रोताओं को याद भी होगा, बट वो टाइम कैसे भूल सकते हैं, है ना एवरीवन। जब सब लोग एक साथ अपने परिवार के साथ थे, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, सिर्फ घर पर ही रहना, टाइम स्पेंड करना, नई नई स्किल्स सीखना, और आज की सुबह मैंने आपसे बहुत सिंपल सा सवाल पूछा था, आपको याद है ना? अगर याद नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ फिर से। दोस्तों, वो कौन सा साल था जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से रात 9:09 तक अपने घरों में दिए, मोमबत्ती, मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने की अपील की थी? बताइएगा कौन सा वो साल था, आप मुझे बताइए। मैं ऑप्शन आपको देती हूँ वंस अगेन, 2020 A, B 2019, सी ऑप्शन सी 2021। अब आप अपना सही जवाब हमें पहुँचाइए, एक ही लास्ट ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, अपने नाम के साथ अपना सही जवाब हमें पहुंचाइएगा। क्योंकि कुछ हमारे जो लिसनर हैं वो उन्होंने अभी रेडियो ऑन किया है एंड मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आती है कि मैम एक बार फिर से अपना क्वेश्चन आप मुझे बता दीजिएगा। और दोस्तों, आज की ना ये कहानी है उन लोगों के लिए जो एक खूबसूरत मोटिवेशन है जो मुश्किल हालात देखकर अपने सपनों से पीछे हटने लगते हैं। आंध्र प्रदेश के अविनाश माडा की कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है। उनके परिवार पर करीब 40 लाख रुपए का कर्जा था। उस वक्त अविनाश महज 18 साल के थे और बीटेक के पहले साल में पढ़ रहे थे। परिवार की आर्थिक परेशानी को देखते हुए उन्हें अपनी पढ़ाई और भविष्य को लेकर दोबारा सोचना पड़ा। उन्होंने तय किया कि सिर्फ पारंपरिक नौकरी के भरोसे परिवार की आर्थिक स्थिति बदलना मुश्किल होगा। इसके बाद उन्होंने बीटेक छोड़कर डिजिटल मार्केटिंग और SEO यानी सर्चिंग इंजीनियर ऑप्टिमाइजेशन जैसी नई स्किल्स सीखने का फैसला किया। धीरे धीरे उन्हें इस हुनर को अपने काम में बदला, क्लाइंट्स के साथ काम किया और आगे चलकर अपना बिजनेस बैच शुरू किया। आज उनकी कहानी इस चर्चा में है क्योंकि उनके मुताबिक उनके बिजनेस बैच से सालाना 80 लाख रुपए से ज़्यादा की कमाई हो रही है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में सबसे बड़ी बात सिर्फ 80 लाख रुपए का आंकड़ा नहीं है, बड़ी बात यह है कि जब परिस्थितियाँ मुश्किल में थी ना, तब उन्होंने लर्निंग यानी सीखना बंद नहीं किया। उन्होंने एक नई स्किल सीखी, अपने लिए एक नया रास्ता चुना और लगातार आगे बढ़ते रहे। और शायद यही जिंदगी भी हमें सिखाती है कि मुश्किल वक्त में रुकना नहीं चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी कभी वही वक्त हमें एक नया रास्ता दिखाता है। तो अगर आप भी इस समय किसी परेशानी या मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो

हमारे पास यहाँ पर दीपक जी का मैसेज आया है न्यू मुरादाबाद से। गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और ये प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं पहुँचाते हैं आज की सुबह। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है जिति काका, और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं विकास नगर से। गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपका शो हम एवरी डे सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। चलिए एवरीवन, कुछ म्यूजिकल ब्रेक के बाद लौट कर आती हूँ मैं। उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका सही जवाब हमें सबसे पहले किसने पहुँचा है, कौन है वो आज के हमारे लकी सुपरस्टार, थोड़ा पेशेंस रखिए, बताएंगे हम आपको आज की सुबह। लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप कहीं मत जाइए। और दोस्तों, जब हमारा परिवार हमारे साथ होता है या फिर मुश्किल घड़ी में हमारी फ्रेंड्स हमारे साथ होते हैं तो रास्ता ना और आसान हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप चाहे सुख में साथ दीजिए, सुख में साथ दीजिए या मत दीजिए, लेकिन दुख में हमेशा साथ खड़े रहिए।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिल्म मुरादाबाद 89.6 शो का नाम मॉर्निंग मसाला। आपकी दोस्त खुशी आपके साथ है और बिल्कुल आपको हक है एवरीवन, आप अपने प्यारे प्यारे संदेश पहुंचा सकते हैं। एंड मैंने आज की सुबह बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछा था और उसका सही जवाब हमारे पास सबसे पहले हमें पहुंचाया है। बता दें आपको, चलिए बता देते हैं। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमें सही जवाब पहुंचाया है आज की सुबह, पहले उनके लिए जोरदार तालियां तो बजा देते हैं एवरीवन। ये जोरदार तालियां हमने यहाँ पर प्ले की हैं कपिल जी के लिए। एंड आज के लकी सुपरस्टार बनते हैं हमारे शो के कपिल जी। एंड सही जवाब उन्होंने पहुंचाया आज की सुबह 5 अप्रैल 2020 रात 9 बजे एग्जैक्टली राइट आंसर यही है। मैंने पूछा था आपसे कि आप मुझे बताइए एवरीवन आज की सुबह वो कौन सा साल था जब रात को 9 बजे 9 मिनट तक देश के प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की थी कि घरों की लाइट ऑफ करके सिर्फ कैंडल्स दिए जलाने हैं एंड मोबाइल की फ्लैश ऑन करनी है और प्रार्थना करनी है, वो कौन सा साल था? तो राइट आंसर है 2020, एग्जैक्टली राइट। और आपके लिए हम वंस अगेन जोरदार तालियां तो बजाते हैं।

कॉन्ग्रेचुलेशन कपिल जी, आज आप हमारी शो की बनते हैं लकी सुपर स्टार। एंड नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है विभोर जी का, 2020 एग्जैक्टली राइट, सो आपने सही जवाब दिया है, थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत बधाइयां। विभोर जी ने भी दिया है सही जवाब। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आया है दुर्गेश सैनी जी का, गुड मॉर्निंग जय श्री राम, और सर आपने अपना जवाब देने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, आप एक साल आगे पहुंच गए हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया ललिता कश्यप जी का, नवीन नगर मुरादाबाद से, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। ये कहती है आज की सुबह विश्वकर्मा पूजा की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, और आज श्री नरेंद्र मोदी जी का भी बर्थडे है, उनको भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड उन्होंने बहुत ही प्यारा सा मैसेज भी लिखा है आज की सुबह, कि देश सेवा का जज्बा यूं ही दिल में बना रहे, भारत माँ का मान हमेशा ऊंचा रहे, ईश्वर से यही दुआ है कि दिल में हमारी मोदी जी की उम्र हो लंबी, सेहत रहे प्यारी, हर कदम पर मिले सफलता, हर पल खुशियां अपार, जन्मदिन पर मिले देशवासियों का प्यार, दीर्घायु हो श्री नरेंद्र मोदी जी की, स्वस्थ रहें हर बार, यही है आज दिल से हमारी शुभकामनाएं हजार। अरे वाह क्या बात है, हैप्पी बर्थडे श्री नरेंद्र मोदी जी को। ये प्यारा सा मैसेज पहुंचाती है ललिता कश्यप जी नवीन नगर मुरादाबाद से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर कोमल शर्मा जी का आया है, और ये भी सही जवाब के साथ जुड़ी है आज की सुबह। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में शहीद शारिक अली जी हैं, महाराज अंसारी जी हैं, बाबू अंसारी जी हैं, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी, शुक्रिया सर, आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है। और ये ट्रैक सुनना चाहते हैं जुबिन नौटियाल जी का, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, वैसे दिल तो गलती कर बैठता है, हाँ मेरा दिल भी थोड़ी गलती कर देता है, और वो क्या गलतियां करता है, अभी लौट कर आऊंगी ना मैं तो बताऊंगी कि मेरा दिल क्या गलती करता है। और मुझे लगता है कि ये वाली गलती ना बहुत सारे लोग करते हैं, वो कौन सी गलती है बताती हूँ आकर। चलो अभी सुनो कुछ ट्रैक, उसकी बात करेंगे आपसे बातचीत, आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए, रेडियो की सुई को बिल्कुल नहीं घुमाना है आपको, और मेरे साथ बने रहना है, अभी मुरादाबाद शहर में क्या चल रहा है ये अपडेट भी आपको खुशी बताएगी, सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक आज की मॉर्निंग।

अमेजिंग ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया एवरीवन फ्रॉम द मूवी. मैं आपको बता देती हूँ एंड इस खूबसूरत ट्रैक को गाया था विनी दयाल जी ने और रणवीर सिंह जी ने क्या कमाल का परफॉर्मेंस दिया है इस पर. एक आदत से तो हम भी मजबूर हैं. और मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा दिल ना एक गलती है जो रोज करता है और वो गलती मैं आपको बता देती हूँ एवरीवन. मैं सोचती हूँ एवरी इवनिंग कि 9:30 तक मैं सो जाऊंगी, लेकिन जैसे ही मेरे हाथ में फोन आता है ना तो बस फिर क्या, जैसे इंस्टाग्राम ओपन करती हूँ एक रील्स देखती हूँ, दो रील देखती हूँ, फिर ऐसे ही रील्स का सिलसिला चलता रहता है और कब एक घंटा गुजर जाता है. 9:30 से 10:30 तक 10:30 हो जाते हैं एंड पता ही नहीं चलता है. और इसमें मेरा दिल बेचारा क्या करे, वो तो आदत से मजबूर है. लेकिन दोस्तों सच सच बताइए, क्या आपका दिल भी ऐसी छोटी छोटी गलतियां करता है? कभी फोन के चक्कर में नींद को लेट हो गया हो और बस आप कहते हैं कि 5 मिनट और फोन चला लेते हो, बस 5 मिनट, और ये 5 मिनट कब आधे घंटे में तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं, आपको भी नहीं पता चलता. हाँ एक्चुअली ये वाली गलती ना मेरा दिल करता है. मैं उसको समझाती हूँ कि ये गलतियां नहीं करनी है, लेकिन ये मानता ही नहीं है. चलो अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं. फिलहाल ये तो जोक्स पर था एंड हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत मैसेज आए हैं और हमारे पास यहाँ पर मैसेज हमें पहुँचाते हैं रानी नांगल से. रिहाना जी गुड मॉर्निंग, खुशी जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ रिहाना, आई होप आप भी अच्छे होंगे. अगला मैसेज हमारे पास आया है, अस्सलाम वालेकुम खुशी जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी. और ये कहते हैं आज की सुबह की आपकी आवाज को सुनकर हमारा दिन अच्छा हो जाता है, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया. ये मैसेज आज की सुबह हमें पहुंचाया है रिहान जी ने, रिहान अली जी ने. एंड नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी जी का. अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है विभोर जी का एंड सही आंसर के साथ जुड़े हैं आज की सुबह हमारे साथ सब. बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एंड थैंक यू सो मच, आपने राइट आंसर हमें आज की सुबह पहुंचाया है. आई रिमेम्बर, मुझे याद है आप बिंदास मॉर्निंग

0: विनर बने थे, आपकी बातचीत हुई थी आनंद सर से, राइट। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है गुलाम जलानी पाशा जी का कुंदरकी से, और सर ने भी जवाब दिया है बट थोड़ा सा गलत हो गया है आपका आंसर। एक वॉइस नोट हमारे पास आया है तो मैम का वॉइस नोट भी सुन लेते हैं आज की मॉर्निंग। मैम क्या पहुंचाती हैं उनकी सुरीली सी आवाज में।
1: राधे राधे, खुशी खुशी, आज मोदी जी का जन्मदिन है, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज विश्वकर्मा जयंती भी है, तो जिस प्रकार विश्वकर्मा जी ने सारे विश्व का सृजन किया था, उसी तरह हमारे प्रधानमंत्री भी नए भारत का निर्माण करने में लगे हुए हैं और हर तरफ से तरक्की हो रही है, चाहे खेल कूद में हो, चाहे साइंस में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे अर्थव्यवस्था में हो, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, नए भारत का निर्माण हो रहा है, वो विश्वकर्मा स्वरूप ही हैं। धन्यवाद।
0: मोस्ट वेलकम मैम, थैंक यू सो मच अपना वॉइस नोट पहुंचाने के लिए, दिल से धन्यवाद हम आपका करना चाहेंगे। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है उमेश कुमार प्रजापति जी का, और आज की सुबह गुड मॉर्निंग हमें पहुंचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है बरेली से अरहम जी का, और ये गुड मॉर्निंग हमें पहुंचाते हैं आज की सुबह। और इन्होंने गाने की रिक्वेस्ट भेजी है, ये हम पूरी कोशिश करेंगे इसको प्ले करने का। नेक्स्ट मैसेज आया है गुड मॉर्निंग जिला रामपुर खेट अनसी मोहम्मद कामिल जी का, साथ में लाइबा काजमी भी है। और सर ने भी गाने की रिक्वेस्ट भेजी है, बिल्कुल सुनवाते हैं कुछ खूबसूरत ट्रैक, और आपकी पसंद के गाने भी बहुत प्यारे होते हैं। एक अपडेट है जो आप तक शेयर करनी है, तो चलिए बिना किसी देरी के उसको भी हम आप तक पहुंचा देते हैं। और दोस्तों ये जो अपडेट है ना बहुत ही खूबसूरत है, दोस्तों संगीत और भक्ति की दुनिया से एक बेहद खूबसूरत और भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश के सागर से जुड़े दृष्टिबाधित भजन गायक जिन्होंने हनुमान अंश के बाद देश भर में अपनी पहचान बनाई, उनका नाम, उनका एक खास सपना अब पूरा हो गया है। दरअसल उनकी इच्छा थी कि वह अपने पसंदीदा गायक जुबिन नौटियाल के साथ मंच साझा करें और भजन गाएं, और करीब 15 से 20 दिन बाद मुंबई के साई स्टूडियो में लाइव कार्यक्रम की शूटिंग के दौरान उनका ये सपना सच हो गया। जुबिन नौटियाल जी अचानक उनसे मिलने पहुंचे और दोनों ने साथ में पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे ये भजन प्रस्तुत किया। इस खास मुलाकात के दौरान भजन गायक काफी भावुक नजर आए, बाकी जब मेहनत, लगन और एक खूबसूरत सपना एक साथ मिल जाए ना तो वो पल जिंदगी भर की याद बन जाता है। और दोस्तों ये थी मनोरंजन जगत से एक खूबसूरत ऐसी खबर जिसमें सुर भी है, भक्ति भी है और एक सपना के पूरे होने की खूबसूरत कहानी भी। तो चलिए अभी कुछ एड ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद खुशी आती है कुछ म्यूजिकल ब्रेक के उस पर, एंड आप ही अपने मैसेज पहुंचा सकते हैं आज की सुबह।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

और दोस्तों अभी वक्त मैं आपको बताती हूँ, 11:55 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है। और दोस्तों आज स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत मुरादाबाद नगर निगम द्वारा आज 17 सितंबर से स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शानदार आगाज किया गया है। थीम और आयोजन, इस बार की थीम स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत विकसित भारत रखी गई है। 2,00,000 दीयों से सजेगा ये अभियान। दोस्तों 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगा। इसके तहत पूरे शहर में विशेष साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है और जागरूकता फैलाने के लिए शहर में 2,00,000 दिए भी जलाए जाएंगे।

तो हमारी मुरादाबाद की नगर निगम इतना अच्छा काम कर रही है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां आरजी खुशी खुद बजाना चाहिए, क्लैपिंग करना चाहिए। एंड इतना अच्छा काम हमारे नगर निगम कर रही है। दोस्तों इसमें आप भी अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। देखिए आप भी छोटे छोटे काम कर सकते हैं, लाइक जैसे आप सुबह सुबह अपने घर का कचरा, कुछ लोगों को देखा है मैंने कि वो अपने रोड साइड में डाल देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सुबह मॉर्निंग में कचरे की गाड़ी आती है, तो आप वो अपने घर का कचरा उसी गाड़ी में डालें, इधर उधर रोड पर फैलाने से तो बेस्ट है कि आप उस कचरे को डस्टबिन में ही डालें, इधर उधर ना फैलाएं, उससे गंदगी भी नहीं होगी। और जब ये छोटी छोटी आप अपने योगदान देंगे तो हमारा छोटी छोटी गलियां, सिटी आसपास का बैकग्राउंड भी एकदम साफ रहेगा। और अगर आप कहीं गार्डन में घूमने के लिए जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं या इवनिंग वॉक करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी होता है कि कुछ खाने पीने की चीज़ें ले जाते हैं, और जैसे चिप्स के पैकेट, बिस्किट के पैकेट, तो वहीं रैपर फेंक देते हैं, तो वो चीज़ें नहीं करनी है आपको। एंड अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, तो उसकी बॉटल भी वहीं डाल देते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें, कचरे को डस्टबिन में ही डालें, इधर उधर ना फेंकें। जैसे हमें अपना घर साफ सुथरा एकदम क्लीन अच्छा लगता है ना, तो ये हमारा शहर भी हमारा ही घर है, और इसकी साफ सफाई किसका फर्ज है? हम सबका फर्ज है ना। हाँ, तो साफ सफाई रखो यार, जब आप साफ सफाई रखेंगे तभी तो आप स्वस्थ रह पाएंगे ना। और मैंने आज बहुत सारी बातें की हैं, आई होप आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर कुछ और मैसेज आए हैं, मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है दुर्गी सैनी जी का, गुड मॉर्निंग हमें पहुँचाते हैं आज की सुबह। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है बबलू सैनी जी का, मुंबई महाराष्ट्र से, आज की मॉर्निंग क्या हाल है आपकी खुशी जी? मैं तो ठीक हूँ सर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं, मैं उनको भी जल्दी से शामिल करती हूँ। गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसे हैं आप? आई एम नेहा फ्रॉम मुरादाबाद, आपका शो बहुत अच्छा लगता है। एंड आज मेरी सिस्टर का बर्थडे है। ओह वाओ, आज आपकी बहन का बर्थडे है, तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले, आज शाम को पार्टी होने वाली है। एक बर्थडे सॉन्ग, बर्थडे सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा मैम। बिल्कुल प्ले करेंगे आपकी सिस्टर के लिए, और उनका नाम तो मुझे नहीं मालूम है, आपने लिखा भी नहीं है, तो हमारी तरफ से आपकी सिस्टर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैनी मैनी रिटर्न ऑफ द डे। तो चलिए दोस्तों अभी मैं चलती हूँ, लेकिन आपसे मैं प्रॉमिस करती हूँ सी यू सून, मिलूंगी 3 से 5। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, यूं ही मुस्कुराते रहिए, अपनों के साथ रहिए। और कहीं जाने का अगर प्लान है तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि पहले प्लीज वेदर अपडेट जरूर चेक कर लीजिए, और घर से बाहर निकलते वक्त ना अपना छाता अपने पास रखना। पता चला लौटते वक्त बारिश होगी झमाझम, और आप सोच रहे हैं भगवान मैं घर कैसे जाऊं, आज तो मैं छाता भी नहीं लेकर आया हूं, और मैंने सुबह मम्मी ने टोका भी था कि बेटा बाहर जा रहे हो छाता लेकर जाओ, रेनकोट लेकर जाओ, लेकिन बात नहीं मानते हो आप। तो इसीलिए मैं फिर से याद दिला रही हूं, अगर आप घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो ये चीज़ें अपने पास रखिएगा, क्योंकि मानसून है एंड कभी भी बारिश हो सकती है। ठीक है, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। अभी मुझे दीजिए अनुमति, बाय बाय जी, केयर, कीप स्माइलिंग।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। कार्यक्रम है खेती किसानी।
1: इन दिनों आप हमारे रेडियो से लगातार सुन रहे हैं कार्यक्रम खेती किसानी, और इसमें आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत करवाया जा रहा है। तो आज हम सितंबर महीने की फसलों की देखभाल के संदर्भ में आपको बताने के लिए आए हैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से, और हमारे साथ हैं डॉक्टर एके सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक चंबल फर्टिलाइजर्स। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में सिंह साहब।
2: स्वागत के लिए आपका शुक्रिया संजय जी, और सभी श्रोता जो हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको मेरा नमस्कार।
1: तो सबसे पहले तो हम सिंह साहब ये जानना चाहेंगे कि भारत सरकार और उर्वरक मंत्रालय द्वारा संचालित पीएम के एस क्या योजना है, और इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या जानकारी देंगे?
2: जी, भारत सरकार और भारत सरकार के अंतर्गत ही जो उर्वरक का जो मंत्रालय है वो कार्य करता है। उर्वरक मंत्रालय हम ऐसे समझें कि जितने भी खेती में उर्वरक जो उपयोग में आते हैं उनकी जो दुकानें हैं उनसे संबंधित जो भी सारी क्रिया है, क्रियाएं से अर्थ ये है कि वहां पर खाद की पूरी जानकारी वहां की रखना, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी मांग क्या है, और कौन से सीजन में कौन सा उर्वरक उनको चाहिए, ये सारा काम जो उर्वरक मंत्रालय का है। अगर आपको ऐसे समझे पीएम केएस के तो आपको लगेगा शॉर्ट फॉर्म में ये समझ में थोड़ा उतना ना आए, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताऊं कि जितनी भी खाद की दुकानें हैं जहां पर उर्वरक उपलब्ध होता है, उर्वरक मतलब हर तरह के खाद जिनमें कि यूरिया है, डीएपी है, एमओपी है, एनपीके है, और भी अलग तरह के न्यूट्रिएंट हैं जो उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा खेती से संबंधित जो और भी आधान है जिनमें कि आपके खरपतवार नाशी हैं, कीटनाशी हैं, फफूंद नाशी हैं, और अन्य तरह के भी पोषक तत्व हैं जो उपलब्ध होते हैं, वो खाद की दुकानें कही जाती हैं। अब ये जो खाद की दुकानें हैं ये ऐसे ही नहीं खुल जाती, इसके लिए राज्य सरकार जो अपना एक लाइसेंस इश्यू करती है और उस लाइसेंस के आधार पर फिर उनको ये अनुमति होती है कि वो खाद उनके यहाँ सप्लाई होता है, वो उसका भंडारण करेंगे और वो उसका विक्रय करेंगे। वो एक तरह से ऑथराइज दुकानें होती हैं। ऐसा था पीछे वाले समय में कि इनमें जो लोग खाद के काम में थे या इच्छुक थे उन्होंने लाइसेंस लिए और वो इसका काम करने लगे, लेकिन लंबे समय से भारत सरकार और राज्य सरकार ने एक जो निर्णय लिया कि जितने भी उर्वरक की दुकानें या खेती के आदान की विक्रय के जो दुकानें हैं वहां पर हम ऐसे लोगों को रखें या ऐसे लोगों को ही लाइसेंस दें जो कि खेती बाड़ी के बारे में सलाह दे सकते हैं या उनको खेती के बारे में जानकारी है। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर कोई भी खेती का आदान इस्तेमाल होना है तो वो कैसे इस्तेमाल होना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल होना है, कौन से समय में इस्तेमाल होना है, अगर जो किसान को वह जानकारी चाहिए तो वो उसको सही सलाह दे सके। तो एक तरह से ये मान के चले कि ये मतलब विक्रय केंद्र है और साथ के साथ सलाह केंद्र भी है। फिर भारत सरकार ने इसके ऊपर और विचार किया और उन्होंने कहा कि हम इसको एक अलग पहचान देते हैं जो पीएम केएस के है, जो मतलब जो प्रधानमंत्री जो किसान सेवा केंद्र, ठीक है जी। तो उसका अर्थ अब ये है कि यहाँ पर जो जो भी खेती के आदान आपको उपलब्ध हो रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी किसानों को देना अत्यंत आवश्यक है, और अगर उनकी कोई खेती बाड़ी से संबंधित समस्या भी है तो उसके समाधान के लिए भी उनकी ओर से प्रयास किया जाएगा। और प्रयास करने में ये शामिल है कि वहां पर कोई अगर वैज्ञानिक संस्था है, जैसे कि कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विज्ञान केंद्र है, और एग्रीकल्चर के जो और अधिकारी हैं उनको भी वो उसमें शामिल करें, उनसे सलाह लें और फिर उसको वो जो किसानों तक पहुंचाएं। तो खाद की विक्रय और खेती के आदान की जो सेल है उसके साथ साथ फार्मर्स को सही सलाह मिले, सही ढंग से वो इस्तेमाल करें। सही ढंग से इस्तेमाल ये है कि हम कभी भी कोई चीज जब लेके आते हैं तो अगर हमें मालूम नहीं है तो हम क्या करते हैं, किसी अड़ोस पड़ोस के किसान से पूछ लेंगे, अगर उन्होंने भी उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया है तो वो आपको भी उतनी अच्छे से जानकारी नहीं दे पाएंगे। लेकिन हर एक उत्पाद का जो उपयोग है उसका समय, उसकी मात्रा फसल के अनुसार अलग अलग होती है, और उसको जब वैज्ञानिकों की ओर से पूरा अनुसंधान हो जाता है उसके बाद फिर उसकी रिकमेंडेशन आती है, सलाह आती है। ये सपोज मान के चले कि धान की फसल है, धान की फसल में यूरिया का कब इस्तेमाल करना है, डीएपी का कब इस्तेमाल करना है, एनपीके का कब इस्तेमाल करना है, और कितने

0: मात्रा में उसका इस्तेमाल करना है एक एकड़ में, तो वो सारी जानकारी होती है। लेकिन अगर हमें जानकारी ना हो तो हम क्या करेंगे, हम ले आएंगे और उसको ऐसे ही उसको इस्तेमाल कर लेंगे। उसकी मात्रा आपकी तरफ से ज्यादा भी हो सकती है और आपकी मात्रा कम हो सकती है। ज्यादा होगी तो आपका खर्चा हुआ, लेकिन लाभ जो आपको होना था उतना ही होगा। तो जो आपने एक्स्ट्रा पैसा लगाया उसका कोई आपको लाभ नहीं मिला, और लाभ की वजह तो मैं ये ऐसा कहूंगा कि उससे जो कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है, आर्थिक नुकसान हुआ और पर्यावरण को नुकसान होता है। और अगर आपने कम मात्रा में दिया तो उसका भी आपको लाभ उतना नहीं मिल पाएगा। उसके साथ साथ जो है मतलब कौन से समय पर इसका इस्तेमाल करना है, ये पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब आपने कहा कि चलो हमें एक बार यूरिया डालना है तो शुरू में ही सारा डाल दिया, ऐसा नहीं है। हर एक की क्रांतिक अवस्था होती है, उसके हिसाब से। अब जैसे कि हम भी भोजन करते हैं, अगर हमें 24 घंटे में सिर्फ एक बार जो 24 घंटे का एक खट्टा भोजन हम अगर जो कहें कि आप ये खा लीजिए, हो सकता है आप जोर लगा के खा भी लें, लेकिन वो आपके लिए सुपाच्य नहीं हो, सुपाच्य नहीं होगा, स्वास्थ्य वर्धक नहीं होगा। तो उसमें समय है अलग अलग, जैसे सुबह आपने थोड़ा सा नाश्ता लिया, फिर दोपहर में लिया, फिर संध्या को आपने कुछ जो खाया, तो वो स्वास्थ्यवर्धक है, उसका पाचन भी अच्छे से होता है और कम मात्रा में आप उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। इसी तरह से खेती में इस्तेमाल होने वाले उर्वरक है, कीटनाशक है, या खरपतवार नाशी है, या अन्य पोषक तत्व है, उनकी मात्रा, उनका समय और उनके उपयोग का जो ढंग होना चाहिए उसके बारे में एक जो है आपके साइंटिस्ट की ओर से या जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर से पूरी जानकारी होती है, तालिका होती है। तो वह तालिका है अब पीएम की एसके पर उपलब्ध है। अगर नहीं भी है, आपको लगता है कि वहां पर वो चीजें उपलब्ध नहीं है, तो आप उनसे कहिएगा कि आप ये हमें उपलब्ध कराएं
1: ये
0: बिना।
1: जो केंद्र है देश भर में कहाँ कहाँ पे हमारे किसानों को उपलब्ध होंगे, जैसे छत्तीसगढ़ की बात है या उत्तर प्रदेश की बात
0: जी
1: है, तो
0: जी
1: वो कहाँ पे वो केंद्र?
0: जी इसमें जो भी खाद के बिक्री के केंद्र है वो सारे अब इसी नाम से जो जाने जाते हैं। तो उसके लिए कोई आपको ये ढूंढने की जरूरत नहीं है कि ये कोई अलग से होगा। जहां से आप अब तक उर्वरक या खेती के आदान जो लेते आए हैं और जहां से अब ले रहे हैं, वो सारे पीएम के स्कीम में शामिल है। हाँ, तो अब ऐसा नहीं है कि कोई अलग से ये दुकानें खुली है, नहीं, इनको एक अलग से नाम दिया गया है और इनके लिए कुछ जो कार्यशैली तैयार करी है उर्वरक मंत्रालय ने और भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से, कि आपको इस ढंग से अब अपने विक्रय का काम करना है और जो किसानों को सलाह देनी है उसके उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो भी उर्वरक या खेती के आदान जो हमारे किसान प्रयोग कर रहे हैं उसका समुचित लाभ उनको मिले और उनका संतुलित उपयोग हो सके। कहीं ऐसा ना हो कि ठीक है कोई चीज इस्तेमाल करनी तो वो हम जो किए जा रहे हैं और उसका कोई तरीका नहीं है, कोई ढंग नहीं है। तो ये इसलिए है, तो मेरा अनुरोध है कि आप इन सेवाओं का लाभ उठाइए। तो भारत सरकार ने बहुत सोच के ये सेवाएं आरंभ करी हैं और इनके बड़े लाभ हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप दुकान पे आ रहे हैं, आप अपनी बात समझा नहीं पाते, सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, तो इसमें ऐसी भी व्यवस्था है कि उर्वरक की जो कंपनियां हैं वो और कृषि विज्ञान केंद्र वो आपके खेत पर जाके भी आपकी समस्या को देख के उसका समाधान आपको जो बताएंगे।
1: जी
0: तो एक बड़ा ही जो अच्छा ये कार्यक्रम है, महती कार्यक्रम है, और मैं जो जो आपसे अनुरोध यही करता हूँ कि सारे किसान भाई इसमें शामिल हो और इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ
1: हाँ।
0: लें।
1: और जो लोग अभी तक शामिल हो चुके हैं वो लोग देख ही रहे होंगे कि उन लोगों को बहुत लाभ
0: हाँ,
1: मिल रहा
0: हो
1: है
0: रहा हो
1: इसका।
0: बिल्कुल जरूर।
1: तो जो उर्वरक के उपयोग के बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक संबोधन भी दिया था,
0: जी
1: हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि उसका क्या उद्देश्य है?
0: जी बिल्कुल। असल में जो भी हमारे उर्वरक हैं उनका सही इस्तेमाल हो वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक हैं और इनका अगर हम अधिक मात्रा में अगर हमने इनका उपयोग किया तो वो वेस्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि जो फसल है वो उतना ही लेगी, उससे ज्यादा नहीं लेगी, और उसमें खर्चा भी आपका ज्यादा होगा। दूसरा, उसमें सबसे बड़ी जो खामी वो ये है कि इससे हमारे जो खेत के अंदर जो हमारे मित्र जीव हैं या जो खेत के आसपास का पर्यावरण है जिससे कि हमारी खेती होती है उसको एक नुकसान पहुंचता है। तो ये नुकसान नहीं पहुंचे और हमारे जो खेती करने वाले लोग हैं उनको आर्थिक क्षति भी ना हो, उनका पैसा ज्यादा खर्च ना हो, एक संतुलन में हम उर्वरकों का उपयोग करें। कभी कभी होता है देखी देखा हमके जैसे उन्होंने इतना खाद डाला है एक एकड़ में, तो तो मैं भी इतना खाद डाल देता हूँ, या उसने ये वाला खाद लिया तो मैं भी ये वाला खाद देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो भी उर्वरक ले रहे हैं उसमें ये जरूर देखिए कि उसमें पोषक तत्व तो है कौन से और कितने हैं, आपको कौन सा पोषक तत्व तो चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए। जैसे कि हमें प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के लिए अगर हम शाकाहारी है तो हमें जो है मतलब उसके हिसाब से जो चुनना है भोजन के, जैसे दालें हैं, सोयाबीन है, ऐसी चीजें हमें जो मतलब चुननी है। अगर हम थोड़ा सा नॉन वेज खाते हैं तो हम अंडा भी खा सकते हैं, और चीजों का भी इस्तेमाल हमारी ओर से हो सकता है। तो ये हमें कोई भी चीज है उसके नाम से नहीं खरीदते, उसके अंदर जो जो उसके अंदर पोषक तत्व है और उसका जो लाभ हमें होने वाला है उसको देख के हम खरीदें, और उसकी कितनी मात्रा किस समय पर प्रयोग करनी है यह बहुत जरूरी है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये अपने संबोधन में यही कहा है कि उर्वरकों का जो एक अंधाधुंध हम उपयोग कर रहे हैं उससे हम बचें, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र के लिए हानिकारक है। आज जो खेती इस जो है एक तरह से सक्षम है, हमें इतने सालों से हम इसमें उगा रहे हैं, अपना पोषण कर रहे हैं, अगर हम इसी तरह से हमने ध्यान नहीं दिया तो इसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, स्वास्थ्य खराब होगा तो हमें फिर आगे चल के अच्छी फसलें नहीं मिलेंगी,
1: और वो जो फसलें अच्छी नहीं मिलेंगी ज्यादा उर्वरक और नुकसान करने वाली, तो वो हम भारतवासियों को भी जो हम खाएंगे तो
0: हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होगा
1: जी।
0: तो प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में यही कहा है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रधानमंत्री जी के संबोधन को आप सभी लोगों को अवश्य सुनाएं।
1: जी बिल्कुल।
2: मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी, और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है, और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दें, ये धरती माँ हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है, दो गोली की जरूरत है, चार गोली खा लें तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है। वैसा ही ये धरती माँ को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार अगर करते रहेंगे तो ये धरती माँ हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है, ये हमारी माँ है, हमें उस माँ को भी बचाना है।
1: प्रधानमंत्री जी के इस संबोधन के बाद हम एक बार फिर उपस्थित हैं आपके बीच कार्यक्रम खेती किसानी लेकर, और आज हमारे साथ डॉक्टर ए के सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक चंपल फर्टिलाइजर्स, साथ में बैठे हुए हैं हमारे स्टूडियो में, जो अब हमको बताएंगे कि सितंबर माह की फसलों की देखभाल कैसे की जाए। तो सबसे पहले जो धान फसल की देखभाल, अभी अभी सब जगह पे बरसात हुई है, मानसून हुआ है, सब जगह पे थरहा लगा के और बुआई का काम हो चुका है, तो धान की फसल के अब थोड़े से बड़े हो चुके हैं उसके पौधे जो हैं, तो उस फसल की देखभाल कैसे की जाए इसके बारे में सलाह दीजिए।
0: वैसे तो सभी किसान भाई इस पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अभी दो चीजें मुख्य है, एक तो उसका पोषण। अब पोषण से जब बात आ जाती है धान में, तो हम ये ना देखें कि जो स्थूल उर्वरक है, जैसे कि जो कट्टे में खाद आ रहा है, उससे ही संबंधित न रहे। अगर हमें कहीं कहीं जो लगता है कि उसमें पोषण की कमी है, तो आजकल ऐसे भी पोषक तत्व आ रहे हैं जिनका कि हम स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लग रहा है जिंक की कमी है तो आप जिंक का स्प्रे कर सकते हो, जिंक की मात्रा ले लें और उसका आप स्प्रे करें। जैसे कि 350 ग्राम जिंक है और करीब करीब आप 150 ग्राम चूना ले सकते हैं 100 लीटर पानी में घोल के। जब फसल आपकी 45 से 60 दिन के बीच की हो उस समय पर अगर आप एक स्प्रे करेंगे तो जिंक की कमी पूरी हो जाती है। जिंक हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है और धान में खास तौर से इसका बड़ा लाभ मिलता है। अगर जिंक की कमी है तो फसल उत्पादन में कमी आती है और जो अनाज के अंदर पोषक तत्व होते हैं उनमें काफी कमी हो जाती है। तो आप ध्यान दें, अगर खैरा रोग से संबंधित कोई असर दिख रहा है, जैसे कि जो धान का पत्ता उस पर आपको जिंक जैसा लगता है या मतलब ऐसी जो जंग जैसी हल्का सा की नजर आता है, तो जिंक की कमी है, आप उस पर स्प्रे करें। तो इसके अलावा बहुत सारे और भी फर्टिलाइजर आते हैं जो स्प्रे किए जाते हैं, जिनको हम एनपीके बोल देते हैं। जैसे हमारा उत्तम रिचार्ज आता है, अलग अलग कैटेगरी 19-19-19 होता है, 0-32-0 होता है, ऐसे अलग अलग तरह के ग्रेड होते हैं, उनको भी आप पानी में घोल के स्प्रे कर सकते हैं और उससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। तो ये पोषक तत्व की बात रही। इसके अलावा कीटों से संबंधित है, तो कीटों में जैसे कि आपका जो तना छेदक है, पत्ती मोड़क है, तो उसके लिए हमारा एक तो उत्पाद आता है ऑनविक्स। ये आप 4 किलोग्राम और खेत की मिट्टी हो या कोई भी सूखा रेत हो उसमें इसको मिलाएं और आप इसको खेत में फेंक सकते हैं जहां पे पानी है, तो आपको स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है हमें स्प्रे करना है, तो एक दवा आती है प्रोटा के नाम से, 60 ml दवा है और करीबन 150 लीटर पानी में घोल के आपका आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसमें बात ये ध्यान रखें कि अगर आपके खेत में जो जो, जो धान का पौधा है उसका आकार ज्यादा है तो पानी की मात्रा आप थोड़ी बढ़ा सकते हैं, अगर छोटा है तो थोड़ी कम कर सकते हैं। दीमक वगैरह है तो एक उत्पाद आता है स्टेम्बो के नाम से, ये 8-10 किलो मात्रा है, रेत में इसको मिलाएं और 1 एकड़ के हिसाब से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा लीफ फोल्डर है, तो इसके लिए एक दवा आती है लेपिबीर, 100 ग्राम दवा 200 लीटर पानी में घोल के आप इसका जो है छिड़काव करें। और इसके अलावा संज्ञा जी कुछ रोग होते हैं, रोग जैसे सीथ ब्लाइट है, सहसा मारी ब्लास्ट है, ये बहुत सारे रोग हैं। तो रोग के बारे में ये कहा जाता है कि रोग से अगर पौधा खराब हो गया तो उसको दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन रोग को वहां रोका जा सकता है। तो एक दवा है एजोल करके, ये 200 ml दवा है।
1: अच्छा।
0: जब आपको इसके दिखे लक्षण, इसमें क्या होता है अंग मारी, मतलब पौधा आपका सूखने सा लगता है, तो 200 ml दवा 200 लीटर पानी में घोलकर आप इसका छिड़काव करें। इसके अलावा फुलकोट भी एक दवा है, ये भी 150, ये फफूंदनाशी है, ये करीब करीब सारी फफूंद से संबंधित बीमारियां हैं उनकी रोकथाम के लिए ये काम आते हैं। इसके अलावा उत्तम लैक्सोन है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, जो भी आपके क्षेत्र में दवा हो, एजोल है, लैक्सोन है, फुलकोट है, इन तीनों में से कोई भी एक दवा आप लेके छिड़काव करें जिससे रोग की रोकथाम की जा सकती है।
1: तो ये तो धान की फसल के बारे में आपने जानकारी दी कि कौन कौन से रोग हो सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं पौधों को, पत्तों से जुड़ी हुई, तनों से जुड़ी हुई, या फफूंद लग गई है, या उसके लिए कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाए।
0: जी, जी।
1: तो सितंबर महीने में अब हम अगले सोयाबीन की फसल के बारे में बात करते हैं। जिन किसानों ने सोयाबीन की फसल लगाई है और उसमें कुछ बीमारियां नजर आ रही हैं, या उनकी उस फसल की देखभाल वो लोग कैसे कर सकते हैं।
0: हाँ, सोयाबीन में अगर जैसे कि कीड़े आते हैं खासतौर से, तो अगर कीड़ों में देखे सेमी लूपर होता है, ऐसे ये जो कैटरपिलर टाइप का होता है जो धीरे धीरे चलता है, कभी ऊपर उठता है, नीचे जाता है, ऊपर जाने से उठता जाता है, तो इसको सेमी लूपर बोल देते हैं, जो तना मक्खी बोल देते हैं। इसके लिए भी एक उत्तम प्रोटा दवा है, ये आप प्रयोग कर सकते हैं। पीड़ा के नाम से एक दवा आती है, वह आप प्रयोग कर सकते हैं। वीर कोमली के नाम से, मतलब ये सारे कीटनाशक है, अब इनमें से कोई भी आप एक ले सकते हैं, उनका प्रयोग करें। दूसरा इसमें ध्यान ये रखें कि जब भी आप स्प्रे करें तो ऐसे समय पर करें कि जब आपको लग रहा हो कि खेत के जो हमारी फसल है उसकी पत्तियां सूखी हैं, और दोपहर के आसपास करें या सुबह के टाइम कर लें, और उसके बाद करीब करीब 8-10 घंटे बारिश न हो, तो जो मतलब दवा है उसका असर रहेगा और वो कीड़े मरेंगे। तना मक्खी है, उसके लिए लैम्डा स्ट्रॉन्ग के नाम से एक दवा आती है, 120 ml दवा है, 200 लीटर पानी में घोल के आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा मक्खियां जैसी उड़ती रहती है, उसको तेला बोल देते हैं, सफेद रंग की भी होती है और काले रंग की भी होती है। ये जो एक तरह से मक्खी है, ये क्या करती है, ये रोग को फैलाती है एक खेत से दूसरे से, दूसरे से ऐसे करके। तो इसके लिए आईमैक्स नाम से एक दवा आती है, 80 से 100 ग्राम दवा है, 200 लीटर पानी में घोल के आप इसका छिड़काव करें और इससे इसको रोकें। लेकिन साथियों, जैसे ये तो इस वर्ष की बात होगी, लेकिन आगे के समय के लिए मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर रोगों की रोकथाम या कीटों की रोकथाम के लिए आप चाहते हैं कोई सार्थक उपाय हो सके और उनकी संख्या कम रहे, तो उसके लिए आप जिस खेत में फसल लगा रहे हैं उसके चारों ओर कोई अन्य ऐसी फसल अवश्य लगाएं जो कि जिसकी लंबाई ज्यादा होती है। जैसे कि सोयाबीन लगा रहे हैं तो उसके आसपास की जो जो मेड़ है उस पर आप 4-5 कूड़ किसी और फसल के लगाएं जो इस समय लगती है, जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे कीट आपके खेत तक नहीं आ पाते हैं, और जब एक बार आपने उसका उपचार कर दिया तो वो फिर दोबारा नहीं आएंगे उस खेत के, खेत में ही वो कंट्रोल अच्छा। हो जाएंगे। लेकिन अगर खेत खुला एक्सपोज रहता है तो आपने अभी स्प्रे किया तो वो यहाँ से भाग के दूसरे खेत में चले जाएंगे, और जैसे ये असर कम होगा
1: फिर वापस आ
0: फिर वापस आ जाएंगे। और एक चीज ध्यान रखें कि जो भी आप स्प्रे करें उसके लिए टंकी वगैरह पूरी अच्छी तरह से साफ कर लें, पानी जो लें वो साफ पानी लें, मिट्टी नहीं होनी चाहिए, मिट्टी होती है तो दवा का असर कम हो जाता है, ये चीज आप ध्यान रखें। और कोई भी कीटनाशक या फफूंद नाशक आप प्रयोग जब करते हैं तो उसका कम से कम जो 15 दिन तक असर रहता है, तो इंतजार करें कीड़ों का जो खत्म होने का। हड़बड़ी में 5 दिन बाद ही आपको लगा और आपने फिर दोबारा स्प्रे ऐसा न करें, उससे क्या होता है कि जो कीटे हैं जो किले हैं उनके ऊपर जो दवा का असर फिर आने वाले समय में कम होता है, उनमें उसको रोकने की क्षमता आ जाती है, तो ये ध्यान रखें। और जहां तक रोग की बात है तो जैसे मोजेक रोग है, रतुआ रोग है और फफूंदी से संबंधित और रोग है, तो इनके लिए एक उत्तम एजोल जो दवा है 200 ml प्रयोग कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा हमारा जो फफूंद नाशी आता है इसको मैंजिम बोलते हैं, 400-500 ग्राम लें, 200 लीटर पानी में घोल के आप इसका स्प्रे करिए, तो इससे बहुत सारे रोगों का नियंत्रण किया जा सके। आपको लग रहा है कि किसी दूसरे और के खेत में अगर कोई रोग है तो आप सुरक्षात्मक भी एक स्प्रे कर सकते हैं।
1: जी श्रोता साथियों, खेती किसानी कार्यक्रम में आप इस समय हमारे कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं सितंबर माह की फसलों की देखभाल के बारे में जानकारी, और जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर ए के सिंह जो चंबल फर्टिलाइजर्स में वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर हैं। तो इन्होंने धान की फसल और सोयाबीन की फसल के बारे में तो कैसे देखभाल की जाए इसके बारे में सलाह दी। अब हम आपसे चाहेंगे डॉक्टर साहब की मूंगफली की फसल जिन किसानों ने लगाई है तो वो लोग उसकी देखभाल कैसे करें इसके बारे में बताएं।
0: मूंगफली की फसल हमारी एक तरह से खाद्य फसल है और इसमें प्रोटीन की काफी मात्रा पाई जाती है और सभी क्षेत्रों में लगभग जहां भी उपयुक्तता होती है, थोड़ी हल्की जमीन होती है वहां पर हम इसको उगाते हैं। पोषण के रूप में अगर हम ऐसा कह लें तो इसमें एक हमारा जो है उत्पाद आता है आरिस गोल्ड के नाम से, ये जैव उत्पाद है, ये 500 ml है और इसको पानी में घोल के आप स्प्रे कर सकते हैं 1 एकड़ के लिए। इसके अलावा हमारा एक जो फैटलेस के नाम से भी आता है इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं, ये करीब करीब 1 लीटर पानी में 5 ml के आसपास आप घोल लें और फिर इसका आप स्प्रे करें। 100 लीटर पानी क्षेत्र के लिए आवश्यक होता है, इसमें कई सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि फसल को मिलते हैं। अब बात आती है कीड़ों के बारे में, तो ऊपर से ये पत्ती खाने वाले कीड़े होते हैं तो वो जो पत्तियों को खाते हैं और उनको खत्म करते हैं। अब बात ये आती है कि भाई मूंगफली तो नीचे लगती है तो ऊपर क्या फिर कोई टेंशन की बात तो नहीं,
1: पत्ते खा रहे तो खाते रहे,
0: लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो पत्ते होते हैं इनसे भोजन बनता है फसल का, ये धूप से भोजन बनाते हैं और वैज्ञानिक तथ्य तो ये कहा जाता है कि 80-90% जो भोजन है वो पौधे अपने ऊपरी भाग से बनाते हैं।
1: जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण,
0: प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। तो आप इनकी रोकथाम करें इसके लिए प्योटा नाम से दवा आती है, कीटनाशक है, 200 लीटर पानी में घोल के 60 ml आप छिड़काव कीजिए। और एक इल्ली आती है तंबाकू की इल्ली बोलते हैं, इसके लिए प्योटा से भी ये कंट्रोल हो जाएगा, और अगर प्योटा नहीं है योटा है तो योटा से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कीटों का कंट्रोल बहुत जरूरी है क्योंकि कहीं कहीं ये फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और धीरे धीरे अगर उनको मौका मिल गया तो वो नीचे भी घुस के जो फलियां हैं उन पर भी वो आक्रमण कर सकते हैं। फिर जहां तक रोग की बात आती है तो मैं यही कहूंगा कि इसके लिए एक बड़ी सीधी सादी दवा है जिसको हम मैंजिम बोल देते हैं, और मैंजिम लगभग कोई भी जैसे आपका लग रहा हो टिक्का रोग हो, धब्बा रोग हो, रोली गेरुआ रोग हो, इनमें सब में ये करीब करीब काम आ जाता है। 200 ग्राम दवा 200 लीटर पानी में घोल के आप इसका छिड़काव करें। छिड़काव के समय सावधानी में खास तौर से देखने वाली बात यही है कि उससे पहले कोई बारिश न हुई हो, क्योंकि अगर जो पौधे ने पानी ऑलरेडी उसकी पत्तियों में अच्छा है तो वो जो दवा आप स्प्रे करेंगे उसको अच्छे से सूखेगी नहीं, क्योंकि उसकी पूर्ति हो चुकी है तो उसके अंदर थोड़ी सी इच्छा होनी चाहिए सूखने की, तो वो सूखेगी, पानी सूखेगी तो उसके साथ उसकी दवा भी जाएगी और उसके 8-9 घंटे तक मौसम खुला रहे तो बहुत उपयोगी रहता है। तो ये मूंगफली के बारे में जानकारी रही।
1: देश भर के अलग अलग क्षेत्रों के किसान इस समय सितंबर महीने में जिन फसलों को लगाते हैं उनमें धान, सोयाबीन और मूंगफली के बारे में जानकारी डॉक्टर ए के सिंह दे चुके हैं कि कैसे उसकी देखभाल की जाए हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और अब हम इनसे जानकारी चाहेंगे कि मक्का की फसल की देखभाल कैसे करें वो किसान जिन्होंने इस समय मक्का की खेती की।
0: मक्का की फसल अब अगर देखें संजय जी तो जो है जायद में भी होने लगी है, जायद मतलब रबी की फसल कटी उसके एकदम बाद, और काफी लाभकारी जो खेती होती जा रही है और काफी लोग करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, उसके बाद फिर धान लगा लेते हैं या कोई और फसल लगा लेते हैं खरीफ में। तो पोषण के लिए तो यह है कि अभी ये जो कटाव के आसपास आ गई है, तो अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ इसमें खुराक की जरूरत है या हमें जो देना चाहिए, तो इसमें आप हैरिस गोल्ड के नाम से जो जो हमारा एक उत्पाद आता है 5 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से घोलें और 1 एकड़ में 100 से 200 लीटर आप जो पानी का इस्तेमाल करके इसका प्रयोग कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। अगर कोई जैसे सोल्यूबल या जो NPK मिलते हैं, ये 1 किलो की पैकिंग में भी मिलते हैं, अधिक में भी मिलते हैं, उनको भी आप ले सकते हैं। जैसे 1919 है, पोटास से संबंधित कुछ होते हैं, तो उनका भी आप स्प्रे आराम से कर सकते हैं। इस समय पर कोई अन्य स्थूल उर्वरक न डालें क्योंकि उसका उतना लाभ नहीं होगा, और आपको ठीक है खर्च जरूर कर देंगे तो, लेकिन उसका कोई लाभ आपको ज्यादा नहीं मिलता। कीटों से संबंधित बात है तो करीब करीब कीटे एक जो इस समय पे एक जैसे ही होते हैं। एक जैसे इसलिए होते हैं क्योंकि बरसात का मौसम है, उन्हें हरी फसल चाहिए कोई भी, तो हरी फसल सॉफ्ट होती है, उसको खाने में उन्हें आसानी होती है। तो एक तना छेदक है, उसके लिए उत्तम प्योटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और रस चूसने वाले जो कीड़े जैसे चैपा तेला, वैसे आमतौर पर ज्यादा नहीं देखा जाता मक्का में, लेकिन अगर वो वहां पर आ गया है तो उसको अपना जीवन काल पूरा करना है, तो कहीं ना कहीं जाके वो अपना कुछ भोजन ढूंढता ही है। तो रस चूस सके जैसे कि चैपा तेला है, आईमैक्स उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। सफेद लत है तो उसके लिए भी आप कोई इस तरह की दवा ले सकते हैं, स्टेमो है 8 किलोग्राम है, उसको भी आप 1 एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ कीड़ों के बारे में जानकारी रहेगी। कीड़े को होता क्या है, इस समय पे जो आपका भुट्टा लग रहा है उसको भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, या अगर पौधे के अंदर जो आ गए तो वो पूरे उसको पौधे को खराब कर सकते हैं। तो थोड़ा सा उसमें आप अपनी निगाह रखिए, अगर कीड़े हैं तो स्प्रे करिए, और अगर कीड़े नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। और जहां तक रोगों की बात है तो एक लीफ ब्लाइट रोग होता है, एक रतुआ रोग होता है, एक चारकोल रोग होता है। इसके लिए फफूंदनाशी आप सीधा सा ले लीजिए, एक फफूंदनाशी मैंजिम है या VM-45 है, जिनकी 400 ग्राम जो मात्रा है 200 लीटर पानी में घोलें और स्प्रे करें। अब घोल के स्प्रे करने वाली जब बात आती है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि मक्का की फसल इतनी बड़ी होगी कैसे स्प्रे करें, तो उसके लिए साथियों मैं यही कहूंगा कि आजकल स्प्रे के बहुत अलग अलग औजार आ रहे हैं, मतलब जो आपके तेल से भी चलते हैं, बैटरी से भी चलते हैं, काफी दूर तक उनकी मार अच्छा। होती है। तो जैसे मक्का के खेत में रखाने के लिए कहीं कहीं मचान होते हैं, उनके खड़े होकर उनके ऊपर खड़े होकर आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह का आप प्रयोग करें तो आपको लाभ मिलेगा।
1: मक्का, मूंगफली, सोयाबीन और धान, ये तो बड़े खेतों की बातें हो गई जहाँ पर किसानों ने फसल लगाई है, वो लोग कैसे देखभाल करें उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। लेकिन जब बात सब्जियों की आती है तो कुछ बड़े किसान भी होते हैं, कुछ घरों में किचन गार्डन लगाने वाले लोग भी होते हैं जो छोटी छोटी जगहों पर सब्जियां लगाते हैं। तो जिन लोगों ने भी किसी भी तरह की सब्जी इन दिनों लगाई है सितंबर महीने के हिसाब से, तो उनकी फसल की देखभाल कैसे की जाए, अब हम आपसे अंत में ये जानना चाहेंगे।
0: सब्जियों में अगर हम देखें तो इस समय पर दो स्थितियां हैं। एक तो क्या है, जो हमने पहले लगाई थी उस समय फल मिल गए, दूसरी ये है कि हम आगे की तैयारी कर रहे हैं, उसकी पौध लगा रहे हैं, या कहीं कहीं पौध तैयार हो गई तो हम खेतों में उसका रोपण कर रहे हैं, या अपने छोटा सा कोई बगीचा है उसमें लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस समय पर जैसा कि अन्य फसलों में कीड़े बहुत आते हैं, कीड़ों की रोकथाम के लिए आप जरूर प्रयास करें। और उसका यह है कि अगर बहुत छोटा रकबा है, जैसे कहीं पर आप अपने मकान नहीं लगा रहे हैं जो कि आप अपने इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं, तो वहां पर कोई ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप तेज स्प्रे का अगर पानी भी कर देंगे तो कीड़े नीचे गिर जाते हैं।
1: अच्छा,
0: अगर कोई खेत है तो उसमें कीटनाशक जो दवाएं है, लेकिन कीटनाशक में आजकल अलग अलग श्रेणियां आती है। कुछ कीटनाशक होते हैं जिन पर लाल रंग होता है, और कुछ होते हैं जिसमें पीला होता है, कुछ होते हैं जिसमें हरा होता है। तो कोशिश करें हरा या ज्यादा से ज्यादा पीला, क्योंकि सब्जियों को हम हरी अवस्था में ही प्रयोग करते हैं, तो कीटनाशक हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो ऐसा हम अपनी ओर से प्रयास करें। उसमें कीटनाशक जो है या तो हरे वाला हम ले लें या पीले वाला, ज्यादा से ज्यादा हरे वाला मिल रहा है तो वो हमारे लिए ज्यादा ठीक है, या तो हम उसका उपयोग करेंगे या कोई ना कोई और उसका उपयोग करेगा। और कभी कभी शायद पुराने समय में लोगों ने देखा होगा, और हमने तो देखा है कि राख जो होती थी, राख को जो पौधे ऊपर जो डाल दिया करते थे, उससे कीड़े उसको खाते नहीं थे, क्योंकि राख अगर उसको खाएंगे तो राख भी उसके मुंह में जाती थी और वो उससे हट जाता था।
1: अच्छा
0: तो, और उसमें पोटास की भी मात्रा होती है, पौधे को पोषण भी कभी कभी मिल जाता है, तो आप
1: उपयोग करना चाहिए।
0: हाँ उसका किया जा सकता है, उसका कुछ अनुभव भी लिया जा सकता है, पहले लोग करते थे उसको, पहले कोई कीटनाशक नहीं थे लेकिन फिर भी सब्जियां होती थी और भरपूर मात्रा में होती थी। इस समय पर तोरई, लौकी, टिंडा, ऐसी ऐसी सब्जियां, और जो आपका करेला, इतनी अत्यधिक मात्रा में होती थी कि आराम से लोग खाते थे, सस्ती भी बहुत हो जाती। तो आम जन भी जिनके यहाँ वो उपलब्ध नहीं है वो भी उसका प्रयोग कर लेते थे। तो ये तो अभी खड़ी फसलों के बारे में हुआ। बाकी जो पौधे हैं, जो पौध आप लगा रहे हैं, अगर पौध की तैयारी कर रहे हैं तो उसका थोड़ा आसपास का पर्यावरण सुरक्षित रखिए, जिससे कि कीड़े वगैरह उस पर वहां ज्यादा असर न करें। शुरुआत में ये इस तरह की सुरक्षा रखें, जैसे कि होता है ना कि कोई चीज हम रख रहे हैं तो उसकी बाड़ बना देते हैं, लाइक दैट, उस तरह से हम उसको करें। और पौधा आजकल तो जो थैली में भी तैयार हो जाती है, उसकी प्लास्टिक की थैली होती है, मिट्टी होती है, बीज लगा देते हैं, तो जब तक वो आपकी जो 25-1 दिन की होती है तब तक हम उसको सुरक्षित रखते हैं, और फिर जब समय आ जाता है तो हम खेत को उसकी रोपाई कर देते हैं। मेरा अनुरोध ये है कि जो अन्य फसलें उनके साथ साथ सब्जियों की अवश्य लगाएं, थोड़ी लगाएं, खेत के आसपास अगर आपको बेचना नहीं है तो भी आप लगाएं, होगी तो आप अपने इस्तेमाल में जो कर सकते हैं, ज्यादा होगी तो आप अपने आस पड़ोस में भी दे सकते हैं, आपके अभी नाते रिश्तेदार आए उसको दे सकते
1: जी
0: हैं।
1: हाँ, बिल्कुल
0: अच्छा लगता है आदमी को कि हम वहां गए थे और वहां से ये
1: ताजी सब्जियां मिली,
0: ताजी सब्जियां।
1: तो चलिए, बहुत सारी बहुत अच्छी जानकारी हमको आज के इस खेती किसानी कार्यक्रम में डॉक्टर ए के सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक चंबल फर्टिलाइजर्स के हैं, जो है इन्होंने हमको दी, और आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सितंबर माह की फसलों की देखभाल के बारे में इस जानकारी के साथ। और आप सभी श्रोताओं से अब हम विदा चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम से, और फिर आते हैं हम अगले अंक के साथ कुछ और जानकारियां लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपके साथ आपके दोस्त RJ खुशी। आज तो हमारे गांव में कुछ अलग ही माहौल है। सुबह सुबह इतनी भीड़ और ये लाउड स्पीकर आवाज, सभी लोग ध्यान दीजिए। आज प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर है। अरे भाई, ये HPV क्या होता है और इतनी भीड़ क्यों लगी है? अरे सिहतिया सिंह जी, जरा इधर आइए, आप तो हमेशा सही जानकारी देते हैं, जरा बताइएगा ये क्या चल रहा है?
4: RJ साहिबा, आज बड़ा अच्छा दिन है गांव के लिए और भी हमारी बेटियों के लिए भी। आज जो कैंप लगा है ना, ये कोई साधारण टीकाकरण कैंप नहीं है, ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी बीमारी से बचाने वाला टीका है। पर HPV के बारे में तो विस्तार से जानने के लिए आपको पहले कहानी बताता हूँ। यहाँ एक गाँव था, गाँव का नाम था बड़की टोला। सुबह का समय था, सूरज अभी पूरी तरीके से निकला भी नहीं था, लेकिन सावित्री देवी का दिन कब का शुरू हो चुका था। पहले चूल्हा जलाना, फिर पानी भरना, बच्चों को तैयार करना और उसके बाद खेत का काम भी अलग। सावित्री देवी एक 12 साल की बेटी थी, जो हम कह सकते हैं गुड़िया, गांव में गुड़िया कहा जाता, पढ़ने में तेज लेकिन थोड़ी शर्म। सावित्री चाहती थी कि उसकी बेटी बहुत कुछ बन जाए बड़े होकर, जिससे उसकी जिंदगी और बेहतर हो जाए। एक दिन गांव में आशा दीदी आई और उन्होंने बताया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर लगने वाला है। उन्होंने समझाया कि टीका लड़कियों को आगे चलकर एक खतरनाक बीमारी सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। सावित्री देवी पहले तो थोड़ी हिचकिचाई, फिर उन्होंने अपने पति रामपाल से बात। रामपाल पहले तो बोले, अरे हमारी बेटियां तो बिल्कुल ठीक है ना, तो क्या जरूरत पड़ी है इस टीके की? लेकिन आशा दीदी ने धैर्य से समझाया, भैया यही सही समय है, यह टीका बीमारी होने के बाद नहीं पहले काम करता है, अगर अभी लगवा दिया तो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचाव हो सकता है। रामपाल कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने आसपास के लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी के पास पूरी जानकारी नहीं थी, बस अफवाहें थी जो सुनी सुनाई। तभी एक दिन उन्होंने रेडियो पर एक कार्यक्रम सुना, जिसमें मेरे जैसे ही एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समझा रहे थे कि टीका सुरक्षित है और क्यों जरूरी है। उस दिन के बाद रामलाल का नजरिया ही बदल गया। उन्होंने कहा, अगर एक छोटा सा टीका मेरी बेटी की जिंदगी को बीमारियों से बचा सकता है तो हम पीछे क्यों रहे। अगले ही दिन सावित्री और रामपाल अपनी बेटी गुड़िया को लेकर कैंप पहुंचे। वहां कई और लड़कियां भी आई हुई थी। शुरुआत में गुड़िया थोड़ी सी डरी हुई थी, लेकिन जब उसने देखा कि बाकी लड़कियां तो बिल्कुल हिम्मत से टीका लगवा रही हैं, उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा मैं भी लगवाऊंगी। टीका लगने के बाद बस थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन दो दिन में सब ठीक हो गया। धीरे धीरे गांव में और भी लोग इससे प्रेरित हुए। सावित्री देवी अब खुद दूसरी महिलाओं को समझाने लगी। रामपाल भी पंचायत में इस विषय पर बात करने लगे। कुछ महीने बाद एक बदलाव साफ दिखने लगा, ज्यादा लड़कियां टीका लगवा रही थी, लोग अफवाहों की जगह सही जानकारी पर भरोसा करने लगे, और सबसे बड़ी बात, अब बेटियों की सेहत को लेकर गंभीरता बढ़ गई। सावित्री देवी अक्सर कहती थी, पहले हम सोचते थे कि ये सब शहरों की बातें हैं, लेकिन अब समझ आया ये हमारी बेटियों की भविष्य की बात है। ये कहानी सिर्फ सावित्री और गुड़िया की ही नहीं है, ये हर परिवार की कहानी हो सकती है जो सही समय पर सही फैसला ले।
3: अच्छा, लेकिन ये HPV नाम तो बड़ा भारी लगता है, जरा खुलकर विस्तार में बताइए।
4: चलिए आपको अच्छे से ही बता देता हूँ। HPV का मतलब है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। नाम बड़ा है पर बात आसान है। ये एक ऐसा वायरस है जो अगर शरीर में आ जाए और समय रहते हुए रोका न जाए तो महिलाओं के अंदर आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय में मुंह का कैंसर पैदा कर सकता है।
3: मतलब ये सीधे सीधे जानलेवा बीमारी तक ले जा सकता है?
4: हाँ जी बिल्कुल, और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है आर्य साहिबा?
3: जी सिहतिया जी, अब तो आप थोड़ा डरा ही रहे हैं।
4: डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूँ। इस बीमारी की सबसे बड़ी चालाकी ये है कि शुरू शुरू में इसका कोई लक्षण नहीं होता, ना कोई दर्द, ना बुखार, ना कोई ऐसी परेशानी जिससे लगे कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है।
3: मतलब इंसान को पता ही नहीं चलता?
4: बिल्कुल, और यही वजह है कि जब तक लोगों को इसका पता चलता है तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है, बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है।
3: अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत खतरनाक बात है। तो फिर इससे बचने का कोई तरीका तो होगा ना?
4: यही अच्छी खबर है, जहाँ एक तरफ इसका इलाज मुश्किल हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ इसका बचाव बहुत आसान है।
3: सच में? कैसे?
4: HPV वैक्सीन से, एक छोटा सा टीका जो आगे चलकर आपको बड़ी बीमारी से बचा सकता है।
3: जरा इसे और आसान करके समझाइए ना, ताकि हमारे गांव के लोग भी अच्छे से समझ सकें।
4: चलो आप कहते हो तो समझा देता हूँ। ठीक, एक उदाहरण से समझिए। जब हम खेत में फसल लगाते हैं तो क्या करते हैं?
3: चारों तरफ बाड़ लगाते हैं ताकि जानवर अंदर ना घुसे।
4: बिल्कुल सही कहा, ताकि फसल सुरक्षित रहे। ठीक वैसे ही ये वैक्सीन हमारे शरीर के लिए सुरक्षा की बाड़ की तरह काम करता है। ये वायरस को अंदर आकर नुकसान करने से रोकता है।
3: मतलब ये बीमारी को शुरू होने से पहले ही रोक देता है।
4: हाँ बिल्कुल सही समझा आपने, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई इलाज नहीं, यही बीमारी को जाने के बाद काम आए। ये तो पहले से ही सुरक्षा देता है, ताकि बीमारी हो ही ना पाए।
3: तो फिर ये टीका किसे लगवाना चाहिए? कोई खास उम्र होती है?
4: हाँ, इसकी सबसे ज्यादा फायदा तो तब होता है जब इसे सही उम्र में लगवाया जाए। आमतौर पर 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए ये टीका लगवाना सबसे अच्छा माना जाता है।
3: और अगर कोई इससे बड़ी उम्र का हो?
4: तो भी कोई चिंता की बात तो नहीं है, ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेकर बाद में भी ये टीका लगवाया जा सकता है, लेकिन जितनी जल्दी लग जाए उतना बेहतर है।
3: सिहतिया जी, एक बात मेरे मन में आ रही है, ये तो लड़कियों का टीका है, तो इसमें पुरुषों की क्या भूमिका होती है?
4: यही तो सबसे अहम बात है, महिलाओं की सेहत सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं, इसमें पूरे परिवार की, खासकर पुरुषों की उतनी ही जिम्मेदारी होती है।
3: जरा विस्तार से बताइएगा।
4: जरूर, देखिए, एक पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपनी बेटी को समय पर सही जानकारी दे और उसका टीकाकरण करवाए। एक भाई का कर्तव्य है कि वो अपनी बहन को समझाए, उसे डर या अफवाहों से दूर रखे। और एक पति का फर्ज है कि वह अपनी पत्नी की सेहत का ख्याल रखे, उसे हर जरूरी सुविधाओं और सहयोग दे।
3: सही कहा आपने।
4: अगर घर का पुरुष ही पीछे हट जाएगा या ध्यान नहीं देगा, आधी लड़ाई वह हारेगी। इसलिए पुरुषों की भागीदारी बहुत जरूरी है।
3: मतलब ये सिर्फ महिला स्वास्थ्य का मामला नहीं है?
4: बिल्कुल सही आरजे साहिबा, ये पूरे परिवार का मामला है। जब एक महिला स्वस्थ रहती है, पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, और जब परिवार स्वस्थ होता है तभी गांव मजबूत बनता है।
3: लेकिन सिहतिया जी, एक बात है, गांव में तो तरह तरह की बातें चलती रहती हैं। कोई कहता है कि ये टीका लगवाने से लड़कियां कमजोर हो जाती हैं, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आगे चलकर माँ बनने में दिक्कत होती है।
4: देखिए आरजे साहिबा, यही सबसे बड़ी समस्या है, अधूरी और गलत जानकारी। इस सब जो बातें आप सुन रही हैं ना, ये सच नहीं है, बल्कि क्या है, अफवाहें।
3: मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है।

0: बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको एक एक करके चलिए साफ साफ करके बता देता हूँ। पहली बात, लोग कहते हैं कि टीका लगवाने से कमजोरी आ जाती है, जबकि सच्चाई तो यह है कि टीका लगवाने के बाद बस हल्का सा बुखार आता है या हाथ में थोड़ा सा दर्द हो सकता है, क्योंकि मात्र 1 से 2 दिन में आप अपने आप ठीक हो जाएंगे, इसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
1: अच्छा, और जो लोग कहते हैं कि इससे आगे चलकर बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती है,
0: यह भी पूरी तरीके से गलत। इस वैक्सीन में मां बनने की क्षमता से कोई लेना देना ही नहीं है, ये सिर्फ एक वायरस से बचाने के लिए होता है और कुछ भी नहीं।
1: और एक बात जो अक्सर लोग कहते हैं, अगर लड़की बिल्कुल ठीक है तो टीका लगवाने की क्या जरूरत है,
0: यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखिए, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं बल्कि बीमारी होने से पहले लगवाना है और तभी ये काम करता है। अगर लड़की अभी स्वस्थ है तो वही सबसे सही समय है टीका लगवाने का। जैसे हम बारिश आने से पहले छाता रखते हैं ना, वैसे ये पहले सुरक्षा देता है। जरा सोचिए आरजे साहिबा, अगर एक छोटा सा टीका आपकी बेटी को एक बड़ी और जानलेवा बीमारी से बचा सकता है तो क्या हमें इंतजार करना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं, जब बचाव इतना आसान है तो देर क्यों करें? सिहतिया जी, एक बात बताइए, क्या हमारे गांव में भी लोग इसे लगवा रहे हैं?
0: हाँ, धीरे धीरे लोग समझने तो लगे हैं और आगे भी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लोग डर और अफवाहों के कारण पीछे हटे जाते हैं। यही वजह है कि आज जैसे कैंप बहुत जरूरी है ताकि सही जानकारी हर घर तक पहुंचे। जहां जानकारी नहीं पहुंचती वहां ऐसी कुछ रानी जैसी केस हो जाते हैं। उसी इलाके के पास एक गांव था, छोटा पुरवा, यही रहती थी कमला देवी और उनकी बेटी रानी। रानी भी गुड़िया की उम्र की ही थी, हसमुख, चंचल और पढ़ाई में बहुत अच्छी। जब गांव में HPV टीकाकरण की बात आई तो आशा दीदी यहां भी आई थी और लोगों को समझाने लगी। उन्होंने कमला देवी से भी कहा, बहन अपनी बेटी को टीका जरूर लगवा देना। लेकिन कमला देवी के घर का माहौल थोड़ा अलग था, उनके पति महेंद्र इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया, ये सब नई नई बातें हैं, हमारे जमाने में कौन सा टीका लगता था और हम तो ठीक हैं। कमला देवी भी डर गई। गांव में कुछ लोगों ने और बातें फैलाई, इससे लड़की कमजोर हो जाएगी, आगे चलकर बच्चा नहीं होगा। इन अफवाहों के बीच सच की आवाज वहीं दब गई। रानी ने एक दिन अपनी माँ से पूछा, अम्मा मेरी सहेली गुड़िया टीका लगवाने गई थी, मैं क्यों नहीं जा सकती? कमला देवी के पास कोई जवाब नहीं था, उन्होंने बस इतना कहा, बेटी तुम्हारे बाबूजी मना कर रहे हैं। समय बीतता गया, बात वहीं रह गई। सालों बाद जब रानी बड़ी हुई, शादी हुई और एक दिन उसे बार बार कमजोरी, असहजता महसूस होने लगी। शुरू में सबसे इसे सामान्य समझा, लेकिन जब हालत बिगड़ने लगी तो शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया उसने पूरे परिवार को हिला दिया, यह सर्वाइकल कैंसर का मामला है और अब यह काफी आगे बढ़ चुका है। कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने वही दिन याद आया जब आशा दीदी ने समझाया था, जब रानी ने खुद पूछा था। महेंद्र भी चुप हो गए, अपनी आंखों में पछतावा सिर्फ साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीमे से पूछा, अगर उस दिन हमने टीका लगवा दिया होता तो शायद आज ये दिन देखना ना पड़ता। इलाज शुरू हुआ लेकिन अब रास्ता मुश्किल था। बार बार अस्पताल के चक्कर काटना, बढ़ता खर्च, परिवार की चिंता, दर्द, रानी की बीमारियों से सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं पूरे परिवार को झिंझोड़ दिया था। आज कमला देवी हर घर जाकर एक ही बात कहती है, अफवाहों पर मत जाओ, हमने अपनी गलती से बहुत बड़ा नुकसान देखा है, तुम ऐसा कभी मत करना। उनकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन आवाज में सिर्फ एक विनती, अपनी बेटियों को बचा लो, समय रहते।
1: तो जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए?
0: इन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए, आज ही अपनी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं, आशा दीदी से बात करें और अपनी बेटियों का नाम टीकाकरण के लिए दर्ज करवाएं। और सबसे जरूरी बात, जो सही जानकारी आपने आज सुनी है उसे ही दूसरों तक पहुंचाएं, अफवाहों को नहीं सच्चाई फैलाएं।
1: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि HPV क्या है, ये कैसे एक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और एक छोटा सा टीका कैसे हमें बड़ी परेशानी से बचा सकता है।
0: और याद रखिए, महिलाओं की सेहत सिर्फ उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है और सही समय पर लिया गया एक छोटा सा फैसला जिंदगी भर का बड़ा बदलाव ला सकता है।
1: छोटी सी तैयारी बड़ी बीमारी से बचाओ,
0: बेटी का टीका परिवार का भविष्य सुरक्षित बनाए।
1: तो चलिए जानने से पहले लेते हैं सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचाया जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए विषय और कुछ अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।

0: हेलो, दिस साइड आर्जेरीना फ्रॉम मुरादाबाद 89.6। और श्रोताओं, आज भी आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूं मैं, यानी कि HPV टीकाकरण लगवाना, यानी कि टीका लगवाना हमारे लिए क्यों जरूरी है और ये आगे चलकर हमें किन किन बीमारियों से बचा सकता है। इसी टॉपिक पर हम बात करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए हुए हैं, तो मैम से मैं जानना चाहूंगी, आप ही अपने बारे में बताइए।
1: बिल्कुल, हेलो रीना जी मैम, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं डॉक्टर सोनम रस्तोगी हूँ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जिला महिला अस्पताल मुरादाबाद।
0: तो मैम, आज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि HPV टीकाकरण है वो लगवाना क्यों जरूरी है।
1: HPV टीकाकरण बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, जैसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, और जो प्राइवेट पार्ट है जननांग में कुछ वार्ट्स भी होते हैं, कैंसर के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, इन सबसे बचाव करता है। और इसका जो एफिकेसी है वो 90% तक है, अगर ये सही उम्र में लगवा लिए गए, सही डोज में, सही उम्र में लगवा लिए गए तो आगे चल के इससे बहुत बचाव हो सकता है। और इंडिया के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडिया में सर्वाइकल कैंसर से मृत्यु बहुत ज्यादा होती है, इसका बर्डन हमारे देश में बहुत ज्यादा है।
0: तो मैम, इसकी कोई एज लिमिट होती है?
1: वैक्सीनेशन के लिए 9 साल से 14 साल के उम्र की लड़कियां और लड़के,
0: मतलब लड़कों भी?
1: बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ ये सर्विक्स का ही कैंसर नहीं कॉज करता है, ये प्राइवेट पार्ट्स में वार्ट्स, जेनिटल वार्ट्स और ओरोफेरिंजियल कैंसर्स हैं, जैसे मुंह का, गले का, बहुत तरीके के और भी कैंसर्स हैं जो कॉज करता है, और वो लड़कियों में भी हो सकते हैं और लड़कों में भी हो सकते हैं। ये सब चीजें बहुत आगे चल के एज में पता चलती हैं, लेकिन उसके होने की शुरुआत पहले से ही हो जाती है, इसलिए 9 साल से 14 साल की उम्र के बीच में ये लगवा लिया जाए, जब तक बच्चे स्कूल गोइंग एज ग्रुप में हैं, स्कूल वाले में हैं, उनकी शादियां नहीं हुई हैं, अभी कोई किसी तरीके के फिजिकल कॉन्टेक्ट्स नहीं हुए हैं, उसी उम्र में ये लगवा लिए जाए तो आगे चल के एक बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी से बचाव है।
0: मैम, क्या 14 साल के बाद भी हम लगवा सकते हैं?
1: 14 साल के बाद भी लगवाए जा सकते हैं, जितनी उम्र बढ़ जाती है उतना उसका एफिकेसी थोड़ा सा कम हो जाता है, जब फिजिकल कॉन्टेक्ट हो जाते हैं उसके बाद एफिकेसी थोड़ी कम होने लगती है, इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप जितना जल्दी से जल्दी लगवा लें उतना ज्यादा बेटर इसका रहेगा इफेक्ट।
0: तो मैम, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि HPV टीका सही एज में लगवाना क्यों जरूरी है और इसका असर जो बच्चों के ऊपर पड़ने वाला है उसका असर क्या होगा?
1: देखिए, वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है, 9 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन लगवाई जाती है, इसकी डोजेज होती है, कई सारे स्ट्रेन्स होते हैं, अभी भी आप देखिए गवर्नमेंट भी लगा रही है, प्राइवेट सेक्टर में भी इसका अवेलेबल है, 4 स्ट्रेन्स वाले वैक्सीन हैं, 9 स्ट्रेन्स वाले वैक्सीन है जो उनसे बचाव करते हैं, जो ये सब बीमारियां कॉज करते हैं, अगर कुछ 2 डोज में लगवाई जाती है।
0: अच्छा, 2 डोज,
1: हाँ, और अभी जो गवर्नमेंट लगा रही है वो 14 साल की सभी बच्चियों को लगा रही है, वो 1 डोज भी इफेक्टिव है, ये देखा गया है रिसर्च में, वो सिंगल डोज भी इफेक्टिव है, तो वैक्सीनेशन सेफ है। थोड़ा बहुत इंजेक्शन से जो किसी को दर्द हो गया ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली वैक्सीनेशन से बहुत साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। आप ये देखें कि आगे चल के कितनी बड़ी जानलेवा बीमारी से बच रहे हैं, अगर सही उम्र में लगवा लिया गया तो 90% चांस खत्म हो जाएगा वो बीमारी होने का।
0: मैम, बहुत से घरों में भ्रांतियां भी है कि हम ये टीका नहीं लगवाएंगे, कभी लगवाने से कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो जाएगा, तो मैम कुछ ऐसा भी है क्या?
1: भ्रांतियां होती हैं लोगों को, जब भी कोई नई चीज लगती है लोग घबराते हैं, अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले कोविड आया था, उसके लिए भी बहुत लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया कि हमारे शरीर में कुछ असर ना हो जाए। तो देखिए, देश इतना आगे बढ़ गया है और विज्ञान जो है, टेक्नोलॉजी जो है, वो इतनी आगे बढ़ गई है, जितने भी वैक्सीन एडमिनिस्टर किए जाते हैं ये सब के ट्रायल्स होते हैं, बहुत फेजेस में ये वैक्सीन चेक की जाती है कि इनसे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, फिर बहुत सारे 4-5 स्टेजेस, फेज 1-2 बहुत सारे ऐसे ट्रायल्स होते हैं, वो जब सब फेजेस को वो वैक्सीन क्रॉस कर जाती है कि इससे कोई परेशानी नहीं हो रही है, तभी वो मार्केट में अवेलेबल होती है। और गवर्नमेंट, आप सोचिए, गवर्नमेंट अगर कोई चीज लगा रही है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिना जांच पड़ताल के कोई चीज किसी को भी लगा दी जा रही है।
0: जी, बिल्कुल।
1: वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए, इससे बिल्कुल मत डरिए। हाँ, कभी कभी कुछ ग्रुप्स में ये सोच होती है, वो इसलिए क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है अभी नई चीजें उन लोगों को पता जानकारी का माध्यम नहीं है, तो अपने करीबी आप गवर्नमेंट सेटअप्स में प्राइवेट सेटअप्स में जहां भी जाना चाहें अपने करीबी डॉक्टर्स से मिलिए, उनसे बात करिए, पूछिए, ये बिल्कुल सेफ है और आपके बच्चों को आगे आने वाले बहुत बड़े काल से ये बचाएंगे। शरीर में कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है, किसी कोई सोचे कि हमारे कहीं ऐसा ना हो कि सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी का जहां नाम आ जाता है लोग वैसे भी घबरा जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे चल के इनके बच्चे ना हो सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है और आप ये समझे कि आप लोगों को बचाने के लिए लगाया जा रहा है।
0: मैम हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या सिर्फ एक छोटा सा टीका आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों से हमें बचा सकता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसमें स्ट्रेन्स हैं, सिर्फ कैंसर नहीं बाकी भी जितने सिर्फ सर्वाइकल कैंसर ही नहीं, सर्वाइकल कई लोग असल में इससे भी, सर्वाइकल गले की हड्डी को भी कहते हैं ना, तो कई लोग उससे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सर्विक्स जो है वो बच्चेदानी के मुंह को भी कहा जाता है।
0: ओके,
1: तो ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है।
0: मुझे भी आज पता चला है।
1: अच्छा, तो ये बच्चे ये वो गर्दन की हड्डी जो सर्वाइकल लोगों को गर्दन में दर्द हो जाता है ये वो नहीं है, ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। और बाकी ओरोफेरिंजियल कैंसर होते हैं जो मुंह में, तो क्योंकि एक ही कैंसर में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे लोगों को आगे चल के बहुत परेशानी होती है, इसलिए लगवाना चाहिए।
0: मैम गांव में यानी कि HPV टीके को लेकर अलग अलग भ्रांतियां होती है, जो जैसे कि मैंने आप सभी से पहले पूछा आपसे कि माता पिता चाहते कि ये टीके ना लगवाएं, कभी ऐसा ना हो कि आगे चल कर कोई प्रॉब्लम हो जाए,
1: इसके लिए जो ANM दीदी लोग हैं, आशा लोग हैं, बहुत सारे लोग वहां जाते भी हैं, उन लोगों से अगर किसी को भी कोई डाउट है तो जाए, उन लोगों से पूछे जब वो लोग घर में आते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन ले, अधूरा ज्ञान बहुत डेंजरस होता है, आपके बच्चों को कोई बड़ी प्रॉब्लम में भी डाल सकता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगवाएंगे तो होगा ही होगा, लेकिन इसको प्राथमिकता इसलिए दी जा रही है क्योंकि जब ये हो जाता है तब ये जिस स्टेज में पता चलता है, अगर ये हो गया किसी को तो ये जिस स्टेज में पता चलता है उस स्टेज में कैंसर बहुत आगे बढ़ चुका होता है। उस स्टेज में जब हमको पता चला तो कई बार तो सर्जरी संभव होती है, लेकिन उसके बाद भी रेडिएशन है, कीमोथेरेपी है, दवाइयां लगवाई जाती है, लेकिन कई बार ये इतनी आगे स्टेज में पहुंच चुका होता है, इसके सिम्टम्स बहुत देर से आते हैं। तो जब तक इंसान को पता चलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है तब तक ये उसके शरीर में पूरा फैल चुका होता है। एक बार खून में आ गया या एक बार इसने आसपास के अंगों को उसमें ले लिया, जैसे हमारी आंतें हैं और यूरिनरी ब्लैडर है, आप बहुत सारी चीजें को, जैसे जैसे कैंसर बढ़ता है वो अपने आसपास के सारे टिश्यूज को ले लेता है। एक स्टेज में कैंसर ऐसे भी स्टेज में आ सकता है कि जब आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते, आप सर्जरी करके उसको निकाल नहीं सकते, सिर्फ आपको पता है कि ये मरीज जो है अब ये जाने वाला है, सिर्फ आप उसका दर्द कम करने के लिए उसको दवाई दे सकते हैं, लेकिन आप उसके जीवन को रोक नहीं पाएंगे। तो जब तक आपको ये, जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि जब हमें कोई परेशानी नहीं है तो हम क्यों लगवाएं,
0: कभी कभी ये भी लगता है उनको कि अभी तो यार बीमारी छोटा ही तो है, बाद में देखने,
1: लेकिन जब बाद में देख लेंगे वाली चीज है, उस स्टेज पे बहुत ज्यादा ये कैंसर बढ़ चुके होते हैं, तब पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। और उसमें दर्द भी होता है जब ये बहुत बढ़ जाता है, बहुत तरीके के शरीर में चेंजेस आते हैं और परिवार का वो सदस्य फिर जीवित ही नहीं रह पाता है। तो उससे अच्छा ये है कि आप अभी इसकी जानकारी लें और सही समय पे टीकाकरण करवाएं, जिससे आपके बच्चे आगे के लिए सुरक्षित रहे।
0: मैम एक छोटा सा मैसेज जो देना चाहें,
1: छोटा मैसेज, ये स्कूल्स में भी लगवाई गई है, स्कूल्स में भी मुझे पता चलता है कई बार कि माँ बाप जो है वो बच्चों को डर के मारे नहीं भेज रहे हैं। गवर्नमेंट ने बीच में इनिशिएटिव लिया था स्कूल्स में भी लगाने का, तो कई माँ बाप डर के कारण बच्चों को नहीं भेज रहे थे, लेकिन आप लोग जाइए, सब जगह लगवाइए, गवर्नमेंट सेटअप्स में जाइए, 14 साल की बच्चियों को लग रहा है, सिंगल डोज में भी लग रहा है और भी इसके डोजेज हैं, आप लोग लगवाइए, पता करिए इस चीज के बारे में। बिना पता हुए अधूरी नॉलेज से अपने बच्चों का फ्यूचर खतरे में ना डालें, क्योंकि अभी बच्चे इस स्टेज में नहीं है, 9 से 14 साल के बच्चे बहुत ही कम उम्र के बच्चे ही हैं, उनको तो अभी दुनिया का पता नहीं है, कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लाइफ में आ सकती है नहीं पता है, लेकिन आप लोग को पता है, तो आप लोग की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को आने वाले इस खतरे से बचाएं, उनको बताएं, आपस में आप लोग डिस्कस करिए, कंफ्यूजन है तो लोगों से बात करिए, डॉक्टर से इन्फॉर्मेशन सही तरीके से लीजिए, ये नहीं कि आपने जिससे पूछा है उसको भी नहीं पता है, अपने करीबी डॉक्टर्स के पास जाइए, आशा है, आंगनवाड़ी है, ENM है वो लोग आपको सही सेंटर्स पे लेके जाएंगे, वहां से सही इन्फॉर्मेशन लीजिए और फिर ये डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जो इग्नोरेंस है, लापरवाही है, वो आगे चल के आपके बच्चे की जान को बहुत खतरे में डाल सकती है। तो आपके पास ये मौका है कि आप उस चीज से अपने बच्चों को बचाएं। सरकार भी इस चीज में पूरा ध्यान दे रही है, क्योंकि सब लोग यही चाहते हैं कि उस देश के नागरिक सुरक्षित रहें।
0: जी बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने बोला सिंगल डोज, ठीक है, तो डबल डोज अगर लगवाते हैं तो गैप कितना होना चाहिए?
1: डबल डोज के भी अलग वैक्सीन का अलग टाइमिंग है, वो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अलग स्ट्रेन की है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे।
0: तो चलिए श्रोताओं,
1: अभी जो सरकार दे रही है वो सिंगल डोज में भी बहुत इफेक्टिव मानी गई है, इसीलिए वो सिंगल डोज में भी लाए गए, क्योंकि कई बार लोग सेकेंड डोज के लिए नहीं आ सकते हैं, तो आप लगवाइए इसको।
0: अच्छा लगा, थैंक यू रीना जी। और मैम की आवाज भैया जितनी अच्छी है ना, वो इतनी बहुत प्यारी
1: आवाज आपकी भी बहुत अच्छी है, और आपका रेडियो हम लोग सब सुनते हैं, और आपकी आवाज जब लोगों के पास, श्रोताओं के पास पहुंचेगी, तो मुझे लगता है अगर उनमें हम लोगों के कुछ बताने से या आप लोगों के कुछ इनिशिएटिव लेने से हमारे देश के लोगों में कुछ पॉजिटिव चीज आए, लोग अपना सेहत इंप्रूव कर पाए, तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस आप लोगों के आगे के एंडेवर्स के लिए।
0: थैंक यू सो मच मैम। और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता जो भाई गलत धारणाएं थी उनको आज क्लियर हो गई होंगी कि भैया HPV टीकाकरण है ना, वो लगवाना बहुत जरूरी है।
1: बाय मैम,
0: बाय बाय।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका सेहत से लाभकारी में एक नए एपिसोड के साथ। मैं आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई हूं और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना।
1: अरे पहले आराम से बैठ जाओ, थोड़ा पानी पी लो। मगर आरजे रीना, तुम्हारे तो दाद देनी पड़ेगी, इतनी बारिश और मुश्किल हालात में भी तुमने हमारे श्रोताओं से रूबरू होना नहीं छोड़ा।
0: यही तो हमारी सामुदायिक रेडियो की खासियत है, हम चाहे कैसे भी परिस्थिति में हो अपने श्रोताओं को कभी अकेले छोड़ते थोड़ी हैं। हमेशा उन्हें जानकारी और सहारा देने के लिए तैयार रहते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइए आज किस मुद्दे पर चर्चा करेंगी?
0: भाभी, बस इतनी बारिश और बाढ़ का माहौल है तो क्यों ना आज बाढ़ और उससे होने वाली बीमारियों पर ही बात की जाए। बाढ़ सिर्फ पानी नहीं लाती, इसके साथ आती है कई तरह की फैलने वाली बीमारियां और साथ इन बीमारियों से बढ़ने वाले खर्चे, तो इसके लिए हमें सावधान रहना बहुत जरूरी है।
1: सही कहा आजरीना, बाढ़ तो खैर बाढ़ है पर बाढ़ का पानी साफ नहीं होता, इसमें नालियों का गंदा पानी, कीचड़ और तरह तरह के कीटाणु मिल जाते हैं। यही गंदा पानी जब खाने पीने की चीजों या पीने के पानी में मिल जाता है तो लोगों को बहुत सी बीमारियों की लपेट में ले लेता है। ऐसे में हैजा, टाइफाइड, पीलिया जैसी बीमारियां फैलती हैं।
0: और हाँ, जब पानी धीरे धीरे सूखता है तो जगह जगह गड्ढों में पानी जमा रहता है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो आप, और वहीं सबसे तेज मच्छर पनपते हैं, पर मच्छरों से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलने लगती हैं।
0: भाभी आपने तो देखा ही होगा पिछले साल रामपुर गांव में क्या हुआ था।
1: अरे कैसे भूल सकती हूँ, वहाँ बाढ़ आई थी, नालियों का गंदा पानी, खेतों की कीचड़ सब मिलकर कुएं और हैंडपंप तक चला गया, लोग वहीं का पानी पीने लगे, बस वहीं से बीमारियां फैल गई। यही हैजा का सबसे बड़ा कारण होता है, कई लोग बीमार पड़ गए। रेशमा को गंदा पानी पीने से अचानक उल्टी, दस्त होने लगा, बच्चा इतना कमजोर हो गया कि चल भी नहीं पा रहा था। उसकी माँ बहुत घबरा गई, पहले तो सोचा कि घर पर ही इलाज कर लें, लेकिन हालात और बिगड़ गए।
0: फिर क्या किया गया भाभी?
1: रेशमा को हम तुरंत गांव के हेल्थ सेंटर ले गए, डॉक्टर साहब ने जांच की और बोले कि रेशमा को हैजा है। इस बीमारी से उसके शरीर का पानी बहुत कम हो गया था, डॉक्टर साहब ने उसे ORS का घोल पिलाया, दवा भी दी, अच्छा हुआ समय पर इलाज मिल गया, इसीलिए रेशमा जल्दी ठीक हो गई।
0: भाभी बाढ़ के समय बहुत लोगों को पेट से जुड़ी परेशानियां होने लगती हैं, जैसे दस्त, उल्टी और पेट दर्द, ऐसा क्यों होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है?
1: रीना जी, बाढ़ के दौरान पानी गंदा हो जाता है, लोग वही पानी पी लेते हैं या उसे खाना बना लेते हैं, इससे पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, दस्त, उल्टी, पेट में मरोड़, शरीर में गड़बड़ी।

0: के लक्षण हैं।
1: तो भाभी प्राथमिक सावधानी क्या होनी चाहिए?
0: बचाव के लिए साफ पानी पीना चाहिए, ताज़ा खाना खाएं, हाथ धोना भी बहुत जरूरी है, खासकर खाना खाने से पहले और टॉयलेट के बाद हाथ जरूर धोएं। अगर कोई ज्यादा बीमार लगे तो डॉक्टर से अवश्य दिखाएं।
1: बिल्कुल भाभी, हैजा से बचने का सबसे अच्छा तरीका है साफ पानी पीना और ताज़ा भोजन करना। वैसे आजकल गांव में बहुत लोग बुखार से भी परेशान हैं। डॉक्टर साहब बोल रहे थे टाइफाइड फैल रहा है। टाइफाइड कैसे होता है?
0: टाइफाइड बुखार साल्मोनेला नामक जीवाणु के कारण होता है। इसका मुख्य कारण है मल मुख मार्ग है, यानी ये संक्रमण तब फैलता है जब दूषित भोजन या पानी के माध्यम से ये जीवाणु शरीर में पहुंच जाता है। ये दूषित संक्रमण व्यक्ति या बिना लक्षण वाले वाहक के मल से होता है। गंदगी, साफ पानी की कमी, बिना धोए फल सब्जियां या सड़क का खाना खाने से ये संक्रमण आम तौर पर फैलता है, खासकर बरसात या बाढ़ के बाद ये बीमारी तेजी से फैलती है।
1: अच्छा, तो इसके लक्षण कैसे पहचाने?
0: लक्षण बड़े साफ होते हैं रीना। लगातार तेज बुखार आना, सर दर्द करना, पेट में दर्द रहना, कमजोरी लगना, भूख ना लगना और कई बार उल्टी भी हो जाती है। ये सब दिखें तो समझ लीजिए कि टाइफाइड हो सकता है।
1: और इससे बचने का क्या उपाय है?
0: इस बीमारी से बचना है तो अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। जैसे काम करके घर आने पर साबुन से हाथ धो लें, बच्चे खेल कर आए तो उनके हाथ पैर साफ करें, पानी चाहे कुएं का हो या हैंडपंप का उबाल कर ही पिएं। कई बार पानी साफ दिखता है लेकिन अंदर की गंदगी नजर नहीं आती। खाना हमेशा ढककर रखें। बाढ़ के बाद तो और ज्यादा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि हर तरफ कीटाणु फैले रहते हैं। अगर किसी को लगातार बुखार रहे, थकान लगे या पेट दर्द करे तो मरीज को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए।
1: सही कहा भाभी, दवा तो डॉक्टर देगा लेकिन समझदारी और सावधानी हमारे हाथ में है। तो सभी सुनने वाले श्रोताओं से मैं यही कहना चाहूँगी, साफ सफाई से रहने से हमारी पास भी नहीं भटकेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने रीना।
1: भाभी, बाढ़ के बाद पड़ोस के गांव में कई लोग बुखार, थकान और पेट की शिकायत लेकर अस्पताल जा रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये हेपेटाइटिस है, ये बीमारी कैसे होती है?
0: हेपेटाइटिस ए और कोई साधारण बीमारी नहीं है। ये सीधे हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाती है। गंदे पानी, दूषित भोजन में मौजूद कीटाणु शरीर में जाकर लीवर को खराब कर देते हैं। यही है हेपेटाइटिस का असली कारण।
1: तो भाभी, इसके लक्षण कैसे पहचाने?
0: अगर किसी को लगातार थकान लगे, हल्का बुखार बना रहे, पेट भारी लगे और खासकर आंखें व पेशाब पीले रंग की दिखने लगे तो समझ लीजिएगा लीवर पर असर हो रहा है। हेपेटाइटिस के साफ संकेत हैं। अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो हालात बहुत गंभीर हो सकते हैं।
1: क्या हमारे गांव में भी ऐसा कोई मामला हुआ है?
0: पास के मोहल्ले में हन्नु काका के बेटे को बाढ़ के बाद यही दिक्कत हुई। उसे बार बार बुखार आ रहा था, शरीर में कमजोर

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ जरीना और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आज का हमारा टॉपिक है भैया बहुत ही खास है, डिफेमेशन टॉपिक हम लेकर आए हैं। आपने अक्सर सुना होगा मेरी मानहानि हुई है, लेकिन आखिरकार मानहानि होती क्या है? किसी व्यक्ति के बारे में ऐसी झूठी या अपमानजनक बात कहना, लिखना या फैलाना जिससे उसकी इज्जत, प्रतिष्ठा या समाज में सम्मान को नुकसान पहुंचे, उसे आम तौर पर मानहानि कहा जाता है। यानी किसी की छवि को जानबूझकर खराब करना सिर्फ मजाक की बात नहीं हो सकती, इसे कानूनी पहल भी कह सकते हैं। तो इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कनेक्ट है एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे रेडियो पर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया, थैंक्स।
0: तो सर, हमारा सबसे पहले टॉपिक यही होगा कि मानहानि होता क्या है।
1: देखिए सर,

0: शब्दों में अगर हम मानहानि की बात करते हैं यानी डिफेमेशन की बात करते हैं, तो जब किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा कोई झूठ या उसकी प्रतिष्ठा को या उसकी इमेज को नुकसान करने वाला कोई आरोप लगाया जाए या कोई बयान दिया जाए, उसको प्रकाशित कराया जाए कहीं वो पब्लिशिंग फॉर्म में, या उसको संचारित किया जाए यानी उसको प्रचार प्रसार करके उसको संचारित फैलाया गया हो जिससे उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंच रहा हो, तो उस परिस्थिति के अनुसार जो भी उसकी रेपुटेशन का नुकसान होता है उसको हम डिफेमेशन बोलते हैं, यानी कि उसको मानहानि बोला जाता है कि उसकी डिफेमेशन, उसकी इमेज का डिफेमेशन हुआ है।
1: ओके, क्या किसी को बुरा भला कहना ही डिफेमेशन है?
0: देखिए आमतौर पर मजाक में आजकल लोग आपस में फ्रेंड्स बात कर रहे हैं या नेता एक दूसरे को, आपने देखा होगा पॉलिटिक्स में लोग आरोप प्रत्यारोप का एक जो है लोगों पे बयानबाजी होती है, राजनीतिक विश्लेषण हम लोग देखते हैं तो उसमें नेता एक दूसरे पे खूब आरोप लगाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर भाषा जो है वो डिफेमेशन के कैटेगरी में आए। अपमानजनक या अशोभनीय शब्द अगर आप डिफेमेशन मतलब उस पर नहीं बनता है या कोई ऐसा वर्ड आपने यूज किया जो डिफेमेशन के कैटेगरी में नहीं आता है, तो जरूरी नहीं कि हर बार डिफेमेशन हो। मामले में ये भी देखा जाता है कि जो व्यक्ति ने जो कथन किया है वास्तव में उस व्यक्ति की रेपुटेशन उससे हर्ट हो रही है या नहीं हो रही है, और कानूनी अर्थ में नुकसान अगर पहुंच रहा है तो डिफेमेशन बनता है। और डिफेमेशन के साथ साथ कुछ ऐसे, कुछ हमारे कानून में कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ ऐसी जो एक पैरामीटर दिए गए हैं, अगर उस पैरामीटर के अंदर वो उसने स्टेटमेंट दिया है तो वो तभी डिफेमेशन की कैटेगरी में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा।
1: ओके सर, इसके टाइप्स कितने होते हैं?
0: देखिए डिफेमेशन आमतौर पर समान सिविल डिफेमेशन और क्रिमिनल डिफेमेशन की बात की जाती है। सिविल एक्शन में कंपनसेशन और डैमेजेस मांग सकते हैं, और जबकि क्रिमिनल जो डिफेमेशन होता है क्रिमिनल लॉ में प्रेस्क्राइब उसमें पनिशमेंट का प्रावधान है। तो सीधे तौर पे मैं कहूंगा कि अगर आपका सिविल डिफेमेशन हुआ तो सिविल डिफेमेशन में आप सिविल कोर्ट में वाद दायर करके उसमें हर्जाना मांग सकते हैं, कंपनसेशन मांग सकते हैं। अगर क्रिमिनल डिफेमेशन हुआ तो क्रिमिनल कोर्ट में आप जो है वाद दायर करके मजिस्ट्रेट से रिलीफ मांग सकते हैं कि इसकी वजह से ये क्रिमिनल डिफेमेशन हुआ है, इस तरीके से जो है ये अगेंस्ट में इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए।
1: सर मेरा अगला क्वेश्चन है, आजकल आपने देखा होगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स पर किसी के खिलाफ गलत पोस्ट करना भी डिफेमेशन हो सकता है?
0: देखिए ये तो आजकल बहुत ट्रेंड चल गया, हम देखते हैं, आप अगर मोबाइल उठा के देख लेते हैं, आप फेसबुक देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, आप ट्विटर देख लीजिए या आप यूट्यूब देख ली, तो बाढ़ आई पड़ी है तमाम मैसेजेस की, सोशल मीडिया मैसेजेस की। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि कोई भी मैसेज अगर आप देख रहे हैं तो उसको बिना देखे बिना समझे आप फॉरवर्ड बिल्कुल मत करिए। अगर सपोज करिए कोई आपके पास कोई डिफेमेशन मैसेज आया और आपने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया तो आप भी उसमें बराबर के भागीदार बन जाते हैं, है ना? हाँ, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। परिस्थितियों के अनुसार सोशल मीडिया पर किया गया कोई भी डिफेमेशन पब्लिकेशन मानहानि का आधार बन सकता है। ऑनलाइन होने से कानून समाप्त, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर चीजें ऑनलाइन हो गई है तो कानून आपके ऊपर नहीं लगेगा। तो अगर आपने ऑनलाइन भी किसी के बारे में कुछ अपशब्द कह दिए या किसी ने कोई अपशब्द लिखा और आपने उसको फॉरवर्ड कर दिया दूसरे ग्रुप में तो आप भी बराबर के भागीदार बन जाते हो।
1: ओके, तो मतलब शेयर करना भी
0: हो जाता है। पहले जो है हमारे कोर्ट में एक जो है क्वेश्चन था कि भाई किसी ने अगर अपशब्द लिखे हैं और दूसरे ने फॉरवर्ड किया है तो उसको भागीदार नहीं होना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर आप गलत चीज का साथ दे रहे हो, डिफेमेशन कर रहे हो और कंटिन्यूस डिफेमेशन कर रहे हो तो आप भी बराबर के उसमें कल्प्रिट माने जाओगे, आप भी उसमें दोषी माने जाओगे। तो लिहाजा अगर कोई अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तो आप उसको सोच समझ के वहीं डिलीट कर दिए या उसको आगे फॉरवर्ड तो बिल्कुल नहीं करना है।
1: सर ये भी होता है ना कि जैसे हम केस दर्ज करवा रहे हैं तो आगे से भी पोस्ट डिलीट कर दिया जाता है, इसकी कोई साइड?
0: देखिए वो सब साइबर क्राइम जब होता है ना तो जो साइबर एक्सपर्ट्स होते हैं जो हमारे लीगल जुडिशरी में और पुलिस के पास एक टीम होती है वो सब ढूंढ लेते हैं कि कौन सी पोस्ट कहाँ करी थी। आईपी एड्रेस से पता चल जाता है, आपका सोशल मीडिया हैंडल से पता चल जाता है कि आपने कब कौन सी पोस्ट करी है, तो वो डाटा आप कितने डिलीट कर लें वो सब फाइंड आउट हो जाता है वो।
1: ओके, तो सर हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट्सएप ग्रुप में किसी व्यक्ति के बारे में गलत आरोप लगाने पर क्या मामला बन सकता है?
0: यदि कोई लीगल उसमें जो एविडेंसेस हैं, लीगल कोई सब्सटेंस उसके अंदर है जो आपने कम्युनिकेशन जो व्हाट्सएप ग्रुप में किया है उससे किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंच रहा है तो निश्चित तौर पे आपके खिलाफ जो है डिफेमेशन का मामला बनता है और एज पर सिचुएशन आपके खिलाफ लीगल एक्शन 100% हो सकता है। तो इसलिए व्हाट्सएप पे भी आप किसी के बारे में अपशब्द लिख रहे हैं या कुछ ऐसी अशोभनीय बातें लिख रहे हैं तो वो भी लीगल एक जो है डिफेमेशन की कैटेगरी में आती है वो भी।
1: मतलब वही ना सर, कि मजाक मजाक में भी बोलती है और वो दिल पर ले गया तो ये बुरा ही है।
0: हाँ, तो सोच समझ के आपको कोई भी सोशल मीडिया हैंडल का इस्तेमाल करना चाहिए। आप अगर व्हाट्सएप पे भी, ग्रुप में भी आप चैट कर रहे हैं तो आपको किसी को डिफेम करने का राइट नहीं मिल जाता है, है
1: बिल्कुल
0: ना?
1: हाँ।
0: तो आपको सोच समझ के पोस्ट करना चाहिए, और कोई भी अगर डिफेमेटरी कोई स्टेटमेंट किसी ने दिया है तो आपको उसे आगे फॉरवर्ड नहीं करना है।
1: सर, अगर कोई व्यक्ति किसी गलत पोस्ट को या सिर्फ फॉरवर्ड करे तो क्या वह भी जिम्मेदार हो सकता है?
0: देखिए, मैंने जैसे बताया अभी आपको, ये फैक्ट्स पर निर्भर करता है। फॉरवर्ड करने वाले की भूमिका क्या है, उसका रोल क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, कंटेंट, नेचर ऑफ कंटेंट क्या है। अगर इन सारी चीजों में उसका इंटेंशन मैलाफाइड है और वास्तव में वो भी डिफेमेशन करना चाह रहे हैं उस व्यक्ति की, तो निश्चित तौर पे उसके खिलाफ भी एक्शन बनता है, इसमें डिफेमेशन का केस बनता है उसके खिलाफ भी।
1: तो सर, क्या किसी की फोटो लगाकर कैप्शन लिखना भी गलत है?
0: आपने देखा होगा आजकल खूब जो है, एक डीप फेक नाम का वर्ड आपने सुना होगा।
1: जी जी।
0: तो डीप फेक वर्ड क्या होता है? देखिए, डीप फेक एक वर्ड जो आपने सुना होगा, डीप फेक में ये होता है कि लोग जो है किसी की भी फोटो से कुछ और फोटो बना देते हैं, उसकी वास्तविक फोटो को चेंज करके।
1: ये तो अब चला भी हुआ है।
0: हाँ, तो ये डीप फेक का जो आपने देखा होगा, बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स हमारे शिकार होते हैं, पॉलिटिशियंस शिकार होते हैं, बहुत सारे पॉपुलर जो पर्सनैलिटीज हैं उनके ऊपर उनकी डीप फेक जो है वीडियोस बना दी जाती हैं। तो यदि किसी व्यक्ति की रेपुटेशन प्रभावित हो रही है और ये गंभीर कानूनी मुद्दा है, तो फिर अगर आपने स्क्रीनशॉट, यूआरएल और डेट वगैरह अगर सब आपका एविडेंस के रूप में फाइंड आउट हो गया कि आपने भी उस पार्टिसिपेट किया है उस कैटेगरी में, तो आपके ऊपर निश्चित तौर पर डिफेमेशन केस बनता है।
1: आजकल तो ये बहुत चला भी हुआ है सर।
0: हाँ, बिल्कुल बना हुआ है।
1: एआई का जमाना है।
0: एआई के कुछ नुकसान भी है
1: और कुछ फायदे भी हैं
0: कुछ। तो हमें जो चीज अच्छी है वो अडॉप्ट करनी चाहिए।
1: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा सर आपने। अगला क्वेश्चन है, क्या व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट कोर्ट में एविडेंस बन सकता है?
0: हाँ, बिल्कुल बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट की अभी गाइडलाइंस भी आई हैं, अगर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एविडेंस हो सकता है लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी और उसकी एडमिसिबिलिटी कानून के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हो तभी वो एडमिसिबल हो।
1: अगर पोस्ट बाद में डिलीट कर दी जाए तो क्या मामला खत्म हो जाता है या फिर ये मामला चलता ही रहता है सर?
0: देखिए, ऐसा है, आपने ये तो वही वाली बात होगी, पहले आपने अपराध कर दिया फिर उस अपराध का साक्ष्य मिटा रहे हो आप उसका एविडेंस, मतलब एक तरफ आपने अपराध किया फिर उसका एविडेंस आप मिटा रहे हो, तो इसमें कैसे माफी मिल पाएगी आपको, है ना? तो इसमें ये है कि अगर आपने उस चीज को पब्लिश कर दिया और उसका एविडेंस अभी भी उपलब्ध है, उसका साक्ष्य उपलब्ध है, और आपने बाद में अगर उसको डिलीट भी कर दिया है लेकिन लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आपके ऊपर समाप्त नहीं होता क्योंकि आपने साक्ष्य मिटाया है।
1: ओके,
0: आपने अपराध तो कर दिया ना, और फिर आप अपराध करके बाद में उसको डिलीट कर रहे हैं, तो जब अपराध हो गया तो अपराध की तो सजा मिलनी चाहिए ना,
1: मतलब
0: तो
1: माफी मांगने से भी नहीं होएगा कुछ भी।
0: वो देखिए विक्टिम के ऊपर है, अगर विक्टिम माफ कर देता है ठीक है, या कोर्ट उसको माफ कर देती है, लेकिन अपराध तो हुआ है ना।
1: ये तो है सर, मतलब वही है ना, किसी के ऊपर पत्थर मार के सॉरी बोलो तो क्या ही फायदा।
0: तो अपराध आपने किया है, तो अपराध अगर करा है तो आपके ऊपर केस बनता है।
1: ओके,
0: ये विक्टिम के ऊपर है कि विक्टिम उसको माफ करता है या कॉम्प्रोमाइज करता है या कोर्ट उसको कोई ग्रांट देती है।
1: अगर सर मान लीजिए उसने कोर्ट में भी मतलब बता दिया उसके बारे में और उसने खुद भी माफ कर दिया तो फिर क्या कोर्ट तक?
0: देखिए, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होता है, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ज्यादा बड़ा अपराध नहीं था तो वो हो सकता है कि उसको माफ भी कर सकते हैं, और लगता है कि वास्तव में एक कॉन्सिक्वेंसेस था तो उसमें पनिशमेंट दे सकती है कोर्ट, या उसपे पेनल्टी लगा सकती है, फाइन लगा सकती है, कंपनसेशन दे सकती है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं।
1: अगर मैंने किसी के बारे में सच बात कही तो क्या ये भी मानहानि हो सकता है सर?
0: देखिए, क्रिमिनल डिफेमेशन के संदर्भ में ट्रूथ जो होता है एक महत्वपूर्ण स्टैट्यूटरी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन उसके साथ अगर कानून में अनकंडीशन मतलब और दूसरी कंडीशंस भी लगी हुई है, जैसे कि सच है कह देना हर मामले का ऑटोमेटिक डिफेंस नहीं होता है, है ना? अगर आपने कह दिया कि भाई इस आदमी, ये आदमी ऐसा है और वो वास्तव में सच भी है, तो आप ये कह के कोर्ट को नहीं कह सकते साहब ये बात ठीक थी और इसलिए मैंने ऐसा कह दिया, ये इसका नेचर ऐसा था, बदतमीज आदमी है, ये लड़ाई झगड़ा करता है। लेकिन अगर उससे डिफेमेशन हुआ है या उसका जो है कुछ लीगल इंफ्रिंजमेंट हुआ है उसके राइट्स का, तो आपके ऊपर डिफेमेशन का केस बनता है।
1: मतलब तारीफ करना भी गलत है सर?
0: तारीफ डिफेमेशन में नहीं आता ना, अगर आप उसकी रेपुटेशन को हर्ट कर रहे हैं।
1: Okay.
0: उसकी रेपुटेशन हर्ट होने से अगर उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, उसके रोजगार पे इफेक्ट पड़ रहा है, उसके जीने का आप राइट जो है डिस्टर्ब कर रहे हो, लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है ना? तो आपके ऊपर डिफेमेशन का केस बनता है।
1: किसी व्यक्ति की आलोचना करना और मानहानि में क्या अंतर होता है सर?
0: देखिए, फेयर क्रिटिसिज्म जो होता है और डिफेमेटरी एलिगेशंस होती हैं, दोनों अलग अलग कंसेप्ट होती हैं। किसी काम, पॉलिसी या पब्लिक कंडक्ट की उचित आलोचना और किसी व्यक्ति के बारे में रेपुटेशन हार्मिंग फॉल्स एलिगेशन में अंतर किया जाता है। अगर आप उसकी उचित एक आलोचना कर रहे हो, फेयर क्रिटिसिज्म कर रहे हो, वो चीज अलग है। लेकिन आप उसका इंटेंशन ही आपकी उसको डिफेमेशन करने की है, जिससे उसके रोजगार पे इफेक्ट पड़े, उसके काम पे इफेक्ट पड़े, उसकी इमेज पे इफेक्ट पड़े, तो निश्चित तौर पे आपको लीगल जो प्रोसीडिंग्स है फेस करनी पड़ सकती है।
1: क्या पब्लिक फिगर की आलोचना करना भी अपराध है?
0: नहीं, देखिए, पब्लिक फिगर की फेयर क्रिटिसिज्म अगर आप कर रहे हैं तो अपराध नहीं है। लेकिन क्रिटिसिज्म और डिफेमेटरी एलिगेशन के बीच लीगल बाउंड्रीज का ध्यान रखना होता है कि लीगल बाउंड्रीज के अंदर ही अगर हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वो चीज तो समझ में आती है, लेकिन उस बाउंड्री से बाहर निकल के अगर आप कर रहे हो तो वो दिक्कत है थोड़ी सी।
1: तो क्या सर बिना किसी के नाम लिए भी बात करना मानहानि हो सकता है?
0: हाँ, यदि परिस्थितियों से लोगों को ये स्पष्ट हो जाए कि ये बात आपने इस व्यक्ति के बारे में कही है, ठीक है, तो केवल नाम ना लेने से आपका मामला स्वतः समाप्त नहीं हो जाता। ये जरूरी नहीं कि आपने उसका नाम नहीं लिया है, लेकिन अगर आपने ये जता दिया एक पब्लिक के बीच में कि उस व्यक्ति के बारे में ही बात हो रही है, भले ही आपने नाम नहीं लिया। अब सपोज करिए आपने किसी देश के, किसी भी देश के, मैं मतलब वर्ल्ड की बात करूं, किसी भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात करी और देश का आपने नाम लिया
1: जी।
0: आप किसी देश का नाम ले रहे हो, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो, तो आपने प्रधानमंत्री का नाम तो नहीं लिया ना
1: जी, जी, जी।
0: लेकिन आपने देश का नाम लिया और प्रधानमंत्री का नाम लिया।
1: ओके।
0: तो आपने एक क्राइम कर दिया अगर आपने कोई अपशब्द बोले उनके खिलाफ, तो है ना, कोई डिफेमेशन अगर आपने करी है तो क्राइम बनता है फिर वो।
1: अगर किसी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ अपनी राय दी थी, तो क्या ये भी हमेशा बच सकता है या फिर गलत है?
0: देखिए, आप ये कह के कोर्ट से जो है, आप जो है कोर्ट को गुमराह नहीं कर सकते। कोर्ट कथन की जो वास्तविकता होती है, नेचर होता है, उसका कंटेक्स्ट होता है और उसके प्रभाव को देखती है कि आपने किस इंटेंशन से, किस प्रभाव से उस चीज को यूज करा। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने जो है सिर्फ अपनी राय दी थी, तो इसको कह के आप नहीं बच सकते।
1: सर, अगला क्वेश्चन है हमारा, पत्रकारिता में मानहानि से कैसे बचा जा सकता है?
0: देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आमतौर पर रिपोर्टर्स को ये डिफेमेशन के केसेस बहुत झेलने को मिलते हैं
1: जी, जी, जी।
0: क्योंकि रिपोर्टिंग, आपने देखा होगा कि अगर आप किसी की भी खिलाफ रिपोर्टिंग कर देते हो, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो
1: जी,
0: तो सीधे डिफेमेशन का नोटिस भेज देती है जो विक्टिम होता है या जो जिसको लगता है कि डिफेमेशन हुई है उसकी। तो मीडिया को खासतौर पर डिफेमेशन से बहुत सामना करना पड़ता है। पत्रकारिता में और मीडिया में सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको कोई भी खबर प्रसारित करने से पहले फैक्ट्स की जानकारी करनी चाहिए, उसको वेरीफाई करना चाहिए, रिलायबल सोर्स पर भरोसा करना चाहिए कि कौन से सोर्स से आपके पास इन्फॉर्मेशन आई है
1: जी।
0: आमतौर पर आपने भी देखा होगा कि लोग आजकल प्रतिस्पर्धा इतनी हो गई है टीआरपी बढ़ाने के लिए चैनलों
1: जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल,
0: कि वो खबर चला देते हैं तुरंत ब्रेकिंग कि साहब यहाँ पे ये एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे पहाड़ गिर गया, यहाँ पे कुछ हो गया, और पता चलता है कि वो खबर जो है वो ऐसी कुछ हुआ ही नहीं था वहाँ पे
1: जी, जी, जी।
0: तो एक कंपटीशन के दौर पे मीडिया को भी एक थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास जो खबर आ रही हो रिलायबल सोर्स से आ रही हो, तभी आप उसे प्रसारित करें, उस फैक्ट्स को वेरीफाई करें कि वास्तव में ऐसी कुछ घटना हैपनिंग वहाँ हुई है या नहीं हुई है, और उसमें संबंधित व्यक्ति का भी आपको पक्ष लेना पड़ता है। अगर आप किसी के बारे में कह रहे हो कि साहब इस आदमी ने जो है धोखाधड़ी कर ली, एक के खिलाफ चला रहे हैं, एक के पक्ष में चला रहे हैं, एक के विपक्ष में चला रहे हैं
1: जी,
0: तो मीडिया को बायस नहीं होना चाहिए, उसको पक्ष और विपक्ष दोनों की बात सुन के दोनों के स्टेटमेंट फैक्ट्स को अच्छी तरह पब्लिश करना ही उसकी जिम्मेदारी है। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको डिफेमेशन का सामना करना पड़ सकता है।
1: सर, अगर किसी की मानहानि हो जाए तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए?
0: देखिए, सपोज करिए कि अगर आपके बारे में किसी ने अपशब्द कह दिए या आपको फेसबुक पे कुछ अपशब्द कह दिया है, कुछ गाली दे दी है, कुछ और दे दिया, तो आप सबसे पहले तो उस एविडेंस को इकट्ठा करिए, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए
1: जी,
0: ठीक, उस पोस्ट को, मैसेज को, कोई न्यूज़पेपर में आया, कोई क्लिपिंग है, कोई रिकॉर्डिंग है, कोई यूआरएल है, कोई स्क्रीनशॉट है, उन सारे फैक्ट्स को आप इकट्ठा करिए, और एक अच्छे एडवोकेट से आप लीगल एडवाइस लीजिए, उसके बाद आप उसको एक डिफेमेटरी नोटिस दीजिए, और नोटिस के बाद आप सीधे कंप्लेंट केस भी कोर्ट में डाल सकते हैं।
1: सच बताऊं तो सर, इस टॉपिक के बारे में मुझे आज पता चला है कि किसी के मान हानि के बारे में भी अगर हम बोल रहे हैं तो वो भी कोर्ट तक बात जा सकती है।
0: बिल्कुल जा सकती है। अगर आपने फेसबुक पे भी किसी को अपशब्द कह दिए तो आपको कोर्ट का रास्ता देखना पड़ सकता है।
1: क्या मान हानि के मामले में लीगल नोटिस भेजना जरूरी है?
0: जी हाँ, डिफेमेशन के मामले में मोस्टली लीगल नोटिस भेजना जरूरी होता है, लेकिन अगर आमतौर पर अगर डिफेमेटरी नोटिस आपने नहीं भी भेजा, आप सीधे कंप्लेंट केस भी डाल सकते हैं। हर सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, लेकिन मोस्टली मामलों में लीगल नोटिस भेजकर एक क्लैरिफिकेशन और अपोलॉजी और विड्रॉल या कंपनसेशन की मांग करना प्रैक्टिकल पहला कदम माना जाता है।
1: ओके।
0: तो ये फर्स्ट स्टेप होता है कि आप लीगल नोटिस भेजें, उसके बाद आप केस फाइल करें।
1: क्या मानहानि का मामला सीधे पुलिस में दर्ज कराया जा सकता है?
0: देखिए, क्रिमिनल डिफेमेशन की प्रक्रिया समानता कंप्लेंट केस के माध्यम से मजिस्ट्रेट के समक्ष ही शुरू की जाती है, इसलिए केवल पुलिस कंप्लेंट पर निर्भर रहने के बजाय एप्लीकेबल जो लीगल प्रोसीडिंग है उसको आपको समझना पड़ेगा, और लीगल प्रोसीडिंग के तहत ही आप सीधे मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हो, क्योंकि पुलिस जो है हमारी बड़े कोई मैटर्स होते हैं उनके लिए होती है लीगल केसेस, जो ये डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स हैं और ये, तो ये मजिस्ट्रेट के समक्ष ही जो है कंप्लेंट केस में वाद दायर कर सकते हैं आप इसके लिए।
1: क्या सिविल डेफिमेशन में क्या मांग की जा सकती है?
0: देखिए, जो भी आपका डेफिमेशन हुआ है, सिविल डेफिमेशन होता है, फैक्ट्स के आधार पे जो भी आपका नुकसान हुआ है, जो भी डैमेजेस हुए हैं, जो भी आप जो है कंपनसेशन चाह रहे हैं, और कुछ परिस्थितियों में इंजेक्शन जैसी रेमेडीज भी मांगी जा सकती हैं, तो एज पर सिचुएशन डिपेंड करता है कि उसमें आपको जो है क्या कंपनसेशन डिमांड करनी चाहिए, और बेहतर होगा कि आप इसे किसी अच्छे, अगर कोई ऐसा आपको कोई आपको फेस करना पड़ रहा है डिफेमेशन, तो आप किसी अच्छे लॉयर से डिस्कस करके और उसको कंप्लेंट केस एक फाइल करें कोर्ट में।
1: डिफेमेशन केस में इविडेंस कितना महत्वपूर्ण है?
0: देखिए, डिफेमेशन केस में इविडेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या कहा गया है, किस टाइम कहा गया है, कौन से प्लेटफॉर्म पे, यूआरएल पे कहा गया है, फेसबुक पे कहा गया है, किसी मैगजीन में छपाया, किसी अखबार में छपाया, उसका कंटेक्स्ट क्या था और रेपुटेशन पे उसका क्या इफेक्ट आया है, ठीक है, तो इन सबको इस्टेब्लिश करना पड़ सकता है। इसलिए डिफेमेशन में जो भी चीज होती है, जो एविडेंस होते हैं, वो बहुत जरूरी होते हैं, तो आपको एक एक चीज को संभाल के रखना है, और जो भी फैक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना जो है डेफेमेशन आगे कंप्लेंट केस फाइल करना है। पब्लिक अपोलोजाइज जो होती है, वो अगर पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो रहा है या अप्रोप्रिएट अपोलोजाइज से डिस्प्यूट रिजॉल्व हो रहा है, और इसका इफेक्ट केस की स्टेज और एप्लीकेबल लॉ पर निर्भर करता है, अगर दोनों पार्टी सेटलमेंट कर रही है और एक विक्टिम जो है वो अगर इससे संतुष्ट है कि हाँ पब्लिक अपोलोजाइज कर लें, या पब्लिकली वो माफी मांग लेता है अपने किए गए कृत्य के लिए, या उसने जो उसकी मानहानि करी है, तो पब्लिक अपोलोजाइज से भी डिफेमेशन केस समाप्त हो सकता है।
1: क्या सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर रखना पर्याप्त है?
0: देखिए, स्क्रीनशॉट यूजफुल है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की ऑथेंटिसिटी और लीगल एडमिसिबल के लिए आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो स्क्रीनशॉट के साथ साथ कोई ऐसी बात किसी के सामने कही गई हो, कोई विटनेस हो, कोई पब्लिश हुई हो किसी मैगजीन में या कहीं पे, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में, तो सारी चीजों को जो एविडेंस के तौर पे जब आप प्रेजेंट करोगे तभी आपका केस मजबूत बनता है। तो निश्चित तौर पे देखिए, स्क्रीनशॉट तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ और भी एविडेंस आपको रखने पड़ सकते हैं।
1: क्या गाली देना हमेशा मानहानि है?
0: नहीं, देखिए, हमेशा मैं नहीं बोल सकता, हर एब्यूसिव स्टेटमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली डिफेमेशन नहीं होता, और किस माहौल में कौन सी बात कही गई है और किस इंटेंशन से कही गई है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, तो सबसे बड़ी चीज आपकी जो नेचर ऑफ कंटेक्स्ट है उसका, प्लस उसमें जो आपका इंटेंशन है, वो सारी चीजों को देख के ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये डिफेमेशन कैटेगरी में है या नहीं है।
1: क्या किसी की रिपुटेशन खराब करने के लिए झूठी खबर फैलाना कानूनी अपराध हो सकता है?
0: देखिए, फैक्ट्स और एप्लीकेबल लॉ के आधार पर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, अगर आप किसी के खिलाफ झूठी खबर प्रसारित कर रहे हैं, फैला रहे हैं, तो निश्चित तौर पे डिफेमेशन की कैटेगरी में आता है, और इसके लिए आपको लीगल जो है प्रोसीडिंग्स का सामना करना पड़ सकता है।
1: मानहानि और साइबर क्राइम में क्या संबंध है?
0: देखिए, जो मानहानि होती है, ऑनलाइन डिफेमेटरी कंटेंट होता है, वो डिजिटल मीडियम का उपयोग करता है, लेकिन हर ऑनलाइन डिफेमेशन को आप ऑटोमेटिकली साइबर क्राइम नहीं कह सकते, ठीक है, तो एप्लीकेबल ऑफेंस और लीगल प्रोविजन फैक्ट्स पर निर्भर करता है कि वो डिफेमेटरी कंटेंट था या वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में जाएगा, दोनों में बहुत अंतर होता है। देखिए, साइबर क्राइम हो गया एक तरीके से, आपसे ऑनलाइन किसी ने फ्रॉड कर दिया, पैसे का नुकसान हो गया, और डिफेमेशन हो गया आपकी इमेज को नुकसान पहुंचाना, तो इसलिए ऑनलाइन अगर डिफेमेशन हो रही है तो उसको आप साइबर क्राइम नहीं कह सकते, है ना। कहीं ना कहीं वो जो है दोनों की एक प्रोसीडिंग्स अलग अलग है और दोनों में जो फैक्ट्स हैं वो अलग अलग हैं, तो फैक्ट्स देखने पड़ेंगे कि कौन से फैक्ट्स के अकॉर्डिंग वो चीज लीगल प्रोसीडिंग्स में जाएगी।
1: अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में झूठी बात व्हाट्सएप पर सिर्फ 2-3 लोगों को बताता है तभी भी एक्शन हो सकता है?
0: देखिए, पब्लिकेशन का प्रश्न और अन्य लीगल रिक्वायरमेंट फैक्ट्स के आधार पर देखे जाएंगे। अगर ऑडियंस की संख्या अकेला है तो निर्णायक फैक्टर, अगर मतलब एक ही आदमी है तो उसको हम कहते हैं कि भाई एक उसको हम नहीं मानेंगे डिफेमेशन। ठीक है ना, पब्लिक ग्रुप में आपने डाला है और व्हाट्सएप ग्रुप पे कई मेंबर्स हैं तो निश्चित तौर पे वो डिफेमेटरी प्रोसीडिंग्स का आपको सामना करना पड़ सकता है।
1: अगर आम नागरिक को मानहानि से बचाने के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए?
0: देखिए, पहली चीज तो आपको कोई भी स्टेटमेंट को फॉरवर्ड नहीं करना है ना, बिना किसी को जांचे परखे। अगर कोई आपने डिफेमेटरी स्टेटमेंट देख लिया, किसी के बारे में कोई बात, किसी ने अपशब्द लिखी और आपने उठा के उसको ऐसे ही फॉरवर्ड कर दिया, तो उस चीज को आपको नहीं करना है। बिना वेरिफिकेशन के किसी पर गंभीर आरोप ना लगाएं, सोशल मीडिया पर सोच समझ के लिखें और किसी विवाद या फैक्ट्स और एविडेंस के बिना आरोप को पब्लिक में ना कहें। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी चीज है कि मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आप अपने काम से काम रखते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा।
1: ये तो है ही सर। और जो ये टॉपिक है हमारा बहुत ही अच्छा रहा है और हमारे श्रोताओं को भी पता चला है कि भैया हम किसी के बारे में अपशब्द बोल देते हैं, मतलब किसी की तारीफ भी करते हैं और उसको वो चीज अच्छी नहीं लगती है।
0: जी बिल्कुल ठीक।
1: तो मुझे नहीं पता था कि भैया कानूनी तौर इसके लिए किया जा सकता है, कोर्ट तक पहुंच सकते हैं। तो सर मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछना चाहूंगी, आखिरकार रेपुटेशन को लेकर किसी को नुकसान पहुंचाया जाए तो क्या करना चाहिए? रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया गया हो तो क्या कर सकते हैं?
0: देखिए, किसी ने अगर आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया है तो सबसे पहले तो आप एविडेंस इकट्ठे करिए, उसे सुरक्षित करिए, गुस्से में ना आए, उसकी जवाबी उसके पोस्ट का जवाब ना बिल्कुल भी, और फैक्ट्स के अनुसार उचित लीगल रेमेडी जो भी है वो क्वालिफाइड लॉयर से मिलकर आप सलाह लें। ठीक है, तो ऐसा ना करें कि अगर उसने आपको एक गाली बक दी तो आप 4 गाली उसको भी फेसबुक पे या व्हाट्सएप ग्रुप में आप दे दो। आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसकी डिटेल पूरी लीजिए और उस बात को लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू अपने एडवोकेट को बताइए, उसको लीगल नोटिस भेजिए, देन आफ्टर आप कंप्लेंट केस फाइल करके उसको पनिश कराइए।
1: सर आपने जैसे बोला कि गाली दिया उसने सामने वाले ने, तो क्या जब सामने वाले गाली दे रहा है तो क्या अगर दूसरा व्यक्ति भी गाली से ही रिप्लाई कर रहा है तो दोनों के ऊपर केस?
0: हाँ, तो डिफेमेशन दोनों तरफ से बन सकता है।
1: ओके,
0: आपने भी तो वही काम कर दिया जो उसने करा, तो आप में उसमें डिफरेंस क्या रह गया फिर?
1: जी बिल्कुल करेक्ट।
0: तो कोर्ट आपको रिलीफ क्यों देगी फिर, जब आपने उसका जवाब दे दिया तो कोर्ट में आप किस मुंह से कह सकते हैं कि मेरा डिफेमेशन हुआ है?
1: ओके,
0: तो डिफेमेशन तो तब हुआ ना जब उसने आपका डिफेमेशन किया, आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, आप शांत बैठे हुए हैं, तो आप अपनी लीगल लिमिट्स जो आपकी लीगल बाउंड्रीज है उसको समझिए, है ना, उसके हिसाब से ही आप जो है व्यवहार करिए। अब ये नहीं कि आपने अगर जो है किसी ने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में गाली दे दी एक, तो आपने उसको 10 बातें लिख के भेज दी, आप पे भी ऊपर भी डिफेमेशन हो सकता है।
1: सर मान लीजिए मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, आमने सामने बात कर रहे हैं, आमने सामने गाली दे रहे हैं, तो मतलब हमारे पास प्रूफ ही नहीं है कि हमने इसके
0: तो
1: बारे में कुछ
0: बोला। कैटेगरी में नहीं आएगा ना फिर, तो आपकी पर्सनल एक जो है गॉसिप हो रही है ना बंद कमरे में।
1: ओके ओके,
0: डिफेमेशन तब होगी जब उस इमेज से तीसरे आदमी आपकी इमेज का आपको नुकसान पहुंच रहा है।
1: मतलब प्रूफ होना चाहिए तभी।
0: बिल्कुल प्रूफ होना चाहिए, कोर्ट में हर चीज प्रूफ पे ही और एविडेंस पे ही डिपेंड करती है।
1: चलिए इस चीज का तो भाई कंफर्म हो गया कि अगर आपके पास प्रूफ है तो देखिए भैया आप बिल्कुल कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसने कैसे बोल दिया, तो बिल्कुल आप जाइए और केस करिए। बाकी इस चीज के बारे में मुझे भी आज ही पता चला है, आई होप कि आपको भी आज ही पता चला होगा। तो आप किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले या व्हाट्सएप मैसेज करने से पहले, अपशब्द बोलने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचेंगे कि भैया आगे एक्शन भी लिया जा सकता है आप सभी के लिए। तो सर एक छोटा सा मैसेज।
0: देखिए मैसेज बस यही है कि आप लोग जो है अपने लीगल राइट्स को जाने, ठीक है, और कभी भी किसी से कोई भी ऐसा डिफेमेशन का काम ना करें, कोई भी पोस्ट को बिना देखे आप आगे फॉरवर्ड ना करें, और अपने जब आपको लीगल राइट्स बताओगे तो निश्चित तौर पे आपके व्यवहार में वो चीजें आएंगी, आप क्राइम भी नहीं करेंगे और आप सुधरेंगे और एक अच्छे नागरिक बनेंगे।
1: ये तो है।
0: और जो है ऐसी हमारा कम्युनिटी रेडियो 89.6 आप सुनते रहिए
1: और से यही निवेदन करेंगे कि आते रहिए।
0: मैं तो हर बार ही आऊंगा जब आप बुलाएंगे।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए हम श्रोताओं अब हम यहाँ से लेते हैं जाने की इजाजत। बाकी आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक आपको कैसा लगा है, क्योंकि आप सभी के लिए हम टॉपिक लेकर आते रहते हैं अलग अलग टॉपिक। बिल्कुल सर सही
0: कहना, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मैं वेट करता हूँ कि कब जो है आपका ये लीगल टॉक शो आप आए और आप मेरे को इनवाइट करें, मैं कोई अच्छा सा नया टॉपिक अपने जो हमारे लिसनर्स हैं 89.6 कम्युनिटी रेडियो के उनको एक नई जानकारी उन्हें मिले।
1: जी बिल्कुल, ये तो सही कहा, तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे, करेंगे ढेर सारी बातें।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना, पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 7055070552।

0: दिस साइड आर्जेरीना एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं और मेरे साथ है एडवोकेट डॉक्टर अनुरुद्ध सर है। तो सर आपका मोस्ट वेलकम है हमारे रेडियो में।
1: धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: सर ये बताइए, आप मतलब मोस्टली मेरे साथ तो ये तीसरा सेशन होगा
1: जी,
0: तो आपको हमारा रेडियो आगे पहले कैसा लगता है?
1: नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं अगर शायद यहाँ पे नहीं आऊँ आपके इनवाइट पे तो मैं मिस करूंगा कुछ।
0: अरे अरे क्या बात है।
1: तो ये तो एक मतलब जो एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपके माध्यम से समाज में कुछ अच्छा कुछ मैसेज दे पा रहा हूँ, उनके लीगल राइट्स को बता पा रहा हूँ। और ये आपका प्रोग्राम सबसे बड़ी चीज है, आपने जो सोसाइटी का मुद्दा उठाया आपने।
0: बिल्कुल जी, हाँ जी सर।
1: क्योंकि मैंने आज तक इतने प्रोग्राम्स और भी सुने, मैंने रेडियो पे भी सुने और न्यूज में भी, तो लीगल मैटर्स को लेके लोग ज्यादा कोई प्रोग्राम रखते नहीं है, अवेयरनेस प्रोग्राम। तो मैं पहले तो आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपने इतना अच्छा ये प्रोग्राम लीगल टॉक्स जो आपने शो रखा है श्रोताओं के लिए। और निश्चित तौर पर आप लोग जो है इस शो के माध्यम से उनकी एक सेवा कर रहे हैं, एक अवेयरनेस उनके बीच में क्रिएट कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सर। तो हम अपने सिलसिले की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो मेरा पहला क्वेश्चन है सर आपसे कि सबसे पहले बताइए कि स्टे ऑर्डर होता क्या है।
1: देखिए, बहुत से लोग आपने देखा होगा बातचीत करते हुए कहते हैं कि भाई हमारा जो है एक फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था प्रॉपर्टी को लेके और कोर्ट से स्टे हो गया है या कोर्ट से स्टे कराना, तो ये स्टे क्या चीज होती है? स्टे ऑर्डर जो होता है वो अदालत कोर्ट के द्वारा दिया अस्थाई आदेश होता है जिसके माध्यम से आप किसी कार्य को, निर्णय को, कार्रवाई को कुछ समय के लिए आप लोग जो है उसको रोक सकती है। कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि जब तक मामले की पूरी सुनवाई ना हो जाए, तो कोर्ट स्टे ऑर्डर के माध्यम से आपको इंस्ट्रक्ट कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है कि आपको इस डिस्प्यूटेड मैटर में कोई भी छुआछेड़ नहीं करनी है और ये यहाँ पे यथास्थिति बनाए रखनी है, तो उसको कोर्ट स्टे दे देती है, तो उसी को हम स्टे ऑर्डर बोलते हैं।
0: बिल्कुल सर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अदालत किन परिस्थितियों में स्टे ऑर्डर जारी करता है?
1: देखिए, जब एक पिटिशनर या प्लेंटिफ होता है जो कि कोर्ट में अपनी एक एप्लीकेशन पिटिशन फाइल करता है, याचिका दायर करता है, और अदालत को लगता है कि इस कार्रवाई से किसी पक्ष को गंभीर नुकसान हो सकता है या न्याय प्रभावित हो सकता है, तब अदालत उस कार्रवाई को अस्थायी रूप से रोकने के लिए स्टे ऑर्डर जारी कर सकती है।
0: सो मेरा अगला क्वेश्चन है सर, क्या कोई भी व्यक्ति अदालत से स्टे ऑर्डर की मांग कर सकता है?
1: हाँ, अगर उसका लीगल कोई जो राइट बनता है या उसका कोई डैमेज होता है, तो कोई भी व्यक्ति किसी कानूनी विवाद में शामिल है, उसे लगता है कि अगर अधिकारों का नुकसान हो सकता है, तो अदालत के समक्ष अपनी अपील एप्लीकेशन और पिटीशन दायर करके स्टे ऑर्डर की मांग कर सकते हैं।
0: स्टे ऑर्डर और इंजेक्शन में क्या अंतर होता है?
1: देखिए, स्टे ऑर्डर किसी निर्णय या कार्रवाई को अस्थायी रूप से रोकने के लिए दिया जाता है, जबकि इंजेक्शन एक आदेश होता है जिसमें अदालत करने के लिए निर्देश देती है।
0: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जब अदालत किसी मामले पर स्टे लगा देती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है?
1: देखिए, जब अदालत किसी चीज पे स्टे लगा देती है तो स्टे लगाने के उस मामले में जुड़ी कार्रवाई तत्काल प्रभाव से तुरंत रोक दी जाती है, और तब तक आगे उस दिशा में कोई भी कार्रवाई जब तक अदालत नहीं कहती है या अदालत उस आदेश को अपने आगे नहीं बढ़ाती है, उस पर कुछ नहीं कर सकते।
0: हाँ बिल्कुल सर, उस पर जब रोक लग चुकी है तो कुछ कर नहीं सकते,
1: तो कोर्ट का आदेश आपकी मानना, आपको मानना भी है और बाध्यता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर। और मुझे लगता है कि कोई भी ऑर्डर मिले उसको हमें फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या स्टे ऑर्डर हमेशा के लिए होता है?
1: नहीं, देखिए, इसमें स्टे ऑर्डर हमेशा के लिए नहीं होते हैं, ये कोर्ट के जो है विवेक पे डिपेंड करता है। कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है कि कोर्ट टेम्परेरी स्टे भी देती है और कुछ केसेस में वो परमानेंट स्टे भी देती है, लेकिन जब स्थितियां सामान्य हो जाती है, पक्षों में एक जजमेंट हो जाता है या जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो उस स्टे को कोर्ट खुद ही हटा भी देती है। तो स्टे ऑर्डर समानता स्थायी होता है, यहाँ तब तक लागू होता है जब तक अदालत मामले की अगली सुनवाई में कोई नया आदेश जारी नहीं करती।
0: क्या बात है। सो अगला क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति स्टे
2: नए अवसर खोल रहा है
0: तो क्या हो?
2: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के लिए 200 स्टार्टअप और कंपनियों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री मोदी के जन

0: सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत पर दुनिया का भरोसा भी बढ़ रहा है।
1: दुनिया का भारत पर भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। साथियों, इसी भरोसे की एक और बड़ी तस्वीर 3 दिन पहले खत्म हुई ब्रिक्स समिट में दिखाई दी है। भारत ने इस समिट की सफलतापूर्वक मेजबानी की। सबकी सहमति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का एडॉप्ट होना भारत पर विश्व के भरोसे का एक और बड़ा प्रमाण है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की है। उन्होंने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा गंतव्य बनने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है। उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत में निर्मित चिप अब देश के भीतर और दुनिया भर में उपलब्ध हैं। श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमारा अगला पड़ाव सेमीकंडक्टर के दूसरे चरण में के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जो 6 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है।
2: सेमीकॉन का दूसरा चरण 6 स्तंभों पर सेमीकंडक्टर उद्योग का निर्माण करेगा। पहला स्तंभ डिजाइन है, दूसरा मशीनें और सामग्री, तीसरा स्तंभ अधिक डिस्प्ले, मेमोरी, सिलिकॉन, कंपाउंड और लॉजिक फैब्स, चौथा अधिक उन्नत पैकेजिंग इकाइयों पर और पांचवा स्तंभ अनुसंधान तथा विकास पर केंद्रित है। छठा स्तंभ प्रतिभा से संबंधित है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के उद्देश्य से 200 स्टार्टअप और कंपनियों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। अगले महीने की 17 तारीख तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के हिस्से के रूप में पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा की 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं, ये आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं अनुच्छेद 370 के संबंध में।
1: जम्मू कश्मीर में सही मायने में भारत

0: नया संविधान लागू हुआ है और ये सब कुछ साथियों इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये विचार जम्मू कश्मीर की संवैधानिक तारीख के अब तक के सबसे बड़े फैसले को दर्शाती है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाने से जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे में बड़ा बदलाव आया। सड़क रास्ते हो या रेल नेटवर्क, पर्यटन हो या सुरक्षा, जम्मू कश्मीर में हर क्षेत्र में दिन ब दिन तरक्की और समृद्धि देखने को मिल रही है। इस सिलसिले में हमने सीनियर राजनीतिक विश्लेषक हकीम रोहला गाजी से बात की तो उन्होंने कहा,
2: पिछले 7 सालों से जो नया कश्मीर बना है उस कश्मीर में सुख शांति, खुशहाली, समृद्धि हर एतबार से हम देखें, खाबो पीस हो, टूरिज्म हो, हमारी इकोनॉमी हो, कश्मीर में आए दिन वो हड़तालों का कल्चर वो खत्म हुआ, अब आए दिन हमारे यहाँ फेस्टिवल्स, दिन रात के हमारे टूर्नामेंट्स जो होते हैं, ये सब चीजें खुशहाल कश्मीर देखने को हमें आर्टिकल 370 के हटने से नजर में आया।
1: अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के विकास को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा केंद्रीय सरकार हर संभव कदम उठा रही है, लेकिन जरूरी है कि यहाँ की आवाम भी इन अवसरों का पूरा फायदा उठाए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
3: गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन और उनके 25 वर्ष की जनसेवा के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। गुजरात का वडनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह नगर है। श्री शाह ने जनसेवा का संदेश फैलाने के लिए वडनगर से वाराणसी तक साइकिल रैली को रवाना किया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत से सर्वथा स्पष्ट होता है।
4: हमने जो कल्पना रखी है 2047 में पूर्ण विकसित भारत की, वो कल्पना की पूर्ति के लिए अनेक ऐसा युवा चाहिए, अनेक ऐसे किशोर चाहिए, अनेक ऐसे बालक चाहिए जो आने वाली 3 पीढ़ी तक नरेंद्र मोदी के रास्ते पर अपने जीवन को आगे बढ़ाकर भारत प्रथम के मंत्र को सफलता के साथ करे।
3: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से गुजरात के वडनगर के लिए बाइक रैली रवाना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज पूरे पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सोशल मीडिया संदेश में महिलाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
0: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूं। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
3: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा की। इस योजना में पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,100 रूपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री को जन्मदिन के अवसर पर देश विदेश से शुभकामनाएं मिल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर बधाई दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को सशक्त बनाने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। भारत में रूसी दूतावास ने इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का संदेश साझा किया। इस बीच नई दिल्ली स्थित कई दूतावासों और विदेशी राजनयिकों ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। भारत में अमरीकी दूतावास ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से श्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की। जापान के राजदूत ओनो केइचि ने विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जन्मदिन पर मिल रही इन शुभकामनाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक आशीर्वाद देश की जनता की सेवा करने के उनके संकल्प को अधिक दृढ़ बनाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये योजना कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक पैकेज प्रदान करती है।
5: पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अब तक 30 लाख से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक काम और हुनर से जुड़े विश्वकर्माओं को आगे बढ़ने में मदद करना है। इसके तहत उन्हें आधुनिक औजार, प्रशिक्षण, आसान शर्तों पर ऋण और बाजार से जुड़ने का अवसर दिया जाता है ताकि वे अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। अब तक करीब 24,50,000 विश्वकर्माओं को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं इस योजना के तहत 6 लाख से अधिक विश्वकर्माओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण महज 5% की दर पर उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा

भारतीयों का पंजीकरण हो चुका है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक काम और हुनर से जुड़े विश्वकर्माओं को आगे बढ़ने में मदद करना है। इसके तहत उन्हें आधुनिक औजार, प्रशिक्षण, आसान शर्तों पर ऋण और बाजार से जुड़ने का अवसर दिया जाता है, ताकि वे अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। अब तक करीब 24,50,000 विश्वकर्माओं को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं इस योजना के तहत 6,00,000 से अधिक विश्वकर्माओं को 1,00,000 रुपए तक का ऋण महज 5% की दर पर उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा 18,00,000 से ज्यादा आधुनिक टूल किट भी इंडिया पोस्ट के माध्यम से विश्वकर्माओं के घर पहुंचाए जा चुके हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक हुनर को आधुनिक साधनों से

0: या और अब हम बात करने वाले हैं उनकी पढ़ाई और सपनों की उड़ान।
1: कल्पना जी ने करनाल के टैगोर बाल निकेतन स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एयर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री 1982 में हासिल की, लेकिन उनका सपना अभी पूरा नहीं हुआ था। उसी साल वे अमेरिका चली गई। वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्स आर्लिंगटन से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। इसके बाद एक और मास्टर्स तथा कोलोराडो विश्वविद्यालय से पीएचडी पूरी की। उन्होंने विमान उड़ाने का परीक्षण भी लिया। वे सिंगल इंजीनियर, मल्टी इंजीनियर, ग्लाइडर और कमर्शियल एयरक्राफ्ट उड़ान की लाइसेंस धारी पायलट थी। नासा तक का सफर 1988 में उन्होंने नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक के रूप में काम करना शुरू किया। उनकी मेहनत और प्रतिभा ने जल्द ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 1994 में उनका चयन नासा के अंतरिक्ष यात्रा दल में हुआ। ये किसी भी वैज्ञानिक के लिए सबसे बड़ा सपना होता है। कई वर्षों की कठिन ट्रेनिंग के बाद आखिर वह दिन भी आया जिसका इंतजार कल्पना बचपन से कर रही थी। दोस्तों, अंतरिक्ष यात्रा के बारे में तो हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन सुनते हैं उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: क्या बात है श्रोताओ, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महिला मंच शो में, जहां हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला जी के बारे में। कहते हैं अगर इरादे मजबूत हो तो हर काम आप आसानी से कर सकते हो। तो अब हम बात करने वाले हैं यानी कि पहली अंतरिक्ष यात्रा उनकी। 19 नवंबर 1997 को स्पेस शटल कोलम्बिया STS-87 उड़ान भरी और इसके साथ इतिहास भी बन गया। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी पहली महिला बन गई। उन्होंने इस मिशन में लगभग 365 घंटे अंतरिक्ष में बिताए, 252 बार पृथ्वी की परिक्रमा की और लगभग 1,04,00,000 किलोमीटर की यात्रा की। पूरे भारत में खुशहाली की लहर दौड़ आई। हर बेटी के लिए कल्पना एक प्रेरणादायक लड़की बन गई। दूसरी और अंतिम उड़ान। पहले मिशन की सफलता के बाद उन्होंने दूसरी बार STS-107 मिशन के लिए चुना गया। 16 जनवरी 2000 को फिर स्पेन शटल कोलम्बिया अंतरिक्ष की ओर रवाना हुआ। इस मिशन में वैज्ञानिकों की टीम ने लगभग 80 वैज्ञानिक प्रयोग किए गए। इसमें अंतरिक्ष विज्ञान, पृथ्वी, चिकित्सा, नई तकनीक और मानव स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण शोध शामिल थे। कल्पना पूरे उत्साह के साथ अपने काम में लगी रही। उन्हें क्या पता था कि यह उनकी आखिरी यात्रा होगी।
1: यह दर्दनाक दिन 1 फरवरी 2003। 16 दिन का मिशन पूरा हो चुका था। पूरी दुनिया को कोलम्बिया की सुरक्षित वापसी का इंतजार, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय स्पेस शटल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। कुछ ही मिनटों में पूरा यान टूटकर बिखर गया। उसमें सवार सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई। ये खबर सुनकर पूरी दुनिया शॉक में रह गई। भारत ने अपनी बहादुरी बेटी को खो दिया, लेकिन उसके सपने, उसकी मुस्कान और उसकी प्रेरणा आज भी जीवंत है। उनका परिवार कल्पना चावला ने 1983 में उड़ान प्रतीक्षण जीन पीरिये हैरिसन से मुलाकात की और बाद में दोनों ने विवाह कर लिया। 1990 में वे अमेरिका की नागरिक बनी, लेकिन भारत और अपने जन्म स्थान करनाल से उनका जुड़ाव हमेशा बना रहा। उनके प्रसिद्ध शब्द, कल्पना चावला अक्सर कहा करती थी, मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ। मैंने अपना हर पल अंतरिक्ष के लिए जिया है और अगर जरूरत पड़ी तो उसके लिए मरूंगी। उनके ये शब्द आज भी हर युवा को बड़े सपने देखने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब हम बात करेंगे इनके सम्मान और पुरस्कार के बारे में। उनके निधन के बाद उन्हीं के कई प्रतिष्ठित सम्मान दिए गए, जिनमें शामिल है नासा स्पेन फ्लाइट मेडल, कांग्रेशनल स्पेन मेडल ऑफ ऑनर। और अब हम बात करेंगे उनके नाम पर बने स्मारक। आज भी दुनिया में कई संस्थान और स्थान उनका नाम गर्व से धारण किए हुए हैं। भारत के मौसम उपग्रह कल्पना एक का नाम उनके सम्मान में रखा गया। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रवास के नाम पर है। हरियाणा सरकार ने कल्पना चावला तारा मंडल की स्थापना की। नासा ने उनके नाम पर सुपर कंप्यूटर सम्मानित किया। अमेरिका की कई सड़कों, भवनों और छात्रवृत्तियों का नाम भी उनके नाम पर ही रखा गया।
1: उनकी कहानी क्या सिखाती है? कल्पना चावला जी की कहानी केवल एक अंतरिक्ष यात्रा की कहानी नहीं है साथियों, ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने छोटे शहर से निकलकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, उन्होंने केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। इसलिए आज भी जब कोई बच्ची आसमान की ओर देखकर बड़े सपने देखती है तो लोग कहते हैं एक और कल्पना चावला तैयार हो रही है। कल्पना चावला भले ही आज हम बीच नहीं है, लेकिन श्रोताओं, उनका जीवन हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को सच करना चाहती है। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हो, मेहनत ईमानदारी से हो और सपनों पर विश्वास हो तो करनाल की एक साधारण लड़की भी सितारों तक पहुंच सकती है। कल्पना चावला केवल एक नाम नहीं बल्कि साहस, मेहनत, जुनून और सपनों की उड़ान का दूसरा नाम है। सपने देखिए, क्योंकि सपने ही आपको आसमान से भी आगे ले जाते हैं। तो दोस्तों, अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आएंगे। फिर बात करने वाले हैं हम कल्पना चावला जी के प्रसिद्ध विचार और उनसे मिली प्रेरणा के बारे में। तो बने रहिए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6।

0: हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है महिला मंच में, आपकी दोस्त आरजे खुशी। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला जी के बारे में। और अभी मैंने आपसे कहा भी था कि कल्पना चावला जी के प्रसिद्ध विचार और उनसे मिलने वाली प्रेरणा के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस बीती की, जिसने सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। एक ऐसी बेटी जिसने बचपन में आसमान को देखा और फिर एक दिन उसी आसमान के पार चली गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला जी की। फ्रेंड्स, किसी इंसान की असली पहचान सिर्फ उसके काम से नहीं होती बल्कि उसके विचारों से होती है। उसके सोचने का तरीका ही उसे भीड़ से अलग बनाता है। कल्पना चावला भी ऐसी ही शख्सियत थी। उनके विचार आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करते हैं। उनके विचारों और उनसे मिलने वाली सीख को विस्तार से समझते हैं। पहला विचार, सपनों से सफलता तक का रास्ता हमेशा मौजूद होता है, बस उसे देखने की नजर, उस पर चलने का साहस और अंत तक चले रहने का धैर्य होना चाहिए। दोस्तों, ये केवल एक वाक्य नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का मंत्र है। आज हम में से बहुत से लोग सपने तो देखते हैं, लेकिन मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं। कल्पना चावला जी कहती हैं कि रास्ता हमेशा होता है, जरूरत है तो सिर्फ उसे खोजने की। अगर रास्ता नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता है ही नहीं। कई बार मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें खुद रास्ता बनाना पड़ता है। कल्पना चावला जी ने भी यही किया। करनाल जैसे छोटे शहर से निकलकर नासा तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ा। अगर आपका सपना बड़ा है तो आपकी मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए।
1: तो श्रोताओं, हमने कल्पना चावला जी के बारे में जाना, लेकिन उन्हीं के लिए उनकी जो कहानी है आजकल की पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन चुका है। समय बदलता है, तकनीकी बदलती है, दुनिया बदलती है, लेकिन कुछ लोगों की कहानियां कभी पुरानी नहीं होती। कल्पना चावला की कहानी भी ऐसी ही है। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जीवन आज की पीढ़ी के लिए एक ऐसी किताब है जिसकी हर पंक्ति हमें कुछ नया सिखाती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर आज के युवाओं, बच्चों और हम सभी को कल्पना चावला जी के जीवन से क्या सीख मिलती है। बड़ा सपना देखने से कभी मत डरिए। कल्पना चावला जी एक छोटे से शहर करनाल में पैदा हुई थी। उस समय बहुत कम लोग सोचते थे कि भारत की कोई लड़की अंतरिक्ष तक पहुंच सकती है, लेकिन उन्होंने अपने सपनों की ऊंचाई और कभी छोटी नहीं होने दी। आज कई युवा सोचते हैं कि हम छोटे शहर से हैं, हमारे पास ज्यादा सुविधाएं नहीं है, इसीलिए हम बड़े सपने नहीं देख सकते। लेकिन कल्पना चावला की कहानी बताती है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। हर सपना बड़ा होता है तो मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी सफलता चाहता है। सोशल मीडिया पर किसी की सफलता देखकर लोग सोचते हैं कि सब कुछ बहुत आसान है, लेकिन सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत, संघर्ष और धैर्य छिपा होता है। कल्पना चावला जी ने भी दिन रात पढ़ाई की, रिसर्च की, कठिन ट्रेनिंग पूरी की और हर चुनौती का सामना किया। उनकी सफलता किस्मत से नहीं बल्कि मेहनत से मिलती है। और ये बात सही है, सपना सिर्फ आप देखते रहेंगे तो वो पूरा कभी नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हर इंसान के जिंदगी में मुश्किलें आती हैं। कई बार मेहनत के बाद भी मनचाहा परिणाम नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम रुक जाए। कल्पना चावला जी ने हर चुनौती का सामना मुस्कुरा कर किया। उन्होंने कभी हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। यही सोच हमें भी अपनानी चाहिए। सीखना कभी बंद मत कीजिए। डिग्री लेने के बाद भी उन्हें पढ़ाई नहीं छोड़ी, नई तकनीकी सीखी, रिसर्च की, खुद को लगातार बेहतर बनाया। आज के युवाओं के लिए ये बहुत ही बड़ी सीख है। अगर हम रोज कुछ नया सीखते रहेंगे तो समय के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। जो सीखना छोड़ देता है वह आगे बढ़ना भी छोड़ देता है। आज मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया हमारे जिंदगी का हिस्सा है। इनका सही उपयोग बहुत जरूरी है, लेकिन अगर पूरा समय सिर्फ मोबाइल पर ही निकल जाए तो सपने पूरे नहीं होते। कल्पना चावला जी ने अपना समय सीखने, पढ़ने और अपने लक्ष्य पर काम करने में लगाया। यही कारण है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी तक पहुंची। समय सबसे कीमती संपत्ति है, जो इसका सम्मान करता है वही आगे बढ़ता है। और कहते हैं ना श्रोताओं, आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है। जब लोग कहते थे कि यह मुश्किल है, तब भी कल्पना चावला जी कहती थी, मैं कोशिश करूंगी। उन्हें खुद पर भरोसा था। आज के युवाओं को भी अपनी क्षमता पर विश्वास रखना चाहिए। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। और इस समाज में लड़का और लड़की बराबर है। कल्पना चावला जी ने साबित किया कि सपनों का कोई लिंग नहीं होता। उन्होंने उन सभी धारणाओं को तोड़ा जिनमें कहा जाता था कि कुछ क्षेत्र सिर्फ पुरुषों के लिए हैं। आज हर बेटी को यह विश्वास होना चाहिए कि अगर वह मेहनत करेगी तो किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकती है। और हर बेटे को यह सीखना चाहिए कि बेटियों को बराबर का सम्मान और अवसर देना हमारी जिम्मेदारी है। अपने देश और अपनी पहचान पर गर्व कीजिए। अमेरिका में रहने के बावजूद कल्पना चावला जी ने कभी अपनी भारतीय पहचान नहीं छोड़ा। वे हमेशा अपने स्कूल, अपने देश को याद करती थी। आज की पीढ़ी को भी अपनी भाषा, संस्कृति और देश पर गर्व होना चाहिए। दुनिया में कहीं भी जाए पर अपनी जड़ों को कभी मत भूलिए और मुश्किलों से कभी भागिए मत। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सब कुछ कठिन लगने लगता है, लेकिन वही लोग इतिहास बनाते हैं जो मुश्किल समय में भी हिम्मत रखते हैं। कल्पना चावला ने हर चुनौती का डटकर सामना किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि समय से भागने के बजाय उनका समाधान खोजिए। सफलता केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। कल्पना चावला की उपलब्धियां सिर्फ उनकी अपनी नहीं थी। उनकी सफलता ने लाखों बच्चों, खासकर बेटियों को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी। सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में भी उम्मीद जगाए। और इसी शो में युवाओं के लिए विशेष संदेश, अगर आपके पास कोई सपना है तो आज से ही उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। डेली थोड़ा थोड़ा सीखिए, अपनी गलतियों से सीखिए, समय का सम्मान कीजिए, माता पिता और शिक्षकों का आदर्श कीजिए, अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखिए। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, कभी यह मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों ने लिखा है जिन्होंने कहा मैं कोशिश जरूर करूंगा। कल्पना चावला ने हमें सिर्फ अंतरिक्ष की कहानी नहीं दी, बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाया। उन्होंने सिखाया कि सपने देखो, मेहनत करो, सीखते रहो, डरो मत और कभी हार मत मानो। तो याद रखिए, कल्पना चावला का शरीर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सोच, उनका साहस और उनकी प्रेरणा आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जीवित है। तो श्रोताओं, बस बने रहिए आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ इस महिला मंच शो में। एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम फिर से कनेक्ट होंगे आप सभी के साथ और करेंगे ढेर सारी बातें और लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत।

तो दोस्तों, एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक अभी हमने लिया था और हम फिर से हाजिर हो गए हैं आप सभी का फेवरेट शो लेकर महिला मंच, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला जी के बारे में और उनका तीसरा विचार बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही खूबसूरत है, तो मैं आप सभी तक साझा करना चाहती हूँ। मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, मैंने अपना हर पल अंतरिक्ष के लिए जिया है। दोस्तों, सोचिए कितना बड़ा जुनून होगा जब कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी एक सपने के नाम कर देता है। आज हम छोटी छोटी प्राणियों में अपना लक्ष्य बदल देते हैं, लेकिन कल्पना जी ने कभी अपना सपना नहीं बदला। उनकी मंजिल सिर्फ एक थी, अंतरिक्ष। लक्ष्य बदलते रहेंगे तो सफलता भी दूर होती जाएगी। साथियों, आपने कभी सोचा है आपका सपना क्या है? क्या आपने उसके लिए मेहनत करनी शुरू की थी या सिर्फ सोच रहे हैं? एक दिन करेंगे। याद रखिए, सपने इंतजार नहीं करते। जो काम आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है, उसी में अपना भविष्य खोजिए। कल्पना चावला जी को बचपन से ही हवाई जहाज पसंद थे। लोगों ने कहा लड़कियां पायलट नहीं बनती, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। दुनिया क्या कहती है, इससे ज्यादा जरूरी है आपका दिल क्या कहता है। अगर कल्पना चावला जी दूसरों की बातें सुन लेती तो शायद आज इतिहास में उनका नाम नहीं होता। और उनका पांचवा विचार, डर होना गलत नहीं, डर के कारण रुक जाना गलत है। अंतरिक्ष मिशन आसान नहीं होते, हर उड़ान में खतरा होता है, लेकिन कल्पना चावला जी ने कभी डर को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने खतरों को समझा, लेकिन अपने सपनों को उससे बड़ा रखा। और उनकी सीख, साहस का मतलब डर का खत्म होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना। तो दोस्तों, इसी प्रेरणादायक कहानी के साथ अब हम लेते हैं आपसे जाने की अनुमति। मिलेंगे आपको एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा।
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी दोस्त हाजिर हूँ आपका अपना पसंदीदा शो लेकर। जी हाँ, हेलो फरमाइश। वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 3:08 और इस खूबसूरत सफर में आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत सिंपल सा काम करना है, हमारे ऑफिशियल नंबर पे आपको कॉल करना है। एवरीवन, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896 और हमारे साथ हमारी कॉलर भी जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप भी चाहते हैं अपनी पसंद का कोई गाना सुनना तो बिना किसी देरी के कॉल लगा सकते हैं। दोस्तों, कभी ना कभी कोई गाना हमारी पसंद का नहीं होता है, कभी कभी कोई गाना हमारी पसंद का नहीं होता है बल्कि हमारी कहानी बन जाता है। दो लाइनें बजते ही और अचानक कोई चेहरा याद आ जाता है। हाँ, कोई पुरानी बात, कोई खूबसूरत सा पल और चेहरे पर अपने आप स्माइल आ जाती है। बस इन्हीं यादों और मुस्कुराहटों को लेकर हाजिर हूँ मैं आपका अपना शो हेलो फरमाइश लेकर। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं अपने अगले फर्स्ट कॉलर से। कौन हमारे साथ जुड़े हैं? हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: नमस्कार
0: जी, अपना नाम बताइएगा।
1: मोहम्मद हनीफ पांची का नाम, जिला अमरोहा
0: जी। बताइएगा कैसे हैं आप? सो जी, एफएम परिवार में सभी लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आप बताइएगा आपके परिवार में सब ठीक है?
1: ठीक है मैम, ठीक है।
0: आज बताइएगा, आपने हमें कॉल किया है सर, क्या फरमाइश है आपकी?
1: मैम, इतना ट्राई करने के बाद आपका नंबर लगता है।
0: हाँ जी,
1: बहुत बिजी नंबर जाता है।
0: तो फाइनली देखिए, आपने मेहनत की, आपका कॉल भी लग गया है। कैसा लगा पहले ये बताइए, मेहनत करने के बाद जब कॉल लगता है तो उसकी खुशी कैसी होती है, बताइए जरा हमें और हमारे श्रोताओं को भी बताइए।
1: मैम, खुशी तो बहुत होती है, अगर फोन ना भी लगा ना मैम प्रोग्राम आपका तो सुनकर बहुत खुशी हो जाती है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बताइएगा आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: रंग फिल्म का गाना कोई सा भी सुनवा दो मैम।
0: अच्छा ठीक है, हम रंग फिल्म का एक गाना सुनवाते हैं, आपको भी पसंद आएगा। आपने हमें कॉल किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी रंग और करेंगे आपसे भी बातचीत। ये अवसर आपको भी मिल रहा है, बिना किसी देरी के आप भी कॉल लगाइएगा।

0: देखिए दोस्तों, प्यार तो आपको हो गया है फिर मुरादाबाद 89.6 से, और ये हमें कैसे मालूम है बताते हैं हम आपको। ये हमें मालूम हुआ आपके फोन कॉल्स के जरिए, क्योंकि इतना कॉल आप सब करते हैं, इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत संदेश अपने पहुंचाते हैं, हर कार्यक्रम में आप एक्टिव रहते हैं, तो उससे साफ साफ जाहिर होता है कि आप एफएम मुरादाबाद 89.6 से बहुत प्यार करते हैं। और अभी आपने सुना ये फ्रॉम द मूवी रंग मूवी से बहुत ही प्यारा सा ट्रैक, कुमार सानू और साथ में अलका याग्निक जी की खूबसूरत आवाज में खूबसूरत सा गाना। अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: कुछ घरों में भी बेटों के बराबर बेटियों का सम्मान नहीं होता, कुछ घरों में आज भी बेटों के बराबर बेटियों का सम्मान नहीं होता, हर पिता इस रिश्ते से अनजान नहीं होता, जिसने पाला है अपनी बेटियों को बड़े ही नाजों से, जिसने पाला है अपनी बेटियों को बड़े ही नाजों से, वो खुद ही जानता है कि कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब लाइनें हैं आपकी, एंड ये रियलिटी भी है।
1: मैं मरोहा ग्राम ढकिया चमन से नेहा बात कर रही हूं।
0: नेहा जी, ये खूबसूरत पंक्तियां आपने बोली हैं, सच में दिल जीत लिया आपने।
1: जी
0: जी, बताइएगा कैसे हैं आप।
1: मैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, आप कैसे।
0: हाँ जी नेहा जी, मैं भी ठीक हूँ, आप बताइएगा कैसा मौसम है आपकी तरफ।
1: मैम धूप निकल रही है, अच्छा मौसम हो रहा है वैसे तो।
0: अच्छा, आज मॉर्निंग का वेदर तो बहुत ही खूबसूरत था ना सुबह में।
1: जी मैम, बारिश हो रही थी।
0: हाँ जी, बताइए नेहा, आपने कॉल किया है आज, क्या सुनना चाहते हो आप।
1: मैम सॉन्ग सुनना है मुझे, गल सुन दिलदारा।
0: ओके, और ये ट्रैक किन को डेडिकेट करना चाहती हैं आप।
1: हमारी सिस्टर बैठी है इल्मा।
0: ओके,
1: और फुफेरी सिस्टर है आसिफा।
0: अच्छा, आपकी कजन सिस्टर भी, सब लोग साथ में बैठे हैं।
1: जी मैम, और सभी सुनने वाले।
0: ठीक है, तो सुनवाते हैं प्यारा सा गाना, नेहा आप एंजॉय कीजिएगा।
1: जी मैम,
0: या
1: बाय
0: बाय। तो चलिए नेहा की पसंद पर सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक, और एवरीवन आप भी चाहते हैं आपकी पसंद का कोई भी गाना आप ले हो यहाँ पर ऑन एयर, या फिर आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं वो ट्रैक, तो बिना किसी देरी के ना आप मुझे कॉल लगाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी आपके साथ है और ये खूबसूरत गाने सुन रहे हैं आप अपने ही पसंद के। और एवरीवन, अगर आपने अभी रेडियो ऑन किया है तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी कोई अपना फेवरेट गाना सुनना चाहते हैं ना, तो बिना किसी देरी के आप मुझे कॉल लगा सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: कहते हैं कि पोल हेलो फरमाइश में आज शामिल हो रही है हमारी, इसीलिए आज का दिन का नजारा भी है बड़ा ही प्यारा। तो खुशी जी आपकी शान में कबूल हो, मोहब्बत भरा सलाम हमारा। अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम सलाम, बताइएगा अपना नाम।
1: मैं जिला रामपुर ग्राम खेर टंड से वसीम अकरम बात कर रहा हूँ आपसे।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: अच्छे हैं मैम। आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम, जब दिन के 3 बजते हैं और खुशी जी प्रोग्राम में आ जाती हैं, और ऐसा ना हो कि हेलो फरमाइश ना सुने।
0: तो एवरी डे सुनते हैं आप?
1: जी डेली सुनते हैं मैम, आपका प्रोग्राम चलता रहता है और अपना काम में भी व्यस्त रहते हैं, तो यही टाइम अच्छा पास हो जाता है मैम 2 घंटे तक।
0: ओके, तो बताइएगा सर अभी राइट नाउ कहाँ पर हैं आप?
1: अभी गुड़गांव में है मैम।
0: अच्छा, गुड़गांव पर ही है। ओके, तो कैसा मौसम है आज गुड़गांव का?
1: मैम गुड़गांव में तो काफी तेज धूप हो रही है और गर्मी भी काफी हो रही है मैम।
0: अच्छी, गर्मी काफी हो रही है, तो इस मौसम में ख्याल रखिए, पानी पीते रहिए आप। और बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी?
1: जी मैम मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा।
0: जी बिल्कुल कहिएगा।
1: प्यार वो दरिया है जिसका साहिल नहीं होता, प्यार वो दरिया है जिसका साहिल नहीं होता, हर कोई मोहब्बत के काबिल नहीं होता। रोता वो भी है जो डूबा हो प्यार के दरिया में, रोता वो भी है जिसे प्यार हासिल नहीं होता।
0: बहुत खूब।
1: मैम मुझे कौन सा मान लेना, 4 तारों में नजर आए चेहरा तेरा, कुछ टाइप के बोले।
0: हाँ जी।
1: और भी मैं कहना चाहूंगा कि ना कर मोहब्बत ये दिन ये तेरे बस की बात नहीं, ना कर मोहब्बत ये दिन ये तेरे बस की बात नहीं, जो दर्द झेल सके वो हौसला भी तेरे पास नहीं। चले आते हैं लोग यहाँ हुस्न का जाल बिछा कर, पर वफा निभा सके ऐसी किसी की औकात नहीं।
0: तो ये खूबसूरत सा गाना। हाँ हाँ बिल्कुल, बताइएगा कौन है आपके दोस्त जिनका नाम आप लेना चाहते हैं?
1: जिला रामपुर ग्राम खेड से मोहम्मद कामिल
0: जी,
1: मोहम्मद तालिक परवेज, और जितने भी एफएम मुरादाबाद हेलो फरमाइश कार्यक्रम इस समय सुन रहे हैं, सभी के लिए मैम ये सॉन्ग डेडिकेट रहेगा।
0: ओके ठीक है, आप सभी के साथ एंजॉय कीजिएगा ट्रैक, आपके फ्रेंड्स और सुनने वाले तमाम श्रोता इस समय लाइव हमें सुन रहे हैं, तो ये गाना सभी मिलकर एंजॉय करते हैं। और एवरीवन आप भी पार्टिसिपेट कीजिएगा शो में, कॉल लगाइएगा बिना किसी देरी के। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: स्वागत है दोस्तों आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर शो का नाम हेलो फरमाइश है और ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है। आप भी इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना फेवरेट गाना सुनना चाहते हैं तो कॉल लगा सकते हैं या फिर किसी अपने खास को कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं आप तो वो भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा ये आपको गोल्डन टाइम मिला है तो इसे मिस ना करें आप, फटाफट से कॉल लगाइए। और अभी आपने ये गाना एंजॉय किया साधना सरगम साथ में उदित नारायण जी की आवाज में फ्रॉम द मूवी 2 अक्टूबर से। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, आपको भी आदाब। क्या नाम है आपका?
1: मैं ग्राम धनुपुरा जिला रामपुर से आपका निमिषोदा अनिस रहमान बात कर रहा हूँ मैडम आपसे।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: जी मैम अच्छा हूँ, अल्लाह का करम है, आप लोग दुआएं, आप बतलाइए आपके अपने परिवार में सब लोग कैसे हैं?
0: हाँ जी ऑल गुड, सब बहुत ही अच्छे हैं सर, आप बताइएगा। अभी तो आपके दोस्त का कॉल आया था है ना?
1: जी
0: हाँ जी, मैंने कहा अभी आपके दोस्त का कॉल आया था ना रामपुर से, वसीम जी का, एंड मोहम्मद कामिल जी हैं, आपका नाम लेते हैं ना?
1: जी
0: बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: उससे पहले कुछ कहना चाहता हूँ।
0: हाँ बताइएगा, क्या कहना चाहते हैं आप सब?
1: पल पल के रिश्ते का वादा है आपसे, पल पल के रिश्ते का वादा है आपसे, अपनापन कुछ इतना ज्यादा है आपसे, अपनापन कुछ इतना ज्यादा है आपसे, ना सोचना की भूल जाएंगे आपको, ना सोचना की भूल जाएंगे आपको, जिंदगी भर चाहेंगे यही वादा है आपसे, जिंदगी भर चाहेंगे यही वादा है आपसे।
0: बहुत खूबसूरत लाइनें हैं आपकी।
1: जी मैम आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की मोहब्बत है मैम।
0: हाँ जी बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप सब?
1: जी मैम सुनवा देना दोस्ती मूवी का सॉन्ग। जी ये दोस्ती तेरे दम से है और मैम कुछ नाम लेना चाहता हूँ।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बताइएगा।
1: जैसे ग्राम चुटांडी से मोहम्मद कामिल, काली परवेज, वसीम अकरम, और ग्राम और बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, गांधी समाधि से गफ्फार भाई, और साथ में मेरा बेटा है मोहम्मद हमदान, और साथ में खुशी मैम।
0: ओके ठीक है सर, थैंक यू। सुनवाते हैं गाना, आप एंजॉय कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ। तो चलिए रिफन सुनते हैं ट्रैक, एंड आपका भी कोई गाना सुनने का मन है अभी राइट नाउ तो फटाफट से कॉल लगाओ, कंजूसी बिल्कुल मत दिखाओ और ये प्यारा सा गाना सुनते जाओ।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: गुड आफ्टरनून एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। मैं आपके साथ आपके दोस्त आरजे खुशी, और वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 3:46। एवरीवन, आपके पास अभी बहुत सारा टाइम है, आप जल्दी से कॉल लगाइए, अपनी पसंद का गाना सुनते जाइए और अपने इस सफर को, अपने इस खूबसूरत पल को ना मेमोरेबल बनाइए अपने प्यारे से पसंदीदा गाने के साथ। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी सर, क्या वालेकुम सलाम, नाम बताइएगा अपना।
1: आगे बोलना है, मैं बोलूंगी
0: जी। बताइएगा कैसे हैं आप सर।
1: बढ़िया, आप सुनाइए।
0: हम भी ठीक हैं। बताइएगा आज क्या फरमाइश है आपकी।
1: मैम, मूवी का नाम है नमक हलाल।
0: हाँ जी,
1: इसके बोले के पागे घूरू पानी मेरा ना।
0: अच्छा ठीक है, ये गाना हम आपको सुनवा देते हैं जी। तो एवरीवन सुनते हैं किशोर कुमार जी की आवाज में ये खूबसूरत सा ट्रैक, लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी कॉल लगाइएगा, शायद आपका कॉल भी लग जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है। आप कोशिश तो कीजिए, जब आप कोशिश करेंगे तो आपको सफलता भी जरूर मिलेगी।

0: नमस्कार दोस्तों, ये सुना अभी आपने एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत किशोर कुमार जी की आवाज में। और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कहाँ से जुड़ी है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम लवीना है।
0: लवीना, कहाँ से बात कर रहे हो आप?
1: मैं से बात कर रही हूँ।
0: जी बताइएगा लवीना, कैसे हैं आप लोग?
1: ठीक, और आप कैसे हो?
0: हम भी ठीक हैं। आपने इतना सोच कर जवाब क्यों दिया? हम ठीक हैं। बताइए बताइए।
1: मुझे
0: हाँ बिल्कुल सुनवाएंगी लवीना, बताइएगा आपकी फैमिली में सब ठीक है?
1: हमारी फैमिली में सब ठीक है, और आपकी फैमिली?
0: हाँ जी ऑल गुड, सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। आप बताइए लवीना, आज कौन सा ट्रैक आप सुनना चाहते हो?
1: सॉन्ग सुनना है रश की कमर।
0: रश की कमर। ओके, सुनवाते हैं गाना, आप एंजॉय कीजिएगा।
1: थैंक यू मैम।
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए लवीना की रिक्वेस्ट पर सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक, मेरी रश की कमर। और अभी लौटकर वापस आते हैं, तब तक आप भी ट्राई कीजिए एवरीवन, आपका भी कॉल जल्दी से लग जाएगा। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट है, जिनका कॉल मंडे ट्यूसडे वेनेसडे लग चुका है, वो कृपया आज कॉल ना करें, अच्छा नहीं लगता है हमें बार बार रिपीट करें। एंड आप भी इंटेलिजेंट हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखिए और ये प्यारा सा गाना सुनते जाइए।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 4 बज चुके हैं राइट नाउ, और अभी आपने सुनाई ये ब्यूटीफुल ट्रैक नुसरत फतेह अली खान, साथ में राहत फतेह अली खान जी की खूबसूरत आवाज में खूबसूरत सा ट्रैक आपने एंजॉय किया। अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश। हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी मैम, आप मुझे सुन पा रहे
1: हैं
0: जी? बताइएगा क्या नाम है आपका?
1: अजी?
0: अपना नाम बताइएगा।
1: अनीता है।
0: अनीता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मुरादाबाद मंजूला से।
0: जी बताइए अनीता जी, कैसे हैं आप?
1: पहले तो नमस्कार आपको।
0: आपको भी नमस्कार। राधे राधे, बताइएगा।
1: राधे राधे,
0: कैसे हाल चाल है आपके? हाँ मैं ठीक हूँ मैम, आपके ब्लेसिंग्स हैं।
1: बढ़िया है हम भी।
0: जी बताइएगा अनीता मैम, क्या सुनना चाहते हैं आज आप?
1: मैं
0: यस
1: हम सुनना चाह रहे हैं, गाना सुनना चाह रहे हैं।
0: ओ हो हो, मिला या नहीं मिला?
1: मिला।
0: अच्छा आपको पता है वो लाल दुपट्टा ना हमारे पास उड़ कर आ गया है और हमने संभाल के रखा है।
1: अच्छा अच्छा, तो दे देना आप हमें।
0: नहीं अब नहीं देंगे, अब नहीं देंगे, अब हम रख लेंगे।
1: चाय पिलाएंगे, चाय पकौड़े खिला देंगे हम आपको।
0: ओ हो, अब तो देना पड़ेगा। अब आपने लालच हमें दे दिया है भैया चाय का। चलिए मैम सुनवाते हैं खूबसूरत सा गीत, आपने हमें कॉल किया, धन्यवाद आपका। जी तो चलिए ब्रीफन सुनते हैं मैम की पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक। इनका ये अंदाज मुझे बड़ा प्यारा लगा। मेरा नाम अनीता है एंड अनीता जी की पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी मुझसे शादी करूंगी। एंड उसके बाद हम करेंगे आपसे भी बातचीत। जल्दी से आप भी कॉल लगाओ, क्यों पीछे बैठे हो? हाँ

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी आपके साथ है। और अभी आपने एंजॉय किया ये अमेजिंग ट्रैक फ्रॉम द मूवी मुझसे शादी करोगी, अलका याग्निक और साथ में उदित नारायण जी की खूबसूरत सी आवाज में खूबसूरत गाना। अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश। हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: गुड इवनिंग मैम।
0: वेरी वेरी गुड इवनिंग, नाम बताइए अपना।
1: कपिलगढ़ से आप
0: जी बताइएगा, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी मैम, मैं मुरादाबाद से बोल रहा हूँ, गालन पढ़ते हैं दिल्ली वाली।
0: ओके, बताइएगा क्या करते हैं आप?
1: जी मैम अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ, अच्छा। जॉब भी साथ में करता हूँ।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आप वर्क भी करते हैं स्टडी भी करते हैं। बताइएगा आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: मेरी फरमाइश ये है मैम, हम आपके हैं कौन मूवी शो।
0: हाँ जी,
1: मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है।
0: ओके, चलिए सुनवाते हैं गाना आपको, आपकी पसंद का।
1: थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक कपिल की रिक्वेस्ट पर फ्रॉम द मूवी हम आपके हैं कौन। और लौटकर मैं वापस आती हूँ, तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, रेडियो किसी को बिल्कुल भी मत घुमाइए और मुझे बिना किसी देरी के आप कॉल लगाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: तो दोस्तों अभी आपने सुना एक खूबसूरत से गाना फ्रॉम द मूवी हम आपके हैं कौन। और दोस्तों अभी हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप इस बात से निश्चिंत रहिए क्योंकि हम आपके साथ रहने वाले हैं 5 बजे तक। और अभी समय हुआ है 4:16। बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब? हाँ जी अच्छा ही रहना चाहिए। बताइएगा आज आपने कॉल किया है सर, क्या फरमाइश है आपकी?
1: जी आज फिल्म का नाम है हमराज।
0: हाँ जी
1: गाने के बोले तुम मगर साथ देने का वादा करो।
0: ठीक है सर, ये गाना हम आपको सुनवा देते हैं।
1: जी नाम तो ले दूंगा कुछ।
0: हाँ जी बिल्कुल बताइएगा।
1: जैसे मेरे परिवार के सदस्य हैं मीना मुन्नी पवित्रा अजय आटल आकांत आकाश और नवाबपुरा मामा वास्ते हैं बबली अंजान और जितने भी सुनने वाले हैं सभी के साथ सुनना चाहता हूँ।
0: ओके ठीक है सर, आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं खूबसूरत संगीत। कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका।

0: दोस्तों अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी हमराज जो 1967 में आई थी महेंद्र कपूर जी की खूबसूरत सी आवाज में। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी है। हेलो फरमाइश। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग।
1: गुड इवनिंग,
0: कैसे हैं आप बताइएगा।
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे।
0: आई एम गुड, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। क्या नाम है आपका।
1: मैं नेहा बात कर रही हूँ, मुरादाबाद से।
0: जी बताइए नेहा जी, कैसे हैं फैमिली में आपके सब लोग।
1: सब बहुत अच्छे हैं फैमिली में।
0: ओके,
1: आज मेरी सिस्टर का बर्थडे है।
0: हाँ जी, क्या नाम है आपके सिस्टर का।
1: उनका नाम फरहा है।
0: फरहा जी को हमारी तरफ से भी जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक है जी। बताइएगा,
1: दूर रहती हैं वैसे तो वो
0: कहाँ पर रहती हैं।
1: आसाम, गुवाहाटी।
0: अच्छा, गुवाहाटी असम में वो रहती हैं। खूबसूरत वादियों में रहती हैं आपकी सिस्टर
1: जी। और उनकी जिठानी के ट्विंस बेबी हुए आज माशाल्लाह।
0: अरे वाह, क्या बात है, सोने पे सुहागा।
1: हाँ जी, भतीजे का भी बर्थडे।
0: हाँ, चप्पल सेलिब्रेशन बन गया है आज तो। पर आपको जाना चाहिए था, पर दूर भी है ना।
1: बहुत दूर है, दो दिन का तो सफर है मैम।
0: हाँ जी, कोई बात नहीं, जब वो आएंगी ना घर पर तो आप
1: आएंगी जब।
0: हाँ, सब पार्टी एक ही बार ले लेना। हाँ जी, बताइए नेहा जी, आज क्या सुनना चाहते हैं आप।
1: आज बर्थडे सॉन्ग चलाइए, डबल सेलिब्रेशन है।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल चलाते हैं फरहा जी के लिए जी। मोस्ट वेलकम नेहा जी। तो चलिए व्यूअर्स, सुनते हैं नेहा मैम की पसंद पर ये ट्रैक। उनके सिस्टर को डेडिकेट करते हैं हम फरहा जी को, आज उनका बर्थडे है। एंड दिलजीत

अंश की आवाज में बहुत ही अमेजिंग ट्रैक मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है उनके लिए, तो चलिए सुनवाते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं। तब तक आप भी ट्राई कीजिए, आपको भी कॉल जल्दी से लग जाएगा।

0: ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੀ ਬਣਾ
1: ਉਹ ਦੇ ਜੂਗਾ ਤੂੰ ਗਲਾਸ ਤੋਂ
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक DM कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। मोबिक किफायती रेट्स पर, स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
6: कोई मिल गया,
5: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक, गुड इवनिंग टू माय ऑल लवली लिसनर्स। वेलकम है आपका हेलो फरमाइश शो में। और अभी आपने सुना दिलजीत दोसांझ की आवाज में बर्थडे सॉन्ग, एंड उसमें पटियाला सूट सलवार की बात हो रही थी। तो पटियाला सूट सलवार ना अपने आप में बहुत ही सोना लगता है, एंड कोई भी कुड़ी पहने ओहो पूरी पटोला लगती है भाई। वैसे मुझे भी अच्छे लगते हैं इन्हों पटियाला सूट सलवार बहुत ही ज्यादा। और अभी हमने पटियाला सूट सलवार की बात ही कर रहे हैं तो हमारे पास कॉल भी आया है। कहाँ से कॉल आया है उन्हीं से बात करके जानते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाय
1: मैम, कैसी हैं आप?
0: वेरी वेरी गुड इवनिंग, आप बताइएगा। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हाल चाल है आपकी?
1: मेरे बहुत अच्छे हैं, और आपसे बात हो रही है तो और बहुत ज्यादा ही अच्छे हो गए।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: और मैं नौ से हूँ, बिलोंग करती हूँ, चंडीगढ़ में रहती हूँ।
0: चंडीगढ़ में रहते हैं और अभी हम पटियाला सूट सलवार की बात ही कर रहे थे।
1: जी जी बिल्कुल मैम
0: जी, बताइएगा क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम है।
0: ओके बताइएगा मैम कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ मैम, और आप बताइए कैसी हैं?
0: आई एम गुड, बहुत ही अच्छे हैं, एंड बहुत हैप्पी भी हैं आप?
1: जी जी मैम, वो तो खुशी नजर आ रही है।
0: हाँ, बात करने की ना बातों में जाहिर हो रही है वो खुशी।
1: हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: हाँ जी, और बताइएगा मैम, फैमिली में सब लोग ठीक हैं?
1: हाँ जी, सब लोग अच्छे हैं
0: जी। बताइएगा, आज आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, फर्स्ट टाइम आपने कॉल लगाया और आपका कॉल भी लग गया,
1: इसीलिए तो मुझे और ज्यादा खुशी हो रही है कि बिना मेहनत, लेकिन वो है ना कि मेहनत करके जो खुशी आती है उसकी अलग ही कुछ खुशी होती है,
0: वाइब होती है। हाँ, लेकिन पता है मैम क्या होता है, जब हम शिद्दत के साथ कोई काम करते हैं ना तो उसमें हमें सफलता मिल ही जाती है।
1: जी मैम, कोशिश करने से कभी हार नहीं होती। जो श्रोता बोलते हैं ना कि मेरी कॉल नहीं लगती, वो कोशिश करते रहे, उनकी कॉल लगेगी जरूर।
0: बिल्कुल, अब तो रोशनी जी ने बोल दिया है, तो एवरीवन जल्दी जल्दी ट्राई करो आप भी। जी बताइए, आज क्या सुनेंगी रोशनी आप?
1: मैं लॉन्ग ड्राइव करके सॉन्ग है, वही सुना दीजिए।
0: अच्छा, तो आपको पसंद है लॉन्ग ड्राइव पर जाना?
1: जी बिल्कुल पसंद है मैम, हम ज्यादा कोई घुमक्कड़ है ही नहीं शायद।
0: ओह ऐसा है? अच्छा,
1: मेरे तो ट्रिप बनते हैं साल में दो चार दिन के जो होते हैं दूरी के।
0: अच्छा, तो कैसा लगता है?
1: मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जीवन में अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है, जो हम यादें बना लेते हैं, जो घूम लेते हैं, बस वही जीवन है।
0: हाँ,
1: अगर हम सोचते बाद में करेंगे, बाद में कुछ नहीं होता, जो है सब प्रेजेंट है।
0: एग्जैक्टली फिर ना जो हम सोचते रह जाते हैं वो फिर बस सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो भी करना है वो बस कर दीजिएगा।
1: हाँ जी, तो इसलिए मैं कभी ये नहीं देखती, पैसे तो आने जाने हैं, वो तो फिर कमा लिए जाएंगे।
0: हाँ,
1: चाहे इसके लिए मुझे लोन लेना पड़े, लेकिन मैं जाती जरूर।
0: अरे अरे भैया, हाँ आप तो हमने मान लिया है कि आप सबसे बड़ी घुमक्कड़ हैं।
1: बहुत बड़ी घुमक्कड़ हूँ मैं, मतलब बहुत दूर दूर तक, जहाँ लोग सोचते कम है मैं वहाँ तक भी होके चली आती, और मैं खुद मतलब हैरान होती कि मैं इतनी दूर कैसे होके चली आ रही हूँ, क्योंकि मेरा वेट भी थोड़ा ज्यादा है।
0: अच्छा, कहाँ पर मतलब आप ट्रैवल करके आए, आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है मैम?
1: मैं दो बार, वैसे तो मुझे पहाड़ों पे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, मैं दो बार केदारनाथ गई हूँ घूमने।
0: ओके,
1: दर्शन करने के लिए। वहाँ पे मैंने ट्रैकिंग की है, जो मतलब शॉर्ट्स होते हैं वो ट्रैक किए हैं।
0: अरे वाह क्या बात है,
1: ऐसा लगता है कि अब तो गए भाई, अब गए, अब नहीं बचना।
0: पर अच्छा लगता है।
1: बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम अकेले तो जाते नहीं, हमारा मतलब जैसे होता है तो हम एक मतलब ग्रुप बना के ही जाते हैं।
0: हाँ, ग्रुप बना कर जाते हैं ना, तो उसमें मतलब अच्छा भी लगता है, साथ में घूमने में टाइम स्पेंड भी अच्छे से हो जाता है और सारी चीजें अच्छे से मैनेज हो जाती हैं।
1: हाँ जी, दो तीन बार तो मैं शिमला जा चुकी हूँ।
0: okay.
1: और अभी जो गई थी जनवरी में मैं, तो यहाँ गई थी मनाली में होके आई थी, वहाँ इतनी मतलब नजारा देखने लायक है, लोग मतलब इतना वीडियो में देखते हैं उससे ज्यादा खूबसूरत है, अगर
0: खूबसूरत
1: देखा जाए।
0: एग्जैक्टली राइट मैम, हम भी जाएंगे जरूर, अभी तक तो नहीं गई हूँ मैं एक्चुअली।
1: बिल्कुल, आप हमारे साथ चलेंगे ट्राई।
0: बिल्कुल डेफिनेटली, नेक्स्ट टाइम जरूर चलेंगे आपके साथ
1: जी। और अभी हम अप्रैल में गए थे उज्जैन, वहाँ भी हमने 5 दिन का ट्रिप था, उज्जैन गए फिर इंदौर गए, ओंकारेश्वर हमने दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, वहाँ भी मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: हाँ, जब हम ऐसी खूबसूरत स्पिरिचुअल जगह जाते हैं ना भगवान की स्थान पर, तो वहाँ की वाइब पॉजिटिविटी, वहाँ की एनर्जी अलग ही होती है।
1: हाँ जी, और अभी देखो बनाते हैं, जो कुछ थोड़ा व्यस्तताएं हैं, जो जैसे सब फ्री होंगे फिर एक फ्री बनाते हैं ठंडियों में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चाहिएगा ट्रैवल कीजिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, ब्यूटीफुल लाइफ है, एंड सब कुछ इतना खूबसूरत है, तो मुझे लगता है हर चीज का नजारा लेना चाहिए।
1: बिल्कुल मैम, जीवन यही है, एक पल का तो भरोसा नहीं जिंदगी का, फिर भी लोग पता नहीं क्या सोचा करते हैं बाहर निकले, कई बार घर वाले मना भी करे, सब भी निकलो।
0: अच्छा,
1: तो पहले से प्लान बनाती हूँ, पहले से करती रहती हूँ, करते कि मुझे जाना है जाना जाना, लेकिन लास्ट तक मान जाते हैं। शुरू शुरू तो मना ही करते हैं घर वाले, भैया मना करेंगे, मम्मी मना करेंगे कि नहीं जाना नहीं, लेकिन जब जाते हैं तब तक सब मान जाते हैं।
0: वो आपकी जिद के आगे फिर हार जाते हैं, कहते नहीं ये लड़की नहीं मानेगी, इसको भेज कर ही छोड़ो। चलिए बहुत अच्छी बात है मैम, अच्छा लगा आपसे बात करके। सुनवाते हैं प्यारा ट्रैक, आप इंजॉय कीजिएगा।
1: ओके मैम, बाय,
0: टेक केयर, मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, रोशनी जी से बात करके अच्छा लगा, और आप भी ट्रैवलिंग करने की शौकीन है ना, तभी मुस्कुरा रहे थे बैठे बैठे, मैं समझ गई हूँ आपकी इशारा। चलो अभी गाना सुनो, लौट कर आती हूँ मैं, फिर आप भी बातचीत करने का आपको भी मौका मिलेगा, आप भी कॉल लगाइएगा।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ए कुड़ी तो भाई यूपी वाली है, गुजरात वाली नहीं है। एंड ये अमेजिंग ट्रैक आपने सुना अभी जसवीर जसी की आवाज में। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ राइट नाउ कनेक्ट हुई है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, आपकी मीठी वाणी में दमदम बरसता है, आपकी मीठी वाणी में दमदम बरसता है, इसी सुनने को मेरा दिल तरसता है।
0: अरे वाह, क्या बात है। नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: अनु पांडे बात कर रही हूँ, गोंडा से।
0: अनु पांडे जी गोंडा से बात कर रही हैं, बताइए अनु कैसे हैं आप?
1: मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसी हो?
0: मैं बहुत हैप्पी हूँ। अच्छा लगता है जब आप सब प्यारे प्यारे श्रोता हमें कॉल करते हैं।
1: हमको भी बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करने के लिए।
0: ओह रियली अनु, बताइए अनु कैसे मौसम है आपकी साइड?
1: अभी तो मौसम बहुत सुहावना है, एकदम से सुहावना सुहावना मौसम है और धूप एकदम नहीं और हवा भी चल रही है।
0: अच्छा, फिर तो मौसम सच में बहुत प्यारा है। बताइएगा अनु, आज आपने कॉल किया है, कब से आप ट्राई कर रहे थे या फिर रैंडमली कॉल लगा आपका? मैंने कहा आप कब से कॉल लगाने का प्रयास कर रहे थे?
1: अभी ना, मैं 2 मिनट से।
0: अच्छा 2 मिनट से, 2 मिनट में आपका नंबर लग गया?
1: हाँ।
0: ओ वाह,
1: मैं आपको ना दिल से याद करती हूँ तो नंबर भी दिल से लगाती हूँ पर लग जाती है कॉल।
0: हाँ ये तो है, जब हम सच्चे मन से किसी को याद करते हैं ना तो फिर हाँ। चीजें हो जाती हैं अच्छी।
1: हाँ
0: हाँ, तो बताओ अनु आज आप क्या सुनोगे?
1: आज मैं गाना ना आपकी पसंद का सुनना चाहूंगी।
0: आज आप ट्रैक मेरी पसंद का सुनना चाहते हैं, कोई स्पेशल मोमेंट? कोई स्पेशल
1: जो भी आप सुनाते, मुझे सारे गाने पसंद आएंगे आपके पसंद के।
0: अच्छा ठीक है, तो हम अपनी पसंद का अनु आपको एक प्यारा सा ट्रैक यहाँ पर डेडिकेट करते हैं, ठीक है? आप एंजॉय कीजिएगा।
1: ओके
0: बाय, टेक केयर अनु।
1: बाय
0: बाय। तो चलिए अनु की पसंद का सुन, अनु ने कहा है कि खुशी जी आप अपनी पसंद का ट्रैक प्ले कर दीजिएगा। तो एक गाना है फ्रॉम द मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से, अरिजीत सिंह साथ में श्रेया घोषाल जी की बहुत ही अमेजिंग वॉइस में ये अमेजिंग ट्रैक आप एंजॉय कीजिएगा। मैं लौट कर वापस आती हूँ, तब तक आप भी ट्राई कीजिए, अलग अपना आजमाइए, बाकी कोशिश भी कीजिए, है ना? जब दोनों चीज़ें करते हैं ना तभी हमें सफलता मिलती है।

0: एंजॉय किया अभी आप सबने ये ब्यूटीफुल ट्रैक। और अभी बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ राइट नाउ कनेक्ट हुई है। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो,
1: हेलो।
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम तानिया फातिमा।
0: सानिया या तानिया?
1: नहीं, तानिया।
0: तानिया,
1: तानिया,
0: सानिया। ओके, सानिया और तानिया दोनों यू नो सेम मेरे को साउंड कर रहे थे, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रही थी, बट अभी मुझे पता चल गया है। बताइएगा आप क्या सुनना चाहते हो डियर। आज
1: आपको बताया था अभी मैंने,
0: चांदनी फिल्म से ये गाना आपको क्यों पसंद है, वजह बताइए।
1: मुझे पसंद है वो फिल्म, मुझको बहुत पसंद है।
0: अच्छा, कितनी बार देखी है आपने ये फिल्म?
1: फिल्म तो कई बार देख चुके हैं, दो से तीन बार देख चुके हैं, लेकिन हम फोन जो है ना ज्यादा यूज नहीं करते।
0: अच्छा, ओके, रेडियो ज्यादा सुनते हो आप। कैसे लगते हैं हमारे एफएम मुरादाबाद के शोज आपको बताइएगा।
1: और जितने सारे फीवर एफएम भी है, लेकिन उसको भी इतना नहीं सुन पाते हम जितना आपका प्रोग्राम सुनते हैं।
0: ओह, क्या बात है, ऐसा क्या खास है हमारे एफएम मुरादाबाद में जो आप इससे ज्यादा मोहब्बत करती हैं?
1: नहीं, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम सुनने को मिलते हैं।
0: ओके, तो आपका मॉर्निंग में ही रेडियो ऑन हो जाता है आपने बताया मुझे।
1: जी।
0: अच्छा, तो चलो सुनवाते हैं ये गाना, आप एंजॉय कीजिएगा।
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम डियर। तो चलिए रिफर सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक और लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी ट्राई कीजिए, आपका भी कॉल जल्दी से लग जाएगा। ये प्यारा से गाना सुनते हैं।

नाम लिख लिया, बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम।

0: आपका वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने ये प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी चांदनी सी, जॉली मुखर्जी की खूबसूरत आवाज। और अभी बात करते हैं अपने अगली कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो जी, वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका सर? जी बताइएगा सर, आप आज हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे शो की लास्ट कॉलर आप बने हैं, क्या फरमाइश है आपकी?
1: ओके,
0: अच्छा आप हमेशा ये वाले गाने की ही रिक्वेस्ट करते हैं। मैम आपसे नाराज हैं या फिर आप उनको ज्यादा खुश दिखना, मतलब यू नो चाहते हैं कि हाँ वो हैप्पी हैप्पी रहे?
1: दोनों में।
0: अच्छा, तभी आप इजहार करते रहते हैं समय समय पर। हाँ
1: जी
0: जी,
1: गाना फजी हमारा होल्ड पर रख गया था।
0: अच्छा ठीक है सर,
1: कॉल आई थी, मतलब कॉल तो करो खुशी जी, गाना सुनो।
0: अरे वाह क्या बात है, चमन मैम हमें ये मिस करती हैं, याद करती हैं, हमें जानकर बहुत अच्छा लगा।
1: सुन नहीं हमारी आवाज भी, सुन नहीं है वो, आपकी भी सुन नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और मुस्कुरा भी रही होंगी इस वक्त सुनकर।
1: हाँ मुस्कुरा भी रही होंगी
0: जी। तो सर सुनवाते हैं गाना, कुछ कहना चाहते हैं आप?
1: हाँ हमारी इनायत सनाया सुबान अंसारी, हमारी वाइफ है चमन,
0: ओके
1: दोनों काशी मलवी।
0: ठीक है सर, आपकी दोस्त एंड फैमिली के साथ सुनवाते हैं गाना, आप इंजॉय कीजिएगा। तो चलिए व्यूअर्स सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, बीवी नंबर वन टाइटल ट्रैक हम प्ले कर रहे हैं। और इसी गाने के साथ अब हम लेते हैं जाने की अनुमति, आपसे मुलाकात करेंगे टुमारो मॉर्निंग, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और आज आपको कॉल नहीं लगा है तो कोई बात नहीं है, आपके पास अभी सैटरडे तक ये मौका है, आप ट्राई कीजिएगा, आपका कॉल भी लग जाएगा। ठीक है व्यूअर, अभी गाने इंजॉय करो आप।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
3: काम किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40

का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। ये कोर्स इन शिक्षकों को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने की योग्यता और प्रमाण पत्र दिलाने में एक अहम माध्यम साबित होगा। इसमें शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। ऑनलाइन नीलामी pmmementos.gov.in पर 31 अक्टूबर तक चलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज थिम्फू में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत भूटान की प्रगति और समृद्धि के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री ने श्री तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत ई वाहन और सतत परिवहन की दिशा में भूटान को सहयोग कर रहा है। भारत ने आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों और अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार अलकायदा के बीच सीधा संबंध बताया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से 11 सितंबर के हमलों के पीड़ितों को याद करने का आह्वान किया। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी पर आधारित संयुक्त आतंकरोधी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7:30 बजे से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाए हुए है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: कभी कभी बदलाव की कहानी बहुत बड़ी नहीं होती, ना उनमें बड़ी बड़ी बातें होती हैं, ना कोई चमकदार मंच, बस एक परिवार होता है, कुछ जरूरतें होती हैं और उन जरूरतों के बीच एक मदद का हाथ।
1: किसी के लिए वह मदद बनती है एक सुरक्षित छत, किसी के लिए परिवार के भोजन का सहारा और किसी के लिए मुश्किल परिस्थितियों के बीच आर्थिक सहायता और सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अवसर।
0: उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य भी यही है कि जरूरतमंद परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे

सबसे पहले तो मैं सुशील कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हम लोग एक लोकतांत्रिक देश भारत में रह रहे हैं, जिसका मूल उद्देश्य है लोकतांत्रिक गणराज्य अपने सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, और सुरक्षा में खाने पीने रहने और विकास के लिए सभी को समान और जो समाज के वंचित वर्ग हैं उनको बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सरकार द्वारा आप देखेंगे ICDS डिपार्टमेंट द्वारा पोषण की सुविधाएं दी जा रही हैं, और स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य की योजनाएं हैं संचालित हो रही हैं, और लोग बेशक हो जाते हैं तो उनके लिए मनरेगा है, आवास दिया जा रहा है, बुजुर्गों के लिए पेंशन दिया जा रहा है, और भी जैसे कृषि सम्मान निधि है, कामधेनु योजना है, नंदनी योजना है, जिसके लाभ उठा के लोग पशुपालन कर सकते हैं। तो समाज के सभी वर्गों के लिए बुनियादी सुविधाएं सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई हैं। अब जैसे जो भी सरकारी पैसा खर्च होता है, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो,

0: के लिए स्थानीय स्तर पे लोगों को रोजगार मिलता है। तो सरकार अपने नागरिकों के लिए हर एक विकास के लिए हर एक कदम उठाने को तैयार है, बस देवरिया के लोगों को आपका सहयोग चाहिए प्रशासन के साथ। आप कोई भी समस्या हो जो जायज हो और यदि कोई भी पात्र लाभार्थी छूटा हो तो आप अपने ग्राम प्रधान से, अपने वार्ड मेंबर से, ईओ से, बीडीओ से संपर्क करके उन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। जगह जगह जनसेवा केंद्र हैं, वहां उचित जानकारी प्राप्त करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपनी पात्रता के अनुसार लाभान्वित हो सकते हैं। आशा है कि आप अपना सशक्तिकरण कर देश को सशक्त बनाने में अपना योगदान देंगे। जय हिंद।
1: सोचिए एक परिवार के लिए अपना घर क्या होता है, सिर्फ ईंट, सीमेंट और चार दीवारें नहीं, घर होता है सुरक्षा, घर होता है सुकून और सबसे बढ़कर अपने होने का एहसास।
2: इसी सोच के साथ पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवास योजना जैसी पहले महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जहां जरूरतमंद परिवारों को पक्के और सुरक्षित आवास की दिशा में सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है।
1: और जब किसी परिवार को अपने घर का सहारा मिलता है तो उसके साथ बदलती है उस परिवार की उम्मीद।
2: हमारे साथ मौजूद लाभार्थियों की कहानी में भी आवास और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े सवाल और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। अब हम सुनते हैं उनकी अपनी आवाज में।
3: नमस्कार, मैं हूँ हेमा। आज हम उपस्थित हैं देवरिया के महाराजपुर गांव में और आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं एक कार्यक्रम के तहत जिसका नाम है विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चल रही हैं और किन लोगों को इसका लाभ मिल रहा है ये जानने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इस महाराजपुर गांव में आए हुए हैं। हमारे साथ एक भैया उपस्थित हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे।
4: जितेंद्र
3: जी, कौन से गांव से हैं?
4: महाराजपुर गांव से।
3: जी, आपको सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाओं का जो है लाभ मिल रहा है?
4: एक घर मिला है, हमारी पेंशन आता है सरकार की तरफ से।
3: राशन कार्ड में आपका नाम है क्या?
4: जी
3: जी। और जॉब कार्ड भी है?
4: जॉब कार्ड भी है
3: जी। अच्छा, घर बनने से पहले आपकी क्या स्थिति थी और अब क्या बदलाव आए हैं?
4: हम घर बनने से हमको बहुत लाभ मिल गया है, अरे आराम मिलता है, मतलब हमारा घर बहुत अच्छा बन गया है, नहीं तो हम लोग पलान में रहते थे।
3: जी जी। विकलांग के आधार पर आपको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिल रहा है, तो पहले क्या स्थिति थी और अब क्या बदलाव आए हैं?
4: पहले स्थिति थी कि हम लोग बारिश से भीग जाते थे, रहने का कोई सुविधा नहीं था, तो अब सरकार द्वारा मिला है
3: जी।
4: अब हमारा घर बन गया है, अब घर में हम रहते हैं
3: जी। और राशन कार्ड में भी आपका नाम है?
4: जी नाम जी। है सरकार की तरफ से काम भी मिलता है, तो पापा हमारे करते हैं।
3: अच्छा, सरकार द्वारा इन सभी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है, तो पहले जो है क्या स्थिति थी और अब क्या बदलाव आए हुए हैं?
4: पहले हम लोग के पास गरीबी था, अब सरकार की तरफ से मिलता है तो थोड़ा हम लोग खा पी लेते हैं
3: जी। अब अच्छी स्थिति हो गई
4: है? अच्छी स्थिति हो गई है मुख्यमंत्री योजना के लिए
3: जी। अच्छा, आपके गांव में भी यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये इन सभी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो आप उन लोग को क्या बताएंगे?
4: हम यही बतलाएंगे कि कागज पत्र बनवा लीजिए और जाकर भर दीजिए, मिल जाएगा आप लोग को भी। जैसे हमको मिला है, हमको रहने के लिए सुविधा मिला है, हम उन लोग को भी बतलाएंगे जाकर
3: जी। इन सभी योजनाओं का आपको लाभ मिल रहा है तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे?
4: सबसे ज्यादा जोगी जी को धन्यवाद देंगे। और हमको पहले अनाज उनाज खरीदना पड़ता था, राशन खरीदना पड़ता था, अब उतना नहीं खरीदना पड़ता है, सब्जी उब्जी खाली खरीद कर खाते हैं हम लोग। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम, हमारे जैसे विकलांग आदमी को लोग सुविधा दिए हैं।
3: तो अभी आपने देखा कि हम लोग देवरिया के महाराजपुर गांव में आए हुए हैं और भैया से बातचीत हुई और इन्होंने इतनी अच्छी तरह से बताया और क्या क्या योजना का लाभ इनको मिल रहा है, जैसे कि इनको मुख्यमंत्री आवास योजना जो विकलांगता के तहत मिला हुआ है और इनका राशन कार्ड है और जॉब कार्ड बना हुआ है, तो इन सभी योजनाओं का लाभ इनको मिल रहा है और ये बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। ये जो हम लोग

0: कार्यक्रम चल रहा है। विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी के तहत हम लोग इस गांव में पहुंचे हुए थे और भैया के द्वारा बताया गया कि कौन कौन सी योजनाओं का ये लाभ उठा रहे हैं। मैं थी आपके साथ हेमा, नमस्कार।
1: किसी के लिए पक्का घर शायद हमारे लिए सामान्य बात हो, लेकिन जिस परिवार ने वर्षों तक असुरक्षा या अभाव के बीच जीवन बिताया हो, उसके लिए अपना घर मिलना एक नई शुरुआत जैसा होता है।
2: और यही वह जगह है जहां सरकारी योजना और आम नागरिक की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ती हैं। विकास की एक और बुनियादी जरूरत है भोजन, क्योंकि किसी भी परिवार के लिए सबसे पहली चिंता होती है घर की रसोई चलती रहे।
1: इस दिशा में राशन कार्ड पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण व्यवस्था है। सरकार की खाद्य सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं के जरिए पात्र परिवारों को आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है।
2: और इस योजना का महत्व शायद वही बेहतर समझ सकता है जिसके घर की रसोई तक इसका सीधा असर पहुँचता है।
1: एक कार्ड एक व्यवस्था, लेकिन किसी परिवार के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में एक जरूरी सहारा।
2: और यही वजह है कि विकास को केवल बड़े निर्माण कार्यों से नहीं बल्कि इस बात से भी समझना चाहिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ आम परिवार के जीवन में कितनी आसानी और सम्मान के साथ पहुंच रहा है।
1: दिव्यांग जन की सहायता हो, आवास का सहारा हो या फिर राशन के माध्यम से खाद्य सुरक्षा, इन सभी योजनाओं के पीछे एक साझा उद्देश्य दिखाई देता है, जरूरतमंद तक मदद पहुंचाना।
2: उत्तर प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के अलग अलग वर्गों को जोड़ने, उनकी जरूरतों के अनुसार सहायता उपलब्ध कराने का लगातार प्रयास किया जा रहा है।
1: और इन योजनाओं की सबसे खूबसूरत तस्वीर किसी रिपोर्ट में नहीं बल्कि लाभार्थी के चेहरे पर दिखाई देती है। किसी के लिए सरकार की योजना एक सुविधा है, लेकिन किसी और के लिए वही सुविधा जिंदगी का सहारा बन जाती है।
3: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद,

आज वाली इवनिंग है आज रीना के साथ कनेक्ट है और ये शाम मस्तानी। देखिए ये शाम तो मस्तानी होने वाली है क्योंकि आज रीना के साथ आप इवनिंग मस्ती शो में कनेक्ट हो गए हैं। और समय की बात करूं तो 5:00 यानी कि 27 मिनट हो चुके हैं और इस सुहानी शाम में ट्रैफिक में अगर आप फंसे हुए हैं या फिर आप ऑफिस में बैठकर रेडियो सुन रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि भैया अब घर निकलते हैं, लेकिन घर निकलने से पहले एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि आपने क्या करना है, रेडियो का जो वॉल्यूम है ना वो हाई रखनी है। घर बैठे बैठे चाय के चुस्कियों के साथ और ट्रैफिक की शोर के साथ और साथ ही साथ आज रीना की आवाज आप सभी तक पहुंचने वाली है, यानी कि अगले 2 घंटे तक हम करेंगे आप सभी के साथ ढेर सारी बातें। क्योंकि देखिए भैया सुबह से हम इंतजार करते रहते हैं कि जैसे शाम होएगा हम घूमने के लिए बाहर जाएंगे या फिर ऑफिस से निकलेंगे तो दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे लगाते हुए एंजॉय करते चलेंगे, क्योंकि ये शाम है ना फ्री वाला टाइम होता है। हर कोई अपने घर की तरफ लौटते हैं और बहुत से तैयारियां करते हैं और घर में चाय की चुस्कियां लगती हैं और बहुत से कहते हैं भैया चलो यार वॉक पे निकल लेते हैं, लेकिन थम जाइए अभी धूप बाहर है। आज के अगर टेम्परेचर की बात करूं मुरादाबाद में तो 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है मुरादाबाद का। तो अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, बस 6:30 के समथिंग या 6 बजे के बाद आप बाहर घूमने वॉक करने जा सकते हैं। अभी फिलहाल आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए, करेंगे ढेर सारी बातें, देश दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि आप आरजे रीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई है। हरियाणा की छोरी हंजी मेका किथे ध्यान है जी, अब रेडियो की तरफ अपना ध्यान बढ़ाइए और गाना सुनिए बहुत ही शानदार वाला, उसके बाद कनेक्ट होती है।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: सेवा से संकल्प जगे, संकल्प से हर जन जुड़े।
3: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।
2: स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और सुशासन, प्रदेश सरकार आज हर क्षेत्र में रच रही है नया इतिहास।
3: तो आइए आप भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बनिए, प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनिए।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: हेलो जी, गर्द वाली इवनिंग है। आज रीना के साथ आप कनेक्टेड श्रोताओं, और समय की बात करूं तो 5:37 हो चुके हैं और आज की तारीख यानी कि 17 सितंबर, और आज बहुत ही स्पेशल डेज मनाए जाते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल बात करने से पहले हम ट्रैफिक की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई, अभी सड़क पर ट्रैफिक उतना ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी, लेकिन शाम का वक्त और भी ज़्यादा आगे बढ़ते बढ़ते सड़कों पर गाड़ियों की संख्या भी बढ़ने लगेगी। खासकर ऑफिस और दुकान बंद होने के बाद लोग अपने घर की तरफ निकलते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है शाम का ट्रैफिक। अगर आप बुद्ध बाजार, अमरोहा गेट, मंडे चौक, गुलेटी चौराहे की तरफ से जाने वाले हैं, पीएससी की तरफ से आप निकलने वाले हैं, तो एक्स्ट्रा टाइम लेकर निकलिएगा। इनफैक्ट तो रेलवे स्टेशन की तरफ से भी, क्योंकि शाम को इन इलाकों में ना गाड़ियों की आवाजाही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और हाँ, जल्दबाजी पहुँचने के चक्कर में रॉन्ग साइड आपने गाड़ी नहीं चलानी है। ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा हो तो पेशेंस रखिए, क्योंकि घर पहुँचना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सुरक्षित पहुँचना। तो मुरादाबाद वालों, शाम की सड़क बिजी होने वाली है, आप भी थोड़ा रेडी रहिए और रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और वॉल्यूम गाड़ी में जो आप रेडियो सुन रहे हैं ना, उसका भी बढ़ा लीजिए। चाहे आप घर पर सुन रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, या फिर कोई भी आप काम कर रहे हैं, रेडियो के जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे ना, तभी आपको मज़ा आने वाला है। इसीलिए रेडियो के वॉल्यूम बढ़ाइए और आराम से घर की तरफ निकलिए। और अगर आप ट्रैफिक में हो भी इस वक्त, आपको लग रहा है कि मैं जिस रूट पर जा रहा हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो आपको सिंपल सा काम करना है, कुछ और मेहनत वाला काम बिल्कुल नहीं बताऊंगी। बस आपने अपना फ़ोन निकालना है और डायल करना है नंबर है 9837896896 पर आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि हम इस रूट पर हैं और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ताकि उस रूट पर जो भी आने जाने वाले हैं वो थोड़ा सा उनका समय बच सके, और अपने घर या फिर वो जहाँ भी जाने वाले हैं उनका समय बच सके। चलिए, फिलहाल बात करेंगे आज का डे विश्वकर्मा पूजा, यानी कि आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये डेज आखिरकार क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, और साथ ही साथ अपनी मुरादाबाद के बारे में भी बात करने वाले हैं। आखिरकार लोकल की बात ना हो भैया, ऐसा कैसे हो सकता है ना? तो इसीलिए बात तो करना बनता है, लेकिन उससे पहले गाने भी तो सुनना बहुत ज़रूरी है ना जी, क्योंकि गाने होते हैं आप सभी की पसंदगी, है ना? तो इसी के साथ रेडियो के वॉल्यूम अगर आप बढ़ाएंगे तभी आपको मज़ा आएगा, अदरवाइज नहीं आने वाला है जी। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं।
1: कभी सोचा है, हमेशा जैक के साथ जिल ही क्यों जाती है हिल पे? जैक के साथ जॉनी भी तो जा सकता है।
2: It's a unisex song.

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

हेलो जी, गर्द वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ। और समय की बात करूं तो 5:48 हो चुके हैं और आज की तारीख 17 सितंबर। आज मनाया जाता है विश्वकर्मा दिवस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये आखिरकार ये पूजा किसकी और क्यों की जाती है? हिंदू मान्यताओं के में यानी कि भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का शिल्पकार और वस्तुकार माना जाता है। मान्यता है कि उन्होंने दिव्य नगरों, भवनों और अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया था, इसीलिए आज के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा के साथ साथ औजार, मशीनें, वाहन और काम में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की भी पूजा की जाती है। और इस दिन खास तौर पर कारीगर, इंजीनियर, बढ़ाई, लोहार, मैकेनिकल, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, मशीन से जुड़े कर्मचारी और व्यापारी अपने काम के साधनों की पूजा करते हैं, क्योंकि देखिए सभी विश्वकर्मा द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ है। और आपके घर में चाहे गाड़ी हो, चाहे जो मिस्त्री का काम करते हो, जो फैक्ट्री में काम करते हो, जो सिलाई करते हो, हमें मतलब आज अपने मशीनों की, हर घर में जो भी है आपके घर में, बाइक समझ लीजिए, गाड़ी भी तो भैया भगवान ने दिया ना, उन्होंने तो आइडिया दिया आप सभी को बनाने के लिए। तो आज क्या आपने इनकी पूजा की है या नहीं की है? अगर अभी तक आप वंचित है, आपने नहीं की है, तो घर जाकर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप इनकी पूजा करेंगे तो ये आपकी सुरक्षा बढ़ाएगी। ठीक है, तो आज औजारों की पूजा की जाती है। तो आई होप कि आप सभी ने विश्वकर्मा पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया होगा, क्योंकि ये इनके बिना ना अस्त्र शस्त्र देते और ना ही हम ये छत के नीचे बैठे होते, और ना ही हम टू व्हीलर गाड़ियों में हम घूमते। तो आज उनको शुक्राना करिए और यूं ही आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए। ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। चलिए फिलहाल एक गाना सुनते हैं, बहुत ही शानदार वाला, राफ्ता राफ्ता। बाकी आप गाइए, आप भी तो गा सकते हैं ना, क्योंकि आपकी आवाज भी बहुत

अरे अरे क्या बात है, बीड़ी जलाइले। फिलहाल बीड़ी जलाइले नहीं जी आज, क्योंकि आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का हैप्पी वाला बर्थडे है जी, क्योंकि आज वो हो गए हैं 76 यानी 76 वर्ष के हो गए हैं। तो आज नगर निगम में यानी कि दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। फिलहाल यानी कि आशीर्वाद का दिया, और बात करेंगे अपने मुरादाबाद में यानी कि शाम के समय आज कितने दिए प्रज्वलित होने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भैया आप सभी से एक ही बात कहना चाहेंगे, बात कहने से पहले कुछ मैसेज है। हेलो जी, ये हमारे पास मैसेज आता है, विक्की सागर जी पहुंचाते हैं। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सर, हरियाणा वालों कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं? और कॉफी पी लीजिए। अरे बिल्कुल, इसकी तो बहुत ज्यादा नीड है मुझे कॉफी की। और अगले मैसेज की बात करूं तो शालिनी सिंह हमारे साथ कनेक्ट होती हैं और ये लिखती हैं भैया कि और दिन के अगर देखा जाए तो आज स्टेशन की तरफ थोड़ा हल्का फुल्का ट्रैफिक जाम है। थैंक यू सो मच बताने के लिए। और अगले मैसेज की बात करूं तो अगला मैसेज आता है हमारे पास, क्या कहते हैं ये,

0: सलमान अख्तर जी कनेक्ट होते हैं बिजनौर से और इनका कहना है कि मैडम जी मुझे मुरादाबाद से नजीबाबाद जाना है और देखिए आप जा रहे हैं तो जाम की बात है, तो आप जब भी निकलते हैं, आप गाड़ी से निकलते हैं या फिर आप बाइक से निकलते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपने फ़ोन में लोकेशन डालिए। लोकेशन डालेंगे तो आपको ग्रीन पट्टियाँ दिखाई देती है अक्सर, और उसी ग्रीन पट्टियों के बीच में अगर आपको रेड पट्टी दिखाई देती है कुछ दूर या थोड़ी सी रेड चिन्ह आती है, तो आप समझ जाइए कि अगर थोड़ी सी रेड चिन्ह आपको दिखाई देती है तो इसका मतलब हल्का फुल्का आपको जाम मिलेगा। अदरवाइज अगर आपको दिखता है बहुत ही ज़्यादा रेड लाइन, अगर रेड पट्टी जो काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगी, तो आप समझ जाइएगा कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम मिलने वाला है। बस इतना ही ध्यान रखना है आपने और वेरी सिंपल आप फिर आसानी से अपने घर पहुंच सकते हैं।
1: काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लाली, काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लाली।
0: अगले मैसेज की बात करूं तो बबली अनजान जी, गीता कश्यप जी, हेलो वाली प्यारी प्यारी, हेलो वाली गुड इवनिंग रीना मैम, वेरी गुड इवनिंग जी। और फिलहाल अगले मैसेज की बात करूं तो जय श्री राम रीना जी, क्या हाल चाल है आपके? बहुत अच्छे जी मैं, और ये हमारे साथ कनेक्ट होते बबलू सैनी ग्राम कल्याणपुर पीतल नगरी मुरादाबाद से। चलिए फिलहाल हम बात करते रहेंगे और आज मुरादाबाद में शाम के समय कितने दिए प्रज्वलित होने वाले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा
2: और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार वर्षा और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को विकसित भारत जी ग्राम जी योजना विकसित गांव के निर्माण में कैसे योगदान दे सकती है इसका पता लगाने का निर्देश दिया है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हो। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। इससे शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों को और उपहारों की नई नीलामी प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। ऑनलाइन नीलामी pmmementos.gov.in पर 31 अक्टूबर तक चलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज थिम्पू में भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत भूटान की प्रगति और समृद्धि के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री ने श्री तोब्गे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ई वाहन और सतत परिवहन की दिशा में भूटान को सहयोग कर रहा है। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी पर आधारित संयुक्त आतंकरोधी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7:30 से नई दिल्ली में खेला जाएगा। भारत पहले ही 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
4: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
5: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
6: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी।

0: चुके हैं। इनफैक्ट अभी बाहर देखा जाए तो उजाला ही उजाला होगा, 7 बजे आराम से दिया प्रज्वलित करिएगा। और उनकी यानी कि सेहत की, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करिएगा, और वैसे ही जैसे अब काम करते हैं वैसे हमारे देश के लिए आगे भी काम करते रहें। और इसी के साथ और भी ढेर सारी बातें करेंगे आज के बारे में, और वेदर अपडेट की बात करने वाले भैया। जैसे कि सुबह रात देखा जाए तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और रात को ना लाइटें भी भाई अलग ही ड्रामा कर रही थी, कभी आ रही हैं कभी जा रही हैं कभी आ रही है, और ऊपर से मच्छर पूरी फौज और पूरी बारात के साथ कान में भिनर भिनर। ऊपर से जब भी नींद आए तो एक इंजेक्शन लगा देते, वो डंक ऐसा लगाते हैं ना कि भैया जो गहरी नींद में भी होता है ना वो भी उठ जाता है कि भैया उठ ले अब तो, क्योंकि मच्छरों की टोली आ गई है। तो इस मच्छरों की टोली को क्या किया जाए? और जैसे सुबह 5 बजे के बाद देखा जाए तो वेदर चेंज, हल्की हल्की यानी कि ठंडी ठंडी हवाएं, और ऊपर से काले काले घनघोर बादल, और बारिश छमाछम। और साथ ही साथ वेदर की इसी पर बात करने वाले हैं कि क्या वेदर अपडेट रहने वाला है नहीं रहने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल मुरादाबाद के टेम्परेचर की बात करूं तो 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। चलिए फिलहाल गाना एंजॉय करती है और उसके बाद लौट कर आते हैं।
1: दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: सेवा से संकल्प जगे, संकल्प से हर जन जुड़े।
3: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।
2: स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और सुशासन, प्रदेश सरकार आज हर क्षेत्र में रच रही है नया इतिहास।
3: तो आइए आप भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बनिए, प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनिए।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: अगर आपको शानदार
1: ये शाम शानदार आय हाय क्या बात है जी, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है। और समय की बात करूँ तो 6:19 हो चुके हैं और आप अर्जुरीना के साथ कनेक्ट है। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया ही था कि हम बात करने वाले हैं वेदर अपडेट के बारे में, क्योंकि सुबह कभी कभी जिंदगी में ना कुछ आप करने की कोशिश करते हैं और जब वो आपका काम नहीं होने वाला होता है ना, तो रुकावटें ना कहीं से आपको मिल ही जाती है। अब सुबह की बात कर लीजिए, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बारिश आएगी और एकदम झमाझम बारिश। और अब ये कहा जा रहा है कि 21 तारीख तक छुटपुट यानी कि बारिश की संभावना जताई जा रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि छुटपुट बारिश कैसी होती है, यानी कि बिन बुलाए बारिश आ सकती है, आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाला है, एकदम आपको सरप्राइज मिल जाएगा कि हम आ गए हैं तुम भी खुश हो जाओ, ऐसा वाला आपको सरप्राइज मिलेगा। और साथ ही साथ बारिश छुटपुट का मतलब होता है कि बस थोड़ी देर के लिए आएगी झमाझम करके और फिर एकदम छूम अंतर हो जाएगी, जैसे कि आई हो और चली गई हो। पता ही भाई, सच बताओ तो मुरादाबाद की अगर बारिश की बात करूं तो 2 सेकंड के लिए तो ऐसा लगता है भैया पूरी सड़कें गीली हो गई है, उसके बाद जब बाहर जाके देखो 5 मिनट के अंदर तो सड़कें ऐसी लगती कि बारिश आई नहीं है। मतलब मानो कि आपने एक सपना देख लिया हो और सपने में बारिश का आनंद लिया हो आपने, इस तरीके से बारिश होती है कभी कभी। तो आज की तारीख यानी कि 17 सितंबर और समय यानी कि 6:21। तो आप सोच रहे हो ना कि किचन में जाने के लिए और सबसे बड़ी झंझट ये होती है कि यार खाना क्या बनेगा, सुबह से लेकर शाम तक बस एक ही परेशानी, खाना क्या बनेगा, आज रसोड़े में क्या है। फिलहाल हम एक गाना ओल्ड इज गोल्ड गाना प्ले करने वाले हैं आप सभी के बीच, यानी कि लिखा जो खत तुझे हो तेरी याद में हजारों रंग के, आगे नहीं आता गाइस मुझे और ये मोहम्मद रफी जी की आवाज में गाना सुनेंगे आप। तो बस आपसे यही पूछना है मुझे कि आपने किसी के लिए खत लिखा है क्या? वाकई में अगर लिखा है तो दिल पर हाथ रख के मैसेज कर दीजिए ना, नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज करना है कि आपने किसी के लिए खत लिखा है। और अब ये मत सोचिए कि सिर्फ कॉपी पर ही खत लिखना होता है, बल्कि व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज भेजते हैं तो वो भी खत लिखना ही होता है। तो आप फटाफट मैसेज करके बता सकते हैं, हर किसी का पहला क्रश होता है या फिर और किसी के पास भी हम लेटर लिखते हैं, जरूरी नहीं है कि जिससे प्यार मोहब्बत करते हैं उसी के लिए लेटर लिखा जाए। पहले के टाइम में चिट्ठियां लिखते थे, अपना सेहत के बारे में बताते थे, शादी ब्याह होता था उसके लिए चिट्ठियां लिखते थे, तो लेटर लिखते थे। तो अभी आपने सिर्फ ये बताना है कि अगर आपने कभी लेटर लिखा है तो वो दिन आपको दोबारा याद दिलाने वाली हूँ मैं, जल्दी जल्दी मैसेज करके बताओ। फिलहाल ये गाना सुनते हैं मोहम्मद रफी जी की आवाज में, चलिए जी।
2: रंग के फूल नजारे बन गए, लिखे जो खत तुझे

0: क्या बात है जी, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है। और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है ऑल न्यू ऑन एफ एम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और भी ढेर सारी बातें करेंगे आप सभी के साथ, बस आप कनेक्ट रहिए आरजे रीना के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पर बात गानों के साथ साथ बातों का भी तड़का लगता है और देश दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में भी आपको पता चलता है। और साथ ही साथ आज भी बहुत जगह गणेश विसर्जन किया गया है, तो आप सभी को एक गाना आपने सुना होगा ना, करनी की गागर, यानी कि जब आप देख भी रहेंगे कि कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जा रही है, अफड़ा तफड़ी मच जाता है, वो सिर्फ कर्मा लौट कर आता है, क्योंकि हम पूजा करने से पहले तैयारियां तो बहुत अच्छे से करते हैं, तैयारियां ऐसे करते हैं मानो कि पूरी दुनिया की हमें खुशी मिल गई हो। विसर्जन की बात आती है तो हम ऐसे ही जाते हैं, ऊपर से ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही पटक देते हैं कि मानो हमने उनको कभी घर पे लाए ही ना हो, हमने पूजा की नहीं हो। तो ये जो कर्मा है जो हम करते हैं वो वापस लौट कर आते हैं। तो जब आप गणेश विसर्जन करें तो जिस तरीके से आप उनको लेकर आए थे उसी तरीके से विसर्जन करें, साफ स्वच्छ जल में विसर्जन करें। अगर आप भैया बाहर अगर ना ही विसर्जन करें तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने घर में बड़ा टब रखिए, उसके अंदर आप विसर्जन करिए, अच्छे से विसर्जन करिए, और जो पानी है गमलों में डालिए, और जो मिट्टी होता है यानी कि गणेश विसर्जन के बाद, उस मिट्टी को एक गमले में डालिए और उसमें एक मनी प्लांट लगाइए। देखिए आपको दिल अंदर से तसल्ली होगी कि मैंने अच्छा काम करा है। तो गणेश जी का विसर्जन ऐसे ही नहीं कर देना है, क्योंकि अपने कर्मा पे भी बहुत ध्यान रखना है। हम हवा हवाई में कह देते हैं यार यार कुछ नहीं होता है, जब वो कल लौट कर रिटर्न मिलता है ना, तो वो ऐसा खतरनाक वाला मिलता है कि हम समझ नहीं पाते हैं। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है, और भी ढेर सारी बातें करते रहेंगे आपके साथ। और एक मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। हेलो मैम, गुड वाली इवनिंग है, इवनिंग मिस्ती शो में आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं? मैम चाय पी लीजिए, शाम मस्त हो रही है, ओल्ड इज गोल्ड बिंदास गाने प्ले कर रही हो आप। आज विश्वकर्मा जयंती, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच जी, सभी की तरफ से हम आपको बोल देते हैं हार्दिक शुभकामनाएं। और ये कुछ लाइनें लिखती हैं, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश सेवा का जज्बा यूं ही दिल में बनाए रहे, भारत माँ का नाम हमेशा ऊंचा रहे, ईश्वर से यही दुआ है दिल से हमारी, मोदी जी की उम्र और लंबी सेहत रहे प्यारी, एक कदम पर मिले सफलता हर पर खुशियां अपार, जन्मदिन पर मिले देशवासियों का प्यार, दीर्घ आयु हो नरेंद्र मोदी जी की, स्वस्थ रहे हर पल, यही है आज दिल से हमारे शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे नरेंद्र मोदी जी। तो देखिए आज मैं आप सभी से एक सवाल और करना चाहूंगी, एक तो चिट्ठी की बात की है मैंने, साथ ही साथ क्या आपको पता है नरेंद्र मोदी जी का नाम फुल नेम क्या है? आपने वो मैसेज करना है जी, नंबर है 9837896896, क्योंकि उनका नाम सिर्फ नरेंद्र मोदी जी नहीं है, उनका पूरा नाम अगर आपको पता है तो आप मैसेज करके बताइए। आखिरकार अपने देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका फुल नेम पता होना चाहिए, तो जल्दी मैसेज करिए, देर बिल्कुल नहीं करना है आपने। फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: दिल में मेरे आज क्या है?
5: क्या है?

0: पोल संख तुम्हारे ऐसे पैसा ढपक ढपक लगे हुए हजाम हजाम कर
1: बिल्लू हमार जैसे। बाकी आप बताइएगा जी। हेलो, गुड वाली इवनिंग है जी, आज रीना के साथ अब कनेक्ट है। और समय की बात करूं तो 6:41 हो चुके हैं। गाने में इतने मग्न हो गए कि समय का ध्यान ही नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं, आज रीना है आप सभी तक यानी कि समय बताने के लिए जी। बस आप बिंदास होकर आज रीना के साथ इवनिंग शो में कनेक्ट रहे। और साथ ही साथ यूपी के सभी जितने भी सरकारी स्कूल है, हर जगह की सरकारी स्कूल में अब भैया मिड डे मील में जो खाना मिलता है, यानी कि मिड डे मील लंच वाला जो खाना होता है, उसमें घर जैसा अब स्वादिष्ट खाना मिलेगा। यानी कि पहले के टाइम में क्या होता था कि सिर्फ खिचड़ी, नमकीन चावल जिसको तहरी बोलते हैं बहुत से, वो मिलते थे। लेकिन अब मॉडल ज़माना, तो मॉडल तरीके से खाना मिलना चाहिए ना। यानी कि अब बच्चों को हर रोज़ स्वादिष्ट खाना के साथ साथ कभी दाल चावल, दाल राजमा, छोले चावल, रोटी दाल, कभी पूरी कासी फल के सब्जी के साथ, यानी कि और साथ ही साथ खीर भी इनफैक्ट बच्चों को अब मिड डे मील खाना में मिलता है। तो अब घर जैसा खाना मिड डे मील स्कूल में भी मिलने का आपको आराम से, ये नहीं कि डेली बस आपको तहरी और खिचड़ी मिलेगा। हर जगह जगह अब हर चीज़ें डेवलप हो रही है, चेंज हो रहा है, तो वैसे भी यूपी में तो और भी सीन्स हो ही रहा है जी। चलिए फिलहाल इसी के साथ कुछ मैसेजेस हैं उनको भी हम शामिल करेंगे। हमारे पास क्या मैसेज आता है, रीना जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैंने भी किसी के लिए 15 साल पहले यानी कि एक खत लिखा और उस खत को यानी कि उसने भी रिटर्न दिया और वो खत आज भी मैंने संभाल कर रखा हुआ है। आय हाय क्या बात है। लेकिन इन्होंने भैया ये कहा है कि मैं अपना नाम नहीं बता सकता हूँ। ओहो कोई बात नहीं जी, अगर आप नाम नहीं बता सकते हैं तो आपने मैसेज पहुँचाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट आपने कम से कम मैसेज तो पहुँचाया ना। अगले मैसेज की बात करूँ तो ये हमारे साथ दिलीप जी कनेक्ट होते हैं दिल्ली से, और इनका कहना है कि मुरादाबाद का जो रेडियो है भैया उसके लिए धमाल है, शब्द नहीं है। मतलब दिल्ली में रहते हुए भी मैं एफएम मुरादाबाद सुनता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बल्कि यहाँ पर रेड एफएम, बिग एफएम, मिर्ची सब कुछ है, लेकिन एफएम मुरादाबाद सुनना बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि आपने भी पूछा है कि खत लिखना, तो मैं तो मॉडल जमाने का बच्चा हूँ। अच्छा जी, मॉडल जमाने के बच्चे हैं आप। तो इन्होंने कहा है कि मैंने, जैसे कि आपने पूछा था कि व्हाट्सएप पे भी आप जो मैसेज करते हो वो भी बता सकते हो, तो मैंने व्हाट्सएप पर जो मेरी, मतलब ये कह रहे कि मैं उनका भी नाम नहीं लूंगा, ओके, लेकिन उन्होंने अपना नाम बता दिया है। तो उन्होंने बोला है कि मैंने उनके लिए मैसेज बहुत लंबी चौड़ी डाली थी, उसके बाद उन्होंने भैया ऐसा ही लंबी चौड़ी मैसेज डाली है कि वो मैसेज का मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, लेकिन आज तक उसको कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, पढ़ नहीं पाया पूरा। तो गलत बात है सर, पढ़िए उसको, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आपने इतनी लंबी चौड़ी पूरा लेटर लिखा है तो उनकी तरफ से जो आया है वो भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ संभाल के रखने से काम नहीं चलेगा, क्या पता उन्होंने क्या लिखा है उसके अंदर, एक बार पढ़ के देखिए तभी ना आपको पता चलेगा। चलिए फिलहाल आज मैंने एक और पूछा है आप सभी से सवाल कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का आज हैप्पी वाला बर्थडे है, तो आप सभी अपने घर के में यानी कि घर के बाहर भी दीप प्रज्वलित करने वाले हैं, हर घर में यानी कि आशीर्वाद का दिया प्रज्वलित करने वाले हैं। और मैंने आज आप सभी से पूछा था कि नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम क्या है, तो हमारे पास ललिता जी का मैसेज आता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्या बात है जी, ये होता है राइट आंसर। और अगले मैसेज की बात करूँ तो विक्की सागर जी आप कंफ्यूज हो गए हैं, पहले आपने नरेंद्र लिखना था फिर दामोदर दामोदी लिखना था, तो उन्होंने दामोदर नरेंद्र मोदी लिख दिया है। कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी मोटी गलतियां चलती रहती है। ठीक है जी, फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक, और उसके बाद हम लेकर आएंगे आप सभी के लिए कड़क म्यूजिक। कड़क म्यूजिक के साथ साथ और भी बातें हैं, बस आप रेडियो को सुई मत घुमाइएगा वरना मजा किरकिरा हो जाएगा आपका, सही बता रहे हम।
2: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
3: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
5: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
4: UPITSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

भाई क्या बात है जी, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है। लेकिन साथ ही साथ तेरे मोहल्ले के साथ साथ अब हम आपके मोहल्ले में लेकर आ गए हैं कड़क म्यूजिक, जिसको आपने सुनना है और हमें महसूस करके बताना है कि भैया गाने का क्या नाम है। बहुत ही शानदार वाला गाना है, आप सभी ने सुना हुआ गाना है, पुराने मूवी का गाना है, ओल्ड इज गोल्ड आप सब बोलते हैं ना, तो यही ओल्ड इज गोल्ड वाला गाना है जो हम आप सभी के बीच प्ले करने वाले हैं। बस आपने क्या करना है जी, हमें मैसेज करके फटाफट यानी कि जल्दी जल्दी बताना है कि आज का कड़क सवाल आखिरकार क्या होने वाला है। बस थोड़ा सा आपने सोचना पड़ेगा, ज्यादा नहीं सोचने का है, ठीक है जी, क्योंकि ज्यादा दिमाग पर प्रेशर नहीं देने का। बस आराम से आप सोचिए और हमें मैसेज करिएगा कि आखिर का जो म्यूजिक प्ले करने वाले आप सभी के बीच गाने का क्या नाम है। तो चलिए अब रेडी है, आई नो कि आप रेडी ही है भैया।

चलिए जी, जल्दी ले सोचिए कि आखिरकार जो मैं म्यूजिक प्ले कर रही हूँ गाने का क्या नाम है। आपने व्हाट्सएप करना है, नंबर है 9823789689 पर मैसेज करना है। चलिए एक बार और सुनिए।

सुनिए और आई नो आप समझ गए होंगे और महसूस करिए कि आखिरकार जो मैंने म्यूजिक प्ले किया है कौन से गाने का है। और साथ ही साथ आज एक और ताजी अपडेट मैं आप सभी के साथ लेकर कनेक्ट होंगी और आप सभी के जो मैसेज है वो भी हम शामिल करेंगे। भैया टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बस आपने आराम से होले होले धीरे धीरे आराम से महसूस करना है बिल्कुल पेशेंस के साथ, क्योंकि पेशेंस के साथ किया हुआ काम हर काम सक्सेस हो जाता है। तो चलिए एक बार और हम भी रिपीट करते हैं आप सभी के बीच ये म्यूजिक।

कितना शानदार गाना है जी, अपा फिर मिलेंगे। लेकिन हम तो मिल गए हैं आप सभी के साथ, फिर से कनेक्ट हो गए हैं। अर्जुनीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई। भैया समय की बात करूं तो 6:56 हो चुके हैं, और अभी अगर मुरादाबाद की बात करूं तो हनुमान वाटिका और राम वाटिका को बहुत अच्छे से सजाया गया है, दीप प्रज्वलित किया जाएगा। यानी कि इसलिए क्योंकि आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का हैप्पी वाला बर्थडे है, तो उन उस उपलक्ष्य में यानी कि राम वाटिका और हनुमान वाटिका को बहुत अच्छे से डेकोरेशन कर दिया गया है, सजा दिया गया है, और दीप प्रज्वलित आप जाकर देख सकते हैं, शामिल हो सकते हैं इसमें, क्योंकि देश के नागरिक है और उनके लिए तो कुछ करना बनता ही है। साथ ही साथ आज मैंने म्यूजिक प्ले किया है आप सभी के लिए, एक और लास्ट मौका तो मिल ही जाना चाहिए ना सोचने के लिए कि आखिरकार म्यूजिक क्या है। चलिए हम प्ले करते हैं, जल्दी जल्दी सुनिए और महसूस करिए।

भैया जैसे सुबह बारिश की झमाझम हुई थी ना, वैसी मैसेज की झमाझम हो गई है। बस थोड़ा और कष्ट करने हैं अपने, जिन्होंने सोच रहे हो कि भैया हम भी मैसेज कर ले, तो बिल्कुल आपके पास टाइम है, कर लीजिए जी। एक वंस अगेन एक बार और हम प्ले करते हैं।

0: कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा। सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम में एक प्रेस वार्ता में श्री वैष्णव ने कहा कि कई बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार बारिश और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को विकसित भारत जी राम जी योजना विकसित गांवों के निर्माण में कैसे योगदान दे सकती है, इसका पता लगाने का निर्देश दिया है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हों। श्री चौहान ने अधिकारियों को योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया है। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। ये कोर्स इन शिक्षकों को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने की योग्यता और प्रमाण पत्र दिलाने में एक अहम माध्यम साबित होगा। इसमें शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इस समय दिल्ली और बिहार सहित देश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूर्ण हो गई है। इससे पहले विदेश मंत्री ने तोगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारतीय वाहन और सतत परिवहन की दिशा में भूटान के साथ सहयोग कर रहा है। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी पर आधारित संयुक्त आतंक रोधी अभियान में 2 आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया गया। अफगानिस्तान ने भारत के साथ तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में दिल्ली में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत पहले ही 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है, आर्जरीना के साथ आप कनेक्ट है श्रोताओं। और समय की बात करूँ तो 7:06 हो चुके हैं और आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं भैया, कि आप सभी के प्यारे प्यारे जो मैसेज आ गए हैं ना। आखिरकार आज मैंने आप सभी से पूछा है कड़क म्यूजिक, लेकिन कड़क म्यूजिक के साथ साथ अगर आप मैच देखने के दीवाने हैं तो आज तीसरा मैच है भारत वर्सेस अफगानिस्तान के बीच, यानी कि दो मैच हमारी टीम इंडिया जीत चुकी है, 7 से हरा दिया है अफगानिस्तान को। लेकिन आज ये देखना है कि तीसरे मैच में किस टीम का पलड़ा भारी होने वाला है, ये देखना है। साथ ही साथ चलिए एक म्यूजिक जो प्ले किया था मैंने, एक बार और हम प्ले करते हैं आप सभी के बीच।

0: अब देखना ये है भैया कि किनका हमारे पास राइट मैसेज आया, एक वॉइस मैसेज है। पहले तो उन्हीं का मैसेज आया, तो वही हम आपको सुनवाते हैं।
1: मैम ये वो वाला गाना है, कौन दिशा में लेके चला रे बतुहिया।
2: अब ना लाइए पहले।
0: दानिश जी यानी कि कनेक्ट हो गए हैं हमारे साथ, तो आप बनते हैं हमारे शो के विनर, इवनिंग मस्ती शो के विनर बनते हैं आप। इसी के साथ और भी प्यारे प्यारे मैसेज उनको शामिल करते हैं। ललिता जी का भी राइट आंसर आया है भैया। साथ ही साथ नवनेश कुमार जी कनेक्ट हो गए हैं दयानाथपुर काठ मुरादाबाद से, कौन दिशा में लेकर चला रे बतोहिया। आरजे रीना जी वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सर। अगले मैसेज की बात करूं तो अंसार हुसैन जी दौलतबाग मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं। आरजे रीना जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गाने बड़े ही मजेदार प्ले कर रही हैं आप, और आपकी बातें भी गुड वाली लगती हैं जी। थैंक यू सो मच जी, आपका प्रोग्राम आपकी प्रोग्राम की प्रशंसा जितनी करे उतनी ही कम पड़ जाती है। थैंक यू जी। और ये भी राइट आंसर के साथ कनेक्ट होती है। बबली अनजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी कनेक्ट हो गई हैं राइट आंसर के साथ। विभू कश्यप जी कनेक्ट होते हैं राइट आंसर के साथ। विक्की सागर जी भी राइट आंसर के साथ कनेक्ट होते हैं भैया। अगले मैसेज की बात करूं तो मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी, सैयद शारिक अली जी, मेराज अंसारी और ये बोलते हैं गुड इवनिंग रीना जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं? आपका शो इवनिंग मस्ती सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और राइट आंसर होता है मेरे प्यार की उम्र हो इतनी। नहीं नहीं नहीं सर, गलत गलत बात है, बिल्कुल जरा सर गलत है। ये वाला म्यूजिक नहीं है, ये वाला म्यूजिक है। ये आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं, गलतियां तो होती रहती हैं, आखिर इंसान है मैं। चलिए फिलहाल एक और मैसेज की बात करूं तो हेलो रीना मैम, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। आई एम नेहा फ्रॉम मुरादाबाद। एक रिक्वेस्ट है आपसे आज मेरी, मेरी प्यारी सिस्टर का आज हैप्पी वाला बर्थडे है, तो आपके सिस्टर को हमारी रेडियो की टीम की तरफ से हैप्पी वाला बर्थडे और एक गाना प्ले कर दीजिएगा। लग रहा है भैया मुझे जाने नहीं देंगे आज यहाँ से, है ना? कोई बात नहीं जी, हम प्ले करेंगे आप सभी के लिए गाना, एक बर्थडे स्पेशल गाना प्ले करते हैं। और इसके साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। कल मिलेंगे, अप्पा मुलाकात करेंगे कल जी। तब तक के लिए इंतजार करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू हुआ सेवा संकल्प अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाराणसी से वडनगर तक सेवा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर प्रदेश भर में हुए विविध आयोजन। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों और जनप्रतिनिधियों ने प्रज्वलित किया आशीर्वाद का दिया। मुख्यमंत्री ने भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर मार्जिन मनी ऋण पोर्टल का किया शुभारंभ। योजनाओं के लाभार्थियों को वितरित किए चेक। और राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने महोबा में ईवीएम वेयर हाउस और स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाराणसी से सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री की कर्मभूमि वाराणसी से उनकी जन्मभूमि वडनगर जाने वाली सेवा संकल्प बाइक यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 250 बाइकों पर सवार 500 युवा इस यात्रा को पूरा करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह यात्रा ऊर्जा से भरपूर होकर सकारात्मक भाव के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत, विरासत और विकास, सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ बढ़कर अपनी छाप छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि आज देश क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई मिशन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है।
1: आज भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में तमाम यूनिट भारत के अंदर स्थापित करने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है, उसका प्रोडक्शन करना प्रारंभ किया है। भारत क्वांटम कंप्यूटिंग में काम कर रहा है। भारत का एआई मिशन सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी के एक हब के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। रोबोटिक के क्षेत्र में भारत की सफलता नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है।
0: कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि तकनीक को आम नागरिक की जिंदगी का हिस्सा बनाकर जीवन आसान बनाना ही प्रधानमंत्री का विजन है।
2: कोई भी सोच भी नहीं सकता था कि हर नागरिक तक बैंक की सुविधा पहुंचेगी, लेकिन यह करिश्मा भी भारत में पहली बार यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया। यूपीआई से लेन देन यह हो सकता है, इसकी भी किसी ने कल्पना नहीं। अब एक सेकंड में यूपीआई के माध्यम से आप यहां से चाहें दूसरे स्थान पर पैसा भेजना सहज तरीके से भेज सकते। साथियों, मोदी जी ने टेक्नोलॉजी को बड़े शहरों और दफ्तरों से निकालकर आज आम आदमी की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाने का काम किया है।
0: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 12 वर्षों में हर दिशा में अपनी सोच को स्थापित किया है और आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आज देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। सेवा संकल्प अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आज शाम आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेशभर में जनप्रतिनिधियों, लाभार्थियों ने भी घरों, प्रतिष्ठानों और विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर दीप प्रज्वलित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आज से शुरू हुए सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अहिल्याबाई घाट पर 76 बटुकों ने मां गंगा का पूजन किया। सामने घाट पर

0: गंगा को 76 मीटर लंबी चुनरी अर्पित की गई। लखनऊ में वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने वृहद सफाई अभियान का आरंभ किया। बस्ती में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी ने सेवा सुशासन पखवाड़े की शुरुआत की। इसी क्रम में आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि श्री मोदी का 25 वर्ष का राजनीतिक सफर देश के विकास और सुशासन से जुड़ा रहा है।
1: ये 25 वर्ष बहुत विकास युक्त और भ्रष्टाचार मुक्त हुए हैं। जन कल्याण की अनेकों योजनाएं लागू हुई हैं। हम लोगों के जीवन में बदलाव आया है। जिस व्यक्ति के कामों से, विकास कार्यों से देश दुनिया में फर्क पड़ा हो, हमारे जीवन में बदलाव आया है, तो कृतज्ञता पूर्वक हम उनको आभार प्रकट करते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं 3 तलाक कानून के बारे में।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति दिलाकर उनके जीवन में बड़े बदलाव ला दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि यह कानून भारत के संविधान के अनुरूप मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार देता है।
3: भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब आम्बेडकर की भावना को आदर करते हुए हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया।
2: आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस अधिनियम के लागू होने के एक वर्ष के भीतर ही 3 तलाक के मामलों में 82% की गिरावट दर्ज की गई। मुस्लिम मामलों के विशेषज्ञ रजा रिजवी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कानून के जरिए मुस्लिम समाज की महिलाओं का सशक्तिकरण कर उन्हें विकास से जोड़ा है।
4: ये कानून केवल एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि महिला के सम्मान और उसके अधिकारों की रक्षा से जुड़ा विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण को विकास से जोड़ा।
2: 3 तलाक कानून का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि ये मुस्लिम महिलाओं को सम्मानजनक जीवन और कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर शिल्पकारों, कारीगरों सहित समस्त प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि जो देश शिल्पकारों और कारीगरों को सम्मान देता है वही आगे बढ़ता है। गोरखपुर के श्री विश्वकर्मा पंचायत मंदिर में आयोजित श्री विश्वकर्मा पूजनोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रोत्साहन से उत्तर प्रदेश में आज 3 करोड़ से अधिक लोग कारीगरी शिल्प से जुड़कर रोजगार और स्वावलंबन की राह पर सफलतापूर्वक आगे बढ़े हैं। वहीं लखनऊ में भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 के अंतर्गत विश्वकर्मा स्वरोजगार और स्वदेशी मेला 2026 पर आधारित प्रदर्शनी और मार्जिन मनी ऋण पोर्टल का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और टूल किट भी वितरित किए। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने आज महोबा में ईवीएम वेयरहाउस और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर निर्वाचन तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग का एक प्रमुख उद्देश्य आगामी चुनाव के मतदान दिवस पर मशीनों में होने वाली खराबी की संभावना को कम से कम करना है, ताकि मतदान के समय मतदाताओं को मशीनों की तकनीकी खराबी के चलते इंतजार या परेशानी का सामना न करना पड़े। आकाशवाणी लखनऊ की वरिष्ठ समाचार वाचक मीना इरफान का कल देर शाम लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 60 वर्षीय थी। उर्दू अखबारों के साथ वह दूरदर्शन लखनऊ में भी बतौर न्यूज राइटर कार्यरत थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू हुआ सेवा संकल्प अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाराणसी से वडनगर तक सेवा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर प्रदेश भर में हुए विविध आयोजन। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों और जन प्रतिनिधियों ने प्रज्वलित किया आशीर्वाद का दिया। मुख्यमंत्री ने भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर मार्जिन मनी ऋण पोर्टल का किया शुभारंभ। योजनाओं के लाभार्थियों को वितरित किए चेक। और राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने महोबा में ईवीएम वेयर हाउस और स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे एफएम पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
6: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
7: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ के शहर का अपना सामुदायिक रेडियो और आपका फेवरेट प्रोग्राम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। एक बार फिर से लेकर हाजिर हो गया हूँ मैं आपका दोस्त आनंद और मेरे साथ हैं
1: आरजे रीना।
0: यस दोस्तों, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विकास की, विरासत की और उन स्वादों की जो हमारी मिट्टी की खुशबू अपने अंदर समेटे हुए हैं।
1: और आज हम पहुँचे हैं पूर्वांचल के धड़कन यानी गोरखपुर में, जहाँ की बोली में अपनापन है और खाने में देसी स्वाद का जादू।
0: बिल्कुल, और आज का हमारा विषय है एक ऐसा व्यंजन जो गरीब से लेकर अमीर तक, छात्र से लेकर अधिकारी तक और हर किसी की पहली पसंद बन चुका है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे मशहूर देसी व्यंजन लिट्टी चोखा की।
0: वाह, नाम सुनते ही जैसे देसी घी की खुशबू हवा में घुल गई हो।
1: और अब इस स्वाद को नई पहचान देने जा रही है योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुंजीन यानी ODOC योजना।
0: जिस तरह ODOP योजना ने प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों को देश दुनिया तक पहुंचाया है, उसी तरह अब ODOC योजना जिलों के पारंपरिक व्यंजनों को ग्लोबली पहचान दिलाने जा रही है
1: और गोरखपुर जिले की पहचान के रूप में चुना गया है स्वाद और सेहत का अनोखा संगम लिट्टी चोखा।
0: दोस्तों लिट्टी चोखा सिर्फ एक व्यंजन नहीं है बल्कि पूर्व यूपी की संस्कृति, गाँव की मिट्टी और देसी जीवन शैली का हिस्सा है।
1: सही कहा, पहले गाँव में जब खेतों में काम खत्म होता था तो शाम को चूल्हे पर कड़े की धीमी आंच में लिट्टी सेकी जाती थी। पूरा परिवार एक साथ बैठकर उसे चोखा और घी के साथ खाता था।
0: यानी लिट्टी चोखा सिर्फ खाना नहीं बल्कि परिवार, अपनापन और परंपरा का स्वाद है।
1: और सबसे खास बात, यही स्वाद जितना लाजवाब है उतना ही सेहतमंद भी।
0: तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं आखिर लिट्टी बनती कैसे है।
1: सबसे पहले गेहूं के आटे को अच्छे से गूंधा जाता है, फिर उसके अंदर भरा जाता है चने का सत्तू।
0: लेकिन ये कोई साधारण भरावन नहीं होता, इसमें मिलाया जाता है अजवाइन, मुगरेला, लहसुन, हरी मिर्च, अचार का मसाला, नींबू और सबसे जरूरी देसी सरसों का तेल।
1: उफ, सोच कर ही भूख बढ़ जाए।
0: फिर इसी भरी हुई लिट्टी को कंडे यानी उपले की धीमी आंच पर धीरे धीरे सेका जाता है। लिट्टी को बार बार पलटा जाता है ताकि हर तरफ से वो सुनहरी और कुरकुरी हो जाए।
1: और जब गर्म गर्म लिट्टी तैयार होती है तो उसे देसी घी में डुबो दिया जाता है। घी की खुशबू और सत्तू का स्वाद, यही तो इसकी असली पहचान है।
0: अब बात करते हैं इसके साथ ही यानी चोखे की।
1: चोखा बनाने के लिए भुने हुए बैंगन, उबले आलू और टमाटर को अच्छे से मैश किया जाता है।
0: फिर उसमें डाला जाता है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, नमक और कच्चे सरसों के तेल की धार।
1: यही सरसों का तेल चोखा को वो देसी फ्लेवर देता है जो हर निवाले को खास बना देता है।
0: और दोस्तों जब गरम लिट्टी को तोड़कर उसमें चोखा भरकर खाया जाता है तो स्वाद सीधे दिल तक पहुंच जाता है।
1: यही वजह है कि गोरखपुर में लिट्टी चोखा हर वर्ग के लोगों की पसंद बन चुकी है।
0: छात्र संघ चौराहा, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेडिकल कॉलेज रोड, तारामंडल क्षेत्र, हर जगह आपको लिट्टी चोखे की दुकानें नजर आ जाएंगी।
1: छात्र हो, कामकाजी लोग, रिक्शा चालक, व्यापारी या पर्यटक, हर कोई बड़े चाव से लिट्टी चोखा खाता है
0: क्योंकि ये स्वादिष्ट भी है, पेट भरने वाला भी है और जेब पर भी भारी नहीं पड़ता।
1: और दोस्तों एक समय था जब लिट्टी चोखा सिर्फ ठेले और रेड़ी पर मिल जाता था,
0: लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज गोरखपुर में आधुनिक आउटलेट्स खुल चुके हैं,
1: यानी देसी स्वाद अब मॉडल स्टाइल में भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
0: कुछ आउटलेट्स में तो मिट्टी के कुल्हड़ में चोखा परोसा जाता है ताकि ये ग्राहकों को पूरा देसी अनुभव मिल सके।
1: और सोशल मीडिया के दौर में भी तो लोग पहले फोटो खींचते हैं फिर लिट्टी खाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा अर्जिरीना।
1: इतना ही नहीं, अब दूसरे शहरों में फ्रेंचाइजी की मांग भी आने लगी है।
0: यानी लिट्टी चोखा अब सिर्फ गोरखपुर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि देश और दुनिया में भी अपनी पहचान बनाएगा।
1: सरकार भी इस दिशा में लगातार काम कर रही है।
2: सबसे पहले हमें अपना नाम बता दें।
3: मेरा नाम विकास श्रीवास्तव है मैम।
2: विकास जी, आपका ये प्रतिष्ठान कब से गोरखपुर में स्थापित है?
3: ये हमारा जो है 15 जनवरी से हम लोगों ने इसको ओपन किया है।
2: जी जी, तो बाटी चोखा ही क्यों?
3: बाटी चोखा क्या है कि हम लोगों ने पूर्वांचल की चीजों को देखा है और जो सबसे ज्यादा चलने वाली चीजें हैं, जैसे कि पूर्वांचल में बाटी चोखा एक रिलेटेड है अपने मट्टी की खुशबू को लेते हुए हम लोगों ने इस चीज को किया है, बाटी चोखा का कॉन्सेप्ट किया है। हर जगह जो है आजकल देखा जाए तो व्यंजन तो बहुत है, चाइनीज है, इंडियन है, कई चीजें मिल जाती हैं, अपनी मिट्टी की चीजें नहीं मिल पाती। इसलिए हम लोगों ने पाटी चोखा का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई कुछ अपना किया जाए उसको।
2: जी जी। अच्छा, जहाँ इतने सारे चाइनीज विदेशी व्यंजन अब उपलब्ध हैं, तो आपको ये थोड़ा रिस्क नहीं लगा कि बाटी चोखा पे हम इतना बड़ा शोरूम बना रहे हैं, क्या हमारे पास कस्टमर्स आएंगे?
3: नहीं, इस दरअसल था ऐसा, लेकिन फिर मैंने ये अपना सोचा गया कि देखिए हमारा जो भी है, जो भी यहाँ रहते हैं, जो भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल की मिट्टी से ही जुड़े हैं। आज भले वो कहीं भी रहें, किसी दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन वो उठे ही हैं देहात से। तो इसीलिए हमने बस इसको जो है इस पे जोर दिया गया।
2: शहर में कई सारे बाटी चोखा के प्रतिष्ठान है, तो आपका स्पेशल क्या है?
3: हमारा देखिए स्पेशल क्या है कि हमारा जो बाटी चोखा है वो सॉफ्ट है
2: जी।
3: आप कई जगह खाई होंगी बाटी चोखा, तो जो उसकी परत होती है बहुत टाइट होती है, बच्चे नहीं खा सकते हैं। आप हमारे यहाँ खाएंगी तो बच्चे भी बहुत आराम से उस चीज को खा लेते हैं। हमारे यहाँ जो भी बाटी चोखा है बहुत सॉफ्ट होता है, एकदम मुलायम, वो हर तबके के, चाहे वो बूढ़े हों, बच्चे हों, सबको पसंद आएगा हमारा।
2: जी
4: जी। ये बताइए कि आपके यहाँ जो कस्टमर्स आते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी रहती है, युवा की रहती है या फिर फैमिली ज्यादा आती है?
3: तो ये हमारे यहाँ जो भी है फैमिलियाँ ज्यादा आती
4: हैं। फैमिली ज्यादा
3: है। जी मैम,
2: हमारे जो माननीय
3: मुख्यमंत्री
2: के द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया गया एक जनपद एक व्यंजन।
3: हाँ, एक जनपद एक व्यंजन
2: जी, जिसके तहत हम आके आपसे बात कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे महाराज जी के लिए?
3: महाराज जी के लिए तो क्या कहा जाए, महाराज जी तो खैर अपने आप में खुद ही बहुत अच्छे सीएम है वो, और अगर उन्होंने कोई चीज पहल की है तो बहुत अच्छी पहल की है।
1: और दोस्तों, ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों को पहचान दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे जुड़े कारीगरों, रसोइयों, छोटे दुकानदारों और उद्यमों को भी सीधे लाभ मिलने वाला है।
5: बिल्कुल, सरकार इस योजना के तहत लिट्टी चोखा बनाने और बेचने वाले लोगों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है।
1: स्वयं सहायता समूह महिलाओं, उद्यमियों और युवाओं को भी इस पहल से जोड़कर स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं, ताकि स्थायी स्तर पर रोजगार को बढ़ावा मिल सके।
5: साथ ही बेहतर ब्रांडिंग, मार्केटिंग की सुविधा के माध्यम से छोटे विक्रेताओं और पारंपरिक व्यंजन तैयार करने वाले लोगों को बड़े बाजारों तक पहुंचने का अवसर मिल सके।
1: इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और स्थानीय खाद्य व्यवसायों को नई पहचान मिलेगी।
5: यानी ODOC योजना सिर्फ स्वाद को दुनिया तक पहुंचाने की पहल नहीं है, बल्कि स्थानीय कारीगरों, दुकानदारों और उद्यमों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: पर्यटन विभाग भी अब प्रमुख आयोजनों और पर्यटन स्थलों पर लिट्टी चोखा के विशेष स्टॉल लगने जा रहे हैं।
5: यूपी दिवस के समारोह में भी लिट्टी चोखे का स्टॉल लोगों को आकर्षण का केंद्र बना देता है।
1: और सच कहें तो लिट्टी चोखा सिर्फ एक व्यंजन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक स्वादिष्ट मिसाल है,
5: क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली हर चीज देसी और प्राकृतिक होती है।
1: गेहूं, सत्तू, सरसों का तेल, बैंगन, टमाटर, सब कुछ स्थायी किसानों और बाजारों में आता है।
5: यानी इस एक व्यंजन से किसान, हलवाई, दुकानदार और छोटे कारोबारी सभी को रोजगार मिलता है।
1: यही तो है ODOC योजना की सबसे बड़ी ताकत, स्थानीय स्वाद को वैश्विक पहचान देना।
5: दोस्तों, आज फास्ट फूड के दौर में लोग फिर से देसी और हेल्दी खाने की तरफ लौट रहे हैं,
1: और लिट्टी चोखा इस बदलाव का सबसे बेहतरीन उदाहरण बन चुका है।
5: देसी स्वाद, देसी खुशबू और देसी मिट्टी का एहसास, सब कुछ एक ही प्लेट में।
1: तो अगर आप कभी गोरखपुर आए तो यहाँ का लिट्टी चोखा जरूर खाइए,
5: क्योंकि एक बार जो इसका स्वाद चख ले वो इसे कभी नहीं भूल पाता।
1: और योगी सरकार की ODOC पहल अब इस स्वाद को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाने की तैयारी में है।
5: तो दोस्तों, आज हमने जाना कैसे लिट्टी चोखा सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और आत्मनिर्भरता की पहचान है,
1: और कैसे ODOC योजना स्थानीय व्यंजनों को नया बाजार, नई पहचान और नए अवसर दे रही है।
5: इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश के एक नए सफर में। नमस्कार। तो दोस्तों, आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
6: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: क्या दर्द आपकी जिंदगी रोक रहा है? आप दर्द को नजरअंदाज ना करें। इस सितंबर में श्री साई हॉस्पिटल में हर गुरुवार शाम 5 बजे से 7 बजे तक फ्री क्रॉनिक पेन कैंप, निशुल्क परामर्श, जांच पर 20% तक की छूट और दवाइयों पर 10% तक की छूट। रजिस्ट्रेशन मात्र 100 रुपए में। दर्द से राहत की सही शुरुआत, अभी कॉल करें 9412504190। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: सेवा से संकल्प जगे, संकल्प से हर जन जुड़े।
2: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।
1: स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और सुशासन, प्रदेश सरकार आज हर क्षेत्र में रच रही है नया इतिहास।
2: तो आइए आप भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बनिए, प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
3: प्लेटफॉर्म की शुरुआत की ताकि नीति निर्माण में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित की जा सके। जनवरी 2024 में नई दिल्ली में एनसीसी कैडेट्स रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैडेट से माई गॉव प्लेटफॉर्म पर जाकर विकसित भारत के लिए अपने सुझाव देने का आह्वान किया था।
4: विकसित भारत के निर्माण के लिए रोड मैप बनाने का काम चल रहा है, तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। आप जैसे युवाओं के लिए ही सरकार ने मेरा युवा भारत यानी माय भारत संगठन भी बनाया है। मैं आप जैसे सभी युवाओं को कहूंगा कि मेरा युवा भारत संगठन में खुद को जरूर रजिस्टर कराएं। आप माय गॉव पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे, आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं।
3: इस माई गॉव प्लेटफॉर्म पर इस साल जुलाई तक लगभग 6.5 करोड़ नागरिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आज श्रमिकों के कल्याण और उन्हें सरकारी सेवाओं से सीधे जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग क्षेत्र में नमो श्रमिक सेवा केंद्र और गिग वर्कर्स विश्राम केंद्र का उद्घाटन किया। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के विकास और निर्माण में श्रम, परिश्रम और लगन से महत्वपूर्ण योगदान देने वाले श्रमिक लोगों के सम्मान, सुविधा तथा कल्याण के लिए सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
5: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि श्रमिकों के लिए नमो श्रमिक सेवा केंद्र एक सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जहां उन्हें विभिन्न सरकारी सेवाओं और श्रमिक कल्याण योजनाओं से जुड़ी आवश्यक सहायता एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि केंद्र पर श्रमिकों को पंजीकरण और नवीकरण में सहायता, दस्तावेजों के सत्यापन, आवेदन की स्थिति की जानकारी, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और दावों से संबंधित सेवाओं के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान गिग वर्कर्स विश्राम स्थल का भी शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मौजूद दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि राजधानी में और भी श्रमिक सेवा केंद्र शुरू किए जाएंगे, जहां श्रमिक निःशुल्क पंजीकरण कराकर सरकार की विभिन्न श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे।
6: श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में सबसे बड़ी आवश्यकता है। जब एक श्रमिक रजिस्टर हो जाते हैं तो उसके बाद सरकार की सारी योजनाओं को उनका लाभ उठा सकते हैं। तो दिल्ली में हम लगभग 34 जगहों पर नमो श्रमिक सेवा केंद्र खोल रहे हैं, जहां पर श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
5: श्री मिश्रा ने कहा कि सरकार ऐसे प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने जा रही है, जहां श्रमिकों को तकनीकी कौशल के साथ साथ विदेशी भाषा कौशल भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
2: गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन और उनके 25 वर्षों की जनसेवा के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। गुजरात का वडनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृहनगर है। श्री शाह ने जनसेवा का संदेश फैलाने के लिए वडनगर से वाराणसी तक साइकिल रैली को रवाना किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर बधाई दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अलीपुर स्थित श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम में आयोजित 108 कुंडीय यज्ञ में हिस्सा लिया। ये यज्ञ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर दिल्ली में चल रहे सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन की यात्रा ने जनसेवा और राष्ट्र सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रेरणा दी है।
7: 108 कुंडिया हवन अभी हमने संपूर्ण किया है। बाबा श्याम खाटू वालों के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु, स्वस्थ जीवन और देश सेवा में वो इसी तरीके से लगातार काम करते रहे, इसकी कामना की है।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर आज दिल्ली सचिवालय में दो विशेष गीतों का शुभारंभ किया। ये गीत दिल्ली के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों ने तैयार किए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आज अंगदान संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य अंगदान को बढ़ावा देना, प्रत्यारोपण सेवाओं को मजबूत करना और नागरिकों को अंगदान का संकल्प लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। श्रीमती गुप्ता ने स्वयं अंगदान की घोषणा की और इसके लिए संकल्प पत्र भी भरा। इस अवसर पर एक पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। इसके द्वारा दिल्ली के नागरिक अंगदान संकल्प अभियान से ऑनलाइन जुड़कर अंगदान का संकल्प ले सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम में शामिल हुई। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित किया गया। जनसेवा से देश सेवा के मूल मंत्र से प्रेरित यह कार्यक्रम जन भागीदारी और सेवा भाव का सशक्त संदेश देता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सेवा संकल्प अभियान और एक पेड़ मां के नाम पहल के अंतर्गत नई दिल्ली की लोदी कॉलोनी में पौधारोपण कर भारत वन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि पेड़ पौधों और पक्षियों के लिए बेहतर वातावरण बनेगा और क्षेत्र की जैव विविधता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
8: एक पेड़ मां के नाम के निमित्त आज इस लोदी कॉलोनी में एक फॉरेस्ट की शुरुआत, एक बड़े पार्क की, एक एकड़ के पार्क की, जिसको मियावाकी फॉरेस्ट कॉन्सेप्ट से भारत की माननीय वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमन जी ने एक पेड़ लगा के करी, एक दिया जलाया जो आशीर्वाद के दिए के रूप में है। और यहाँ एनडीएमसी के स्कूल के बच्चे जिन्होंने पेड़ लगाए, पौधे लगाए, 10,000 से अधिक, एक पेड़ मां के नाम, माने प्रधानमंत्री जी का संकल्प जो एनडीएमसी में आंदोलन बन रहा है, उसकी एक शुरुआत है।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
2: पीएम विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। हमारी संवाददाता ने बताया कि ये योजना कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक पैकेज प्रदान करती है।
9: पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अब तक 30 लाख से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक काम और हुनर से जुड़े विश्वकर्माओं को आगे बढ़ने में मदद करना है। इसके तहत उन्हें आधुनिक औजार, प्रशिक्षण, आसान शर्तों पर ऋण और बाजार से जुड़ने के अवसर दिए जाते हैं, ताकि वे अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। अब तक करीब 24,50,000 विश्वकर्माओं को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं इस योजना के तहत 6 लाख से अधिक विश्वकर्माओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण मात्र 5% की दर पर उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा 18 लाख से ज्यादा आधुनिक टूलकिट भी इंडिया पोस्ट के माध्यम से विश्वकर्माओं के घर पहुंचाए जा चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
2: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी घोषणा की।
10: भगवान विश्वकर्मा जयंती, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन और सेवा दिवस के पावन अवसर पर लड्डू लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया है। आज से इस योजना के नए लाभार्थियों का पंजीकरण शुरू हो गया है। अब प्रदेश के 1,80,000 रुपए तक के वार्षिक आय वाले परिवारों की सभी पात्र बहन बेटियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
2: सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अम्बाला के पुलिस लाइन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से राज्यव्यापी 100 दिवसीय एनीमिया मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक नेत्र जांच और एनीमिया परीक्षण शिविर का भी उद्घाटन किया। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने विभिन्न विभागों में लंबित करुणामूलक आधार पर नियुक्ति के मामलों को गंभीरता से लेते हुए निगमायुक्त को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। श्री वाही ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में होने वाली अनावश्यक देरी से दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। महापौर ने निर्देश दिए कि विभिन्न विभागों से लंबित सभी अनुकंपा नियुक्ति मामलों की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा की जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
11: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
2: एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए गए यूपीआई लेनदेन बिना किसी राशि सीमा के पूरी तरह निशुल्क रहेंगे। सरकार में सूत्रों ने बताया है कि यूपीआई ग्राहकों के लिए निशुल्क बना रहेगा। मित्रों को पैसे भेजने पर, दुकानों पर भुगतान करने पर या क्यूआर कोड स्कैन कर लेनदेन पर कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। एक रिपोर्ट।
12: सरकार के सूत्रों ने बताया कि यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से प्रतिमाह 1,00,000 रुपए तक की कमाई करने वाले विक्रेताओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। सूत्रों ने बताया कि रुपे डेबिट कार्ड से जुड़े यूपीआई लेनदेन भी निशुल्क रहेंगे। सूत्रों के अनुसार लगभग 96% लोगों द्वारा व्यापारियों को किए गए यूपीआई लेनदेन अप्रभावित रहेंगे। हालांकि रेलवे और ईंधन के लिए 2,000 रुपए से अधिक के भुगतान पर प्रति लेनदेन 5 रुपए का मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू होगा। 2,000 से अधिक के केवल बड़े व्यापारी लेनदेन पर 0.4% का MDR लागू होगा, जिसका भुगतान व्यापारियों को करना होगा। नई यूपीआई कार्यनीति यूपीआई के दीर्घकालिक उपयोग को बढ़ावा देने के साथ लोगों के लिए भुगतान को निशुल्क बनाए रखने और छोटे व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। समाचार कक्ष से सम्राट की रिपोर्ट के साथ मैं अतहर सईद।
2: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला इस समय दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने छठे ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 86 रन बना लिए हैं। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। विभाग ने बताया कि कल राजधानी में बादल छाए रहने की संभावना है। और अंत में सुनिए लीजिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में भारतीय जनता पार्टी का एक माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू। पीएम विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए गए यूपीआई लेनदेन बिना किसी राशि सीमा के पूरी तरह निशुल्क रहेंगे। और नई दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच जारी। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ आपके साथ आपकी

0: अपनी आर्ट।
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना और मेरे साथ है आरजे खुशी। इस शो में हम कनेक्ट हो गए हैं आप सभी के साथ और करने वाले शाम को भैया ढेर सारी बातें। शाम ये देखिए, शाम होते ही ना दिन भर की भाग दौड़, थकान लगती है, लेकिन मुरादाबाद की गलियों में अभी रौनक बाकी है। बाजारों में भीड़, दुकानों में रोशनी, दोस्तों की गपशप और कहीं से आती है गर्मा गर्म समोसे की खुशबू, कहीं चाट का चटकारा तो कहीं कबाब की महक। तो क्यों ना आज की शाम घर बैठे बैठे मुरादाबाद की गलियों की सैर की जाए। तो बस अब होती है असली कहानी, असली मुरादाबाद शाम की शुरुआत। क्योंकि बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि रेडियो की सुई आपने अगर घुमाया तो बहुत सारी चीजें हैं जो मिस कर जाएंगे। और देखिए, गाड़ी चलाते चलाते या फिर आप घर बैठकर सुन रहे हैं ना, तो आपको हम आज बाहर जाने से और बाहर जाने के लिए मजबूर कर देंगे। क्यों खुशी, सही कह रही हूँ ना मैं?
2: बिल्कुल सही बोल रहे हो आप।
3: हेलो, हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। देखिए, आप हमें सुबह भी सुनते हैं, दोपहर भी सुनते हैं, अब हम शाम में भी आपके साथ आ गए हैं। आई होप आपको सुनकर अच्छा लग रहा होगा। आपकी शाम को बनाने आए थोड़ा और यू नो हैपनिंग खूबसूरत ब्यूटीफुल शाम। क्योंकि देखिए दोस्तों, सोचिए बाजार में चलते चलते सामने गोलगप्पे वाला दिखाई दी जाए और एक तरफ कुरकुरी पूरी, ओहो हो, और दूसरी तरफ आलू मसाला, ऊपर से खट्टी मीठी चटनी और फिर वो ठंडा ठंडा मसालेदार पानी। भैया एक प्लेट और लगाना और पहला गोलगप्पा मुंह में जाते ही बस दिन भर का तनाव गायब हो जाता है। क्यों रीना?
0: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने कि एक गोलगप्पा मुंह में जाते ही दिन भर की तनाव गायब, छू मंतर हो जाती है।
3: एक्चुअली हम खुद ही ऐसा करते हैं, जब हम ऑफिस से फ्री होकर दोनों मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो हमें कहीं भी पानी पूरी का स्टॉल नजर आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं आपको बताएं एवरीवन? हाँ, बताएंगे, थोड़ा सब्र तो करो। ओहो, आप क्या चाहते हैं हम आपको अभी बता दें? ना, थोड़ा इंतजार करवाएंगे, इंतजार करो, पेशेंस बहुत जरूरी है लाइफ में। क्यों खुशी, क्यों रीना?
0: अरे, तुमने तो मेरा नाम खुशी रख दिया, कोई बात नहीं। फिलहाल आपसे पूछना चाहेंगे श्रोताओं कि आपको गोलगप्पे खट्टे पसंद है या फिर
3: मीठे तीखे?
0: तो तुम बताओ, तुम्हें कौन सा पसंद है?
3: मुझे पानी पूरी ना ज्यादा तीखा वाला पसंद नहीं है, मुझे खट्टा मीठा दोनों पसंद है। क्योंकि क्या होता है ना, खट्टा मीठे में ना टेस्ट अच्छा आता है, और ज्यादा तीखा अगर मैं खा लेती हूँ तो फिर मुझसे तो नहीं खाया जाएगा,
0: कान से हवा निकलने लग जाती है।
3: रीना स्पेशली तीखा खा लेती है, बट मैं तीखा नहीं खा पाती हूँ।
0: लेकिन गोलगप्पे मुझे भी मीठे पानी वाला ही पसंद है।
3: मुझे सूजी वाले पसंद है।
0: सूजी वाले तो मेरा पसंद है।
3: वैसे गाइस, आप भी मुझे बताइएगा, हम लोगों को बताइए कि आपको कौन से पानी पूरी पसंद, आटे वाले या सूजी वाले,
0: और पानी भी बताना आप।
3: हाँ, और जब तक हम करते हैं आपसे और भी बातें, लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं ना एक प्यारा सा गाना। चलो सुनते हैं एक धमाकेदार ट्रैक, उसके बाद लौट कर आते हैं। अगर आपका भी पानी पूरी खाने का मन है ना, इसमें दोष हमारा नहीं है, आपका मन विचलित है तो हम क्या कर सकते हैं।

0: देखिए शाम होते होते ना मन करता है भैया कुछ चटपटा अटपटा खा ले, तो मुझे लगता है इस मन को ना दुखी नहीं करना चाहिए, खा लेना चाहिए। तो चलिए श्रोताओं, अब जैसे जैसे शाम होती है ना, बस गली मोहल्ले से मार्केट से ना खुशबू आने लग जाती है। फिलहाल हम बात करने वाले हैं गोलगप्पों के बाद समोसों की खुशबू। आए हाय, मुझे पता है कि आपके बहुत पसंद है गोलगप्पे और साथ ही साथ समोसे। देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं आप, कोई बात नहीं, अब जरा हमारे साथ बने रहिए आर्जेरीना के साथ और खुशी के साथ, यहाँ करेंगे ढेर सारी बातें। अब जरा अपनी कल्पना को बाजार की अगली गली में ले जाइए और वहां से आती है एक ऐसी खुशबू जिसे सूंघ कर कोई भी रुक नहीं पाएगा। गर्मा गर्म समोसे की कड़ाही की तेल में छन छन समोसे का सुनहरा रंग और साथ में हरी चटनी और मीठी चटनी। अब बताइए समोसा अकेला अच्छा लगता है या साथ में एक कप गर्मा गर्म चाय हो जाए तो मजा दुगनी हो जाती है। मेरी तरफ से चाय के बिना समोसा थोड़ा अधूरा रहता है। अब समोसा हो और चाय ना हो, मतलब फीकी पड़ जाती है ना।
1: चाय के बिना समोसा अच्छा नहीं लगता है और समोसे के बिना चाय नहीं अच्छी लगती है, दोनों साथ में होते हैं तो कॉम्बो अच्छा लगता है। अब चाट का चटपटा स्वाद लेते हैं। मुरादाबाद की शाम हो और चाट का नाम ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है रीना। सोचिए प्लेट में कुरकुरी पापड़ी, ऊपर उबला हुआ आलू, दही, हरी चटनी, मीठी इमली की चटनी और आखिर में मसाले की हल्की सी बारिश। पहला निवाला मुंह में जाते ही ना खट्टा मीठा तीखा और कुरकुरा चारों स्वाद एक साथ, और फिर वो आवाज, भैया थोड़ी चटनी और डाल दीजिए ना।
0: हाँ ये तो अक्सर हम करते ही।
1: अब रीना के मुंह में पानी आने लगा है खाने की बातें सुन।
0: मेरे मुंह में नहीं, मतलब जो श्रोता सुन रहे हैं उनके मुंह में भी पानी आने लगा है। वो तो यही कह रहे भैया गाड़ी न्यूटन ले लेते हैं
1: और पहले कुछ खा ही लेते हैं।
0: हाँ तो चलिए अब हम बात करेंगे कबाब की खुशबू। मुझे आपको पसंद है ना, मुझे हाँ, तो बहुत पसंद
1: मुझे
0: है।
1: भी पसंद है यार, कबाब को भी पसंद है और हाँ। हमारे जो बहुत सारे श्रोता है ना उनको भी पसंद है ना।
0: एक काम करिए एक प्लेट भिजवा दीजिए।
1: मैंने तुमको

0: आया था ना, याद है तुम्हें वो वाला कबाब कितना टेस्टी था।
1: हाँ मुझे लगता है कि आज पर आज तो फास्ट टकल चलेंगे।
0: हाँ
1: तो चलिए आगे हम बात करते हैं, कबाब की बात करेंगे। अब अगर आप मुरादाबाद के किसी खाने वाली गली से गुजर रहे हैं और अचानक मसालों और सिकते कबाब की खुशबू आपके नाक तक पहुंच जाए, तो समझ लीजिए आपका पेट आपको रोकने वाला है। सीख पर लगा कबाब, आग की हल्की आंच, ऊपर से प्याज और हरी चटनी और गर्मा गर्म खुशबू, आय हाय। मुरादाबाद के मुलायम खाने और कबाब बिरयानी की अपनी खास पहचान है। अब सवाल ये है कि आप सिर्फ खुशबू लेकर निकल जाएंगे या प्लेट भर के खा लेंगे या फिर घर वालों के लिए भी ले जाएंगे, डिपेंड आपके ऊपर करता है। फिलहाल देखिए अपने लिए आप खा रहे हैं और घर वालों के लिए ले जा रहे हैं ना, तो एक प्लेट इधर भी भिजवा दीजिएगा स्टूडियो में।
0: पर आज तो हम नहीं खा पाएंगे, अगर हमारे लिसनर जो है सुन रहे हैं अगर भिजवा भी देंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला।
1: मतलब आज ना भिजवाइए, आप कल भिजवा दीजिएगा, ये तो चलेगा ना?
0: ये चलेगा नहीं, दौड़ेगा फिर तो। हाँ अब हम बात करते हैं, पता है रीना किसकी? हम बात करते हैं बिरयानी का इम्तिहान। अब जरा कल्पना कीजिए, ढक्कन उठता है और अंदर से आती है मसालों में पके चावल की गर्मा गर्म खुशबू, ऊपर से हरे धनिए की हल्की महक और साथ में नरमा नरम पीस। जी हाँ, बात हो रही है बिरयानी की। मुरादाबाद की बिरयानी अपनी खास मसालेदार स्वाद और खुशबू के लिए जानी जाती है। और बिरयानी की सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? आप कहते हैं बस थोड़ी सी खाऊंगा या थोड़ी सी खाऊंगी, और प्लेट खत्म होने के बाद याद आता है कि थोड़ी तो बचनी चाहिए थी।
1: लेकिन मेरा मानिए तो एक प्लेट और ले लीजिए। और साथ ही साथ आपने बताना है मुरादाबाद में बिरयानी सबसे ज्यादा फेमस कहाँ की है।
0: हाँ।
1: आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं, क्योंकि अगली बार अगर हम खाने के लिए जाए तो उसी शॉप पर जाने वाले हैं।
0: हाँ, हमें भी तो पता होना चाहिए ना कि बिरयानी मुरादाबाद की कहाँ की पॉपुलर है, क्योंकि हमने अभी तक बिरयानी का टेस्ट किया है लेकिन अपने घर पर बनाकर, किसी स्टॉल का नहीं खाया है। तो हम चाहते हैं कि किसी शॉप की मुरादाबाद वालों से हम जानना चाहते हैं कि मुरादाबाद की सबसे बेस्ट बिरयानी कहाँ पर मिलती है। आप हमें जल्दी से मैसेज कीजिएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। तो दोस्तों हम अभी लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद करेंगे आपसे बहुत सारी बातें, आपकी शाम को बनाएंगे और भी ज्यादा खूबसूरत। कुछ खाने पीने की बातें तो हो ही रही हैं, लेकिन अभी इंटरेस्टिंग चीजें और हैं, वो क्या है अभी बताते हैं आकर।
2: भूख लगी जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: हाई एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और आज की शाम को हम बनाने वाले हैं आपके खूबसूरत बना ही रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि ओहो खुशी जी और रीना जी आज कौन सा टॉपिक लेकर आई हैं। भैया हम तो रोके से नहीं रुक पा रहे हैं, आज पेट भरा है फिर भी दिल कर रहा है कि कुछ तो स्पाइसी हो जाए, कुछ तो चटपटा हो जाए, तो खाइए, रोका किसने है। बट हाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि ज्यादा मत खाइएगा, ठीक है। और दोस्तों पता है आपको भीड़ और खाने का कनेक्शन, दोस्तों मुरादाबाद में शाम को भीड़ देखी है आपने? हे भगवान, इतनी भीड़ होती है ना रीना, हम खुद दोनों मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने के लिए तो हम सोचते हैं कि आधे घंटे में रिटर्न वापस आ जाएंगे, लेकिन कब दो घंटे गुजर जाते हैं हमें खुद ही नहीं पता चलता। जबकि हम पैदल होते हैं, अगर स्कूटी से जाएंगे तो पता नहीं रात को 10-11 बजे घर आएंगे शायद।
1: भीड़ भी ज्यादा होती है ना शाम के टाइम,
0: इवनिंग में बहुत ट्रैफिक होता है मुरादाबाद में। और कोई कपड़े खरीद रहा है, कोई जूता देख रहा है, कोई बच्चों का हाथ पकड़ के घूम रहा है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बस खाने निकले हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या रीना, जहाँ सबसे ज्यादा भीड़ लगी हो वहाँ जाकर देखो, 90% संभावना है कि कुछ वहाँ कुछ स्वादिष्ट जरूर मिल रहा होगा। मुरादाबाद की शाम में बाजार की रौनक और खाने की खुशबू मिलकर ऐसा माहौल बना देती हैं कि घर जाने का मन ही नहीं करता, और एक प्लेट चाट खाए बिना तो बिल्कुल भी घर हम जाते नहीं है।
1: मतलब ये है कि जो भी घर से निकल जाए वो कुछ ना कुछ खा कर ही आएगा,
0: खाली पेट तो भैया कोई नहीं आएगा।
1: अब तुम हम दोनों को ही देख लो, हम जाते हैं बाहर सामान खरीदने के लिए और कहते हैं कि नहीं यार जंक फूड नहीं खाएंगे।
0: और वहाँ जाते क्या होता है हमें पता नहीं,
1: मुंह में पानी आने लग जाता है।
0: हाँ, हम खुद पर इतना कंट्रोल करते हैं कि नहीं, हम घर से कहते हैं कि कुछ नहीं खाएंगे, जाकर शॉपिंग करेंगे, जो काम है वो खरीद कर लेकर आएंगे सामान।
1: और कॉन्ट्री करके हम खा लेते हैं, कहते हैं एक प्लेट तो एक प्लेट में।
0: हाँ, पर हम लोग ऐसा करके खाते हैं लेकिन बहुत मजा आता है।
1: और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है दूसरा प्लेट भी ऑर्डर कर देते हैं।
0: लेकिन ये पता है टाइम आपको रीना बहुत मेमोरेबल है हमारे लिए, क्योंकि जब हम और बड़े हो जाएंगे ना तो हम इन चीजों को बहुत मिस करेंगे।
1: देखो ये तो है, बड़े होने के बाद चीजें जो है हम टाइम स्पेंड करते हैं वो हमें याद तो आता है,
0: याद आता है। इसीलिए मैं अपने श्रोताओं से बोलती हूँ कि दोस्तों अपने टाइम को ना यूटिलाइज किया करो, जो वक्त आपके पास है उसे एंजॉय करो, हर पल खुल के जियो, क्योंकि हमें नहीं पता नेक्स्ट पल क्या होगा,
1: क्योंकि जो पल गुजर जाता है वो
0: दोबारा नहीं आता। या आई एग्री विद यू यार। और हम खुद ऐसा करते हैं, हम बहुत एंजॉय करते हैं, फन करते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम है ठीक है, लेकिन ज्यादा टेंशन लेने से थोड़ी ना प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा,
1: प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ता है और आपके दिमाग पे भी प्रेशर पड़ता है, सर दर्द होने लग जाता है। इसीलिए भैया जलेबी का जादू जरूर खाइए।
0: माय गॉड, जलेबी गर्मा गर्म और है, है।
1: मलाई वाली जलेबी मिल जाए तो और मजा आ जाएगा। हाँ, सच बताऊं यार मैंने मथुरा में खाई थी फर्स्ट टाइम मलाई वाली जलेबी।
0: अच्छा तो कैसा था उसकी,
1: आज तक मुझे ऐसा टेस्ट कहीं नहीं मिला।
0: ओके।

0: एक बार मुझे याद आया, जलेबी से रीना ने मुझे एक बार जलेबी खिलाई थी, जबकि इसको मीठा इतना पसंद नहीं है, लेकिन इसने इसका मन किया उस दिन, तो उसने कहा कि जलेबी खाते हैं। मैं इसका चेहरा देख रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी मेरे घर आती है मैं इसको कुछ स्वीट खिलाती हूँ, तो ये मना करते कि नहीं, मैं मुझे मीठा पसंद नहीं है। और वहां जाकर ये लड़की इतना जलेबी टुकड़ टुकड़ देखी जा रही है और उसको खाई जा रही है।
1: पता है, जब मुझे ना मलाई वाली जलेबी मिल जाए और साथ ही साथ उसमें इलायची वगैरह जो डाल,
0: इलायची का टेस्ट तो अलग ही होता है,
1: मजा आ जाता है मुझे। साथ रबड़ी वाली भी जलेबी मिल जाए ना यार, तो बस छोड़ो मत, आने दो।
0: पनीर वाली जलेबी खाई है आपने?
1: नहीं यार, पनीर वाली नहीं खाई है, तुम्हें खिला देना।
0: अच्छा ठीक है, तो मैं पनीर वाली जलेबी आपको जरूर खिलाऊंगी।
1: हाँ
0: ठीक है,
1: तो चलिए हम बात करते हैं जलेबी की। बात करें भैया, आज मुझे भूल जाओ, सच बता रही हूँ, गर्मा गर्म जलेबी जरूर खाओ।
0: पेमेंट तुम कर देना, खा मैं लूंगी रीना, ठीक है, इतना काम करना।
1: हाँ, स्कैनर दिखा के आ जाएंगे। अच्छा, कढ़ाई में गोल गोल घूमती हुई जलेबी, बाहर से कुरकुरी, अंदर से चाशनी से भरी हुई और ऊपर से गर्मा गर्म खुशबू। अरे यार, आज हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं?
0: बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक।
1: बहुत से श्रोता कह रहे होंगे, अरे बस रुक जाओ मैडम, अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, बस हमें खा कर आने दो।
0: हाँ, लेकिन हाँ, मैं आपसे कहना चाहूंगी दोस्तों, केयरफुली ड्राइविंग कीजिए, और अगर कुछ खाने का मन है तो खा लीजिएगा,
1: लेकिन गाड़ी साइड में पार्क करिएगा।
0: हाँ, वो जरूरी है,
1: क्योंकि इसके वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा लग जाती है। और एक जलेबी लेने गए थे, दुकानदार ने पूछा कितनी, तू मुंह से निकला, भैया पहले आधा किलो कर दो, उसके बाद 2-3 किलो हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते हैं। जलेबी दूध के साथ अच्छी लगती है या अकेली?
0: ये हम अपने लिसनर से पूछेंगे, ये क्वेश्चन आप उनसे उनको ट्रांसफर कीजिएगा।
1: हाँ, तो आप बताइए कि आपको रबड़ी के साथ, मलाई के साथ, या दूध वाली, या आइसक्रीम वाली जलेबी, है ना, कौन सी जलेबी आपको सबसे ज्यादा पसंद है? फिलहाल मुझे तो कुरकुरी जलेबी हो और मलाई हो उसके ऊपर, रबड़ी वाली, आय हाय मजा आ जाता है यार।
0: सिंपल जलेबी भी अच्छी लगती है, चाशनी में डूबी हुई ना,
1: कुरकुरी होने से।
0: हाँ हाँ, वो अच्छी,
1: और तभी अच्छी लगती है गर्मा गर्म, उसके बाद
0: ठंडी होने के बाद नहीं टेस्ट आता है।
1: लेकिन वो बचपन में पता क्या करती थी, जब भी मेरे पापा जलेबी लाते थे ना, मैं उसको अगले दिन खाती थी, क्योंकि मुझे उस टाइम जब मैं छोटी थी तो मुझे जो जलेबी है वो करारी अच्छी नहीं लगती थी।
0: अच्छा, वो सॉफ्ट होने के बाद, सॉफ्ट होने के बाद
1: अगले दिन खाती थी,
0: नेक्स्ट डे आप खाते थे। ओके,
1: लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं, अब मेरा मन चेंज हो गया है।
0: बदलाव बहुत जरूरी है। अगर आप भी मुरादाबाद के किसी बाजार में खड़े हो तो आपको सिर्फ खुशबू ही नहीं, आवाज भी सुनाई देगी। भैया एक प्लेट गोलगप्पे लगाना, थोड़ा तीखा, थोड़ा पानी तीखा बनाना, चटनी ज्यादा डालना, और दूसरी तरफ कढ़ाई से आती छन छन, हाँ, यही छोटी छोटी आवाजें बाजार को बाजार बनाती हैं। और सच बताऊं, इन आवाजों को सुनकर आपके पेट ने भी अभी तक एक आवाज तो जरूर निकाल दी होगी।
1: कि भैया बस कुछ खा ही लेते हैं, यारे मेरी बात मानिए, खा लीजिए, मन को इतना नहीं तरसाना चाहिए, बस जो मन करे खा लो।
0: लेकिन अच्छी शॉप से खाएं, जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पर साफ सफाई अच्छी है, अच्छी चीजें हैं, अच्छी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वहाँ पर खाना चाहिए, क्यों नहीं ना।
1: बिल्कुल, ये तो तुमने सही कहा। फिलहाल घर का खाना या बाहर का खाना, ये आप बता सकते हैं मुझसे मैसेज करके, लेकिन कभी कभी मन भी करता है यार बाहर का खा लेते हैं।
0: हाँ, देखो बाहर का चाहिए। खाना मुझे लगता है कि रीना इतना गलत भी नहीं है, लेकिन हाँ, कोई चीज को आप जब लिमिटेड खाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, अनलिमिटेड कोई भी चीज ठीक नहीं होती। हाँ, है
1: शाम को घर पहुँचते ही माँ या पत्नी पूछती है खाना लगा दूं, और तभी दिमाग घूमता है गोलगप्पे, चाट, समोसा, टिक्की, कबाब, बिरयानी। अब दिल कहता है बाहर चल रहे हैं यार, पेट कहता है घर का खाना खाओ, और मन तो बोलता है दोनों कर ले भाई। दोनों जरूरी है। और साथ ही साथ आप जरूर बताइएगा, आज शाम आपकी पहली पसंद क्या है, घर का गर्मा गर्म खाना या बाजार का चटपटा स्वाद? देखिए, हम दोनों तो कभी कभी बाहर का खाना इतना ज्यादा खा लेते हैं कि बस घर आके खाने की हिम्मत नहीं होती,
0: नहीं होती, नहीं खाते हैं। मैं भी अगर हम हल्का बाहर लाइट फूड लेते हैं, फिर उसके बाद मैं खाना नहीं खाती हूँ, सीरियसली बता रही हूँ।
1: हाँ, लेकिन एक बात तुमने सोचा होगा कि हम जितना बाहर का जंक फूड खाते हैं ना, घर आने के 12-1 बजे के बाद फिर चूहे कूदने लग जाते पेट में।
0: मैं जब एक बार सो जाती हूँ तो फिर उठती नहीं हूँ, मेरी ही तो ये रहता है।
1: अगर मेरे को नींद नहीं आती ना, सच बताओ मेरे को दोबारा भूख लगी आती है।
0: हाँ, नहीं, अगर आप लेट नाइट सो के जैसे एक बार अचानक से उठते हैं तो फिर भूख लगती है। अब बारिश और चटपटा खाना, मान लीजिए शाम का मौसम थोड़ा ठंडा हो, हवाएं चल रही हो, और कहीं से पकौड़े तलने की खुशबू आ जाए, बस फिर क्या, आंखें दुकान खोजती हैं, पैर अपने आप उसी तरफ चलने चल पड़ते हैं और मुंह बोलता है भैया एक प्लेट पकौड़े लगाना गर्मा गर्म, प्याज के पकौड़े हो या फिर आलू के, ऊपर से चाट मसाला और साथ में चाय। कभी कभी खुशी बहुत महंगी नहीं होती, बस एक गर्मा गर्म पकौड़े की प्लेट जितनी होती है। क्यों दोस्तों, आपका भी अगर मन कर रहा है ना, समय देखिए मौसम मानसून का वेदर है एंड आपका मन है कुछ खाने का थोड़ा सा, तो खा सकते हैं आप। ठीक है, तो दोस्तों आप गर्मा गर्म पकौड़े खाइए, चाय पीजिए, लेकिन पेमेंट हम नहीं करेंगे, इस बात को गांठ आप बांध लीजिए, पेमेंट तो आपको ही करना होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ज्यादा मत खाइएगा,
1: लेकिन खाना पेट भर के।
0: हाँ, पेट भर के खाओ लेकिन ज्यादा मत खाओ।
1: लेकिन इसी के साथ हम लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, क्योंकि देखिए ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। और आप सभी से यही कहेंगे कि देखिए घर जाते जाते ना मार्केट से सब्जियां भी जरूर लेकर चले जाइएगा। चले कि सिर्फ खाने खाने में आप बिजी हो गए और सब्जियां नहीं लेकर गए, तो घर जाते जाते फिर से आपको ताने सुनने को मिल जाएंगे कि अच्छा अभी तो तुम पेट भर के आ गए हो, सुबह देखते हो तुम्हें क्या खाते हो।
0: अरे रीना ऐसा होता है कई बारी, मेरी फैमिली में भी ऐसा हुआ है, मामा ने कुछ सब्जी के लिए पापा जी को बोला और पापा जी रिटर्न में शाम को घर आए वापस, तो उस मतलब बहुत सारी चीजें लेकर आए, लेकिन जो मम्मी ने कहा था सब्जियां वो नहीं लेकर आए। फिर मम्मी ने पापा जी को थोड़े ताने सुनाए, पापा ने बोला अच्छा मैडम मैं वापस आता हूँ, अभी सब्जी लेकर फिर वापस आता हूँ।
1: हाँ देखिए लेकर जाइएगा, पता चले कि उतनी दूर आपको फिर से आना पड़े और फिर से आपको ट्रैफिक में फंस सकते हैं, क्योंकि प्रकाश नगर चौराहे की तरफ से आएंगे आप भैया, तो यहाँ पर आपको जमकर भीड़ मिलने वाली है। शाम के टाइम में तो बहुत ज्यादा मिलती है, क्योंकि हर कोई बाहर की जो रौनक है वो देखने के लिए निकलते हैं, शेयर करने के लिए निकलते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं,
0: ऑफिस से भी घर आते हैं।
1: हाँ बहुत से देखिए लेट आते हैं वो घूम के आते हैं दोस्तों के साथ। देखो यार दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड करना बहुत
0: जरूरी है,
1: साथ ही साथ फैमिली वालों के साथ भी टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। और तुमने कभी ये मतलब मेरे साथ क्या होता है एक्चुअली, जब मैं घर रहती हूँ तो जब मैं घर जाती हूँ, मैं चाहे मैं यहाँ रहूँ तो मैं बाहर से कुछ खाऊं ना खाऊं, लेकिन जब मैं घर जाती हूँ ना तो पापा से एक उम्मीद रहती है मेरी कि जब मेरे पापा आएंगे बाहर से
0: तो मेरे लिए ये लेकर आएंगे। हाँ। वो हम ना कहें तो भी लेकर आते हैं।
1: हाँ।
0: पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं बच्चों से, अगर हम कुछ भी ना कहें ना तो भी वो बिना कहे कुछ ना कुछ लेकर जरूर आते हैं।
1: मेरे पापा सबसे ज्यादा मोमोज लेके आएंगे, क्योंकि जो मेरी भतीजी है ना
0: हाँ
1: वो ताने बहुत देती है।
0: अच्छा दादाजी आप मेरे लिए मोमोज नहीं लेकर आए?
1: भाई वो जो भी घर में आए ना शाम के टाइम, चाहे मेरा भाई आए, चाहे मेरे पापा आए, चाहे कोई रिश्तेदार भी आएगा ना, उसको भी कह देती है मेरे लिए मोमोज लेकर आए हो या नहीं लेकर आए हो, मतलब वो नहीं शर्माती, उसको गोलगप्पे चाहिए
0: भाई। वो गोलगप्पे घर में, वो घर में छोटी है लेकिन वो बनती सबसे बड़ी है, सबको सब उसको बहुत प्यार करते हैं और उसकी बात कोई नहीं टाल सकता है। एक बार को तुम्हारी बात टाल देंगे रीना, लेकिन उसकी बात नहीं टालेंगे।
1: नहीं नहीं नहीं चलिए हम बातें बहुत करते हैं, पहले गाना सुन लेते हैं, गाना भी सुनना बहुत जरूरी है।
0: हाँ यार अभी तो हमने बोला म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं लेकिन हमारी बातें फिर शुरू हो गई।

0: कर जाना। कभी आप सोचें कि अरे मैं अपना पेट भर लेता हूँ, घर वालों को थोड़ी ना पता चल रहा है, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप ही अपनी फैमिली के लेकर जाओ, वो भी खुश हो जाएंगे।
1: बिल्कुल, ये तो है। देखिए सबके साथ मिलकर खाते तो अलग ही मजा आता है,
0: अलग ही।
1: लेकिन दोस्तों के साथ जब मिलकर खाते ना भैया, पैसों का नहीं पता रहता है कहाँ चले गए पैसे।
0: मत पूछो भैया, जब पेमेंट करने की बारी आती है ना, तब पता चलता है कि अच्छा इतना बिल आया है, और खाते वक्त नहीं भैया ये भी ऑर्डर कर दो, अच्छा भैया
1: ऑर्डर कर दो,
0: ये भी मंगवा लीजिएगा। और जब पेमेंट करने की बारी आती है तब ओहो यार मेरे तो पास इतने पैसे है ही नहीं।
1: और सबसे खूबसूरत बात, यहाँ खाने का मजा सिर्फ प्लेट में नहीं होता, साथ बैठे दोस्तों की हंसी में, परिवार की बातचीत में, और बाजार की चहल पहल में भी होती है। क्योंकि देखिए खाना खाते समय हम ना बाहर की रौनक भी देखते हैं, अच्छा भैया इसने तो बहुत अच्छी ड्रेस पहन रखी है, अच्छा कल को मैं भी ऑर्डर कर लेती।
0: अक्सर हम लड़कियों में तो ये चीजें होती हैं।
1: नहीं यार लड़कों में भी होती है,
0: लड़कों में भी होती है।
1: हाँ, लेकिन लड़के दिल के बड़े होते, वो नहीं देखते यार जो पहन लिया पहन लिया। हम लड़कियां 70 बार सोचते हैं।
0: मैं भी बहुत ज्यादा यू नो डिसाइड करती हूँ बाहर जाने के लिए कि क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं।
1: नहीं लड़कों को मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो बाहर जाने चल यार देखी जाए,
0: वो जैसे भी है वैसे ही, अरे चल यार चल, मैं
1: स्मार्ट लगते हैं।
0: वो ऐसे ही फेस वॉश कर लेते हैं ना सिंपल सा, और बस हाथों बालों में हाथ घुमाते हैं तो वो उसी में हैंडसम लगने लगते हैं। और
1: एक बात है, जब वो बाहर जाएंगे ना तो बालों में पता नहीं हाथ क्यों मारते हैं। ये आज तक लॉजिक मेरे को समझ नहीं आया।
0: नहीं समझ में आया। और नेक्स्ट एक मुझे समझ नहीं आता रीना अभी भी, कि जो बाइक चलाते हैं लड़के, पता नहीं क्यों वो पीछे मुड़कर देखते हैं।
1: अरे वो पीछे मुड़कर इसीलिए देखते हैं,
0: नहीं समझ,
1: सुंदर लग रही है।
0: मुझे नहीं समझ आता।
1: चलिए फिलहाल हमारा यहाँ से जाने के टाइम है, लेकिन जाते जाते खुशी कुछ कहना चाहती है।
0: तो जनाब आज की शाम हमने घूम ली मुरादाबाद की गलियों में, कहीं गोलगप्पे का पानी चखा, कहीं समोसे की खुशबू महसूस की, कहीं चाट का चटकारा लिया, और कहीं बिरयानी की खुशबू ने दिल जीत लिया। लेकिन अब आखिरी सवाल, इतना सब सुनने के बाद भी भूख लगी है या नहीं, ये आप जरूर हमें बताइएगा। अगली अगर लगी है तो जाइए कुछ अच्छा सा खाइए, परिवार के साथ बैठिए, दोस्तों के साथ हंसिए, और इस खूबसूरत शाम का मजा लीजिए। मैं आपकी आरजी खुशी अब हम आपसे लेते हैं जाने की अनुमति, एंड जाते जाते बस यही कहेंगे कि अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और केयरफुली ड्राइविंग कीजिए। अगर घर पर हैं तो इस मौसम का अपनों के साथ लुत्फ उठाइए। सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए, फिर मिलेंगे आपको बहुत जल्द।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का ये विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश 8 अरब डॉलर से बढ़कर 13.5 अरब डॉलर कर दिया गया है। इस चरण में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं।
0: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है। और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग 8 बिलियन डॉलर्स का था, जबकि सेकंड फेज का 13.5 बिलियन डॉलर्स तक का हमने तय किया है।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमिकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही।
2: दी अप्रोच इन सेमिकॉन 2.0,
3: सेमिकॉन के दूसरे चरण में मुख्य रूप से डिजाइन कंपनियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा, चाहे वे स्टार्टअप हों या बड़ी कंपनियां। बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में आना चाहेंगी क्योंकि अब इसका दायरा बहुत बड़ा है और अवसर भी अपार हैं। स्टार्टअप ऐसे नवोन्मेषी समाधान ला सकते हैं जिन्हें बाजार पसंद करेगा।
2: इनोवेटिव सॉल्यूशंस व्हिच विल बी लाइक्ड बाय द मार्केट।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि एक कंपनी ने आज भारत में 5 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है और कई अन्य कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही हैं। सरकार ने कहा है कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमरीका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूरी हो गई है। इस दौरान भारतीय संस्थानों में भूटानी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए नेहरू वांगचुक छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए भी समझौता हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री छरिंग तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
0: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देशभर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इस समय दिल्ली और बिहार सहित देशभर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रूपये जमा किए जाएंगे।
0: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूं। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
1: प्रधानमंत्री जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब देश की बागडोर संभाली थी तो उनके सुशासन के विजन में सरकार और जनता के बीच सीधा और निरंतर संवाद स्थापित करने का विचार प्रमुखता से सामने आया। इसी सोच के साथ जुलाई 2014 में नागरिकों की भागीदारी के लिए MyGov प्लेटफॉर्म की शुरुआत की ताकि नीति निर्माण में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित की जा सके। जनवरी 2024 में नई दिल्ली में एनसीसी कैडेट्स रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैडेट्स से MyGov प्लेटफॉर्म पर जाकर विकसित भारत के अपने सुझाव देने का आह्वान किया था।
0: विकसित भारत के निर्माण के लिए रोडमैप बनाने का काम चल रहा है तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। आप जैसे युवाओं के लिए ही सरकार ने मेरा युवा भारत यानी माय भारत संगठन भी बनाया है। मैं आप जैसे सभी युवाओं को कहूंगा कि मेरा युवा भारत संगठन में खुद को जरूर रजिस्टर कराएं। आप MyGov पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे। आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं।
5: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के रहने वाले रोहन राज ने MyGov को एक अच्छी पहल बताया।
6: MyGov के जरिए लोग सरकारी योजनाओं और सरकार के अलग अलग कामों की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही लोग अपनी राय और सुझाव भी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि लोग को सिर्फ जानकारी लेने का मौका नहीं मिलता बल्कि अपनी बात रखने का और देश के विकास में भागीदारी करने का भी मौका मिलता है।
5: इस MyGov प्लेटफॉर्म पर इस साल जुलाई तक लगभग 6.5 करोड़ नागरिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने तिब्बती शरणार्थियों को पिछले 6 दशकों से अधिक समय तक शरण देने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। ऑनलाइन नीलामी pmmementos.gov.in पर 31 अक्टूबर तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को ये पता लगाने के निर्देश दिए हैं कि विकसित भारत जी रामजी योजना विकसित गांवों के निर्माण में किस प्रकार योगदान दे सकती है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हों। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार वर्षा और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। इसमें शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 16वां चरण शुरू किया। इस चरण में 9 कोयला उत्पादक राज्यों में स्थित 25 कोयला खंडों की नीलामी की जा रही है। इनमें 21 पूर्णतः और 4 आंशिक रूप से अन्वेषित खदानें शामिल हैं। 9 कोयला उत्पादक राज्यों में अब तक कुल 147 कोयला खदानों की नीलामी हो चुकी है। इस वर्ष अगस्त में भारत का वस्त्र निर्यात बढ़कर 29,700 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में अगस्त में निर्यात में 16.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल से अगस्त 2026 के दौरान वस्त्र निर्यात 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच गया। इसमें पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10.3% की वृद्धि है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
7: सेंसेक्स 22 अंक की मामूली गिरावट से 74,315 के स्तर पर रहा, जबकि निफ्टी 53 अंक की मजबूती से 23,271 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया मामूली सुधार से 95.94 रूपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: और अब बात खेलों की। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैच की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला दिल्ली में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 18वें ओवर में 4 विकेट पर 201 रन बना लिए हैं। अभिषेक शर्मा ने 34 गेंद पर 108 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। वे भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 30 गेंद में शतक पूरा किया। भारत 2 मुकाबले जीतकर पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। मौसम विभाग ने कल बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ तूफान आने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमरीका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
9: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

नमस्कार दोस्तों, शाम का वक्त है और चेहरे पर दिन भर की थकान, लेकिन अब उस थकान को बाहर निकाल फेंकिए क्योंकि आ चुका है आपका अपना शो दिल से दिल तक अखिल संग। जी हाँ, खूब सारी जहाँ बातें होती हैं आपकी पूरे दिन के थकान की और कहाँ कहाँ से गुफ्तगू जो होती है ना, जब बैठते हैं भाई साहब दोस्त की तरह बैठते हैं और कहते हैं यार आज क्या बात, आज तूने बात नहीं करी और फ़ोन भी नहीं आया तेरा, तो हो जाता है साहब कोई बात नहीं, यहाँ पे खूब सारी बातें करेंगे। 9837896896 पे आप कॉल करेंगे और दिल की बातें होंगी, हंसी होगी, खुल के शायरी होगी, थोड़ी सी रोमांटिक और थोड़ी नटखट। तो बताइए आज का दिन कैसा रहा, रिमझिम में भीगे या काम ने परेशान किया या फिर बॉस ने? अरे साहब बॉस ने किया ना बस, अब बॉस भी अपने घर का बॉस थोड़ी है, उसे भी किसी की सुननी पड़ती है। और हाँ, जो चाय लवर्स हों गए थे घर पहुंचो, घर पहुंचती चाय मिल जाए या फिर आपको ब्लैक कॉफ़ी मिल जाए। अरे नहीं नहीं ब्लैक कॉफ़ी तो मैंने अपने लिए बोला, मगर आप अगर चाय पीते हैं और चाय मिलने के बाद बस यही कह दूंगा भाई साहब क्या बात है, आज तो तुम्हें सब कुछ मिल जाए जिसने मुझे चाय बना के पिला दी है। तो जो लोग अभी चुपचाप रेडियो सुन रहे हैं गाड़ी में सीट बेल्ट लगा के, बड़े प्यार से कह रहे हैं भैया फटाफट एक गाना मेरी फरमाइश का भी होना चाहिए, तो ज़रूर फटाफट 9837896896 पे मैसेज करके या कॉल ही कर लीजिए, थोड़ी सी दिल की बात बता दीजिए और अपने पसंद का गाना भी सुन लीजिए। तो चलिए जब तक करते हैं थोड़ा सा एंजॉय, गाने से लेते हैं फिरकी। और भाई साहब अकेला है एक मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी भी चाहिए, तो इस गाने को तो आप सभी ने एंटरटेन किया है, तो लेते हैं थोड़ा सा आनंद और मिलते हैं इस गाने के बाद ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़।

0: बिल्कुल सही कहा। एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। और साहब तो अगर आप अकेले हैं तो आप भी खिलाड़ी हैं, और खिलाड़ी को एक दूसरा खिलाड़ी हमेशा चाहिए होता है। जैसे हम हैं, हमें भी तो एक खिलाड़ी चाहिए जो अपनी फरमाइश बताए और अपनी दिल की बात बोले। तो चलिए बात करते हैं अपने नए खिलाड़ी से। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है सर। और सुनाओ, कैसी बारिश पड़ रही है? सावन की गड्ढा की तरह
0: सर, अब मौसम चल ही रहा है ऐसा, तो बारिश तो पड़ती रहेगी। अब छाता आप रखना भूल गए या ले आना भूल गए, तो उसमें गलती किसकी है?
1: ऐसा नहीं है, जब हम घर से निकलते हैं तो छाते की जरूरत नहीं पड़ती, हम ड्यूटी में पहुंच गए जब पड़ी बारिश।
0: तो चलो, आपको तो ब्रेक दे दिया इसका मतलब ऊपर से इंद्र देवता जी ने। नहीं नहीं नहीं, बच्चे नहीं भीगे, आज बच्चों की छुट्टी थी। तो और बताइए सर, क्या हो रहा है इस समय? लेटे हुए हैं छत पर? पंखे के पास लेटे हुए हैं? पंखा भी दीवार पे लेटा हुआ है और आप नीचे लेटे हुए हैं। बताइए कैसा चल रहा है? कंपटीशन चल रहा है सर आपका और पंखे का भी। तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: गाना वो सुना दो, रेखा ने गाया तो सलामे इश्क मेरी जान कबूल कर ले।
0: ये बात सही है साहब, पर्दे के पीछे कोई और गाना और पर्दे के सामने कोई और गाना।
1: तो
0: चलिए साहब, वो गाना भी आपका प्ले होगा। और बहुत ही अच्छा लगा कि आपने कॉल करी और अपनी फरमाइश बताई। धन्यवाद नरेंद्र जी।
1: धन्यवाद।
0: तो साहब नरेंद्र जी इस समय कर रहे हैं आराम और कह रहे हैं कि साहब मेरा भी एक गाना जो है ना पसंद का चला दो, क्योंकि पंखा उनका तेज नहीं चल रहा है। तो क्यों ना हम उनका एक पसंदीदा गाना पहले प्ले करते हैं और आपसे भी खूब सारी बातें करते हैं। 9837896896 पे। कुछ रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, कुछ रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, कुछ अपने पास होकर भी पास नहीं होते। याद तो सब करते हैं अपने अपने अंदाज में, लेकिन कुछ लोग दिल के इतने खास होते हैं कि उनसे बात किए बिना भी पूरा दिन नहीं होते। तो हाँ जी, बहुत से खास लोग आसपास रहते हैं और दिल में बसे हुए होते हैं, जब तक बात नहीं होना तब तक लगता है भाई साहब आज कुछ हुआ ही नहीं। तो सुनते हैं ये गाना और फिर करते हैं खूब

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप भी सोच रहे होंगे अगर साथ में आपके पार्टनर गाड़ी में बैठे हुआ है और सोच रहे होंगे यार ये कौन सा गाना प्ले करवा दिया, खर्चा करवाने में लगे पड़े अखिल भाई आप। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर वो मुस्कुरा रही हैं और ये गाना सुन के कह रही भैया 9 लक्खा तो नहीं दिलवा सकते हो तो कम से कम एक आइसक्रीम ही खिला दो, तो हाँ जी बहुत ही अच्छा मौका है, पुल से उतर जाएं, चाहे लोको शेड का हो या सोनकपुर वाला, और आप प्यार से उन्हें एक आइसक्रीम उनकी पसंदीदा वाली खिला दें। तो चलते हैं शो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मुस्कुराने की वजह बन जाओ, किसी के चेहरे की खुशी बन जाओ कभी। वैसे तो ज़िंदगी खूबसूरत है बहुत, लेकिन किसी की ज़िंदगी की खूबसूरती बन जाओ कभी। और हाँ सुनिए, प्यार सिर्फ प्रेमी प्रेमिका वाला ही नहीं होता है, दोस्ती में भी प्यार होता है, परिवार में भी प्यार होता है, माँ की डांट में भी प्यार होता है, कभी कभी तो चाय के आखिरी कप में भी प्यार होता है। मतलब जो प्यारी सिप लेते हो ना, लास्ट वाली सिप, वो ही बहुत प्यार वाली हो जाती है कभी कभी तो। तो लेते हैं अपने नए लिसनर को कॉल पे और पूछते हैं जी वो कौन सी चाय पी रहे हैं इस समय। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप?
1: हेलो सर, सबसे पहले आपको मेरा मोहब्बत भरा नमस्कार।
0: अरे सर, हमारा भी आपको पूरा पूरा मोहब्बत वाला नमस्कार। सर कैसे, क्या कर रहे हैं इस समय?
1: सर मैं इस टाइम बैठा था और आपका शो सुन रहा था। सर आप शो मतलब काफी अच्छा पेश करते हो, हम तो रहा नहीं जाता। सर जो अभी मेरे पास एक कॉल आई थी, उन्होंने मुझसे बोला कॉल लगाओ, गाना सुनो। मैंने चलो लगाते हैं, वो भी सुन रहे हैं आपको, आप काफी अच्छा प्रोग्राम पेश करते हो सर।
0: तो उन्होंने आपको कॉल करके ये बोला कि चलो चलो गाना सुनो?
1: हाँ, हमारी पसंद का गाना सुनना, हम थोड़ा बिजी हैं। चलो हम खाली बैठे, हम लगा देंगे।
0: ये मतलब साहब आप भी जो है ना पूरा पूरा हुक्म की तामील हो रही है आपके, है ना?
1: वैसे मैंने आज ये सोचा था मतलब कल लगाऊंगा कॉल, उनके कहने से लगाना पड़ेगा सर।
0: अरे सर उनके कहने से तो पता नहीं, अगर आपको कहते कि अभी लगा दो फोन अमेरिका तो आप अमेरिका भी फोन लगा देते।
1: सर हमने उनकी बात मानी और आप ये मकर हम आपकी बात मानते।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही। तो कौन सी कोई बात उनके लिए, कोई शायरी वायरी कुछ अर्ज करना चाहेंगे या कर्ज में ही रहना चाहेंगे?
1: शायरी भी बोल देंगे, क्या दिक्कत है।
0: तो सुनाइए कोई शायरी सुना दीजिए, उनके पास पहुंचे, वो बिजी हैं तो उनके पास कम से कम आपकी शायरी तो पहुंचे।
1: सर कहते हैं कि मोहब्बत की सजा बेमिसाल दी उसने, मोहब्बत की सजा बेमिसाल दी उसने, उदास रहने की आदत भी डाल दी उसने, जब मैंने अपना बनाना चाहा बातों बातों में बात डाल दी उसने।
0: क्या बात है, क्या बात है। जब आपने बनाना चाहा, आपके हाथ में कोई गिफ्ट विफ्ट या कोई आइसक्रीम वाइसक्रीम या चॉकलेट थी या नहीं थी?
1: कई साल में सोचा अपना बनाना है, तो उन्होंने बात भी नहीं सुनी पूरी।
0: सालों में तो कई सारी चीजें बदल जाती हैं, अब आपने इतना साल लगा दिए, ये तो पल दो पल की कहानी है, जल्दी से बात एकदम क्लोज कर देना चाहिए टॉपिक।
1: सर ज्यादा जल्दी भी सही नहीं, मतलब मैं सोच रहा पहले बंदों को आज मार लें, क्या है क्या नहीं,
0: ठीक है जल्दी भी सही नहीं है, मगर इतने साल भी सही नहीं है कि आपने भाई साहब सालों में यही सोचते रह गए कि इस साल उस साल और अगले साल।
1: पर इतना टाइम हो गया, उन्होंने बात ही डाल दी।
0: चलो साहब तो कोई बात नहीं, अब तो डाल गई बात और बला
1: टल गई। आज के दौर में कोई बात नहीं, उन्होंने हमारी बात डाल दी, आज के दौर में करने वाला हो काम,
0: इसी
1: काम इतने हैं मुश्किल पड़ जाएगा काम करते करते।
0: आपकी इस बात पे मुझे एक बात याद आ रही है, मैं आप कहें तो सुनाऊं आपको भी जरा कुछ?
1: बिल्कुल बिल्कुल सर सुनाओ।
0: मजे ले रहे हो, फिरकी ले रहे हो आप भी? हाँ जी सुना दो हैं, चलो सुना दो। कल की फिक्र में आज को मत खोना, जो अपना है उसे यूं ही मत रोना, जिंदगी बहुत छोटी सी कहानी है दोस्तों, हंसते रहो मुस्कुराते रहो और अपनों को दिल से अपना कहना।
1: क्या बात है सर, बहुत अच्छा बोला आपने,
0: धन्यवाद। बिल्कुल सही बात कह दी, जो इस समय गाड़ी चला रहे हैं ना वो ढूंढने निकल जाएंगे आपको, भाई साहब कहाँ थे इशरत जी, आपने ऐसी ऐसी बातें कह रहे हो। गाना बताओ इशरत जी, कोई एक ऐसा गाना जो बहुत दिल के करीब हो इस समय।
1: सर अपनी जान का खुद ही ख्याल रखें, एक दूसरे से होशियार रहें, आज के दौर में यार दोस्त भाई मतलब भाई बहन कोई किसी का नहीं है।
0: सर अब ये तो वक्त वक्त और रिश्तों के ऊपर है, मगर है सब कुछ, अगर आप आज भी पकड़ें और हाथ पकड़ के थाम के बैठे तो आपके पास सब कुछ है। तो अभी आप गाना बताइए, हम आपके गाने में सबको डेडिकेट कर देंगे वो।
1: चलो सर हमारा गाना बहुत पक्का है, आज मूवी का नाम है चाहत, वो और इस मूवी का टाइटल सॉन्ग सुनवा देना।
0: टाइटल सॉन्ग सुनवा दे, एक आध लाइन आप भी गा दिया करो आजकल।
1: दिल का धड़कना यही चाहते,
0: ये सब गा रहे हो या ये डांट रहे हो उसे?
1: जी सर,
0: ये आप गाना गा रहे थे, डांट रहे थे?
1: आज हवा नहीं चल रही है ना, हवा के साथ में मतलब।
0: हाँ तो आप हवा के साथ साथ फिर आपको रेडियो की क्या जरूरत थी, आप गाते हो और सब जगह फैल जाता रामपुर में, है ना। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया।
1: चलो ठीक है, मिलते
0: हैं। धन्यवाद ईश्वर जी। तो ये थे इशरत जी हमारे साथ जुड़े हुए, कह रहे आज हवा नहीं चल रही है ना इसलिए मैं गा नहीं पा रहा हूँ। भाई साहब बहुत ही बढ़िया, अच्छा अच्छी अच्छी बात है, ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं और अपनी दिल की बातें करते हैं ना, तो यही बातों पे आपको और हमको प्यार हो जाता है। तो चलिए इनके गाने का लेते हैं आनंद और उसके बाद सुनेंगे आपकी फरमाइश 9837896896 पर।

0: अथॉरिटी
1: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। हाँ जी, पता ही नहीं चलता कब वक्त गुजर जाता है, कॉल आ जाती है, बात हो जाती है और 9:42। तो जो लोग अभी इस समय कर रहे हैं डिनर या फिर अभी भी कर रहे हैं ड्राइव, वो थोड़ा सा इत्मीनान, थोड़ा सा खुश होकर छोटा सा स्माइल अपने चेहरे पे लेके तो आ ही सकते हैं। कभी कभी स्माइल करते हैं और सामने वाला सोचता है यार ये स्माइल क्यों कर रहा है, मगर उसे ये पता नहीं होता कि भाई कोई ऐसी बात जो चुपचाप आपको याद आ जाती है और अचानक उस बात को याद करते ही या आपके जहन में आते ही आप हल्का सा उस पर मुस्कान दे देते हैं और सामने वाले के लिए वो हो जाता है क्वेश्चन मार्क। तो चलिए करते हैं बात अपने नए लिसनर से और पूछते हैं क्या कह रहे हैं वो। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम है गुंजन।
1: आपका नाम है गुंजन? गुंजन जी, क्या कर रही हो आप? आप मेरा शो सुन रही हैं? आज क्या आपने मम्मी की हेल्प करी, कुछ हेल्प करी मम्मी की खाना बनाने में या नहीं?
2: नहीं,
1: कोई हेल्प नहीं करी। तो आप इस समय इसका मतलब पढ़ाई कर रही होगी? वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी एग्जाम्स चल रहे हैं या नहीं चल रहे स्कूल में आपके? खत्म हो गए? अब तो फिर आपको पता ही होगा कहाँ कहाँ पोल खुलेगी, कौन से में कौन से कितने मार्क्स आएंगे, पता है या नहीं?
2: अभी हमारे टेस्ट नंबर नहीं मिले।
1: अभी टेस्ट नंबर नहीं मिले हैं? तो आज कौन सा गाना सुनोगी आप? क्या ठीक है? जरूर जरूर। इस गाने पे आप डांस भी करती हो या नहीं करती हो, पहले सच सच बताना। करती हो? आपको डांस करना पसंद है? और क्या क्या पसंद है गुंजन को?
2: पढ़ाई करनी और डांस करना।
1: ये पढ़ाई करना, ये पढ़ाई करना तो तुमने मम्मी को देख के बोला होगा, है ना? हाँ हाँ, तो आप हमें भी चाचा बोल सकती हैं। हम भी एक बात बोलें, आपकी आवाज हमें बहुत ही प्यारी लगती है, मगर जब आप ये फरमाइश करती हो ना कि गैया भैया ये गाना हमें पूरा सुनाना, तब हमें याद आ जाती है कि हाँ ये बच्चा सच में शैतान है।
2: तो
1: अच्छा, आपको खेल कौन सा पसंद है? कौन सा? लूडो पसंद है? आपको बैडमिंटन, आपने देखा बैडमिंटन खेला है कभी? आपने बैडमिंटन खेल पता है कैसा होता है?
2: तो मजा नहीं आता।
1: मजा नहीं आता, आप खेलोगी ना तभी आपको मजा आएगा। मगर इस बार पता है पूरे अपने मुरादाबाद में ना, मुरादाबाद में समर वैली स्कूल में 25 सितंबर से लेके 27 सितंबर तक एक स्टेट चैम्पियनशिप होने वाली है बैडमिंटन की। तो आप जाना और मम्मी पापा के साथ

रहना और खूब चीयर करना वहाँ पे जो जो प्लेयर्स होंगे, ठीक है? पक्का जाओगे? ठीक है, हाँ मैं भी जाऊंगा। ठीक है ठीक है, तो लूडो खेलेंगे किसी दिन, मिलेंगे तो लूडो भी जरूर खेलेंगे। चलिए तो अभी मैं आपकी पसंद का गाना प्ले कर देता हूँ, अभी आप सिर्फ डांस करो, फिर लूडो बाद में खेल लेना, ठीक है? बाय बाय, गुड नाइट। तो श्रोता हमारे साथ जुड़ी थी गुंजन जी, और जो ना बहुत ही मस्त बात करती हैं, छोटी सी नटखट सी आवाज़ आप लोगों ने सुनी होगी, खूब मस्ती भरी बातें होती हैं। लूडो खेलना पसंद है भैया, और मुझे आपकी आवाज़ मेरे चाचा जैसी लगती है। हाँ जी, हम भी आपके चाचा ही हुए। तो चलिए लेते हैं इस गाने का आनंद, उसके बाद करते हैं आपसे भी बात, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है ना, 10 बजने वाले हैं, वैसी वैसी धड़कने हैं वो तेज़ हो जाती हैं, और कई सारी आवाज़ें आती निकल के, अरे भाई साहब मेरा ही फ़ोन उठा लो, भाई साहब मेरा ही फ़ोन उठा लो, अरे हाँ साहब आपकी भी कॉल उठाएंगे और खूब सारी बातें करेंगे।

एक बार फिर से स्वागत है उसी पुल पे, नहीं नहीं साहब मतलब स्टूडियो में आपका फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। खूब सारी बातें हो रही हैं दिल की, हाँ आपकी भी दिल की बातें हमारे पास पहुंची हैं। अगर आप नहीं कॉल करेंगे, नहीं बोलेंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी पसंद का गाना नहीं प्ले होगा। होगा जी होगा। और करते हैं चलिए अपने नए लिसनर से बात और पूछते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं आज। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका? हेलो, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग, क्या कर रहे हैं आप? हमारा शो सुनना है तो अच्छा था, बताइए इससे पहले वाला कौन सा गाना प्ले हुआ था? चलो चलो चलो, आज आपको माफ किया, मगर अगली बार जरूर पता करके रखना कि कौन सा गाना प्ले हो रहा था। ओके ओके, सब सही है, तबीयत खैरियत है आपकी, क्या करती हैं आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आपकी आवाज़ थोड़ी सी ना कह रहे हैं भागती हुई आ रही है या लहराती हुई आ रही है, तो थोड़ा सा अपना मोबाइल के माइक्रोफोन को अपने पास लेके आए। अब आया थोड़ा सा नेटवर्क सही। तो आज कौन सी शायरी सुनाना चाहेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगी आपकी दिल की बात? क्या बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही बात पकड़ी है कि जब तक शायरी ना हो तब तक मज़ा कैसा। बिल्कुल सही, तो सुनाइए एक शायरी एकदम तड़कती भड़कती कोई। क्या बात है क्या बात है, आपने तो एकदम शो को और चार चांद लगा दिया, जाते जाते इतनी बढ़िया शायरी सुनाई आपने। तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगी आप और किसे डेडिकेट करना चाहेंगी? धन्यवाद धन्यवाद, हमें भी बहुत खुशी मिल रही है कि बहुत दिनों बाद किसी की कॉल आई। चलिए कोई नहीं, तो आप बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? जा सजना तुझको भुला दिया, ये सही है, सोने से पहले ही मतलब जाने सोने जाने से पहले ये इतना बढ़िया गाना आपने चला, जा सजना तुझको भुला दिया, अब कल सुबह याद करेंगे तुम्हें। सही है, कोई बात नहीं, देर से आया और कहते हैं ना बढ़िया एकदम मस्त गाना लेके आया। बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल एकदम चुस्त और दुरुस्त हुए हैं और खूब हंसती रहें, ऐसी ही मुस्कुराती रहें और ऐसे ही स्वास्थ्य का ध्यान रखें अपना और हमें कॉल करते रहें। बाय बाय। तो श्रोताओ हमारे साथ जुड़ी थी अफरोज फातिमा जी और कह रही थी बहुत दिनों बाद मेरी तबीयत सही हुई है तो आज मैंने आपको कॉल मिला लिया। चलिए अब हम हैं अपने अंतिम पड़ाव पे और जाने से पहले हम पढ़ेंगे कुछ मैसेजेस जो आज हमारे पास आए हुए हैं और देखते हैं हमारे लिसनर्स हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। देवों में पहले पूजा जाते हो तुम, देवों में पहले पूजे जाते हो तुम और हर शुभ काम में याद आते हो तुम। बहुत ही बढ़िया, आज सच में बिल्कुल सही बात कही, गणेश जी जो है हमारे सभी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाते हैं। हमारे पूरे परिवार की तरफ से अखिल सर जी को प्यार भरा नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। लाइन पार मुरादाबाद प्रकाश नगर चौराहे से, तो ज़रूर हमारा भी लाइन पार प्रकाश नगर मुरादाबाद चौराहे के पास से ही हमारा भी है, हमारा भी बहुत बड़ा बड़ा नमस्कार आपको,
पूरी यादव फैमिली को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्ले, मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मलन अलबेली, तो ज़रूर ये गाना ज़रूर प्ले करेंगे, मूवी का नाम है राजा रंग, तो आपकी ये फरमाइश ज़रूर प्ले। दूसरा मैसेज है हमारे पास, हेलो अखिल सर, गुड वाला गुड इवनिंग दिल से दिल तक, आप कैसे हो? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आपकी आवाज़ और बोलने का अंदाज़ और साथ में शो प्रस्तुत करने का अंदाज़ बहुत ही अच्छा लगता है। ललिता कश्यप, नवीन नगर, मुरादाबाद। धन्यवाद ललिता जी, हमें भी आपका मैसेज करने का तरीका बहुत ही अच्छा लगता है। आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, नमी है मौसम में। हैप्पी विश्वकर्मा जयंती आप सभी को और सभी देशवासियों को, और आपको भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। तो आज तो जी केक कटना बनता है, मोदी जी का जो बर्थडे है, सभी देशवासियों को कहते हैं ना, पूरा एक तरीके से एक उल्लास की तरह आज मनाया गया है ये दिवस। देश सेवा का जज्बा यूं ही दिल में बना रहे, भारत माँ का मान हमेशा ऊंचा रहे, ईश्वर से यही दुआ है कि दिल से हमारी मोदी जी की उम्र हो लंबी, सेहत रहे प्यारी। क्या बात है, क्या बात है, हमारी तरफ से और सभी की तरफ से ये मैसेज पूरी पूरी उम्मीद है मोदी जी तक पहुंचा होगा। हर कदम पर मिले सफलता, हर पल खुशियां अपार, जन्मदिन पर मिले देशवासियों का प्यार, दीर्घायु नरेंद्र मोदी जी, स्वस्थ रहें हर बार, यही है आज दिल से हमारी शुभकामनाएं हजार। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया शायरी लिखी है आज आपने, और लास्ट में आपसे चलते हुए आपने दो और शायरी लिखी, तो ज़रूर ये भी पढ़ लेते हैं। सूरज ढला, शाम ने ली अंगड़ाई, अखिल सर की याद फिर मुस्कुराई, चाय की चुस्की हो और खुशियों की हो बात, ऐसी ही हसीन रहे आपकी हर शाम और हर रात। क्या बात है, क्या बात है। तो हमारा भी सॉन्ग आप बिंदास सुना रहे हैं, ओल्ड इज गोल्ड है, और सॉन्ग सुना दीजिएगा, सनम मेरा सबसे प्यारा है, तो वो तो आपने सुनी लिया होगा। थैंक यू सर, और हमारे को ना गाना पूरा सुनाया करो, तो ज़रूर आपको भी गाना पूरा सुनाएंगे, क्योंकि जी गुंजन जी जो है ना, जब गुंजन जी ने रिक्वेस्ट कर दी जी पूरा गाना सुनाना, तो हम आपको पूरा सुनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं, बिल्कुल 10 बज गए हैं और एक मिनट बाकी, मगर कोई बात नहीं साहब, कल फिर मिलेंगे आपसे हम ठीक इसी समय, और ऐसी ही होगी आपसे दिल की बातें। तो एक घंटा ना पता नहीं चलता हमें सच में कब निकल जाता है। साइनी, हमने खूब सारी शायरी सुनी, मस्ती, खूब सारी बातें हुई, जोक्स आपस में तो हुई गए एक दो। तो याद रखिए, ज़िंदगी में परेशानी आती जाती रहेंगी, मोहम्मद उस्मान भाई आपकी भी कॉल आती रहेगी, मगर आपको हम कल देंगे खूब सारा मौका। आपका जो पसंदीदा गाना ना कल खूब अच्छे से प्ले होगा, लेकिन मुस्कुराने का मौका है ना खुद से मत छीनिएगा। चलने से पहले एक शायरी आप सभी के लिए, हंसी बांटोगे तो चेहरे खिल जाएंगे, प्यार दोगे तो रिश्ते मिल जाएंगे, जिंदगी को थोड़ा खुलकर जियो दोस्तों, क्या पता कल हम हो और ये खूबसूरत पल ना हो। तो मैं हूँ आपका अपना अखिल, और ये था दिल से दिल तक अखिल संग का। कल फिर मिलेंगे नई बातें, नई मस्ती और नए अंदाज के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपनों के दिल के करीब रहिए, दिल से जुड़े रहिए, क्योंकि बातें वही खूबसूरत होती है जहाँ दिल जुड़ा होता है। तो मिलते हैं कल आपसे ठीक 9 बजे इसी समय इसी स्टूडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, और मुस्कुराते रहो सर।

और चलते चलते एक बहुत ही फरमाइश जो है आज बर्थडे विश की है अपने पास, और बर्थडे है मेघा अग्रवाल जी का, जिन्हें विश कर रहे हैं अमर अग्रवाल जी उनके हस्बैंड, और कह रहे हैं कि आज तो पार्टी बनती है, तो खूब सारी पार्टी करिए मेघा जी, और खूब मुस्कुराइए और खूब हंसते रहिए, और आपको जी हैप्पी बर्थडे।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन, आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
4: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
5: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
1: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: सेवा से संकल्प जगे, संकल्प से हर जन जुड़े।
1: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।
0: स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और सुशासन, प्रदेश सरकार आज हर क्षेत्र में रच रही है नया इतिहास।
1: तो आइए आप भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बनिए, प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनिए।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: मैं उसके लिए मर चुकी हूँ।
1: वो भी आपकी यादों में पल पल मर रहा है।
0: तो कह दो उसे कि उन यादों की चिता बना के जला दे।
1: उस चिता से उठता धुआं भी आपके प्यार का ही होगा।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।